मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के अश्विन मास की छठवीं तिथि, तदनुसार 28 सितंबर सन 2026 प्रातः के 5:56 और 55 सेकंड हुए हैं। अब आरंभ होती है आज की हमारी प्रातःकालीन सभा। इस सभा में आपके साथ मैं हूं, आपका दोस्त अनुराग शर्मा। आप सभी को हमारा नमस्कार, सुप्रभात।

0: हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने को है हिंदी में समाचार। अब से कुछ ही समय में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को हुए उरी आतंकी हमले के बाद की गई थी, जिसमें 18 भारतीय जवान शहीद हुए थे। इस कार्रवाई ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुरक्षा नीति में बदलाव को दर्शाया। इसके बाद वर्ष 2019 में बालाकोट और वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से भी पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई। आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति अब आतंकवाद के प्रति कतई बर्दाश्त न करने की है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए 2 दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। मंत्रालय के अनुसार सम्मेलन में केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय तथा कृषि उत्पादन उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए साझा रणनीति बनाने पर विचार किया जाएगा। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। इसमें दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख अब 30 अक्टूबर होगी। नोटिस जारी करने और दावे आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया 30 नवंबर तक जारी रहेगी। अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय आज केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें 2,000 रुपए से अधिक के चुनिंदा UPI मर्चेंट लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाने का निर्णय लिया गया है। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 से खेला जाएगा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में वर्तमान चैंपियन भारत प्रतियोगिता में सीधे क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है और अपनी जीत का सिलसिला जारी रखने का लक्ष्य रखेगा।

0: जापान एशियाई खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कल 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6:05 और 10 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सबसे पहले सुनिए समूह स्वर में देशगान।

आकाश आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से श्रोता इस समय सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला भक्ति गीत सुनिए, जगजीत सिंह व साथियों के स्वर में।

0: श्रोताओं, भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब समय है कार्यक्रम चिंतन का। आज हम आपको सुनवा रहे हैं भगत सिंह जी की जयंती पर श्री श्याम सरीन से उनके विचार।
1: 23 मार्च 1931 के बाद से हर वर्ष फिरोजपुर के निकट सतलुज के उस पार हुसैनी वाला में शहीदों के शहीद कवि श्री ओम प्रकाश की पंक्तियां चरितार्थ हो जाती हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। ये वो पावन स्थल है जहां राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को लाहौर में फांसी दिए जाने के बाद रात के अंधेरे में यहाँ फिरोजपुर लाहौर रेलवे लाइन के लिए सतलुज पर बने पुल के निकट इन शहीदों का आधा अधूरा अंतिम संस्कार किया गया था। इन शहीदों की लोकप्रियता से घबरा कर ही भारत की तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कुकृत्य किया था। सचमुच भगत सिंह के इनकलाब जिंदाबाद के नारे ने पूरे देश के जन जन तक क्रांति का संदेश पहुंचा दिया था। फिर भगत सिंह के साथ राजगुरु और सुखदेव के फांसी ने देश के नौजवानों को उद्वेलित कर दिया था। इसी समाधि परिसर में 1 जून 1975 को स्वर्गीय हुई भगत सिंह की माता विद्यावती का भी अंतिम संस्कार हुआ। पंजाब सरकार ने 1973 में उन्हें पंजाब माता के रूप में अलंकृत किया था। इन तीनों क्रांतिकारियों के लिए फांसी की तारीख तो 1931 की 24 मार्च तय की गई थी, लेकिन निर्धारित तिथि से एक दिन पहले वे भी फांसी के नियमों के विरुद्ध प्रातःकाल की बेला के बजाय संध्या समय ही 23 मार्च को फांसी देने का निश्चय कर लिया गया। फांसी की कोठरी का दरवाजा खुला, जेल के अधिकारियों ने जो चमचमाती वर्दी में थे बोले, सरदार जी चलिए उठिए, तैयार हो जाइए, फांसी का हुक्म आ गया है। भगत सिंह ने उनकी ओर देखे बिना ही कहा, ठहरो, अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। उस समय वे प्राणनाथ द्वारा दी गई लेनिन चरित्र की किताब पढ़ रहे थे। उसके कुछ पैराग्राफ और पढ़े, फिर किताब को छत की ओर उछालते हुए उछक कर उठ खड़े हुए बोले, चलो। चलते समय भगत सिंह ने कोठरी को बड़े प्यार से पल भर देखा। संभवतः बुद्ध ने भी घर छोड़ते समय ऐसे ही लाड़ से यशोधरा को निहारा होगा। वे अपनी कोठरी से बाहर निकल आए। अब तक राजगुरु और सुखदेव भी अपनी कोठरियों से तैयार होकर निकल आए थे। बड़े जेलर खान बहादुर मोहम्मद अकबर ने इन तीनों का यह अनुरोध मान लिया था कि इन्हें कंटोप नहीं पहनाए जाएं और ना ही हथकड़ियां लगाई जाएं। फांसी के लिए चलते समय भगत सिंह बीच में थे, राजगुरु उनकी दाई ओर और सुखदेव उनकी बाई ओर। तीनों ने एक दूसरे की बाहों में अपनी बाहें डाल रखी थीं। अब वे तीनों मस्ती से गाते हुए चल रहे थे, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबूए वतन आएगी। फांसी घर में फांसी के वक्त मौजूद रहने के लिए अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर मौजूद था। उसे देखकर भगत सिंह ने कहा, वेल मिस्टर मैजिस्ट्रेट, यू आर फॉर्चुनेट टू बी एबल टुडे टू सी

0: How Indian revolutionaries can embrace death with pleasure for the sake of their supreme ideal. सचमुच वो मैजिस्ट्रेट, वो डिप्टी कमिश्नर सौभाग्यशाली था जो ये देख सका कि भारत के इन वीर क्रांतिकारियों ने अपने सर्वोच्च आदर्श की प्राप्ति के लिए किस तरह मृत्यु का आलिंगन किया था। तीनों एक साथ गरजे, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, और फांसियों पर झूल गए। उस समय संध्या के 7:33 हुए थे।
1: श्रोताओं, अभी आपने चिंतन में सुना श्री श्याम सरीन से भगत सिंह जयंती पर विशेष उनके विचार। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

0: लड़की।
1: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
2: पानी के छींटे व्यर्थ में ना उड़ाएं।
1: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
2: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें।
1: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं।
2: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
1: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
2: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
1: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
2: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
1: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
2: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
1: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
2: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।

अवध नरेश के चारों कुमार अपनी अपनी वधुओं सहित अयोध्या में छाए हर्ष और उल्लास के वातावरण का केंद्र बने हुए हैं। महाराज दशरथ ने अपनी रानियों के साथ कुल गुरु वशिष्ठ के चरणों की वंदना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। दक्षिणा स्वरूप वो कुल गुरु को अपनी संतान तथा सारी संपत्ति समर्पित कर देना चाहते हैं, किंतु वशिष्ठ जी ने मात्र अपना नेक स्वीकार करना ही पर्याप्त माना। फिर ब्राह्मणों की स्त्रियां बुलवाई गईं और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण दिए गए। उसके बाद सगे संबंधियों की बारी आई, जिन्हें उनकी रुचि के अनुसार विभिन्न प्रकार के पहरावे प्रदान किए गए। प्रिय और पूजनीय अतिथियों का यथोचित स्वागत सत्कार हुआ। चारों ओर नगाड़ों की ध्वनि के साथ राम का यशगान हो रहा है। अपने अपने नेक जोग पाकर जब सभी अतिथि विदा हो गए तो राजा दशरथ रनिवास में पहुंचे, जहां शेष समारोह की तैयारियां हो रही थीं। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मणों, गुरु और कुटुंबियों को भोजन कराया। 5 घड़ी रात बीत जाने पर जब सभी विदा हो गए तो दशरथ जी ने अपनी तीनों पत्नियों को संबोधित किया। बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं, इन्हें इस प्रकार रखना जैसे पलकें नेत्रों की रक्षा करती हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है, समय है कार्यक्रम कृषि चर्चा का। आज हम आपको सुनवा रहे हैं जल संरक्षण जरूरी क्यों विषय पर डॉक्टर देव नारायण से सामयिक चर्चा।
1: किसान भाइयों, सभी जानते हैं कि जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सभी प्राणियों, जीव जंतुओं व पेड़ पौधों का मुख्य अंश जल ही होता है। हमारे शरीर के वजन का लगभग 90% भाग जल का ही है। हमारे खाने पीने की सभी चीजों में जल का अंश होता है। पीने के लिए तो हमें जल चाहिए ही। हमारे जीवन के सारे क्रियाकलापों में जल की मुख्य भूमिका होती है। खाने के लिए जो खाद्यान्न हमें चाहिए, उसको उगाने के लिए भी जल चाहिए। जिन पशुओं से हमें दूध, मांस आदि मिलता है, उनके पालने के लिए भी हमें जल चाहिए। इसलिए कहा गया है, जल है तो कल है, जल ही जीवन है। जल हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़ा है, अतः जल का संरक्षण अति महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पर 3/4 भाग जल है और 1/4 भाग थल है, परंतु इतनी अधिक मात्रा में जल होने के बावजूद केवल इसका 1% ही उपयोग के लिए उपयुक्त है। जो जल समुद्र में है वह खारा है तथा उपयोग के लायक नहीं है। वर्षा का जल जो नदियों, तालाबों, कुओं, बावड़ी एवं भूमि के अंदर है, वही उपयोग के लायक है। बढ़ती जनसंख्या की खाद्यान्न की आवश्यकता की पूर्ति के लिए खेती के लिए पूरे वर्ष भूमिगत जल का दोहन होता रहता है, जो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। परंतु इस गति से भूमिगत जल का जो संवर्धन है वो नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। अगर वहीं अगर बात करें तो वर्षा के मौसम में लाखों गैलन जल व्यर्थ बह के चला जाता है। पहले जब भूजल स्तर ऊपर था तब चरसों, बारहट आदि से सिंचाई होती थी। इसके बाद भूजल स्तर गिरने पर पंप सेट से सिंचाई की जाने लगी और अब अधिक जल स्तर गिरने पर पंपों से भूमिगत जल से सिंचाई की जाती है, जिसके कारण लगातार भूजल स्तर गिरता चला जा रहा है। अगर हम लोग कुछ बातों को ध्यान में रखें इस संबंध में, तो हम लोग जल को संरक्षित कर सकते हैं। इसमें पहली बात है कि हमें ये महसूस करना चाहिए, मानना चाहिए कि जल के भंडार सीमित हैं और जल का हमें हर स्तर पर अपव्यय रोकना होगा और वर्षा जल के संरक्षण पर ध्यान देना होगा। और दूसरी है कि उपलब्ध जल का प्रयोग बहुत समझदारी से करना होगा, जिससे जल की उपयोग क्षमता को बढ़ा सकें। और इस संबंध में अगर हम बात करें तो जो कुछ बातें हैं कि जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई हैं, उन पर हमें ध्यान देना होगा। जैसे हमारे घरों की टंकियां हैं, उनकी टोटियां हैं, वो अगर उनमें नहीं है तो बहुत सा जल बह के चला जाता है, अतः हमें नलों की टोटियां ठीक करवानी होंगी। इसके बाद है कि घर के उपयोग के बाद जल को एक गड्ढे में इकट्ठा करें और उससे गृह वाटिका में प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद है कि घर के उपयोग के बाद अगर कुछ जल बाहर बह के जाता है तो उसे सूखते गड्ढे के निर्माण के बाद उसको संरक्षित

0: कर सकते हैं। पौधों के थाले हैं, उनमें पलवार के रूप में हमें सूखी घास या पेड़ों की पत्तियों का प्रयोग करें। इससे है कि भूमि सतह से जो बाष्पीकरण द्वारा जल की हानि होती है उसको रोक सकते हैं। इसी प्रकार है कि जब आजकल खेतों में गर्मी की फसलें जैसे मूंग है, सब्जियां हैं हमारी, भिंडी उंडी, तो है कि इन फसलों की गुड़ाई करने के बाद जो खरपतवार हैं उनको फसलों की पंक्तियों के बीच में भूमि सतह पर पलवार के रूप में फैला दें। इससे भूमि में नमी अधिक समय तक बनी रहेगी और सिंचाई की कम आवश्यकता होगी। इसके अलावा सिंचाई के जल की बर्बादी रोकने के लिए खुली नालियों के स्थान पर HDPE पाइप, जो प्लास्टिक के पाइप हैं काले वाले, उन पाइप का इस्तेमाल करें। इससे है कि बहुत पानी की बचत होगी। इसके अलावा कम पानी में अधिक क्षेत्रफल की सिंचाई के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर जो पद्धति है उसका प्रयोग करें। तो इसमें कम पानी से हम लोग अधिक क्षेत्रफल की सिंचाई कर सकते हैं और हल्की सिंचाई कर सकते हैं। कृषि में जल संरक्षण की वैज्ञानिक विधियां अपनाकर इसकी दक्षता को बढ़ाएं और इसे हम लोगों को संरक्षित करना चाहिए। जैसे हम लोगों के फलदार पौधे लगे हुए हैं तो उसमें है कि ड्रिप सिस्टम लगा देंगे, तो उसमें है कि जहाँ आपकी पौधा लगा हुआ है उसके थाले में पानी बूंद बूंद करके जो है आपका थाले में जाएगा और भूमि में जो है वो अवशोषित होगा। तो इसमें है कि कम पानी से अधिक क्षेत्रफल की सिंचाई कर सकते हैं। इसी प्रकार है कि स्प्रिंकलर है, अगर स्प्रिंकलर का हम लोग सिंचाई में इस्तेमाल करेंगे तो इसमें है कि पानी के करीब 50% की बचत होती है।
1: कृषि चर्चा में अभी आपने सुना जल संरक्षण जरूरी क्यों विषय पर डॉक्टर देव नारायण से सामयिक चर्चा। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है, समय है सूचना परक कार्यक्रम चिंतन का, सूचना परक कार्यक्रम दर्पण का। श्रोताओं, सबसे पहले एक बेहद जरूरी सूचना। ग्वालियर के निवासी के तौर पर IIITM के सामने जो नया ISBT बना है वो चालू हो चुका है। स्मार्ट सिटी ने राजस्थान से आने वाली जो बसें हैं उनका ठहराव वहाँ सुनिश्चित किया है। तो यदि आप राजस्थान जाना चाहें तो वहाँ ISBT पर जाकर आप बसें बोर्ड कर सकते हैं। इसके साथ एक और बेहद ज़रूरी सूचना, आज से होने वाली 3 दिवसीय बैंकों की हड़ताल स्थगित कर दी गई है। बैंक एसोसिएशन ने बैंक कर्मियों की मांगों पर विचार करने का फैसला किया है, इसलिए मांग स्थगित कर दी गई है, हड़ताल जो है वो स्थगित हो गई है। तो यदि आपके कोई बैंकों के ज़रूरी काम थे जो आप हड़ताल की वजह से नहीं कर पा रहे थे तो आप कर सकते हैं। कुछ रोज़गार सूचनाओं की ओर ध्यान देंगे। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी BPSC ने स्कूल टीचर्स के TRE स्कूल टीचर्स के लिए 32,388 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन 25 सितंबर से प्रारंभ हो चुके हैं और अंतिम तिथि 26 अक्टूबर 2026 है। सभी कैटेगरीज के लिए परीक्षा शुल्क 100 रुपये रखा गया है। अधिक जानकारी के लिए आप BPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी UPESC ने शिक्षकों के 12,405 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2026 है। अधिक जानकारी के लिए आप UPESC की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर यानी SO के 205 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2026 है। न्यूनतम आयु 21 से 30 वर्ष और मैक्सिमम आयु 30 से 42 वर्ष अलग अलग पोस्ट के हिसाब से इसमें रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप बैंक ऑफ इंडिया की या IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वेल्थ SEO वेल्थ एंड अदर पोस्ट के 207 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2026 है। न्यूनतम आयु 23 से 35 वर्ष और अधिकतम आयु 35 से 50 वर्ष अलग अलग पदों के हिसाब से रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप SBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी IIT BHU ने नॉन टीचिंग स्टाफ के 55 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 अक्टूबर है। जनरल OBC EWS के लिए 500 रुपये, SC ST PH और सभी महिलाओं के लिए 0 शुल्क रखा गया है। अधिक जानकारी के लिए आप IIT BHU की

0: ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। सूचना परक कार्यक्रम दर्पण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को हैं। प्रातः 6:55 पर संस्कृत में समाचार और उसके ठीक बाद प्रातः 7 हिंदी में समाचार अब से कुछ ही समय में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया संस्कृत में समाचारों और हिंदी में समाचार की प्रतीक्षा करें।
1: पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। भारतम् अद्य सर्जिकल प्रहारस्य दशमीं वार्षिकीम् आमानयति। ह्यः विश्वस्य समक्षं नरेन्द्र मोदी प्रशासनस्य उग्रवाद विरोधी नीतेः नवीनम् उदाहरणं प्रादर्शयत्। 16-2000 वर्षे सितंबर मासस्य 28-29 दिनांकयोः भारतीय सैन्यबलम् उरी प्रहारस्य प्रत्युत्तरे सति सीमारेखां विलंघ्य आतंकवादी शिबिराणि व्यनाशयत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संप्राह यत् अस्य साहसिक प्रहारस्य संकल्पः एव बालाकोट वायु प्रहारस्य अथ सिंदूराभियानस्य आधारशिलाम् अरचयत्।
2: 10 पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब्रवीत यत् शल्य प्रहारः दीर्घकालात् आतंकवादं प्रति भारतस्य निर्णायकं प्रत्युत्तरम् आसीत्। सः 8-2000 वर्षस्य सितंबर मासे दिल्ल्यां संभूतान् श्रृंखलाबद्ध विस्फोटान् तथा मुंबय्याः 16-11 प्रहारं संस्मृत्य अवदत् यत् एतासु घटनासु बहुभिः निरपराधैः जनैः प्राणाः त्यक्ताः। प्रधानमंत्री स्पष्टं उक्तवान् यत् अधुना भारतम् आतंकवादस्य उपरि शून्य सहिष्णुता नीतिम् अनुसरति। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघः संप्राख्यापयत् यत् अद्यारभ्य त्रिदिनात्मकं राष्ट्रव्यापी बैंक कार्यस्थगनं स्थगिततां अमुञ्चत्। भारतीय बैंकिंग संघेन सह संजातायां मंत्रणायां समयबद्धं च विचार्य संस्था निर्णयं अगृह्णात्। सामाजिकान्तर्जालीये संदेशे संघः प्राह यत् वित्तीय विवादानां परिहारार्थं द्वयोः पक्षयोः सहमतिः अभवत्, अतः एतत् कार्यस्थगनं निरस्तम्। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अवोचत् यत् भारतं कनाडा देशश्च स्वीय द्विपक्षीय संबंधान् उच्चस्तरं नेतुं तत्परौ वर्तेते। असौ न्यूयॉर्क नगरे संयुक्त राष्ट्र महासभायाः प्रसंगे कनाडा देशस्य विदेश मंत्रिणा सह मिलितवान्। सामाजिक माध्यमेन संसूचयत् डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् इयं मंत्रणा अतीव सफला आसीत्। उभौ देशौ च संबंधानां दृढ़ीकरणाय कार्यं कुरुतः। कृषि कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहानः अद्य नवदिल्ल्यां रवि अभियान 20-26 निमित्तं द्विदिवसीयं राष्ट्रिय कृषि सम्मेलनं समुद्घाटितवान्। कृषि मंत्रालयः प्राह यत् अस्य सम्मेलनस्य मुख्यं उद्देश्यं तावत् केन्द्र राज्ययोः पारस्परिकं समन्वयं विधाय कृषि उत्पादनस्य उत्पादकतायाः कृषकाणां आयस्य च संवर्धनार्थं एकां नीतिं रचयितुम् अस्ति। भारत निर्वाचन आयोगः दिल्ल्यां संप्रवर्तमानायाः विशेष गहन पुनरीक्षण योजनायाः कालविपर्ययम् अकरोत्।

0: भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को हुए उरी आतंकी हमले के बाद की गई थी, जिसमें 18 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। वर्ष 2019 में बालाकोट और वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से भी पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई। आकाशवाणी पर कल प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख अब 30 अक्टूबर होगी। नोटिस जारी करने और दावे आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया 30 नवंबर तक चलेगी। अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय आज केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें 2000 रुपये से अधिक के चुनिंदा UPI मर्चेंट लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाने का निर्णय लिया गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए 2 दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। इसके जरिए बीमा योजना के अंतर्गत बीमित पशुओं की पॉलिसी जारी करने, दावों के निपटारे, निगरानी और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैच की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। 296 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 41 ओवर और 4 गेंद में 2 विकेट खोकर 300 रन बनाकर जीत हासिल की। एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 10:30 से खेला जाएगा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में वर्तमान चैंपियन भारत प्रतियोगिता में सीधे क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है और अपनी जीत का सिलसिला जारी रखने का लक्ष्य रखेगा। जापान एशियाई खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कल 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। सर्वेश कुशारे ने पुरुष हाई जंप में रजत पदक हासिल किया। उन्होंने 2.25 मीटर की सर्वश्रेष्ठ कूद लगाई। महिला लॉन्ग जंप में एनसी सोजन ने 6.53 मीटर की छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया। स्क्वाश में अभय सिंह और अनहत सिंह को रजत पदक मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। भगत सिंह का जन्म वर्ष 1907 में आज ही के दिन पंजाब के तत्कालीन लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन

AIR पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 7:05 हुए हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

सबसे पहले प्रातः 7:10 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होंगे। 7:20 पर आप सुन सकेंगे काव्य पाठ नजीर अहमद अंसारी नजर से। श्रोताओं, फिल्म संगीत का लुत्फ प्रातः 7:30 से लिया जा सकेगा। फिल्म संगीत का एक और कार्यक्रम जिसमें हम आपकी फरमाइश पर गीत सुनवाते हैं, कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश, सुनिए प्रातः 10:05 से।

प्रातः 8 बजे समाचार प्रभात और उसके ठीक बाद प्रातः 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, दोनों ही न्यूज बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगी। सुगम संगीत का कार्यक्रम प्रातः 8:30 से सुना जा सकेगा। कार्यक्रम में आज कलाकार होंगे अनुज राठौर। हम आपको सुनवाएंगे अनुज राठौर से उनके गाए कुछ भजन। आपके साथ तबले पर संगत करेंगे महेश विशोपिया। प्रातः 9 बजे गुड मॉर्निंग ग्वालियर सुना जा सकेगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे अब्दुल हमीद खान से सारंगी वादन राग किरवानी में। आपके साथ तबले पर संगत होगी महेश विशोपिया की प्रातः 9:30 पर।

जिले की चिट्ठी का अनुप्रसारण प्रातः 10 बजे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा। इस घंटे की खास खबरें प्रातः 10:58 पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से होंगी। श्रोताओं, प्रातः 11 बजे से सभा की समाप्ति तक सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। प्रातः 11:58 पर, दोपहर बाद 12:58 पर और 2:58 पर आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।

श्रोताओं, हमारी सायंकालीन सभा भी पुनः आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से ही अनुप्रसारित होगी। सायं 5:02 पर युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। यह कार्यक्रम आज आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा। सायं 5:58 पर इस घंटे की खास खबरें। सायं 6:00 NCERT का शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। सायं 7:20 पर आप सुनेंगे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल हमारे केंद्र से। आज चर्चा के विषय होंगे विश्व रेबीज दिवस, साथ ही साथ चर्चा होगी शहीद भगत सिंह की जयंती और लता मंगेशकर की जयंती, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और साथ ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह राजावत से सोहन सिंह की बातचीत रेबीज रोग कारण लक्षण और बचाव विषय पर। इसके साथ ही आप सुनेंगे बुंदेली लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम लोक माधुरी हमारे केंद्र से। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी सुना जा सकेगा।

आज का कार्यक्रम विवरण यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:10 होने को है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में प्रदेश के युवाओं के नदी सफाई अभियान की सराहना की। एसआईआर के मुद्दे पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का राहुल गांधी पर पलटवार। समान नागरिक संहिता पर बोले मुख्यमंत्री, प्रदेश में बहुविवाह स्वीकार नहीं किया जाएगा। और तीन दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित, आईबीए और बैंक यूनियनों में बनी सहमति। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात की 138वीं कड़ी में प्रदेश के युवाओं के नदी सफाई अभियान की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक व्यक्ति से शुरू हुआ छोटा प्रयास धीरे धीरे बड़ा अभियान बन सकता है और इससे ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं। उन्होंने इसे जन भागीदारी की अच्छी मिसाल बताया। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती आने वाली है। इस मौके को याद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छता पर बापू के संदेश को दोहराया और लोगों से अपने आसपास सफाई बनाए रखने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एसआईआर को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार किया है। कल भोपाल में भाजपा कार्यालय में हुई पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से अपनी पार्टी और गठबंधन तक नहीं संभल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और अखिलेश यादव के बीच बढ़ती दूरी का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी को पहले अपना कुनबा संभालना चाहिए। उन्होंने एसआईआर पर कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी एसआईआर को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव आयोग पर बार बार आरोप लगाकर लोगों के बीच भ्रम और अविश्वास पैदा कर रही है। भोपाल के रविन्द्र भवन में कल विश्व हिंदू परिषद की ओर से अशोक सिंघल जन्म शताब्दी समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समान नागरिक संहिता को समय की मांग बताते हुए कहा कि प्रदेश में बहुविवाह स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक देश और प्रदेश में दो तरह के कानून नहीं चल सकते।
1: एक विधान एक प्रधान, तो मध्य प्रदेश में भी यूसीसी लागू हो गया। ये हमारे सौभाग्य की बात। तो हम जब वहां बात कर रहे थे, जब यूसीसी पारित करने वाला विषय चला, उस विषय के लिए लगभग 3.5 करोड़ से ज्यादा SMS डाल करके इस विषय को फैलाने का काम किया। 10 लाख से ज्यादा सुझावों का संकलन हमने समाज के बीच में जाके किया। 40% से ज्यादा मुस्लिमों का समर्थन किया।
0: सीहोर जिले में कल केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 36 सड़कों के निर्माण का भूमि पूजन किया। इन सड़कों से 41 बसाहटों के गांव मुख्य मार्गों से जुड़ेंगे और 19,000 से ज्यादा लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी। श्री चौहान ने अधिकारियों को सभी सड़कों का निर्माण 1 साल में पूरा करने और गुणवत्ता का ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने इछावर में कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की भी घोषणा की, जिसके लिए 50 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने बताया कि इस साल प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवारों के लिए 8 लाख पक्के मकान बनाए जाएंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित कर दी गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर कल रात IBA और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हुई बैठक के बाद हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। सीहोर जिले के बुधनी में दूधी की लकड़ी से निर्मित मनोहारी खिलौना बनाए जा रहे हैं। ये खिलौने पर्यावरण के लिए अनुकूल माने जाते हैं, क्योंकि इनमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं होता। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सीहोर जिले के संवाददाता प्रदीप सिंह चौहान।
3: सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वोकल से लोकल का सबसे सटीक उदाहरण है सीहोर जिले के बुधनी में दूधी की लकड़ी से निर्मित मनोहारी खिलौना उद्योग। बुधनी के खिलौने पर्यावरण के अनुकूल इको फ्रेंडली माने जाते हैं क्योंकि इनमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं होता। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र के जिला महाप्रबंधक श्री अनुराग वर्मा ने बताया कि
4: बुधनी के जो परंपरागत शिल्पी हैं उनके द्वारा दूधी लकड़ी से खिलौना का निर्माण किया जाता है जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी फेमस है। उनके लिए शासन ने एक खिलौने क्लस्टर का बुधनी में निर्माण किया क्योंकि हमारे जो परंपरागत शिल्पी हैं एक ही जगह सभी लोग आए जिससे कि इनको बड़ा मार्केट मिलेगा।
3: यह उद्योग लगभग 100 से 200 वर्ष पुराना माना जाता है और यहाँ की विश्वकर्मा समुदाय की कई पीढ़ियां इस कला को आगे बढ़ा रही है।
5: मेरा नाम सुनीता विश्वकर्मा है। सरकार की मदद से अब मैं और मेरा परिवार इन लकड़ी के खिलौनों का व्यवसाय कर रहे हैं। आज हमारा यह व्यवसाय हमें आर्थिक संबल प्रदान कर रहा है।
6: मेरा नाम रमेश विश्वकर्मा है। पहले तो पारंपरिक उपकरणों से हम ये खिलौने बनाते थे लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लकड़ी के खिलौने उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया है जिसके चलते अब हम नवीनतम उपकरणों का प्रयोग खिलौने बनाने में कर रहे हैं।
3: आकाशवाणी समाचार के लिए सीहोर से प्रदीप सिंह चौहान।
0: उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत सड़क चौड़ीकरण का काम तेज हो गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल पूजा अर्चना के बाद अब्दालपुरा स्थित अपने पैतृक मकान पर खुद गिरी चलाकर इसे तोड़ने की शुरुआत की। अब्दालपुरा में करीब 272 मकान सड़क चौड़ीकरण की सद में हैं जिनमें हिंदू मुस्लिम और बोहरा समुदाय के लोग भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री की बहन और नगर निगम सभापति का मकान भी इसकी सद में आ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंहस्थ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना है इसलिए शहर के विकास में स्थानीय लोगों का सहयोग जरूरी है। इसके अलावा डॉ. यादव ने पीएम ई बस सेवा और उज्जैन दर्शन सेवा की भी शुरुआत की। आज विश्व रेबीज दिवस के मौके पर लोगों को इस जानलेवा बीमारी से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। रेबीज के लक्षण सामने आने के बाद बीमारी लगभग हमेशा घातक होती है लेकिन समय पर इलाज शुरू किया जाए तो मौत को रोका जा सकता है। संक्रमित कुत्ते के काटने या खरोंच पर घाव को तुरंत साबुन या बहते पानी से करीब 15 मिनट तक धोना चाहिए। बिना देरी के डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। घाव पर मिर्च तेल राख या कोई भी घरेलू उपचार नहीं करना चाहिए। इसी कड़ी में कटनी में भी आज आमजन को रेबीज जैसी घातक बीमारी के प्रति जागरूक किया जा रहा है। शाजापुर जिले के शुजालपुर में कल सेवा संकल्प अभियान के तहत आंगन मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रदेश के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों और माताओं से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य पोषण और शिक्षा की जानकारी ली। और अब बात मौसम की। प्रदेश में अब बारिश का दौर थमने लगा है और अगले 4 दिनों में कहीं भी भारी बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक कल से उज्जैन इंदौर ग्वालियर चंबल संभाग में तेज धूप खिलने लगेगी। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैच की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। 296 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 41 ओवर और 4 गेंद में 2 विकेट खोकर 300 रन बनाकर जीत हासिल की। विराट कोहली ने नाबाद 139 रन बनाकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगर मालवा में आंगनबाड़ी केंद्रों पर आयोजित आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने हितग्राहियों से संवाद कर शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। नर्मदापुरम में सेवा संकल्प अभियान के तहत आंगन मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा। हाल ही में आंगनवाड़ी केंद्र बांसखेड़ा में कार्यक्रम आयोजित किया गया। बैतूल जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सोयाबीन फसल में पीला मोजैक रोग से फसल प्रभावित होने पर फसल की वास्तविक स्थिति का प्राथमिक आकलन किया जाएगा। झाबुआ में सेवा संकल्प अभियान के तहत कन्या शिक्षा परिसर रोटला में करियर काउंसलिंग और मेरे सपनों का भारत विषय पर चित्रकला और भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 7:20:55 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है काव्य पाठ। आज हम आपको सुनवा रहे हैं नज़ीर अहमद अंसारी नज़र से काव्य पाठ।
1: नमस्कार दोस्तों, अभी देश को इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल हुई, चंद्रयान 3 ने देश को गौरवान्वित किया। शेर मुलाहजा करें कि चांद पर पहुंचा है हिंदुस्तान, देखा आपने? चांद पर पहुंचा है हिंदुस्तान, देखा आपने? विश्व भर में हो रहा गुणगान, देखा आपने? हमारा कद, हमारी सोच सब अव्वल तरीन, चांद ने भी ले लिया संज्ञान, देखा आपने? शेर देखें कि अपनी सुखन सराई के सांचे में ढालकर, अशआर कह रहे हैं कलेजा निकाल कर। दौराने गुफ्तगू में तुम्हें याद आऊँगा, रख लेना जहन में मेरे किस्से संभाल कर। गालिब फिराक मीर से विरसे में जो मिली, उस दौलत सुखन की ज़रा देखभाल कर। शेर मुलाहिदा करें कि ये काबा ये काशी हरम देखते हैं कि अपना खुदा तुझमें हम देखते हैं। ज़माने के सब खूबसूरत नज़ारे तुम्हारी निगाहों से हम देखते हैं। गज़ल ले रही है नई एक करवट, ये दुष्यंत गालिब अदम देखते हैं। कुछ शेर और मुलाहिजा करें कि जीत कर भी फिर से हारी ज़िंदगी, पूछिए मत क्यों गुजारी ज़िंदगी। एक तरफ महमूद सा अंदाज़ है ज़िंदगी के दो पहलू देखिए कि एक तरफ मीना कुमारी ज़िंदगी, चैन की फिर नींद आई कब्र में अपने तन से जब उतारी ज़िंदगी। गज़ल के चंद शेर मुलाहिजा करें कि ऐसे किसी को घर से अलग कर दिया गया, पगड़ी को जैसे सर से अलग कर दिया गया, जिसके सबब मिले थे हमें आप गिफ्ट में, हमको उसी हुनर से अलग कर दिया गया। नींदों का एहतराम नहीं कर सका जो मैं, ख्वाबों की रहगुजर से अलग कर दिया गया। शेर देखें कि हैरत है बांटती थी हमेशा जो सबको फल, उस शाख को शजर से अलग कर दिया गया। और शेर देखें कि था नून ज़र के साथ तो एक रोशनी सी थी, फिर नून क्यों नज़र से अलग कर दिया गया। शेर मुलाहिजा करें कि हमें कहता है अंतर्मन हमारा नहीं भूला वो आलिंगन हमारा, हमें भाई वही सादा मिजाजी, उसे भी भा गया था मन हमारा। सुशोभित है गगन पर चंद्रमा सा, तुम्हारे हाथ में कंगन हमारा, के नुसरत जैसे महवे साधना हूँ, थिरकता है अभी आंगन हमारा थिरकता है अभी आंगन हमारा, अभी चहकता देख बेटे को लगा यूं, चहकता देख बेटे को लगा यूं, अभी गुजरा नहीं बचपन हमारा, अभी गुजरा नहीं बचपन हमारा, तुम्हारी दी घड़ी लौटा रहे हैं, तुम्हारी दी घड़ी लौटा रहे हैं, हमें लौटाओ तुम कंगन हमारा, तुम्हारी दी घड़ी लौटा रहे हैं, हमें लौटाओ तुम कंगन हमारा। और शेर देखें कि सुखन थामे यहाँ तक आ गए हैं, सुखन थामे यहाँ तक आ गए हैं, फलक तक जाएगा ये फन हमारा, फलक तक जाएगा ये फन हमारा, ज़बाँ पर होंगे कल नगमे हमारे, ज़बाँ पर होंगे कल नगमे हमारे, हमें दोहराएगा जन जन हमारा, हमें दोहराएगा जन जन हमारा। एक गज़ल के चंद अशआर और देखें कि इश्क के मक्तल में हूँ तो क्या हो हैरानी मुझे, इश्क के मक्तल में हूँ तो क्या हो हैरानी मुझे, एक न एक दिन महंगी तो पढ़नी थी नादानी मुझे, इश्क के मक्तल में हूँ तो क्या हो हैरानी मुझे, एक न एक दिन महंगी तो पढ़नी थी नादानी मुझे, और अश्क मेरे हो न जाएं उनके भी गम का सबब, अश्क मेरे हो न जाएं उनके भी गम का सबब, करनी पड़ जाती हैं अक्सर इनकी निगरानी मुझे, अश्क मेरे हो न जाएं उनके भी गम का सबब, करनी पड़ जाती हैं अक्सर इनकी निगरानी मुझे, और मैंने उस दरिया की किस्मत में समंदर लिख दिया, मैंने उस दरिया की किस्मत में समंदर लिख दिया, मिल नहीं पाया जहां दो बूंद भी पानी मुझे, मिल नहीं पाया जहां दो बूंद भी पानी मुझे। और शेर देखें कि ये हमारे खून के रिश्ते का शायद है कमाल, ये हमारे खून के रिश्ते का शायद है कमाल, अपना सा लगने लगा है दुश्मने जानी मुझे, ये हमारे खून के रिश्ते का शायद है कमाल, अपना सा लगने लगा है दुश्मने जानी मुझे। और मिसराए उला ही में जब सारी ग्रहें खुल गईं, मिसराए उला में ही जब सारी ग्रहें खुल गईं, बेबसी से तक रहा है मिसराए सानी मुझे, बेबसी से तक रहा है मिसराए सानी मुझे, और लग रहा है इश्क आ पहुंचा है दरवाजे तलक, लग रहा है इश्क आ पहुंचा है दरवाजे तलक, खुशबुएं आने लगी हैं जानी पहचानी मुझे, खुशबुएं आने लगी हैं जानी पहचानी मुझे। और शेर देखें कि आज लगता है मैं हुआ पागल, आज लगता है मैं हुआ पागल, यानी पागल से मिल गया पागल, आज लगता है मैं हुआ पागल, यानी पागल से मिल गया पागल, राह में ख्वाहिशें बिछा दे अब, राह में ख्वाहिशें बिछा दे अब, लौटने वाला है तेरा पागल, लौटने वाला है तेरा पागल, आ गया मैं भी तेरी महफिल में, आ गया मैं भी तेरी महफिल में, यानी एक और बढ़ गया पागल, आ गया मैं भी तेरी महफिल में, यानी एक और बढ़ गया पागल, तेरी यादों की गहमा गहमी में, तेरी यादों की गहमा गहमी में, रोज़ कहता है कुछ नया पागल, रोज़ कहता है कुछ नया पागल। और शेर होते नहीं हैं अब मुझसे, शेर होते नहीं हैं अब मुझसे, और वो कहता कुछ सुना पागल, और वो कहता कुछ सुना पागल। और शेर बतौर ख़ास के मीर जी ने कहा था भारी है, मीर जी ने कहा था भारी है, इश्क का पत्थर अब उठा पागल, इश्क का पत्थर अब उठा पागल। गज़ल के कुछ शेर देखें कि पैकरे वक्त में ढलने नहीं देता है बदन, पैकरे वक्त में ढलने नहीं देता है बदन, अब किसी शय पर मचलने नहीं देता है बदन, अब किसी शय पर मचलने नहीं देता है बदन, ख्वाब की आँच पर इस तरह सुलगता शब्बर, ख्वाब की आँच पर इस तरह सुलगता है कि बस अब तो करवट भी बदलने नहीं देता है बदन, थक के अब चूर हुआ जाता है इतना यारो, थक के अब चूर हुआ जाता है इतना यारो, गिरते पड़ते भी संभलने नहीं देता है बदन, बात तो खूब करे है कि बदलना होगा, बात तो खूब करे है कि बदलना होगा, रस्म दुनिया भी बदलने नहीं देता है बदन। और जी में आता है तो करता है वो मनमानी भी, जी में आता है तो करता है वो मनमानी भी, अपने आगे मेरी चलने नहीं देता है बदन, अपने आगे मेरी चलने नहीं देता है बदन। और ए नज़र वसल का अब कुछ तो वसीला होगा, ए नज़र वसल का अब कुछ तो वसीला होगा, रूह को रूह से मिलने नहीं देता है बदन, रूह को रूह से मिलने नहीं देता है बदन।
0: अभी आपने सुना नज़ीर अहमद अंसारी नज़र से काव्य पाठ। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं, समय है फिल्म संगीत का। आज का फिल्म संगीत डेडिकेटेड है लता मंगेशकर जी को। आज लता मंगेशकर जी की जयंती है। आपका जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ था। आप भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका हैं, मीन्स थी। आपने 6 दशकों का कार्यकाल संगीत को समर्पित किया और आपका जो कार्यकाल है वो उपलब्धियों से भरा हुआ है। आपने 30 से ज़्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं, लेकिन आपकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायिका के रूप में रही है। तो आइए सुनवाते हैं लता मंगेशकर जी की जयंती पर सबसे पहले दिल अपना और प्रीत पराई से ये गीत। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत है शंकर जयकिशन का और गायक है लता मंगेशकर।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: रितेश, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है?
5: डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन मुझे डर है कि हॉस्पिटल का ब्लड सेफ है या।
4: अगर लाइसेंस हॉस्पिटल या लाइसेंस ब्लड बैंक है तो सेफ ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड स्टोर करने की अथॉरिटी सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक और लाइसेंस हॉस्पिटल के पास ही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि ब्लड एचआईवी टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एचआईवी एड्स जैसे कई बीमारियों की संक्रमण का भी डर रहता है।
5: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस्ड ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
6: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 1097 पर कॉल कर लेना।
7: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
8: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से, और आज हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर जी के गाए कुछ गीत। आपको स्वर साम्राज्ञी, राष्ट्र की आवाज, सहराब्दी की आवाज, भारत कोकिला और स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। आपके पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर और माताजी का नाम शेवंती मंगेशकर था। आपको पुरस्कार स्वरूप कई बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, बंगाल फिल्म पत्रकार संगठन, फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका, फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार आजीवन उपलब्धि, पद्म भूषण 1969, दादा साहेब फाल्के 1989, महाराष्ट्र भूषण 1997, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 1999, पद्म विभूषण 1999 और भारत रत्न से आपको 2001 में सम्मानित किया गया। आइए अब सुनते हैं फिल्म वो कौन थी से इस गीत को। इस गीत को लिखा है राजा मेहंदी अली खान ने, संगीत है मदन मोहन का, गायक है लता मंगेशकर।

अभी आपने सुना फिल्म अनामिका से इस गीत को। इस गीत को लिखा था मजरूह ने, संगीत था आर डी वर्मन का, गाया कलाकार थी लता मंगेशकर। श्रोताओं, लता जी की जादुई आवाज़ के भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ पूरी दुनिया में दीवाने हैं। टाइम पत्रिका ने उन्हें भारतीय पार्श्व गायन की अपरिहार्य और एक छन्न साम्राज्ञी स्वीकार किया और भारत सरकार ने उन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मानित भी किया था। आपका जो जन्म है वो शास्त्रीय संगीत के प्रति समर्पित परिवार में हुआ था। आपके पिता एक शास्त्रीय संगीत गायक थे और पिता की मृत्यु के बाद आपको जब संघर्ष करना पड़ा तो आपने अभिनय करने का सोचा, क्योंकि अभिनय आपकी पहली पसंद थी। लेकिन आपने कुछ पैसों के लिए हिंदी और मराठी फिल्मों में काम भी किया। अभिनेत्री के रूप में आपकी पहली फिल्म मंगला गौर 1942 की थी। तब आपने स्नेह प्रभा प्रधान की छोटी बहन की भूमिका निभाई थी। उसके बाद आपने नूरजहां में बड़ी माँ के साथ अभिनय किया था और 1947 में वसंत जोगलेकर ने अपनी फिल्म आपकी सेवा में आपको पहली बार गाने का मौका दिया और आपका जो गाना था अंग्रेजी छोरा चला गया बड़ा फेमस हुआ। आपको सुनवा रहे हैं हम अब फिल्म गाइड का ये गीत। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत है एस डी वर्मन का, गायक है लता मंगेशकर।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म किनारा से। इस गीत को लिखा है गुलजार ने, संगीत है आर डी वर्मन का, गायक है लता मंगेशकर।

0: आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है, प्रातः के 8 बजने को है। प्रातः 8 बजे समाचार प्रभात और उसके ठीक बाद प्रातः 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़, दोनों ही न्यूज़ बुलेटिन अब से कुछ ही समय में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगी।
1: केंद्र से
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा।

भारत की पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की आज 10वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की आतंकवाद रोधी नीति

0: पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। वर्ष 2019 में बालाकोट और वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से भी पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई थी। आकाशवाणी पर कल प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा और सुशासन के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहे हैं। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बताएंगे कि इस सोच को लोथल स्थित राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर जैसी दूरदर्शी पहल के जरिए किस तरह साकार किया जा रहा है।
2: गुजरात के लोथल में प्राचीन हड़प्पा कालीन डॉकयार्ड के पास आकार ले रहा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत के 4,500 वर्षों से अधिक पुराने समृद्ध समुद्री इतिहास को प्रदर्शित करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय संस्थान बन रहा है। 1230 करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित हो रहे इसके प्रथम चरण का कार्य तीव्र गति से जारी है। वही इसके तहत 266 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक लाइट हाउस संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। लोथल की ऐतिहासिक धरोहर को सजीव करने और इसके तकनीकी स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
1: लोथल में ये जो हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसको ऐसे बनाया जा रहा है कि भारत का सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इस इतिहास को आसानी से जान सके। इसमें अति आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके बिल्कुल उसी युग को फिर से सजीव करने का प्रयास किया जा रहा है।
2: इस परियोजना के महत्व को रेखांकित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
3: मैरिटाइम हेरिटेज की बात है तो हमारे पास इस सेक्टर का 5000 वर्ष का लंबा इतिहास और लोथल इसका एक जीवंत प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से विश्व का सबसे बड़ा मैरिटाइम हेरिटेज म्यूजियम इस लोथल में बनाने जा रहे हैं।
2: प्राचीन विरासत और अत्याधुनिक तकनीक के अद्भुत संगम के साथ लोथल का यह राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत के गौरवशाली नौवन इतिहास का एक भव्य प्रतीक बन रहा है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल से 2 दिन तक दिल्ली के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में विशेष शिविरों का एक और चरण आयोजित किया जाएगा।
4: दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का काम जारी है। निर्वाचन आयोग की संशोधित समय सारिणी के अनुसार दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख अगले महीने की 30 तारीख है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 30 नवंबर तक चलेगी और अंतिम मतदाता सूची अब 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। इससे पहले दिल्ली के सभी मतदान केंद्रों पर फॉर्म 6 के जरिए नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर लगाए गए थे। दिल्ली के के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल और बुधवार को राजधानी के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में एक बार फिर विशेष शिविर लगाए जाएंगे।

0: समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
3: भारत ग्लोबल बिजनेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल मंच पर पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं तक पहुंच मिल सकेगी। मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के साथ मिलकर नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक तैयार करने की पहल की है। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल विश्व पर्यटन दिवस पर भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में इस परियोजना की शुरुआत की। पर्यटन सचिव भुवनेश कुमार ने कहा कि नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक की परिकल्पना एक टिकट एक पास की है, जिससे पूरे भारत को एक ही यात्रा अनुभव से जोड़ा जा सकेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए 2 दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजसेवी अशोक सिंघल को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मोदी ने कहा कि अशोक सिंघल का जीवन इस विचार को दर्शाता है कि दूसरों के कल्याण के लिए काम करना व्यक्तिगत उपलब्धियों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल से राष्ट्र अशोक सिंघल की जन्मशती मना रहा है। उन्होंने कहा कि अशोक सिंघल ने सामाजिक एकता और समानता को मजबूत करने के लिए काम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि लता मंगेशकर ने अपनी दिव्य गायन प्रतिभा से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। भगत सिंह का जन्म वर्ष 1907 में आज ही के दिन पंजाब के तत्कालीन लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो पाकिस्तान में है। एक रिपोर्ट।
4: भगत सिंह का जन्म क्रांतिकारियों के परिवार में हुआ था। उन्होंने देश की आजादी के लिए खुद को कुर्बान करके अपने नाम को सार्थक किया। उनकी जयंती मनाने के लिए लुधियाना में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में जश्न इनकलाब नाम का एक राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। लोग उनके पैतृक गांव खटखट कला में इस महान सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुँच रहे हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली चमकने के साथ आंधी और तेज हवाएं चल सकती हैं। आज हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकल, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा और तेलंगाना में भी आंधी और बिजली के साथ वर्षा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बारिश और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य चलाने के निर्देश दिए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि खराब मौसम को देखते हुए कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।
5: सीतापुर में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। इसके बाद लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, अयोध्या और गोरखपुर में भी लोगों की मौतें हुई हैं। लगभग 1020 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घाघरा और राप्ती नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालात को देखते हुए अधिकारियों को प्रभावित लोगों को तत्काल राहत और सहायता सुनिश्चित

0: करने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के पूर्वी और पश्चिमी जिलों के कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: और अब खेल खबरों के साथ है सिद्धार्थ सिंह।
2: तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। 296 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 41 ओवर और 4 गेंद में 2 विकेट खोकर 300 रन बनाकर जीत हासिल की। विराट कोहली ने नाबाद 139 रन और कप्तान शुभमन गिल ने 110 रन बनाकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। ये विराट का एक दिवसीय क्रिकेट में 55वां शतक है। इसके साथ ही वो सचिन तेंदुलकर के बाद एक दिवसीय क्रिकेट में 15,000 रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए और उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। अब बात एशियाई खेलों की। एशियाई खेलों के 9वें दिन आज पुरुष क्रिकेट के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में वर्तमान चैंपियन भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। इसके अलावा मुक्केबाजी, एथलेटिक्स, निशानेबाजी और हॉकी में भी भारत अपनी चुनौती पेश करेगा। इससे पहले कल भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य सहित कुल 37 पदक लेकर 12वें स्थान पर है।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आयुष्मान भारत और हर नागरिक के लिए डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त सचिव किरण गोपाल वास्का शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद विशाल। सर्जिकल स्ट्राइक के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कड़ा संदेश हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक ने आतंक के खिलाफ भारत का संकल्प दर्शाया। आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए रहें तैयार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान दैनिक जागरण में है। रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा, भारत किसी देश की भूमि नहीं मांगता और युद्ध भी नहीं चाहता, लेकिन किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा। साबरमती स्टेशन से दौड़ी देश की पहली LNG ट्रेन, गृह मंत्री अमित शाह ने झंडी दिखाकर किया रवाना। अमर उजाला के अनुसार, LNG आधारित दोहरे ईंधन वाली तकनीक अपनाने के साथ भारत चुनिंदा देशों में शामिल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को मिले स्थायी सीट, जर्मनी और जापान को नहीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ के बयान को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता दी है। पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म की खबर के बाद तोड़फोड़ और आगजनी को अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रात भर प्रदर्शन के बाद केस दर्ज, SIT गठित, यूनिवर्सिटी ने बताया अफवाह।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की आज 10वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की आतंकवाद रोधी नीति का नया उदाहरण बताया। आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की। मौसम विभाग का आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Presents Morning News. Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. India marks 10th anniversary of surgical strikes on terrorist hideouts in Pakistan. Prime Minister Narendra Modi says it demonstrated new example of India's counter-terrorism policy. Proposed 3-day nationwide bank strike, which was to begin today, deferred. Government launches project to build national digital public infrastructure for tourism sector. Weather department forecasts heavy rainfall in Uttarakhand, South Interior, Karnataka and Andaman and Nicobar Islands today. And in men's cricket, Centuries by

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं अनुज राठौर के गाए कुछ भजन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं महेश विशोपिया।

श्रोताओं, सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे अनुज राठौर से उनके गाए कुछ भजन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे महेश बिशोपिया। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 9:20 हुए हैं। प्रस्तुत है सूचना, समाचारों और जानकारी पर केंद्रित आपका पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

सरकार का आपने मुकाबला किया था, आप लाहौर में बनी सैंडर्स की हत्या की, बर्नी सैंडर्स की हत्या की, उसके बाद दिल्ली की केंद्रीय संसद सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोह को बुलंदी भी आपने प्रदान की थी। आपने असेंबली में बम फेंक कर भागने से भी मना कर दिया था, जिसके फलस्वरूप अंग्रेज़ों ने 23 मार्च 1931 को आपके दो अन्यत्र साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ आपको फांसी दे दी। आपका जो जन्म है वो गांव बंगा, जिला लायलपुर, पंजाब, वर्तमान का पाकिस्तान में हुआ था। आपके जो प्रमुख संगठन थे वो हैं नौजवान भारत सभा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट, रिपब्लिकन एसोसिएशन। आपका जन्म एक सिख परिवार में हुआ था। आपके पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। एक किसान परिवार से आप आया करते थे और अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड ने आपकी सोच पर गहरा प्रभाव डाला, जिसके बाद आपने लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर नौजवान भारत सभा की स्थापना की और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में आप कूद पड़े। 1922 में चौरा चौरी का हत्याकांड के बाद गांधी जी ने जब किसानों का साथ नहीं दिया तब आप बेहद निराश हो गए। उसके बाद आपका अहिंसा से विश्वास थोड़ा कमज़ोर हुआ और आप इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सशस्त्र क्रांति ही स्वतंत्रता दिलाने का एकमात्र रास्ता है। और उसके बाद आप चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में गठित हुई गदर दल के हिस्सा बन गए। काकोरी कांड में रामप्रसाद बिस्मिल सहित 4 क्रांतिकारियों को जब फांसी की सज़ा हुई और 16 अन्य क्रांतिकारियों को कारावास की सज़ा हुई, तो आप इससे इतने उद्विग्न हुए कि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ आपने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की और उससे जुड़ गए। आपने उसका नाम बदल कर रखा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस संगठन का उद्देश्य सेवा, त्याग और पीड़ा झेल सकने वाले नवयुवक तैयार करना था, जो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ सकें, खड़े हो सकें और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। आपने राजगुरु के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1917 को लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक रहे अंग्रेज अधिकारी जेपी सैंडर्स को मारा। इस कार्यवाही में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद ने आपकी पूरी सहायता की थी। क्रांतिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर आपने वर्तमान नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश भारत सेंट्रल असेंबली, जैसा हमने आपको पूर्व में बताया, आपने उसमें बम विस्फोट किया और बम विस्फोट करने के बाद वहां से भागने से भी मना कर दिया था। आपका जो व्यक्तित्व था, आप जेल के दिनों में आपने खत और लेख लिखे, उनसे आपके व्यक्तित्व का पता चलता है। आपने भारतीय समाज लिपि यानी पंजाबी, गुरुमुखी, शाहमुखी तथा हिंदी, अरबी और उर्दू के संदर्भ में विशेष रूप से जाति और धर्म के कारण आई दूरियों पर दुख व्यक्त किया और समाज के कमज़ोर वर्ग पर किसी भारतीय के प्रहार को भी उसी सख्ती से सोचा जितना कि किसी अंग्रेज के द्वारा किए गए अत्याचार को। आपने हिंदी, उर्दू, पंजाबी तथा अंग्रेज़ी के अलावा बांग्ला भी आपको आती थी, जो आपको बकुटेश्वर दत्त ने सिखाई थी। आपका विश्वास था कि शहादत से भारतीय जनता और उद्विग्न हो जाएगी और ऐसा उनके जिंदा रहते शायद ही हो पाए, ऐसा आपका मानना था। इसी कारण उन्होंने मौत की सज़ा, यानी आपने मौत की सज़ा सुनाने के बाद भी माफ़ीनामा लिखने से साफ मना कर दिया और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में जो जो दिशा निर्देश दिए थे भगत सिंह ने उनका अक्षरशः पालन किया। आपने अंग्रेज़ सरकार को एक पत्र भी लिखा जिसमें आपने कहा था कि अंग्रेज़ी सरकार के खिलाफ भारतीयों के युद्ध का प्रतीक एक युद्धबंदी समझा जाए तथा फांसी देने के बजाय गोली से मार दिया जाए। फांसी से पहले 3 मार्च को अपने भाई कुलतार को भेजे एक पत्र में आपने लिखा था, उन्हें यह फिक्र है हरदम नई तर्ज जफा क्या है, हमें यह शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है, दहर से क्यों खफा रहें, चरख का क्या गिला करें, सारा जहां अदुसही आओ मुकाबला करें।
इन जोशीली पंक्तियों से उनके शौर्य का अनुमान लगाया जा सकता है। चंद्रशेखर आज़ाद से पहली मुलाकात जलती हुई मोमबत्ती पर हाथ पर रखकर आपने कसम खाई कि मेरी पूरी ज़िंदगी मेरे देश के नाम कुर्बान, और

सही हुआ। आपने कहा है, किसी ने सच ही कहा है, सुधार बूढ़े आदमी नहीं कर सकते, वे तो बहुत ही बुद्धिमान और समझदार होते हैं। सुधार तो होते हैं युवकों के परिश्रम, साहस, बलिदान और निष्ठा से, जिनको भयभीत होना आता है ही नहीं और जो विचार कम और अनुभव अधिक करते हैं। आपकी जयंती पर हम आपको शत शत प्रणाम करते हैं।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज एक बेहद ही संवेदनशील दिवस भी है। आज उरी सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ है। भारतीय सैन्य इतिहास के बेहद साहसिक और योजनाबद्ध जवाबी कार्रवाई 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में एक सैन्य शिविर पर हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने यह कदम उठाया था। इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, आपको थोड़ा सा याद दिला दें। ये जो घटना थी वो 18 सितंबर 2026 की सुबह पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के चार भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने उरी में भारतीय सेना के 12 इन्फेंट्री ब्रिगेड के प्रशासनिक मुख्यालय पर हमला कर दिया। आतंकियों ने 9 सो रहे सैनिकों के तंबू और बैरकों पर अंधाधुंध गोलीबारी की और आग लगाने वाले हथियारों का इस्तेमाल किया था। इस कायरतापूर्ण हमले में 19 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। इस घटना से पूरे देश में भारी आक्रोश फैला। सरकार और सैन्य नेतृत्व ने तय किया कि इस बार कड़ा जवाब दिया जाए। इस ऑपरेशन को पूरी तरह गुप्त रखने के लिए देश के शीर्ष नेतृत्व और तत्कालीन थल सेना अध्यक्ष जनरल दलवीर सिंह सुहाग ने कमान संभाली। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और सैन्य खुफिया इकाई के सैटेलाइट और ड्रोन तस्वीरों की मदद से नियंत्रण रेखा के पार बने आतंकवादी लॉन्च पैड्स जहां से आतंकी भारत में घुसपैठ करते हैं को चिन्हित किया गया और इस बेहद खतरनाक मिशन के लिए भारतीय सेना की 4 और 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस के घातक कमांडोज को सिलेक्ट किया गया। यह पूरा ऑपरेशन 28 सितंबर की आधी रात से लेकर 29 सितंबर की सुबह के बीच लगभग 4 से 5 घंटे में संपूर्ण हुआ। पाकिस्तान का ध्यान भटकाने के लिए भारतीय सेना ने अन्य सेक्टरों जैसे पुंछ और नौगांव में भारी गोलाबारी शुरू कर दी ताकि दुश्मन को ये लगे कि एक सामान्य सीमा विवाद है। घने अंधेरे का फायदा उठाकर पैरा एसएफ के जाबांज कमांडो पैदल ही एलओसी को पार कर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 2 से 3 किलोमीटर भीतर दाखिल हुए। इजरायली टेवर राइफल्स, नाइट विजन गैजेट्स और थर्मल इमेजरी से लैस कमांडो ने भीमबर, हॉटस्प्रिंग, कैल और लीपा सेक्टरों में स्थित आतंकियों के 5 से 7 लॉन्च पैड्स पर एक साथ धावा बोला। रॉकेट लॉन्चर सटीक गोलाबारी से उन अड्डों को नेस्त नाबूद कर दिया। आतंकियों को संभलने का मौका ही नहीं मिला और अपना काम खत्म कर सभी कमांडो बिना किसी गंभीर नुकसान के सकुशल वापस भारत सुरक्षित लौटे। आधिकारिक तौर पर भारत के महानिदेशक सैन्य संचालन डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह ने 29 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह स्ट्राइक की पुष्टि की और इस रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कार्रवाई में 50 आतंकवादी और उन्हें सुरक्षा दे रहे कुछ पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए। हालांकि पाकिस्तान ने एक सर्जिकल स्ट्राइक से इनकार किया और इसे केवल सीमा पर होने वाली आम गोलाबारी बताया था। इस कार्रवाई से भारत ने रणनीतिक संयम की पुरानी नीति को हमेशा के लिए बदल दिया।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से गुड मॉर्निंग ग्वालियर कार्यक्रम में। अब आपको बताते हैं, आज एक और दिवस है, विश्व रेबीज दिवस। विश्व रेबीज दिवस क्यों मनाया जाता है? विश्व रेबीज दिवस मनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि रेबीज के प्रति लोगों को जागरूक करना और उन्हें यह बताना कि यह बेहद जानलेवा और गंभीर बीमारी है, इसे हल्के में ना लें। रेबीज का जो दिवस है उसकी थीम इस वर्ष की जो रखी गई है वो थीम है स्ट्रॉन्गर टुगेदर, यानी साथ मिलकर इस भयावह बीमारी से लड़ना हम सुनिश्चित करें। अब ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि यदि हमें कोई जानवर काट लेता है, या यूं कहूं कि सीधा सीधा हम रेबीज़ को ये मानते हैं कि कुत्ते के काटने से रेबीज़ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जानवर कोई भी काटे,

होता रेबीज़ ही है, पर हम लोगों का हाँ होता क्या है कि यदि कुत्ते ने भी काटे, चलिए कुत्ते का ही एग्जांपल ले लेते हैं, कुत्ते ने काटा, हमने लापरवाही बरती और सोच लिया कि ठीक है हमारा पालतू कुत्ता भी था और हम उसको वैक्सीनेशन करवाते ही रहते थे, तो ऐसी आवश्यकता ही क्या है कि हम डॉक्टर के पास जाएं। लेकिन ये गलत है। कई बार क्या होता है कि कुत्तों को वैक्सीनेशन करवाने के बाद भी जो वायरस है वो पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं हो पाता और उसका असर हमारे जो शरीर है उस पर दिखने लगता है। इसलिए ये बेहद आवश्यक है कि यदि कुत्ते या किसी भी जानवर का दांत आपको लग गया है या उसके जीभ पर यदि कांटेनुमा परत है और वो आपको लग चुकी है, तो आप नज़दीकी सरकारी अस्पताल में जाइए और वहाँ रेबीज़ का टीका अवश्य लगवाइए। इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आप आने वाली जो भयावह बीमारी है, जो जानलेवा बीमारी है, उससे आप बच सकेंगे। श्रोताओं, आप कार्यक्रम में आपको कुछ बेहद ही पॉजिटिव खबरों के बारे में बताते हैं। राजस्थान के किशनगढ़ की एक खबर है, वहाँ की पार्षद हैं हमीदा। राजस्थान के अजमेर ज़िले के किशनगढ़ के वार्ड 10 के से हमीदा बानो छठवीं बार पार्षद बनी और जो उनकी जीत है वो सबसे बड़ी रही। अब हम आपको इनके बारे में क्यों बता रहे हैं, इनके बारे में बताना इसलिए आवश्यक है कि इनका कहना है कि जब जनता ने मुझे चुनकर भेजा है तो मुझे काम करने का अवसर मिला है और आपने अपनी गली या अपने वार्ड के हर मकान का पट्टा, या जिसको ये कह देते हैं कि सरकार से एक रजिस्टर डॉक्यूमेंट, वो प्रत्येक घर को दिलवा दिया। आपने जो गलियों की सड़कें थी वो पक्की करवा दी। इतना ही नहीं, 2015 में जब चुनाव लड़ने के लिए 10वीं अनिवार्य कर दी गई, तब आपने 52 वर्ष की उम्र में 10वीं की तैयारी की और 10वीं की परीक्षा को उत्तीर्ण किया। ऐसी ही एक पॉजिटिव खबर है केरल के पेरसा सेरी गांव की, जहां का हर घर सौर ऊर्जा बना रहा है। हर घर में सोलर पैनल लगे हुए हैं और उससे ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। 276 सोलर पैनल लगाए गए हैं और 700 पैनल जो हैं वो लोगों की छत पर लगे हैं। केरल की दूसरी पंचायतों ने भी इस गांव के मॉडल को अपनाया है और बिजली के बिल में भारी कमी देखने को मिली है। इससे कार्बन उत्सर्जन भी घटा है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के बकवा गांव में पहले पलायन होता रहता था। मान लीजिए 100 लोग रहते हैं तो 80% के करीब पलायन था। अब यह पलायन 20% रह गया है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लोक कला से रोजगार, ये एक मुहिम सरकार ने चलाई और उसका असर देखने को मिला। पलायन रुका, गांव वापस लौटे 100 परिवार। जो 100 परिवार पहले इस गांव को छोड़कर जा चुके थे वो वापस लौटे। सीधी के इस गांव की एक लोक कला, जिसे एक नृत्य या डांस परफॉर्मेंस भी कह सकते हैं, एक कला थी जो आप लोग बेहद उसमें निपुण थे। अब उसका रोज़गार से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए लोग रोज़गार ढूंढने शहरों में जाते थे और वहां जाकर मजदूरी करते थे। लेकिन जब सरकार ने पहल शुरू की, लोग उससे जुड़ते चले गए और उस लोक कला से जब लोगों को मजदूरी से ज़्यादा फ़ायदा होने लगा, नौकरी से ज़्यादा वेतन मिलने लगा, तो वो वापस अपने गाँव लौटे और उस कला में और अधिक निपुण होने लगे, जिससे कि ये कला भी संरक्षित रही और रोज़गार का रोज़गार आपको आपके गांव में ही उपलब्ध हो गया।

श्रोताओं, अब समय हमें अनुमति नहीं दे रहा कि आपके साथ चर्चा को आगे जारी रखा जाए। कार्यक्रम में आपके साथ मैं था, आपका दोस्त अनुराग शर्मा। कल आपसे पुनः मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे सूचना समाचारों और जानकारी पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब समय है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। आज हम आपको सुनवा रहे हैं अब्दुल हमीद खान से राग किरवानी में सारंगी वादन। आपके साथ तबला पर संगत कर रहे हैं महेश विशोपिया।

0: श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने सुना अब्दुल हमीद खान से राग किरवानी में सारंगी वादन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे महेश विशोपिया। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 10 बजने को है जिले की चिट्ठी का अनुप्रसारण कुछ ही समय में आकाशवाणी भोपाल से होगा।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है अनूपपुर जिले की चिट्ठी। आलेख अजीत मिश्रा, वाचन स्वर दीपा सिंह। अनूपपुर जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात गांव के विकास से जुड़ी पहल की। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में वीबीजी रामजी मिशन के तहत जिला स्तरीय पंच सम्मेलन हुआ। इसमें जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने ग्रामीण विकास और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर बात की। मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि गांवों का विकास ही विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगा। अब बात बारिश के मौसम में राशन की। अनूपपुर में पात्र परिवारों को अगस्त और सितंबर दोनों महीनों का राशन एक साथ दिया गया। प्रशासन ने बारिश को देखते हुए पहले ही दोनों महीनों के खाद्यान्न सामग्री राशन दुकानों तक पहुंचा दी थी। इससे पात्र परिवारों को लगातार 2 महीने राशन लेने के लिए परेशानी नहीं उठानी पड़ी। इसी कड़ी में जिले में संत रविदास महाराज की 650वीं जयंती के मौके पर समरसता संकल्प अभियान चलाया गया। 20 अगस्त से शुरू हुई कलश रथ यात्रा अलग अलग इलाकों से गुजरते हुए 10 सितम्बर को अमरकंटक में सम्पन्न हुई। इस दौरान सामूहिक आरती, गुरुवाणी पाठ, भजन संध्या और समरसता संकल्प जैसे कार्यक्रम हुए। अभियान के जरिए संत रविदास के समता, सेवा और सामाजिक न्याय के संदेश को लोगों तक पहुंचाया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मैहर के कार्यक्रम से सिंगल क्लिक के जरिए अनूपपुर की 1,25,342 लाडली बहनों के खातों में करीब 21 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि भेजी। हर बहन के खाते में

0: सी महाविद्यालय में महर्षि अरविंद की जयंती पखवाड़े के तहत व्याख्यानमाला आयोजित हुई। विद्यार्थियों को महर्षि अरविंद के जीवन, कर्मयोग और आश्रम से जुड़े विचारों के बारे में बताया गया। बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। जिले में नौवां राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है, जिसकी थीम है हमारे आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी। आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका, पोषण मेले और गर्म पके भोजन की गुणवत्ता की सामुदायिक निगरानी जैसी गतिविधियां हो रही हैं। और अब बात उन जलाशयों की जो जिले की जल सुरक्षा से जुड़े हैं। अनूपपुर के 15 चिन्हित जलाशयों की बांध सुरक्षा का तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा है। विशेषज्ञों की टीम जलाशयों की संरचनात्मक स्थिति, सुरक्षा व्यवस्था और दूसरे तकनीकी पहलुओं की जांच कर रही है। इस जांच में जोहिला, कंटूर, नानघाटी, बोहिता समेत जिले के 15 जलाशय शामिल हैं। जिले के लिए एक और सम्मान की खबर है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि में तय लक्ष्य से ज्यादा राशि जुटाने पर कलेक्टर रत्नाकर झा को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। जिले ने 3,63,000 रूपए के लक्ष्य के मुकाबले 4,23,550 रूपए जुटाए। और अब बात सेवा और जनभागीदारी की। अनूपपुर में 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों की श्रृंखला चलाई जा रही है। जिला अस्पताल में जैथारी, कोतमा, फुनगा, पुष्पराजगढ़, अमरकंटक और दूसरे स्थानों पर भी शिविर लगाए जा रहे हैं। 1 अक्टूबर को मोजर बेयर पावर प्लांट जैथरी में भी रक्तदान शिविर होगा। इसी सेवा भावना को आगे बढ़ाते हुए जिले में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चल रहा है। अभियान की शुरुआत अमरकंटक में माँ नर्मदा के पूजन और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुई। जिले भर में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जन कल्याण से जुड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। 2 अक्टूबर को विशेष स्वच्छता अभियान चलाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। और आखिर में बात अनूपपुर के त्योहारों और भाईचारे की। ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार शांति और सौहार्द के साथ मनाया गया। रक्षाबंधन और कजलिया जैसे पारंपरिक पर्वों में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिलाओं ने हरतालिका तीज पर निर्जला व्रत रखकर पूजा अर्चना की। इसके साथ ही 10 दिन तक चले गणेश उत्सव का भी जिले में शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण समापन हुआ। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे अनूपपुर जिले की चिट्ठी। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
2: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर, साथ ही FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 10:05 होने को हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। इस कार्यक्रम में हम आपकी भेजी हुई फरमाइशों पर गीत सुनवाते हैं। यदि आप भी हमें अपनी फरमाइशें व्हाट्सएप के जरिए भेजना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए। हमारा नंबर है 9425702768। फिर से सुनिए, 9425702768। इस नंबर पर आप हमें अपना नाम, अपना पता, फिल्म और गीत का नाम लिख भेजिए। कार्यक्रम की पहली फरमाइश है आप सभी की। आप हैं सांकरा सोमनी, जिला राजनाथ गांव, छत्तीसगढ़ से नारायण साहू, कुलवंतीन साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी, मिलिंद कुमार, प्रणय कुमार, रुद्रांश प्रताप। गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। कुम्हार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक, सार्थक, प्रथमेश, संतोष और पांडुरंग कुम्हार। लोरमी चंचेड़ी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला, नेहा, पुष्पराज और ऋषभ मरावी। जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा, राजकुमार वुडाना, सुदामानगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप। इसके साथ ही हमें संदेश आया है ग्राम संदलपुर आतरी से कालीचरण यादव, उर्मिला देवी यादव, दीपक कुमार यादव। आप सभी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद पर पैपॉन की आवाज़ को। अनु मलिक का संगीत, वरुण ग्रोवर का लिखा, फिल्म दम लगा के हैसा से ये गीत।

0: So, your place or mine?
1: उसके पहले ये बताओ, तुम्हारे पास कॉन्डम है?
0: कॉन्डम? लेकिन हम तो
1: क्या हुआ? ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से HIV AIDS और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
0: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
2: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

अभी आपने सुना राहत फतेह अली खान को फिल्म कलयुग में। इस गीत को लिखा था सईद कादरी ने, संगीत था रोहित हयात और फैजल रफी का। फरमाइश करता थे आप सभी आप हैं नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा हाशमी, तौसीफ, तैमूर और कलीम अंसारी, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से सईद अब्बासी, निघत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज फरदीन, सुहान अरजान अबान और पूरा अब्बासी परिवार, दुबीहा नेबादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, हैप्पी राय, अमित राय, उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश, गमहरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति देव कुमार और आर्य कुमार जायसवाल, दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक और स्वाति जायसवाल, वीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी, अंजलि बाला साहेब, जयश्री महेत्रे, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय ट्यूबेल और पीवी कुलथे, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, आसमा खातून, इकबाल मस्तान, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभ्यानंद आर्य, परमानंद आर्य, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू बंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, खातून अंसारी, सुमित रमेश साहू, ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श, सार्थक और अलौकिक चंसौलिया, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मिका, बलविंदर विर्क, जयदेव विर्क और मिका विर्क। आप सभी सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। श्रोताओं, यदि आप भी हमें अपनी फरमाइशें व्हाट्सएप के जरिए भेजना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए। हमारा नंबर है 9425702768। फिर से सुनिए 9425702768। इस नंबर पर आप हमें अपना नाम, अपना पता, फिल्म और गीत का नाम लिख भेजिए। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमने शामिल की है फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो से। इस गीत को लिखा है रॉनी ने, संगीत है प्रीतम का, गायक हैं सोनम चक्रवर्ती। पसंद करता है आप सभी दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण, कपिल, कुणाल मेहरा, उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु, आशी और शिवन्या गोस्वामी, वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का, खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद्र मल्होत्रा, तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फजान लल्ला, फरहान लल्ला, समीरा आजमीन गुड़िया, उमाली महाराष्ट्र से अनूप कुमार, उद्धव पाटिल, पलसी से वी एस शेगोकार, डॉक्टर जयश्री, शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफताब अंसारी, रियाज मोहम्मद, कैफ अनवर मास्टर, लुबना और आलिया, बुलटाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला, सुभेद कुमार, साधना, पवन पाटिल, अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, श्लोक और दीपाली। तो आइए सुनते हैं आप सभी के पसंद पर लाइफ इन अ मेट्रो का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना तुलसी कुमार और अरिजीत सिंह को फिल्म आशिकी 2 में। इस गीत को लिखा था इरशाद कामिल ने, संगीत था जीत गांगुली का। फरमाइश करता थे आप सभी, आप हैं ग्राम लोहेड़ी महोबा उत्तर प्रदेश से, जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र यादव, अरविंद, रागिनी, रिया, रेनू और रोनिका यादव। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारी ठाकुर, सूरज, ज्योति और रेयांश ठाकुर। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री कुमार, प्रतीक कुमार। नूरमहल महसौल सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहानहाज, तलहत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफअत जहानाज, नुजहत शाजिया नाजिया। बरवट बकाल बुलठाणा से नारायण हागे, कमल दिव्या जय हागे। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम सतीश, मुकेश कुमार साहू। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, चित्ररेखा वर्मा, ज्योति प्रहलाद वर्मा, उमेश और धनेश्वरी वर्मा।

0: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
1: पानी के छींटे व्यर्थ में न उड़ाएं।
0: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
1: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें।
0: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं।
1: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
0: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
1: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
0: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
1: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
0: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
1: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
0: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
1: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
2: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे,
1: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
0: समय है पानी बचाने का,
1: पानी का मोल समझने और समझाने का।
0: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमने शामिल की है आप लोगों की। आप हैं फुल चिंचौली तालुका पंढरपुर से, जाकिर, सुमैया, सुबान, समीर, सलमा, मुमताज, दिलशाद, नसीर, बानू, बादशाह, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, विट्टा बजाज और पिंगावाला चौक गोराया जालंधर से संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़ और कमल साहनी। आप सभी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद पर फिल्म लुटेरा का ये गीत। इस गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत है अमित त्रिवेदी का, गायक है मोनाली ठाकुर।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म शोर इन द सिटी से इस गीत को। इस गीत को लिखा था समीर और प्रिया पंचाल ने, संगीत था सचिन जिगर का, गायक थी श्रेया घोषाल और तोची रैना। फरमाइश करता थे आप सभी, आप हैं जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन, नौरीन, आसना, मोहम्मद कैफ अंसारी, मोगा पंजाब से जगदीश मठाड़ू, बीरपाल मठाड़ू, पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से शिवागोप, प्रेम, कपिल, शिवांश, संगीता, लिपिया, दीपाली गोप, सनावत से मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार वोडाना, दुबीहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक, रोशनी और प्रांजल राय, येलांडू कोठा गुडेम डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना से राजेश खन्ना, चिन्ना पासी, अजित राज खन्ना, अनीता राज खन्ना, सुनीता राज खन्ना, भानु राज खन्ना और अमित खन्ना, एवरग्रीन रेडियो ग्रुप बिहारी कॉलोनी शाहदरा से वीना मस्कीन, तुलसी मस्कीन, आशीष राजा, डब्बू सम्राट, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रुचिता खुराना, केशु और रिधान खुराना, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना, गुरुवंश सिंह जोड़ा, जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, प्रीतेश संघई और पूरा संघई परिवार।
1: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 बजे तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण। इस समय प्रसारित हो रहा है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम में अगली फरमाइश है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़ से और विनोद खड़ से, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छनूलाल शिवास, अनीता पुष्पा शिवास, अंजू योगिता शिवास, रज्जन साहू, हेमंत रामदेव, धर्मदास वाधवानी, मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, मोहित राज, पीयूष कुमार, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। आप सभी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद पर ऐश किंग और सुनिधि चौहान को, प्रीतम का संगीत, जयदीप साहिनी का लिखा, फिल्म दम मारो दम से ये गीत।

अभी आपने सुना फिल्म वेकअप सिट से इस गीत को। इस गीत को लिखा था जावेद अख्तर ने, संगीत था शंकर एहसान लॉय का, गायक थे कविता सेठ और अमिताभ भट्टाचार्य, फरमाइश करता थे आप सभी आप हैं। पटेल नगर मलौट से रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू और गुड्डू। MLB रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना पप्पी, किरण खुराना, लव्या आरफ खुराना और SK पप्पी। गाँव कैरो जिला तरन तारण पंजाब से गुरुदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और गुरशबद। उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, भानुप्रकाश, गीतिका खोरवाल। कुम्हार गली कोलगांव से पांडुचंदन, उषा रानी, प्रतीक्षा, अभिषेक सार्थक, प्रथमेश, संतोष और पांडुरंग कुम्हार। भटिंडा रोड मंडी डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, रोहित, लकी, तानिया नारंग। आइए सुनवाते हैं अब आपको इस कार्यक्रम का अंतिम गीत। ये गीत हमने लिया है फिल्म आसान से। इस गीत को लिखा है वरुण ग्रोवर ने, गायक हैं स्वानंद किरकिरे, फरमाइश करता थे आप जाखौद राजस्थान से शंभू दयाल खट्टक, विमला देवी, अमरजीत खट्टक, सुंदरलाल खट्टक, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खट्टक।

0: तुझे सोचूं तो फूट जाता हूं।
1: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 10:58 होने को हैं। इस घंटे की खास खबरें कुछ ही समय में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले होंगी। श्रोताओं, प्रातः 11 बजे से सभा की समाप्ति तक सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि लता मंगेशकर ने अपनी दिव्य गायन प्रतिभा से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि भगत सिंह ने कम उम्र में ही मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित कर दी गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। यह फैसला इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास सेवा पखवाड़े के अंतर्गत सेवा भावना, सामुदायिक भागीदारी और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। दुबई के प्रतिष्ठित दुबई फ्रेम के पास कल विकसित भारत रन 2026 का आयोजन किया गया। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत सड़क चौड़ीकरण का काम तेज हो गया है। महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शिवपुरी में आज राष्ट्रीय महिला बाल आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा विशेष जनसुनवाई का आयोजन किया जा रहा है और आज विश्व रेबीज दिवस के मौके पर लोगों को इस जानलेवा बीमारी से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। प्रस्तुति सरिता सिंह की है।

0: दिल की बातें हो, पसंदीदा नगमों का साथ हो और आपकी अपनी आवाज हो, तो फिर समक क्यों न बन जाए। मैं हूं आपकी दोस्त सरिता, आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में। फोन की घंटी बजने का इंतजार मुझे भी है और आपकी फरमाइशों को पूरा करने का इंतजार इस माइक को भी है। तो उठाइए फोन, मिलाइए हमारा नंबर 2660902 2660903 और कह डालिए अपने दिल की बात। तो चलिए लेते हैं आज का पहला फोन, देखते हैं कौन सी श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, हाँ जी
1: जी, कार्यक्रम फोन करेंगी सुने।
0: बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम फोन करेंगी सुने में। कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: मैं ग्राम गोपी क्रिया तहसील भांडेर जिला दतिया मध्य प्रदेश से राहुल बाल बातचीत कर रहा हूँ। दीदी,
0: अच्छा जी, राहुल जी कैसे हैं?
1: दीदी जी मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, आप बताएं आप कैसे हो?
0: त्योहारों की श्रृंखला लगातार जारी है, तो किस आनंद उठा रहे होंगे त्योहारों का?
1: बिल्कुल बिल्कुल, अभी हमने गणेश जी की अनंत चतुर्दशी मनाई और उनको विदा करा।
0: हाँ जी,
1: और बड़े ही धूमधाम से ये गणेश उत्सव मनाया गया हमारे यहाँ पे।
0: हाँ जी
1: जी जी,
0: और अब देखिए पितरों को नमन करने का भी समय आ गया है ना?
1: जी जी, प्रतिपक्ष चालू होने वाले हैं तो
0: बिल्कुल
1: उनको जल अर्पण किया जाएगा।
0: अच्छा जी, तो राहुल जी अपन सबसे पहले तो आपकी पसंद का गीत पूछ लें।
1: जी, आज मुझे सुनवा दीजिए, फिल्म का नाम रहेगा रंग और गीत के बोल रहेंगे
0: तुझे ना देखूं तो चैन,
1: तुझे ना देखूं तो चैन।

0: रीजन है कि जैसे कि हमारा कॉल पिछले सप्ताह लगा था लेकिन कार्यक्रम में स्थान नहीं दिया गया था।
1: अच्छा,
0: तो कृपया करके आप लोग ऐसा ना करा करें, बेशक गाना की जो ड्यूरेशन रहती है, जो समय अवधि रहती है, उसमें कटौती कर दिया करें तो कोई बात नहीं है। जैसे गाना 5 या 6 मिनट का रहता है तो आप उसको 3 या 3.5 या 4 मिनट तक भी बजा देंगे तो कोई शिकायत नहीं रहेगी। लेकिन एक श्रोता के नाते जब हम कॉल ट्राई कर रहे होते हैं तो काफी मेहनत मशक्कत लगती है, और जब कॉल सैंपल हो जाता है तो बहुत खुशी होती है। लेकिन प्रसारण के समय जब कॉल सुनने को नहीं मिलता है, अपनी बातचीत सुनने को नहीं मिलती है, तो
1: बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी बात को पूरी तरह से समझ रही हूँ। और हमारी कोशिश भी ये रहती है कि आज जितने कॉल हमने रिकॉर्ड किए हैं हम सारे अपने श्रोताओं को सुनवा पाए। लेकिन राहुल जी, कभी कभी क्या होता है, अभी एक दिन मैं ड्यूटी पर थी, आप विश्वास करिएगा, और उस दिन एक हमारा जो दिल्ली से कार्यक्रम गया था सरकार पर, तो उसके चलते फिर उस दिन आप सोचिए कि बात आपके गीत हमारे पूरा नहीं जा पाया, वो बस आधे घंटे का ही कार्यक्रम जो था कि रेडियो पर ब्रॉडकास्ट हो पाया, क्योंकि उससे पहले एक कार्यक्रम जो दिल्ली से आया था वो हमें ब्रॉडकास्ट करना बहुत जरूरी था।
0: और तो, हमारे श्रोता साथी भी हमें बताते रहते हैं फोन के माध्यम से, हमारी बातचीत होती रहती है, हमारे जो फ्रेंड सर्कल है रेडियो के जो दोस्त हैं वो बताते हैं कि भोपाल में रिकॉर्डिंग तो हो जाती है लेकिन फोन कभी कभार ऐसा होता है कि वो शामिल नहीं करते हैं भोपाल वाले। तो
1: देखिए एक कंडीशन तो यही रहती है जो मैंने आपको बताई। हाँ, ऐसा कभी कभी होता है कि फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो हो सकता है ऐसा किसी के साथ हुआ हो कभी, बट हमारी कोशिश ये है कि आज हम जितने भी फ़ोन रिकॉर्ड करेंगे हम उतनी सुनवा दें, भले ही हम गाना थोड़ा कम कर दें।
0: जी जी, वही मेरी गुजारिश रहेगी कि आप बेशक गाना कम कर दीजिए, गाने से कोई शिकायत नहीं रहेगी मुझे लगता है किसी भी श्रोताओं को।
1: हाँ जी,
0: लेकिन अगर उनका कॉल रिकॉर्ड होने के बाद प्रसारण के समय में अगर नहीं सुनने को मिलता है
1: जी
0: तो वो निराश हो जाते हैं। और आपको तो मैडम अंदाजा हो जाता होगा, कार्यक्रम आप बराबर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको पता है कि एक घंटे में हम कितने कॉल को शामिल कर सकते हैं, तो उसी हिसाब से आप कॉल रिकॉर्ड करिएगा, मेरा आपसे विनम्र निवेदन रहेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी, आज के कार्यक्रम में पहला फोन आपका ही होगा। तो चलिए अब हम विदा लेते हैं आपसे, और अब हम सुनवाते हैं आपकी
0: कार्यक्रम में शामिल किया, इसके लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार,
1: धन्यवाद राहुल जी।

0: हेलो
1: हेलो मैम, नमस्ते
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं आप?
1: जी। मैम ग्राम नेगई सिनोली जिला कटनी से बोल रहा हूँ मैम, परमलाल साहू जी।
0: कटनी से? अच्छा जी,
1: मैम
0: कैसे हैं परमलाल जी?
1: बहुत अच्छे मैम, एक बार फिर बारिश का दौर चालू हो गया है मैम
0: हाँ, कहीं कहीं पर बारिश हो रही है। अच्छा ये बताइए कि जो बारिश अभी हो रही है ये किसानी के हिसाब से सही है या गलत? मुझे बहुत ज़्यादा
1: बहुत बहुत
0: समझ।
1: फायदेमंद है मैम जी,
0: अरे वाह,
1: क्योंकि
0: तब तो
1: अभी
0: फिर बधाई
1: धान
0: हो।
1: क्या है गभोट में आ चुकी हैं, तो बहुत अच्छी फसलें होंगी मैम।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, तब तो ये बहुत अच्छी बात है, बधाई हो आप सभी किसानों को।
1: जी
0: अच्छा
1: मैम,
0: परमलाल जी, कौन सा गीत सुनेंगे आज के कार्यक्रम में?
1: आज फिल्म का नाम है मैम गदर 2 का है, चल तेरे इश्क में,
0: हाँ
1: ऐसा कुछ करके गीत है मैम जी।
0: अच्छा जी, तो अच्छा लगता है आपको ये गीत?
1: जी संगीत तो बहुत अच्छे लगते हैं मैम, संगीत बहुत अच्छा, हर
0: कौन?
1: गाने का संगीत बहुत अच्छा लगता
0: तो परमलाल जी, सुनाए हम आपकी पसंद का गीत।
1: है जी। मैं अपने एक मित्र का नाम लेना चाहूंगा मैम
0: जी
1: जी, हमारे रमेश राय अन्नू जी हैं, वो बहुत रेडियो से लगाव रखते हैं मैम,
0: अच्छा
1: तो उनको ये गाना डेडिकेट करना चाहूंगी
0: ठीक है ठीक है, तो राहुल जी फिर हम सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत, और कॉल
1: जी
0: करने के लिए
1: मैम।
0: बहुत बहुत
1: बहुत बहुत
0: आपको
1: धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, फोन करेंगी
1: भाई
0: सुने।
1: फोन लगा ही लग गया अभी हम आज फोन
0: आज आपका
1: जी
0: लकी डे है,
1: जी
0: आज आपका शुभ दिन है।
1: जी
0: जी,
1: बिल्कुल
0: तो कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? शुभ नाम बताइए अपना। नीरज
1: मैं मेरा नीरज उपाध्याय बोल रहा हूँ, अनूपपुर जिले से। नीरज
0: उपाध्याय। कैसे हैं आप?
1: जी मैम
0: कैसे हैं आप?
1: ठीक है बढ़िया
0: अच्छा
1: है, बारिश हो रही है भाई तेज।
0: अच्छा कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: ये था सुना दीजिए, सिर्फ तुमका सुना दीजिए।
0: हाँ, कौन सा गीत?
1: ये पंछी सुर में गाते हैं भौरे गुनगुनाते हैं वाला,
0: जी जी
1: उदित
0: बिल्कुल।
1: नारायण की आवाज में
0: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
1: जी।
0: तो नीरज जी, क्या करते हैं आप?
1: मैडम मैं अभी तो प्रेजेंट टाइम में वही बताया था, कोल माइंस का क्षेत्र है अपना इधर, तो सिक्योरिटी गार्ड में मैं काम कर मतलब जाता
0: अच्छा
1: हूँ
0: अच्छा जी,
1: जी।
0: ठीक है। तो नीरज जी, आज आपने हमें कॉल किया और हम आपका गीत आपको ज़रूर सुनवाएंगे, और आज बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फ़ोन लगाने के लिए।

0: हेलो।
1: हेलो, मैं फूलचंद पाल बोल रहा हूँ, छतरपुर जिले के मनकारी गांव से।
0: फूलचंद पाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आज कार्यक्रम में आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम?
0: सरिता बोल रही हूँ।
1: ओहो, क्या बात है, आज का तो दिन ही बन गया।
0: अरे, आप तो ऐसे श्रोता हैं कि जो भी ड्यूटी पर होता है उसका दिन बन जाता है।
1: ओह, क्या बात
0: हाँ,
1: है।
0: सब श्रोता लोग हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, लेकिन मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देती हूँ कि आप इतनी शिद्दत से फ़ोन लगाते हैं, इतने अच्छे से बात करते हैं, जैसे हमारा बहुत पुराना कोई रिश्ता हो।
1: बिल्कुल, ये मैं बता दूं सरिता जी, मैं क्या बताऊं, आपकी वाणी में इतना मिठास है कि मैं क्या बताऊं आपको।
0: ये तो आपका प्रेम है रेडियो के प्रति, हम सभी कलाकारों के प्रति। तो फूलचंद जी, कैसे हैं आप?
1: वाकई में मुझे बहुत गर्व होता है जब मैं हमारी कोई बुंदेलखंड की लड़की इतनी मीठी आवाज में बोलती है, जब
0: जी, बिल्कुल।
1: मुझे अपने आप में बहुत गर्व होता है।
0: ये आप ही लोगों का तो प्रेम है जो हमें इस जगह तक पहुंचाया है। आप ही लोगों ने
1: जी जी
0: शुरुआत
1: आप
0: बिल्कुल आपके सामने से हुई है, छतरपुर से, और देखिए आप लोगों का प्यार आशीर्वाद हमें इस जगह तक ले आया, इतनी ऊंचाइयों
1: क्या बात है, क्या बात है, इतनी
0: तक।
1: बहुत बढ़िया जी, आपकी बड़प्पन बोल रहा है ये आपकी वाणी में।
0: हाँ जी। और
1: और
0: फूलचंद जी, कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: बिल्कुल सरिता जी, फिल्म का नाम है चरणों की सुगंध, और गीत के बोले कि एक रावण को राम ने मारा, एक रावण को मैं मारूंगा, जय जय श्री राम पुकारूंगा, तेरी लंका आज उजाड़ूंगा।
0: अच्छा, ठीक है। और
1: 1919 की गाना मुझे, सरिता जी आप जानती हैं,
0: हाँ
1: आकाशवाणी
0: हाँ हाँ
1: छतरपुर में बहुत पहले से रही हैं,
0: हाँ हाँ हाँ
1: तो आपको पता है कि फूलचंद की पसंद लगभग 19 के गाने ज्यादा पसंद
0: हाँ
1: करती
0: हाँ
1: हैं।
0: और बहुत प्यारे गीत हैं 90s के, सभी
1: देखिए
0: गाने
1: सरिता
0: बहुत
1: जी,
0: अच्छे हैं।
1: 19 के गीत हैं जो, उसमें जो संगीत वगैरह है बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छे उसमें गायकी में
0: हाँ,
1: कुछ ना कुछ है भी है।
0: शब्दों का समायोजन, संगीत बहुत अच्छा है। सच बात है, ये बात
1: जी जी
0: हमारे भी
1: बिल्कुल
0: फेवरेट है,
1: जी
0: 90s के गीत। जब
1: बिल्कुल
0: भी मैं
1: सही कहा
0: रेडियो पर
1: आपने।
0: होती हूँ तो 90s के गीत ज्यादा बजाती
1: ओहो, क्या
0: हूँ।
1: बात है, बिल्कुल मैंने देखा था जब आप युवाणी में बजाती थी तो बिल्कुल 19 के गीत ही बजाती थी
0: हाँ
1: ज्यादा,
0: जी, हाँ जी।
1: तो बिल्कुल है। और 19 के गानों में उसमें संगीत में बड़ा दम है,
0: हाँ, बिल्कुल सही
1: और
0: बात
1: कुछ भी
0: है।
1: गीत बनते हैं तो वो कुछ ना कुछ लेके बनते हैं। अब आजकल के गीत तो शायद, देखो मैं तो नहीं कहूंगा वैसे,
0: हाँ
1: लेकिन गाना बहुत अच्छे हैं।
0: हाँ बिल्कुल। अच्छा
1: और अब
0: फूलचंद जी,
1: छतरपुर
0: कैसा
1: का
0: रहा
1: भी
0: त्योहार? गणपति जी को विदा कर दिया होगा।
1: जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल है। हुए आप देखिए क्या पितृमोक्ष पखवाड़ा चल रहा है,
0: हाँ, पितृमोक्ष
1: तो अभी जो
0: शुरू।
1: है पितृमोक्ष पखवाड़े में सब लोग बिजी हैं, और इसके बाद माता रानी का
0: हाँ, आगमन हो
1: वो आ रहा।
0: जाएगा जी।
1: जी जी
0: देखिए
1: जी
0: ना
1: जी
0: कि
1: तो
0: मतलब ऊपर वाले ने कितना अच्छा विधान बनाया है कि पहले शिव जी हमारी रक्षा करते हैं पूरे 1 महीने, उसके बाद फिर
1: जी
0: गणपति
1: जी
0: जी आ जाते हैं हमारी रक्षा करने, फिर उसके बाद हमारे पितृदेव है ना, जो
1: जी जी
0: हमारे मतलब समझिए कि वो हमारी हर क्षण मदद करते हैं, रक्षा करते हैं, उसके बाद
1: जी जी
0: माता
1: जी
0: रानी आ जाएंगी हमें संभालने के
1: जी
0: लिए, है ना।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या है कि भारत में, हमारे जो भारत में जो विभिन्न प्रकार के त्योहार होते हैं और
0: जी,
1: जो समसामयिक जो हमें, वो हमें बहुत बड़ी ऊर्जा देते हैं ना।
0: बहुत बड़ी ऊर्जा देती है, बात बिल्कुल सही है।
1: हाँ, ये एक आनंद हमको अलग से मिलता है, जैसे कोई विदेशों में तो ये कुछ है नहीं है, लेकिन हमारे भारत में जो
0: हाँ
1: जितने त्योहार है तो इसमें बड़ा एक मन में
0: हाँ
1: हुलास होता है कि देखिए अब हमारा राधे
0: बिल्कुल।
1: राधे मैया, राधे राधे।
0: और
1: मैं बता दूं
0: एक
1: सरिता, सरिता जी
0: हाँ
1: मैं बता दूं आपको कि मैं इस समय जो है राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी में हूँ।
0: अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत ही पुण्य जगह पर है, पावन स्थान पर है। और कहते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी में तो मतलब ऐसा स्थान है कि आप वहाँ के जो क्षेत्र है, जो वहाँ का मेहंदीपुर का, वहाँ भी
1: जी
0: कदम रख दें तो आपके आधे से ज़्यादा परेशानी या संकट तो वैसे ही दूर हो जाते हैं,
1: क्या बात है।
0: है ना।
1: और मैं बता दूं श्रोताओं को कि मैं यहाँ मेहंदीपुर में जो है राजस्थान
0: हाँ,
1: में श्री रामचरितमानस का पठन कर रहा हूँ, तो
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है ये।
1: रामचरितमानस जो है यहाँ अखंड रामायण बैठी है कई सालों से,
0: अच्छा,
1: और कई सालों तक चल रहा है, बहुत बड़े बड़े आश्रम है यहाँ पर, तो जो भी सुन रहे हैं तो आए देखें घूमें, बड़ी उनका वेलकम स्वागत है।
0: बिल्कुल, रेडियो के माध्यम
1: और
0: से
1: हम लोग जो है
0: सभी।
1: यहाँ रामायण का पाठ मतलब वाचन करते हैं,
0: हाँ,
1: तो यहीं पर रहते हैं हम जो है, अब काफी दिनों से तो हम नहीं गए हैं गाँव में,
0: हाँ,
1: तो जब कभी जाते हैं महीने दो महीने में तो दो एक दिन के लिए, तो
0: हाँ। रेडियो के माध्यम
1: मैं
0: से सभी लोग आपकी बात सुन रहे होंगे, संदेश भी सुन रहे होंगे, और
1: जी
0: जहाँ
1: जी
0: तक है कि सभी इस बात का लाभ उठाएंगे, है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो फूलचंद जी, आज आपसे बात की मैंने, बहुत अच्छा
1: बिल्कुल
0: लगा, बहुत दिनों बाद मैंने फोन इन प्रोग्राम किया आज।
1: बिल्कुल, राधे राधे। और वो है
0: हाँ
1: जो हमारे कुछ मित्र हैं,
0: जी
1: आपकी आज्ञा हो तो। नहीं,
0: नहीं, नहीं हमारी आज्ञा तो बिल्कुल है, लेकिन हम उनसे गुजारिश करेंगे आपसे भी कि उनसे भी कहिए ना फोन लगाए, रूबरू जब होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है।
1: वो क्या है सरता जी, बहुत बुजुर्ग हैं, 90 साल 95 साल उम्र है उनकी, तो वो कहते थे कि जब आपका फोन लगे तो जरा मेरा नाम बोल देना।
0: अरे बिल्कुल, आप उनका नाम बोलिए, स्वागत है उनका भी कार्यक्रम में।
1: हाँ, तो वो जो हमारे प्रेमदास बाबा जी है महुआ के, तो उनको डेडिकेट रहेगा ये गीत।
0: बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, उनको
1: और
0: भी
1: आपको भी रहेगा, और जितने श्रोता सुन रहे हैं सभी माताएं बहनें सभी को ये डेडिकेट रहेगा। मैंने इसलिए ये गाना बजवाया है कि आगे चल के दशहरा आने वाला है, मेरा फोन लगा नहीं लगा।
0: हाँ।
1: तो ये गीत बजेगा, अच्छा लगेगा।
0: बिल्कुल अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद फूलचंद जी आज हमें कार्यक्रम में कॉल करने के लिए।
1: बहुत बहुत आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और जय जय श्री बालाजी सरकार की।
0: जय जय श्री बालाजी सरकार की।
1: बहुत बहुत राधे राधे राधे
0: राधे।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: कार्यक्रम फोन करेंगी सुने में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: हाँ मैडम, आज का विषय क्या है?
0: आज विषय नहीं है, आज आप फोन करेंगी सुने कार्यक्रम है, तो आप मुझे अपनी पसंद का गीत बताइए और हम आपको गीत सुनवाएंगे।
1: मैडम, महबूब की मेहंदी,
0: सबसे पहले अपना नाम
1: ये
0: बताइए प्लीज।
1: फिल्म का नाम है।
0: आप अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम संतोष सोनी है।
0: अच्छा संतोष जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं दमोह से बात कर रहा हूँ मैडम।
0: दमोह से। अब अपनी पसंद का गीत बताइए।
1: मैडम, महबूब मेहंदी का एक गाना है,
0: हाँ जी,
1: जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते।
0: बहुत बहुत प्यारा गाना है ये
1: जी मैडम।
0: जी, बहुत सुपरहिट गाना है ये, बहुत प्यारा है और बिल्कुल हम आपको जरूर सुनाएंगे। संतोष जी क्या करते हैं?
1: मैडम, मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ।
0: कंस्ट्रक्शन का। अच्छा जी,
1: जी
0: तो अभी आप काम पर हैं?
1: हाँ, मैं काम पर ही हूँ मैडम।
0: अच्छा, चलिए काम करते करते आपने फोन लगाया, आपको और भी अधिक ऊर्जा मिल गई होगी। और जब अपना रेडियो पर ही गीत सुनेंगे तो आप यकीन मानिए आपका काम आपकी ऊर्जा से ज्यादा हो
1: बिल्कुल
0: जाएगा।
1: बिल्कुल
0: है
1: मैडम,
0: ना?
1: इसी कारण से मैं हमेशा कॉल करता हूँ
0: हाँ हाँ
1: और ये
0: हाँ
1: करीब 1.5 महीने बाद आज कॉल लगा है।
0: लगा है। चलिए बहुत अच्छी बात, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में हमें कॉल करने के लिए।

0: हेलो
1: हेलो नमस्कार।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं आप?
1: जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड बंडावली से लक्ष्मण राव चाय वाले बोल रहे हैं। चाय पी लू?
0: अच्छा, चाय लक्ष्मण जी बोल रहे हैं।
1: हाँ दीदी, कैसी हो आप?
0: हम बिल्कुल ठीक है। कौन से गीत सुनेंगे आज लक्ष्मण जी?
1: आज गीत सुना दो नदी के पार का, सुना दो कौन दिशा में लेके चला रहे बटुरिया।
0: अरे वाह, क्या बात है, आज श्रोता बहुत अच्छे अच्छे गीत पसंद कर रहे हैं।
1: हाँ,
0: है ना, ये गाने जो है ये एवरग्रीन है।
1: हाँ, ये सदाबहार गीत है, सदाबहार सुनते रहो कभी भी
0: सुनते रहो, बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा भी मन कभी ऐसा अपना खराब हो या ऐसा कोई किसी काम में मन ना लग रहा हो, फिर ये गीत बजा दो तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगने लगता है ना।
1: हाँ, और आकाशवाणी में और इससे गीत बज जाते तो और खुश हो जाते हैं,
0: और खुश हो जाते हम।
1: हाँ,
0: तो लक्ष्मण जी सुनवाए हम आपकी पसंद का गीत आपको।
1: ठीक है दीदी, नमस्कार,
0: धन्यवाद आज हमें कॉल करने के लिए।
1: ठीक है।

0: हेलो हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रही हैं?
1: जसराम जाटव बोल रहे हैं मैडम, जोराई से। हाँ
0: जसराम जाटव?
1: मैडम,
0: अच्छा, कहाँ से?
1: जोराई से, जोराई से,
0: जोराई कहाँ
1: बिलासपुर
0: पड़ता है ये?
1: जिले में।
0: अच्छा, शिवपुरी जिले में।
1: हाँ मैडम,
0: अच्छा, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है मैडम।
0: बढ़िया है। तो आज कौन
1: हाँ,
0: सा गीत आपने सोच के रखा है कि हम रेडियो पर सुनेंगे? कार्यक्रम फोन करेगी सुने में।
1: हमको सुना दीजिए मैडम, धड़कन पिक्चर का कोई सा भी गाना सुना दो। हाँ
0: धड़कन फिल्म का कोई सा भी गीत सुना दूं?
1: कुछ
0: ठीक है जसराम जी, क्या करते हैं आप?
1: नहीं मैडम, घर पे ही रह।
0: घर पे रहते हैं तो। अच्छा, उम्र क्या है आपकी?
1: उम्र होगी हमारी मैडम 33।
0: अच्छा, तो फिर तो आप किसानी का काम करते होंगे, घर में हाथ बटाते होंगे, घर के काम में।
1: मैडम
0: अच्छा, अरे तब तो आप कीजिएगा, और कोई बात नहीं, बिल्कुल आपने आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिए, है ना? ऊपर वाले ने जो भी जैसे भी हमें बनाया है, हमें अपने कर्म अच्छे करना है ना?
1: हाँ मैडम, किससे बात हो रही है मैडम?
0: सरिता बोल रही हूँ, सरिता सिंह।
1: चलो ठीक है मैडम,
0: हाँ
1: आपसे तो
0: हाँ
1: मेरी एक बार और बात ही है।
0: हाँ हाँ हाँ बिल्कुल हुई है ना, है ना? ध्यान रखिएगा जसराम जी अपना, और बहुत खुश रहिएगा, और अपना कार्य अपनी लगन से करते रहिए, ऊपर वाला एक दिन सब ठीक कर देगा, है ना? ठीक
1: हाँ
0: है,
1: मैडम, ठीक
0: ओके।
1: है।

0: हेलो,
1: नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: नेपाल पेलिस सागर से तिलक राणा बोल रहा हूँ।
0: तिलक राणा जी?
1: जी मैं।
0: अच्छा जी, पहली बार बात हो रही है मेरी आपसे।
1: जी जी जी।
0: कितने पुराने और नियमित श्रोता हैं आप, है ना? हाँ, कितने पत्र पढ़े हमने आपके, अभी भी पढ़ते हैं।
1: हाँ मैम, आप मेरे पत्रों को प्राथमिकता देते हैं बराबर।
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप रेगुलर श्रोता हैं, आप नियमित श्रोता हैं, आप हमें हमेशा पत्र लिखते हैं। और मैं 15 साल से आकाशवाणी में काम कर रही हूँ, और आपके पत्रों का जो एक जो बना हुआ है आपका, लगातार आप पत्र लिखते हैं, बहुत खुशी होती है हमें। तो तिलक राणा जी, कौन सा गीत सुनेंगे आज के कार्यक्रम में?
1: मैम मुझे लहू के दो रंग का किशोर कुमार की आवाज में चाहिए, थोड़ा प्यार, थोड़ा प्यार चाहिए, वाला गीत मिल जाएगा?
0: हाँ, हम कोशिश करेंगे, मिल जाएगा। और इनकेस नहीं मिला तो आप हमें दूसरी फिल्म का नाम भी बता दीजिए।
1: अच्छा ठीक है मैम, ऑप्शन में भी दे देता हूँ मैं।
0: हाँ,
1: एक मुट्ठी आसमान,
0: एक
1: कभी कम न करना सनम, किशोर कुमार वाणी जयराम की आवाज में।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, हम कोशिश करेंगे कि पहले नंबर पे जो आपका जो गीत है वो हम आपको सुनवा दें।
1: दोनों में से कोई एक मिल जाए, क्योंकि दोनों गीत अच्छे लगते हैं।
0: आपने फिल्म का नाम क्या बताया? एक मुट्ठी,
1: एक मुट्ठी आसमान, किशोर कुमार और वाणी जयराम की आवाज में।
0: हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अच्छा, तिलक
1: कभी कम ना करना सनम, ये वाला।
0: हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
1: और वो लहू के दो रंग वाला किशोर कुमार की आवाज में।
0: हाँ हाँ हाँ, जरूर से। अच्छा तिलक राणा जी, क्या करते हैं आप?
1: मैं डॉक्टर हरी सिंह केंद्रीय विश्वविद्यालय में एनडीसी के पद पे कार्यरत।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: मगर सेवानिवृत्त हो गए।
0: अच्छा जी, सेवानिवृत्त हो गए
1: 24 में।
0: अच्छा अच्छा, सेवा
1: नहीं, 2024 में, सॉरी।
0: हाँ, 2024 में सेवानिवृत्ति के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और तिलक राणा जी, आज पहली बार बात हुई आपसे, आपके बारे में जानकर एक परिचय मिल जाता है तो बड़ा सुकून मिलता है कि हमारे श्रोता या ये कार्य करते हैं।
1: अधिकतर मेरा सब सिस्टर भोपाली।
0: अच्छा ठीक है,
1: मैंने भोपाल में 4 सिस्टर हैं, और भांजा भी बता रहा था कि मामा आपके बहुत आते हैं।
0: हाँ हाँ, भोपाल रेडियो स्टेशन पे भी आपके बहुत सारे पत्र आते हैं, और हम लगभग कोशिश करते हैं कि हर कार्यक्रम में जब भी हम पत्रों की बात करें तो सभी श्रोताओं के पत्र शामिल हो जाएं।
1: ऐसा है ना, हर कोई को तो ऐसा तो हो नहीं सकता, और भी तो श्रोता है ना।
0: हाँ हाँ, और भी श्रोता है, लेकिन फिर भी जो श्रोताओं के पत्र हैं वो कार्यक्रम में जरूर शामिल होते हैं। फिर आपने जिस कार्यक्रम में भी पत्र लिखा हो उसमें वो जरूर शामिल होता है। हम लोग ऐसा नहीं करते कि एक ही श्रोता के दो बार पत्र ले लें, हम अलग अलग श्रोता के ही पत्र शामिल करते हैं किसी भी कार्यक्रम में। जैसे आपकी फरमाइश कार्यक्रम है,
1: आपके यहाँ देर है, अंधेर नहीं है,
0: बिल्कुल भी नहीं है, और अब देर भी नहीं है। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं होगा कि हमने आपका पत्र शामिल नहीं किया है, अगर आया है तो।
1: फेसबुक से भी वो कर दिया आप लोग ने?
0: नहीं नहीं, फेसबुक से नहीं लेते अभी हम।
1: सुना है मैंने, क्या कहते ये ग्रामीण क्षेत्र का आता है ना।
0: हाँ, किसान बाड़ी
1: का। अच्छा, वो तो भोपाल का है ना।
0: हाँ, भोपाल का है, और उसपे सिर्फ अपने कार्यक्रम को, मतलब जो अपना एक जैसे कहते हैं कि श्रोताओं को ये जानकारी के लिए डाल देते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम आने वाला है उसके लिए। हाँ, तो तिलक राणा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके, बहुत खुशी हुई हमें। और अब हम आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का ये बहुत प्यारा सा गीत।

0: हेलो।
1: हाँ, मेरी प्यारी दीदी को नमन पहुंचे। मेरा मैं दमोह से गोपाल ठाकुर बोल रहा हूँ, बजरिया वार्ड 6 से।
0: गोपाल जी,
1: जी
0: कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ दीदी, आप ठीक हैं?
0: हम लोग बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं, आशीर्वाद है आप सभी का। और
1: माँ नर्मदा मैया से निवेदन करता हूँ दीदी कि आप लोग ठीक रहे, आपका पूरा स्टाफ ठीक रहे, क्योंकि आप लोगों से अच्छी अच्छी बातें, अच्छी ज्ञान की बातें, एक से एक बातें मिलती हैं,
0: हाँ जी,
1: तो बड़े प्रसन्न होते हैं दीदी। 6 बजे से चालू करते हैं तो रात के
0: हाँ
1: 10 बजे मोबाइल बंद होता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस प्यार के लिए, इस नियमितता के लिए, है ना, क्योंकि हमारे रेडियो श्रोता ही हमारा मनोबल है
1: हाँ
0: ना
1: दीदी,
0: जी।
1: बहुत
0: तो
1: दिन बाद आपसे बात हो रही है।
0: हाँ, बहुत दिनों बाद बात हुई मेरी आपसे। आज बहुत सारे ऐसे श्रोताओं से बात हुई मेरी, जिनसे मेरी काफ़ी लंबे समय बाद बात हुई। तो गोपाल जी, आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: दीदी मतलब कौन सा प्रश्न है?
0: फोन करें गीत सुने आप, आज का कार्यक्रम
1: अच्छा
0: है।
1: अच्छा फोन करें गीत सुने
0: हाँ, गीत का नाम बता दीजिए, फिल्म का नाम और गीत के
1: दीदी,
0: बोल।
1: हेना फिल्म को सुना दो।
0: हाँ, हिना फिल्म का बिल्कुल सुनवा देंगे हम आपको, कोई सभी गीत सुनवा दें,
1: जी,
0: ठीक है। तो गोपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फोन लगाने के लिए आपको।
1: हाँ दीदी, मेरा नमन पहुंचे आपको।
0: आप सभी को भी मेरा सादर नमस्कार।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने को अब यहीं पर संपन्न करने की इजाजत दीजिए अपनी दोस्त सरिता को। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, प्रस्तुति सरिता सिंह की थी। प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से किया गया।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत सुभाषित साझा करते हुए कहा कि अच्छा स्वास्थ्य जीवन के चार लक्ष्यों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति का मुख्य आधार है। आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित कर दी गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास सेवा पखवाड़े के अंतर्गत सेवा भावना, सामुदायिक भागीदारी और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। दुबई के प्रतिष्ठित दुबई फ्रेम के पास कल विकसित भारत रन 2026 का आयोजन किया गया। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत सड़क चौड़ीकरण का काम तेजी से चल रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल पूजा अर्चना के बाद अब्दालपुरा स्थित अपने पैतृक मकान पर खुद गैती चलाकर इसे तोड़ने की शुरुआत की। महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शिवपुरी में आज राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोग द्वारा विशेष जनसुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। और 2026 एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। जापान के आईची नागोया में मैच खराब मौसम के कारण रद्द कर दिया गया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला नेपाल और श्रीलंका के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए गहरा दाग फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। गीत लिखा है शकील बदायूनी ने, संगीत रवि का है और इस गीत को सुनने के लिए हमें पत्र मिले हैं कवाई सालपुर जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव। ग्राम सनोतिया जिला गुना मध्य प्रदेश से इसी पत्र में नाम हमें जो दिखाई दे रहे हैं वो है मांगीलाल चंदेल, अरविंद अशोक, राजकुमार और हिमांशु। इसी गीत को पसंद किया है गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित सहित कान्हा जी आर्य। और धामणी मानोरा से तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश डेरे, आदेश डेरे, किरण डेरे और प्रज्वल डेरे के साथ अनुत डेरे। ये इन सभी फरमाइश कर्ताओं की पसंद है गहरा दाग फिल्म का ये गीत।

तलाश फिल्म का गीत हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर आपको सुनवाने जा रहे हैं। बेरड़ी से हुकुम करमकर, सुनीता करमकर, हार्दिक करमकर, प्राची और तनु करमकर, नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन, और प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से ये फरमाइश इसी गीत के लिए हमें मिली है। और ये श्रोता है बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा। तलाश फिल्म का ये गीत है जिसे अपनी आवाज़ से सजाया है लता मंगेशकर ने। गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत एसटी वर्मन का है।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। श्रोताओं आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। इसे ये गीत हमने लिया है मन मंदिर फिल्म से और इस गीत की फरमाइश मिली है पालदा नाका इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और बबलू मंसूरी। सपना संगीता रोड इंदौर से ये हमारे श्रोता है लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तान्या। बेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर, श्रीमती सरिता गवाड़कर, प्रिंस एकांश, वैशाली, शैलेश, श्वेता, सुमित गवाड़कर, कुमारी ध्वनि, ये है बहादुरा नागपुर से और बदलापुरा मुंबई से सिद्धांत गवाड़कर, प्रणीता और लाडरा टुक टुक गवाड़कर। और इसी गीत को पसंद किया है थाना रोड बस्तर से, बक्सर से ज्योत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष, आयुषी और सानवी।

लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में अब आपको सुनवा रहे हैं योगेश का लिखा गीत। एस डी वर्मन ने इसकी धुन बनाई है और फिल्म का नाम है मिली। इस गीत को सुनना चाहा है सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या और करिश्मा कामले। और इसी गीत को सुनना चाहा है डब वाली हंसिया से जेके बोकाड़िया, श्रीमती सुनीता बकोड़िया, संजय अनिल, मीनू बोकाड़िया। तो इन सभी श्रोताओं की पसंद पर मिली फिल्म का ये गीत।

और कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं गीत फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को शुरू में ढाला है कल्याण जी आनंद जी ने और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है छाबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो। इंदौर से ये हमारे श्रोता है कुमारी वंदना मराठा, भाऊ मराठा, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, भाऊ मराठा, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, परी संजना मराठा और वंदना नगर इंदौर से ही ये हमारे श्रोता है। रेखा संतोष रघुवंशी, शुभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र, पूजा विक्की, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, ललिता नारायण खर्चे और ये पत्र है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया का। लेवा खेल मोहल्ला चांदूर बीसवा से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, खुशी वाणी और सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज। इन सभी श्रोताओं की पसंद पर गीत फिल्म का ये गीत।

गीत फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। इसी के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है एक अंतराल का।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी,
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए कार्यक्रम संग्रहालय से। इसके अंतर्गत इन दिनों आप सुन रहे हैं पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की कहानियों का रेडियो संग्रह। आज की इस श्रृंखला में आप सुनेंगे 10वीं कड़ी, कहानी है मोहब्बत का रंग।

0: इस नाटक का एक पात्र भोला है, उसके बारे में बाद में बताएंगे, पहले उसका हुलिया जान लें।
1: छरहरा जवान, गोरा बदन, चेचक के दाग, कानों में सोने के तो बहुत पतले बाले पड़े हुए, आंखों में कल रात काजल लगाया था जो अभी दूसरे दिन के तीसरे पहर तक धुला नहीं था, और मांग पट्टी के बाल,
0: हाथ में चांदी की एक कांच का टुकड़ा लगी हुई अंगूठी,
1: कुछ गुस्सैल स्वभाव, मानो सारा संसार उसके रूप की हाट में रहन रखा हुआ हो, गर्व से कुछ बनकर कुछ मटक कर चलने की आदत,
0: आदमी होकर जरा में चिढ़ पड़ने और थोड़े में रो पड़ने की आदत, झट से चमक उठने का स्वभाव,
1: अपनी औरों पर की हुई भलाई की लंबी फहरिस्त, बनकर सज धज कर बीच सड़क से निकलने का स्वभाव,
0: विदेशी व स्वदेशी और सर्वदेशी के भाव से परे बिल्कुल ठेठ देशी, पतली लाल किनारेदार पर दाहिने घुटने पर पैबंद वाली धोती, कुर्ता जरा कुछ मैला सा पर सफेद मलमल का, जिसके नीचे लाल रेशम की जैकेट, सफेद कुर्ता मैले से और रेशम की झांकी से संयुक्त झाई खाकर सफेद कम दिखे, बैंगनी ज्यादा,
1: पान ठूस कर खाने, उसकी लाली की उंगलियां दीवारों पर पहुंचने और उससे बिगड़े ओंठ कुर्ते से संभाल कर पहुंचने की दक्षता, सिर पर पाग जरा टेढ़ी, बनक कुछ इंदौरी, रियासत अनुराधापुर के निवासियों के सिर पर प्रायः ऐसी ही पाग होती है।
0: पाग का रंग मोतिया, पीलेपन की झाई मारता हुआ,
1: दांतों में सोने की कीलें, हाथ में उंगलियों की पोरों पर मेहंदी लगी हुई, प्रश्न पूछने पर गुर्रा कर घूरने, उपेक्षा से जवाब देने और फिर शर्मा जाने का लहजा,
0: हाथ में बुंदेलखंडी लाठी, सीधी सादी पीली लाठी जिसमें ऊपर सूत का श्रावण की राखी फैशन का रंगीन बुंदा लगा हुआ और बीच बीच में चमड़े के बंद लगे हुए,
1: ठिगना कद, उम्र को छिपाने का संयुक्त हथियार सा, देखने में गुस्सा किंतु बोलने में मुस्कुराहट, मानो सतपुड़ा की इन घाटियों के बीच कोई समथर जमीन ही ना हो जहां स्टेशन बन सके और आदत की गाड़ी ठहर सके,
0: गुलेल रखने और उसे अपनी नजर की ही तरह बेगुनाहों पर छुपकर आजमाने की कुछ सफल और अधिक असफल आदत,
1: कपड़े रंगने और उन्हें संवारने की अच्छी थ्योरेटिकल जानकारी, हाँ कपड़े रंगने की जानकारी मगर काम तेल निकालना, नाम भोला वल्द बच्चू, साकिन अनुराध

0: अनुराधापुर राज का अनुराधापुर शहर।
1: इसी अनुराधापुर में रमजान का कपड़ा रंगने का काम। दिन भर में रंगीन पानी की हौज में कभी ये कपड़ा डुबोना, कभी वो।
0: रमजान को नवाब साहब की पागें रंगने का भी काम मिला हुआ था, इससे उन्हें कुछ आमदनी हो जाती।
1: नसीबन रमजान की पत्नी सीधी सादी नेक औरत।
0: भोला उस दंपत्ति का मुंह लगा हुआ, वो भी उसे बेटा मानते। उसकी एक जिद पर ही तकरार हो रही थी।
1: जरा संभल कर सोचते हुए और अपना हक आजमाते हुए नसीबन ने रमजान से कहा,
2: तो सुस्ती किस बात की आती है, ये तो बताओ।
3: अरे तुम तो वैसी हो बेल जैसी, देर देखा ना बबूल सर चढ़ने को दौड़ पड़ी।
2: अरे जो लिपटता है वो ही तो सर चढ़ेगा। कांटे से बदन टकवाना कोई यूं ही अपना रोजगार बनाएगा क्या? 10-20 चुभने वाली बातें सुनते हो और फिर लंबी सफेद दाढ़ी हिलाकर मुस्कुरा देते हो।
3: अरे
2: इस सिर चढ़ाने का तुम ही न्योता देते हो। अरे हाँ जानते हो, आखिर लड़का है। उस्मान जब से गुजरा है तब से भोला को मुंह लगा रखा है, लेकिन आज जरा सी बात पर उसे नाराज करते हो। अरे खिलौना तुम ना लाकर दोगे तो कौन लाकर देगा?
1: बात भोला के बारे में ही हो रही है।
0: रमजान रंगरेज है, नसीबन उसकी स्त्री है रंगरेजन। उनके एक ही इकलौता लड़का था उस्मान। कोई 11 बरस हुए, वो 8 बरस की उम्र में गुजर गया।
1: उस्मान के मरने के बाद रमजान की तबीयत कहीं नहीं लगती थी। वो कपड़े रंगता तो हौजों में बने रंग की तरफ ही देखता रहता और तीसरे पहर से शाम हो जाती। रंगे कपड़े सुखाते समय दरख्तों की तरफ देखता तो दरख्तों, उनकी डालियों, उनके पत्तों और दरख्त पर बैठे पक्षियों की तरफ ही देखता रह जाता।
0: पुत्र शोक एक ऐसा नाला है जो उतरती उम्र के रमजान से लांघा न जाएगा।
1: नसीबन ने रमजान की याद के पैर रखने और संकट के आर पार आने जाने के लिए एक सजीव बुत ढूंढ दिया। ये था बच्चू तेल निकालने वाले का लड़का भोला। बड़ी बड़ी आंखें, गोरा बदन, कोई 10-11 बरस की उम्र। रमजान से बाबा कहता और मोहल्ले में यदि कोई उसे डांटता तो रमजान से आकर लिपट जाता। एक खूंटे से बंधते बंधते पशुओं को घर और घर वालों से मोहब्बत हो जाती है। भोला तो फिर आदमी का बेटा था।
4: अब मैं 20 वर्ष का हो गया हूं। मैं जब भी बाबा से बोलता हूं तो न जाने कैसे मेरी भाषा अधिकार की हो जाती है। उन पर मेरा खूब अधिकार चलता है और वो मेरे लिए सगे से बढ़कर हैं।
3: भोला से मेरा खूब हंसी मजाक होता है। मैं खूब दिल्लगी करता हूं, खूब हंसी ठट्टा होता है। भोला की बेवकूफ भरी बातों को हंसी मजाक से टालने में बड़ा सहारा मिलता है। देर से की जा सकने वाली बातों को जल्दी से करने की जिद करने पर देर लगाने के लिए समय निकल ही आता है।
0: भोला को उसके एक दोस्त ने न्योता दिया है कि अनुराधापुर रियासत से लगी विशाखापुर रियासत के एक गांव सोना माटी में वो अपने दोस्त की बारात में जाए।
1: तारुण्य, बारात में जाना, मित्र का न्योता, समाज में कुछ हूं दिखाने की साध और खूबसूरती, इन सब के साथ अगर हो चरम दारिद्र्य तो वो गांव खेड़ों की खून से खानी और बदन पर मांस रखने वाली तरुणाई को मौत के घाट ले जाने तक विद्रोहिणी बना डालता है।
0: भोला अपने चाचा के यहाँ रहता था। उसके न माँ थी न उसका बाप था, नसीबन ही उसकी अम्मा थी और रमजान उसका बाप। अधिकार की ये बुरी आदत है कि वो अपनी मर्यादा सदा ही लांघता आया है। आज रमजान से भोला ने बड़े अधिकार से कहा,
4: बाबा बाबा आज हमारी पंगिया रंग दो। हाँ हमें बारात में जाना है।
3: अरे वारे लाठ साहब के बेटे, न ढंग के कपड़े न पैरों में जूतियां, पगिया रंग दो। वाह भाई वाह। अरे पहले ढंग के कपड़े और जूतियां तो ले आ, फिर रंगाना पाक।
4: ऐसा मत कहो ना बाबा, अब जूतों पर देखो तेल देकर रख दिया है। रेशम की जैकेट पुरानी है तो क्या बुरी है। हाँ वो मलमल का कुर्ता मेला है, उसे मैं धो दूंगा। ना हो तो उसे भी रंग दो ना बाबा।

0: रंग दो रंग दो। अरे कभी कहता है पाग रंगवानी है, कभी कहता है कुर्ता रंगाना है। अरे लाट साहब, शादी तेरी है या तेरे दोस्त की? ब्याह में रंगा कुर्ता तो दूल्हा पहना करता है मेरे भाई, तेरा कुर्ता कैसे रंग दूं? बारात में जाकर तू दुल्हनिया मांगने लगेगा। हाँ
1: देखा ना अम्मा तुमने, आज बाबा मेरी बात का पैर भी नहीं जन्म दे रहे हैं, मेरी कोई बात नहीं मान रहे हैं वो।
0: अरे तेरी बात के पैर न सिर जमे तो कौन जमे और कैसे जमे?
2: अच्छा ठीक है, कुर्ता ना रंगो, वो दूल्हे का ही रंगा रहने दो, पर पगिया तो इसकी रंग दो। जा बेटा जा, अपनी पाग ले आ।
3: पुरुष पर स्त्री के अधिकार की बात पर मानव जन्म से ही विश्वास करता है। भोला तो उम्र की 20वीं 21वीं सीढ़ी पर था। रमजान जरा खांसा, फिर उसने अपना मुंह अपने गले पर पड़े गमछे से पोंछा और हुक्के की गुड़गुड़ी मुंह में लेकर धीरे धीरे इस तरह गुड़गुड़ाने लगा मानो जाड़ों के दिनों में देर से लौटकर आया हुआ कबूतर अपने घोंसले में अपने परिवार को पंखों में दबा प्यार से गुरगुरा रहा हो।
4: बचपन में एक स्वस्थ बच्चा अनेक बड़े आदमियों की दौड़ और फुर्ती अपने में रखता है।
3: भोला अपनी पाग लेकर आ गया और उसे रमजान के पैरों पर रख दिया, मानो वो उसकी आत्म मर्यादा हो जो पगिया रंगवा लेने के लिए रिश्वत की तरह पैरों पर बिखेर गया हो।
4: रमजान ने पाग समेटे और उपेक्षा से नसीबन की तरफ फेंकी।
0: ये 8-9 जगह फटी पगिया है, उसे महज अच्छा रंग देने से वो इस बेटे को ब्याह में रंगीला दिखने वाला छेला नहीं बना सकती।
1: देखो ना अम्मा, बाबा कैसी बातें करते हैं।
2: अरे ठहर, जरा ठहर तो। अरे आंसुओं के रंगने से ये पाग रंगीन होने से तो रही, इसे तो रंग में ही रंगना होगा। अच्छा बता, कौन सा रंग चाहिए तुझे पाग का?
1: बनिया बैठने तो देता नहीं और कहे झुकता सा तौलना। अरे बाबा कुछ बोलो भी तो।
0: अरे तो बाबा के बेटे, आज तो रंग तैयार नहीं है, रंग को तैयार करने में 24 घंटे लगेंगे। वक्त की घड़ियां भी कोई बिस्तरा है जिसे जब चाहा लपेट दिया और जब चाहा फैला दिया। अरे तेरी अम्मा क्या हुई के
2: अजी, मैंने तो अभी कुछ भी नहीं कहा। अरे ये चीनी मिट्टी की माट में रंग तैयार जो रखा है
0: वो मोतिया रंग है।
1: मुझे तो मोतिया रंग की पाग चाहिए, इसी रंग में ही पाग रंग दो ना बाबा।
2: हाँ हाँ लो अब रंग लो, बच्चा कितना मिन्नतें कर रहा है।
0: अरे लड़का भोला है मगर तुम तो नन्नी नहीं हो, जानती हो वो चीनी मिट्टी की बात है, रियासत के फरमा खा की पाग रंगने के लिए रंग तैयार किया गया है। घोड़ा बादशाह का ही देना है और कल्लू मोदी अपनी खुजड़ी उस पर रखकर दौड़े, अजब मसला है भाई। भोला को बारात में क्या जाना है, तुम्हें उसे सिंगारने के लिए चारों खूट जागीर भी छोटी मालूम होती।
4: नसीबन ने रमजान की बात अनसुनी करते हुए भोला की पगिया उठाई और पानी में भिगोने लगी।
1: अम्मा अम्मा, एक तो मैं पगिया मोतिया रंग में रंगवाऊंगा और दूसरे बाबा मेरी पाग वैसे ही बांध कर देंगे जैसे नायब साहब की पागे बांधा करते हैं। हाँ। हाँ। और तीसरे स्वयं बाबा रंगेंगे तो पंगिया रंगी जाएगी, हाँ नहीं तो भोला बारात नहीं जाएगा। हाँ
4: संधि की शर्तें रख दी गईं। बूढ़ा रमजान अपना निर्मल हास्य बिखेर कर बोला,
0: वाह वाह वाह वाह वाह, बादशाह सलामत की पांगे तो भुनसारे रंगी जाएंगी और तेरी पहले रंगी जानी चाहिए। ये क्या मजाक करती हो, ये पगिया कैसे रंगी जाएगी भाई?
2: अरे नवाब साहब की पगिया तो जिंदगी भर रंगी है और जिंदगी भर रंगोगे, क्या उस रंग में एक डोब किसी गरीब की पगिया को नहीं मिल सकता? आखिर नवाब साहब की पागे भी तो तुम ही ने बंधी बंधाई डिब्बों में बंद करके दी हैं। तो क्यों ना तुम एक पाग इस छोरे का भी उसी ढब पे बांध दो।
0: ओफो, औरत की जात हो ना, क्या जानो नमक की कीमत और रोटी के हीले को। मैं तो रईस के पाग के रंग में भोला की पाग नहीं डुबूंगा, नहीं डुबूंगा।
1: देखो ना अम्मा।
2: जा रे बेटा, बिना माँ बाप के छोरों को पाग रंगाते वक्त रंगरेज भी ये मालूम करा देना चाहता है कि वो बिना माँ बाप के हैं और गरीब हैं। गरीब गरीब को दुत्कारे और अमीर अमीर किसे कहे, इसे ही दुनिया कहते हैं बेटा।

0: भोला के मुंह को लकवा मार गया। गीली पाग नसीबन की दहली पर ही पड़ी छोड़कर वो चुपचाप चला गया।
1: लड़की की आंखों में गुस्सा भरा था।
2: गुस्सा किस पर करेगा अभागा? बताओ, तुम ही बताओ कि किस पर करेगा बेचारा।
1: अरे क्यों करेगा गुस्सा?
2: अरे पूछते हो क्यों करेगा गुस्सा? पगड़ी पीछे 12 आने ही तो मिलते हैं। इन पैसों से भी क्या भोला महंगा है?
1: ये रंग रियासत के नवाब फरमा खां की पाग रंगने के लिए तैयार किया गया है। उसके रंग में मैं इसकी पाग कैसे डुबो दूं?
2: कैसे डुबो दूं? अरे वैसे ही जैसे जरूरत पड़ने पर अपने बेटे उस्मान की पाग डुबो देते थे।
1: उस बार
2: सुनो, भोला ने तुमसे उस्मान का दुलार पाया है तो आज पाग रंगवाने और बंधवाने कहाँ जाएगा बेचारा?
1: ठीक कहती हो तुम।
3: दलील वजनदार थी, हाईकोर्ट का फैसला था, दावा मैं खर्च के स्वीकृत हो गया। अनुराधापुर के रईस सोनामाटी के पास के अपने रियासत के गांव गोलनडोह से शिकार करके लौट रहे थे। नवाब फरमा खां साहब के साथ धारनीगढ़ के राजा शार्दुल सिंह, दो शिकारी, दो सरदार और एक घुड़सवारों की टुकड़ी थी।
0: जब मोहनपुर के नाले से सरकारी सवारी गुजर रही थी तब बैलगाड़ियों के पास खड़े लोगों के झुंड के बीच एक गोरे से छोकरे को उन्होंने ठीक अपनी सी पाग बांधे देखा। पाग का बांध वही था, बनक वही थी, पेच वैसे ही कसे थे, रंग भी वही था। नवाब ने अपने सिर से पाग उतारी और देखा, ये रईस की पाग थी जो सर से उतर रही थी। दोनों को मिलाया।
3: दो पागें, एक भीड़ में खड़े किसी खूबसूरत उठाईगिरे की और दूसरी नवाब की। दोनों आपस में अगर राई बढ़ती न थी तो तिल घटने के लिए भी तैयार न थी। दुखती चोट, अनहोनी और दुर्भाग्य मानो ऐसी चीजें हैं जो होकर रहें। जब नवाब ने अपनी पाग उतारी तब भोला मुस्कुरा दिया। 2 घंटे के बाद ज़िबह होने वाले जानवर भी हरी घास को बड़े चाव से खाते हैं।
0: एक सिपाही घोड़े से उतरा, उसने नाले की घाटी पर चढ़ती हुई बैलगाड़ियों को रास्ते में रोका।
4: ए, रुको।
5: जी।
0: अब इसके बाद से पूछताछ शुरू हुई। सिपाही शीतल सहाय ने कड़क कर पूछा,
4: जो पूछते हैं ठीक ठीक बताओ।
5: जी।
4: किस गांव की बारात है?
5: अनुराधापुर की बारात है गरीब परवर।
4: क्या काम करते हो?
5: जी, मेरे पिताजी तेल निकालने का काम करते हैं, यही हमारी रोजी रोटी है।
4: क्या पेशा करते हो?
5: अपना ही पेशा, तेल निकालते हैं, बेचते हैं, यही हमारा पेशा है गरीब परवर।
0: फिर मोतिया पाक के छैल छबीले की तरफ घूमकर सिपाही पूछने लगा,
4: तू कहाँ रहता है बे लड़के?
6: वहीं अनुराधापुर में रहता हूँ गरीब परवर।
4: किसका लड़का है बे तू?
6: मेरे माँ बाप नहीं है, चाचा के साथ रहता हूँ।
4: क्या नाम है तेरा?
6: भोला।
4: बाप का नाम?
6: बच्चू।
4: तेरा बाप क्या करता है?
6: अभी बताया था ना गरीब परवर, मेरे माँ बाप नहीं है।
4: तेरी पाक किस रंगरेज ने रंगी है बे?
6: रमजान बाबा ने।
0: सिपाही ने चट से भोला के सर से पाग उतारी। एक सा रंग, एक सी बनक, एक सी सुंदरता वाली, पर ये गरीब की पाग थी जिसे सिर से सदा के लिए उतारते हुए भी सिपाही के हाथ में झिझक की जगह न थी। सिपाही ने घूर कर लड़के को इस तरह देखा मानो खा जाएगा।
3: भोला सहम गया।
7: अरे कोई है? कोई है इधर? सिपाही शीतल सहाय को बुलाओ।
8: सलाम हुजूर।

0: आपने बुलाया?
1: उस लड़के ने किस रंगरेज का नाम बताया था?
0: जी वो रमजान रंगरेज। हुजूर, ये वही रंगरेज है जो आपकी पागे रंगा करता है।
1: अच्छा
0: हाँ,
1: जाओ और जाकर उसे पकड़ कर लाओ।
0: जी,
1: और अगर आने में आना खानी करे तो कोड़े मारते हुए लाना।
0: जो हुक्म हुजूर का। रमजान, ओ रमजान।
2: अरे शीतल साहब जी, आदाब।
3: आदाब आदाब।
2: आइए यहाँ खाट पर तशरीफ रखिए।
3: अरे ये बैठने बिठाने का समय नहीं है।
2: अरे बैठिए भी सरकार, देखिए कितने पसीने से तरबतर हो रहे हैं। मटके का पानी पी लीजिए हुजूर।
3: रमजान बब्बा जल्दी चलो वरना अनर्थ हो जाएगा।
2: अनर्थ हो जाएगा? सरकार ये क्या कह रहे हैं आप?
3: हाँ हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। मुझे हुक्म है कि तुम्हें जल्दी ही दरबार में हाजिर कर दूं।
4: क्या नवाब बहादुर साहब आ गए हैं?
3: हाँ, अभी अभी शिकार से लौटे हैं और तभी से उनके तेवर चढ़े हुए हैं।
2: जी, हमारे नवाब साहब बड़े नामी हैं। परसों उन्होंने मेरी रंगी और कसी पागे देखी होंगी तो तबीयत बहाल हो गई होगी उनकी।
1: रमजान बब्बा, इस बार पागों की रंगाई नहीं मिलेगी।
2: सरकार ये क्या कह रहे हैं आप?
1: इनाम मिलेगा इनाम। हाँ, धारनी गढ़ के राजा साहब इन पागों की रंगाई बधाई देखकर बाग बाग हो गए हैं, बहुत खुश हैं। हाँ, खलाकर इनाम ले जाना अपना।
2: उसी इनाम का बुलावा आया। दिखे शीतल सहाय जी, आप तशरीफ रखें, मैं अभी चलता हूं।
3: देरी मत करो, सरकार ने जल्दी ही याद किया है। चलो, धारनीगढ़ के राजा साहब भी वहीं पर हैं।
5: रमजान ने मिर्ज़ई पहनी, वो उसके पास ईमान की तरह एक ही थी, और दाढ़ी पर हाथ फेरकर वो अपनी पेट की लाचारी से बंधे हाथों चल पड़ा महल की तरफ।
6: फरमा खां कुर्सी पर बैठे थे और एक टेबल पर सजा कर छह पागे रखी गई थी। कहना ना होगा कि छह पागों में से रईस की एक पाग हटा दी गई थी और भोला के सिर से उतारी हुई पाग इनमें मिलाकर रख दी गई थी। धारनीगढ़ के राजा शार्दुल सिंह भी वहां पर आ गए।

0: आइए महामहिम, आइए शाही तख्त पर बैठिए।
1: धन्यवाद। हाँ, ये मेज पर क्या सजा रखा है?
0: महामहिम, ये 6 पागे हैं।
1: ओ,
0: जिन्हें रमजान ने रंगा है और बांधा है। और ये अलग दिख रही पाग उस लड़के भोला की है, उसे भी रमजान ने रंगा और बांधा है।
1: बिल्कुल एक जैसा रंग, एक जैसी बांध, बनक एक जैसी, पेंच भी एक जैसे कसे हुए।
0: अब ये तो होगा ही महामहिम, क्योंकि इन्हें रंगने और बांधने वाला भी तो एक ही है।
1: लेकिन नवाब साहब, ये तो हद हो गई। एक रंगरेस जो नवाब साहब की पागे रंगता है, उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो आपकी प्रजा की भी पागे रंगे, वो भी उसी रंग में। ऐसी हिमाकत पर तो उसे संगीन सजा मिलनी चाहिए।
0: जी महामहिम राजा साहब, आने दीजिए कम वक्त रमजान को, खाल उधेड़ कर रख दूंगा।
1: उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई?
0: राजा साहब, ये तो जब वो आएगा तभी पूरी बात का खुलासा हो सकेगा।
1: किसको भेजा है बुलाने?
0: उसी सिपाही को।
1: वही जिसने रास्ते में उस लड़के से पाक के बारे में पूछताछ की थी?
0: जी महामहिम, उस सिपाही का नाम शीतल सहाय है और वो रमजान का घर जानता है।
1: ठीक है,
2: हुजूर को सलाम पेश करता हूँ। राजा साहब को प्रणाम।
0: आने में देर कैसे हुई?
2: हुजूर देरी नहीं की खादिम ने, आने में जो वक्त लगा बस वही हुआ सरकार।
0: ये सब पागे हमारी ही है ना रमजान?
2: आप ही की दिखती हैं हुजूर, 6 पागे ही तो परसों रंगकर खादिम ने पेश की थी।
0: तब तो तुम चोर हो, बदमाश हो तुम।
2: जी, रमजान ने हुजूर का नमक खाया है सरकार, उसकी पीढ़ियों में बेईमानी नहीं की।
0: उस भोला के बच्चे ने क्या धुलाई दी थी तुम्हें?
2: हुजूर, वो तो एक छोटा सा बच्चा है।
1: नवाब साहब, आपका ये रंगरेस आपको भी छोटा

0: छोटा बच्चा समझता है और बहलाने की कोशिश कर रहा है आपको।
1: बेईमान, साफ साफ बता, भोला की पाक का रंग और भनक दरबार की पाक के रंग की क्यों है?
2: खता माफ हो सरकार, भोला मेरे मेरे बेटे की तरह है। खता माफ हो सरकार, ये नमक का रोटियों का रंग है सरकार, और वो मोहब्बत का रंग है।
1: मोहब्बत का रंग? हराम जादे।
3: सरकार
1: ले, तुझे शायरी का मजा चखाता हूँ।
0: भारी है, और भारी है।
1: ये ले
3: सरकार।
1: या
3: सरकार,
1: ये ले।
4: रमजान ने छत की तरफ देखा, मानो शैतान के घर में खुदा को ढूंढ रहा हो। सिर ऊंचा किया, मानो प्रेम सर्वनाश के समय भी दामों से ऊपर खड़ा रहना चाहता हो।
3: सरकार, सरकार माफ करो गरीब गरीब परवर, गरीबों को बेटे बेटी समझे अन्नदाता। सरकार,
4: रमजान खड़ा रहा। महल के पत्थर पिघल उठना चाहते थे। सारे अधिकारी मानो सोचते थे कि आज राजधानी के सुहाग इंसाफ पर हंटर पड़ रहे हैं।
5: बिकी जीभ और कायर कलेजों वाले इस मंजर को लोग टुकुर टुकुर देख रहे थे।
1: चोर, हमारी पाक चुरा कर उस भोला के बच्चे को दे दी। निकल यहां से, निकल
3: जी।
5: रमजान को धक्के मार कर निकाल दिया गया था। उसकी मिर्जई खून से लथपथ हो गई थी। रमजान अनुराधापुर की सड़क पर इस तरह जा रहा था मानो हिमालय शिखर से ठुकराया हुआ शिला खंड है जो गंगा बनाता चला जा रहा हो।
6: मैं सबसे पहले बाबा को बताऊंगा कि पुलिस वालों ने मेरी पाक छीन ली है। कितने गंदे होते हैं ये राजा और उनके नवाब, गरीबों को पाक भी नहीं पहने देते। अरे क्या हो गया जो मेरी पाक का रंग उसकी पाक के रंग जैसा था? बनक भी वैसी ही थी, पेच भी वैसे ही कसे हुए थे, तो क्या हो गया? सब गंदे। बाबा बाबा बाबा, दरवाजा खोलो, मैं हूं भोला।
7: तू आ गया भोला?
6: अम्मा, बाबा कहाँ हैं?
7: वो तो राजमहल गए हैं। दरोगा शीतल सहाय उन्हें बुलाने आए थे। कह रहे थे कि धरनीगढ़ के राजा साहब को पागों की रंगाई बहुत भाई है और नवाब साहब ने भी बहुत तारीफ की है, इसीलिए वो पागों की रंगाई नहीं बल्कि इनाम देंगे। अरे तेरी पाग कहाँ है?
6: नवाब और राजा साहब के सिपाहियों ने छीन ली है।
7: क्या?
6: मुझे तो बाबा की चिंता हो रही है, मैं राजमहल जा रहा हूँ अम्मा।
7: अरे अरे रुक तो सही।
6: नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ।
7: अरे मैं भी चल रही हूँ।
4: भोला ने नसीबन की बात अनसुनी कर राजमहल की ओर तेज दौड़ लगा दी। रास्ते में लड़खड़ाता, कराहता, आंसू और खून साथ साथ टपकाता रमजान मिल गया। उसे खून से लथपथ देखकर भोला उसके पैरों में लिपट कर रोते हुए बोला,
3: नहीं बेटा, बेटा रोते नहीं।
8: ये क्या है बाबा?
3: रोते नहीं बेटा, नहीं रोते नहीं बेटा।
8: ये क्या है बाबा?
3: बेटे ये तो मोहब्बत का रंग है, ऐसा ही हुआ करे है बेटे मोहब्बत का रंग। रोते नहीं बेटा,
8: चल। नहीं बाबा नहीं।
3: चलो घर चले बेटा, चल, चल आओ मेरे लाल।

0: संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की कहानियों की रेडियो प्रस्तुति का 10वां भाग। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत सुभाषित साझा करते हुए कहा कि अच्छा स्वास्थ्य जीवन के चार लक्ष्यों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति का मुख्य आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 46वें शतरंज ओलंपियाड में नोना ग्रैपेंडाश्विली ट्रॉफी बरकरार रखने पर भारतीय शतरंज खिलाड़ियों को बधाई दी है। आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित कर दी गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास सेवा पखवाड़े के अंतर्गत सेवा भावना, सामुदायिक भागीदारी और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। दुबई के प्रतिष्ठित दुबई फ्रेम के पास कल विकसित भारत रन 2026 का आयोजन किया गया। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत सड़क चौड़ीकरण का काम तेज हो गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल पूजा अर्चना के बाद अब्दालपुरा स्थित अपने पैतृक मकान पर खुद गेंती चलाकर इसे तोड़ने की शुरुआत की। इंदौर में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान अलंकरण समारोह में आज सुविख्यात संगीत निर्देशक शांतनु मोइत्रा को राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2026 से अलंकृत किया जाएगा। और 2026 एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। जापान के आईची नागोया में मैच खराब मौसम के कारण रद्द कर दिया गया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला नेपाल और श्रीलंका के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की है।

आज के कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण में प्रेक्षा सक्सेना का प्यार भरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। श्रोताओं, आज है 28 सितंबर और आज ही के दिन हर वर्ष विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। यह दिन लोगों में रेबीज जैसी जानलेवा और संक्रामक बीमारी और टीकाकरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। श्रोताओं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार रेबीज के कारण विश्व में हर साल लगभग 59,000 मौतें होती हैं। भारत के लिए यह संख्या लगभग 5,726 है। ये बीमारी संक्रमित पशु के काटने या खरोंचने से फैलती है, लेकिन समय पर सावधानी और उचित उपचार से रेबीज से बचाव संभव है। अगर किसी कुत्ते या अन्य संदिग्ध संक्रमित पशु ने काटा है तो घबराए नहीं, घाव को तुरंत साबुन और बहते पानी से अच्छी तरह धोएं और बिना देर किए स्वास्थ्य केंद्र जाकर चिकित्सकीय परामर्श लें। डॉक्टर की सलाह के अनुसार रेबीज का टीका और अन्य आवश्यक उपचार कराना बेहद जरूरी है। साथ ही अपने पालतू कुत्तों और बिल्लियों को नियमित टीकाकरण करवाएं और बच्चों को भी पशुओं के साथ सुरक्षित व्यवहार करना सिखाएं। सावधानी बरतें, समय पर उपचार लें और दूसरों को भी जागरूक करें। और अभी सुने ये प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओं, आंखें हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, तो कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं आंखों की सेहत देखभाल और बचाव विषय पर नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अवधेश गोयल से मनीष गजभिया की बातचीत, सुनिए।
1: तो आंखें हमारे शरीर का एक बेहद महत्वपूर्ण अंग है, जिनके माध्यम से हम इस खूबसूरत दुनिया को देख और महसूस कर पाते हैं। लेकिन आज की बदलती जीवन शैली, लगातार बढ़ता स्क्रीन टाइम, प्रदूषण और आंखों की उचित देखभाल न होने के कारण कई तरह की समस्याएं सामने आ रही है। आंखों की सेहत को बेहतर बनाए रखने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आंखों की सामान्य समस्याओं से कैसे बचा जा सकता है और नियमित नेत्र जांच क्यों जरूरी है, इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर बातचीत के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज पर आमंत्रित किया है नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अवधेश गोयल जी को। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आंखों का स्वस्थ होना किसे कहा जाता है और आंखों की सेहत को लेकर हमें कब गंभीर होना चाहिए।
2: स्वस्थ आंखें मतलब अच्छी साफ आंख हो, लालिमा नहीं हो, सूजन नहीं हो और दूर दृष्टि अच्छी हो। अगर टेक्निकली अपन बात करें तो 6/6
1: जी,
2: मतलब काफी दूर तक अच्छा साफ दिखे और पास का अगर देखें तो 16-18 इंच की दूरी पे बारीक अक्षर पढ़ने में साफ साफ आए, कोई दर्द नहीं हो और किसी प्रकार की कोई तकलीफ, चुभन, सूखापन ऐसा ना लगे
1: जी,
2: वो स्वस्थ आंखें
1: जी। डॉक्टर साहब, आंखों में जलन, खुजली, पानी आना या लालिमा किन सामान्य कारणों से हो सकती है?
2: एक तो सबसे ज्यादा कॉमन चीज है एलर्जी
1: जी,
2: और खास करके अब जैसे जैसे पोल्यूशन प्रदूषण बढ़ रहा है, धूल मिट्टी ज्यादा हो रही है शहरों में खास करके या गांव में भी, तो उनसे ही एलर्जी बहुत हो रही है
1: जी।
2: दूसरा कुछ एलर्जेंस भी नए नए आ रहे हैं जो आंख को परेशान करते हैं
1: जी। डॉक्टर साहब, जैसा आपने कहा कि धूल मिट्टी से भी संक्रमण होने का खतरा रहता है आंखों को, तो हमें आंखों को किस तरह से प्रोटेक्ट करना चाहिए, आपको क्या लगता है कि क्या हमें उपाय अपनाने चाहिए?
2: जिन लोगों का बाहर आना जाना ज्यादा रहता है, खास करके जो टू व्हीलर चलाते हैं, दो पहिए वाहन चलाते हैं, उनको सामान्यतः प्लेन चश्मा, अगर नंबर का चश्मा है तो नंबर का लगाएंगे ही, अगर चश्मा नहीं भी लगाते तो थोड़ा सा बड़े फ्रेम का प्लेन चश्मा लगाना चाहिए इन सब से बचने के लिए
1: जी, जी।
2: और दूसरा, अगर कहीं बाहर से आना जाना ज्यादा रहता है तो घर आके या ऑफिस पहुंच के अपने अगर हो सके तो आंखों को साफ पानी से धोएं और हाथ कम से कम लगाएं, क्योंकि अपने हाथ हमेशा साफ नहीं रह पाते, और अगर कभी ऐसा लगे और पॉसिबल हो तो हाथ को अच्छी तरह से धो के फिर ही आंख को हाथ लगाएं
1: जी जी जी। और डॉक्टर साहब, जैसे अगर हम आंखों पे बार बार पानी मारेंगे, नियमित अंतराल पे आंखों को धोते रहें, तो भी उससे आंखें स्वस्थ रहती है?
2: अब ये तो एक तो पॉसिबल नहीं होता कि साफ पानी हमेशा मिले
1: जी।
2: और बहुत ज्यादा बार बार धोने की जरूरत नहीं है, जैसे कमरे में बैठे हुए तो उसमें ना कोई प्रदूषण है ना कुछ ऐसा है।

0: जी
1: तो इसलिए बार बार धोने की आवश्यकता नहीं है। पर हाँ, अगर बाहर जाना आना रहता है तो बाहर से घर में आए या अपने ऑफिस में जाए तो जरूर धोएं तो अच्छा रहता है।
0: जी निश्चित तौर पर आपके द्वारा जो दी गई जानकारियां हैं उससे हमारे श्रोतागण अवश्य रूप से लाभान्वित होंगे, हम यही उम्मीद करते हैं। अब डॉक्टर साहब, जैसे कि बात करते हैं आजकल जो चलन है, अधिकतर देखा गया है कि स्क्रीन टाइमिंग जो है लोगों का काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो स्क्रीन देखने से होने वाली आई स्ट्रेन या आंखों की थकान से बचने के लिए किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए?
1: एक तो जो बहुत जरूरी है वो उतना ही स्क्रीन टाइम लें अगर पॉसिबल है, और अगर मोबाइल है, टैब है, या अपने को कंप्यूटर पे, जिन लोगों को लंबे अरसे काम करना है, खास करके बच्चों का आजकल चलन बहुत हो गया पढ़ने का मोबाइल पे, तो अगर पॉसिबल है तो वो टैब पे पढ़ें या कंप्यूटर पे पढ़ें रादर देन मोबाइल।
0: जी,
1: क्योंकि मोबाइल पे एक तो थोड़ा पास में रहता है, फोकसिंग ज्यादा करनी पड़ती है आंख को, और उसका अक्षरों की बनावट भी बहुत छोटी होती है। दूसरा, 20-20-20 का जो रूल कहा गया है कि हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए 20 फीट से दूर देखा जाए, ये स्टैंडर्ड रूल है, इंटरनेशनल रूल है, इस चीज को जहां तक हो सके फॉलो करें। 20 मिनट के बाद अपन 20 सेकंड या आधा मिनट दूर देखें, 20 फीट का मतलब दूर देखना। अगर पॉसिबल है तो खिड़की के पास पहुंच जाएं तो बिल्कुल दूर दृष्टि अच्छी साफ हो जाएगी, और अगर कमरे में भी बैठे हैं और अगर ऐसा अपने को लग रहा है कि तो आंख बंद करेंगे तो भी उतना ही फायदा होगा। और अब आजकल क्योंकि बहुत ज्यादा काम शुरू हो गया है स्क्रीन पे, तो बहुत सारी दवाइयां आ गई ल्यूब्रिकेंट्स, वो अपने को अगर डॉक्टर बताएं तो नियमित तौर पर डालनी चाहिए।
0: जी जी जी। और जो सॉफ्टवेयर फील्ड में है, जैसे हमने देखा है कि आज का युवा वर्ग जो है उनका काम ही स्क्रीन के सामने ज्यादातर समय उसमें बीतता है, तो ये लुब्रिकेट उनके लिए भी फायदेमंद है?
1: बिल्कुल, डालना चाहिए, खास करके काम से शुरू करने से पहले। बहुत लोग जो है रात को डालते हैं, इस दवाई का ल्यूब्रिकेंट को डालने का उतना फायदा नहीं है जितना कि काम शुरू करें उस समय डालें। बहुत ज्यादा काम है तो 3-4 घंटे बाद, जो स्वस्थ आंखें उनके लिए।
0: जी जी।
1: और जिनको दवाई के रूप में दिया जा रहा है तो जैसे डॉक्टर ने परामर्श दिया है उस हिसाब से चलेंगे।
0: जी, बहुत अच्छी उपयोगी जानकारी। और जैसे कि हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि आप किसी भी तरह की लुब्रिकेंट या दवाई का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए आप डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें और उसके बाद ही किसी तरह की दवाई का उपयोग करें। अब डॉक्टर साहब, आंखों की रोशनी कमजोर होने की शुरुआती संकेत क्या है और कब हमें नेत्र परीक्षण करवाना चाहिए?
1: बच्चों में तो गाइडलाइन ये रहती है कि 5 साल का बच्चा हो जाए तो एक बार उसकी आंख की जांच जरूर होनी चाहिए, और बड़ों में 40 साल के आसपास एक बार नेत्र परीक्षण जरूर करना चाहिए, ये तो स्वस्थ आंखों के लिए। बाकी जैसे जो आपने कहा कि लक्षण, तो लक्षण बच्चों में खास करके जरा पता करना कई बार मुश्किल हो जाता है, हालांकि आजकल अवेयरनेस बढ़ गई है, क्लास में बच्चा जरा सा नहीं देखता तो पेरेंट्स उसको जल्दी से लेकर आते हैं डॉक्टर के पास, परंतु अगर कोई बच्चा बार बार टीवी के पास जाके खड़ा हो रहा है तो वो भी एक लक्षण है जी, कि उसको दिखता नहीं है और इसलिए वो बार बार जा रहा है, या क्लास में भी अगर टीचर ये बताए कि बार बार अपनी सीट से उठ के आगे आता है और फिर बोर्ड पे देखता है, तो ये दो लक्षण ऐसे हैं बच्चों में खास करके जिन पे अपने को ध्यान देना चाहिए, और अगर ऐसा कुछ लगे तो डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। और बड़ों में 40 साल पे एक बार जरूर जांच होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों को 40 साल के बाद पास कर नजर कमजोर हो जाती है, उनको चश्मे की जरूरत होती है। दूसरा, काला पानी एक ऐसी बीमारी है जिसमें कोई लक्षण नहीं होते, ज्यादातर लोगों में कोई लक्षण नहीं होते, बिल्कुल हल्का सा कुछ लोगों को भारीपन लगता है, और उनका जांच होना 40 साल पे काले पानी की अत्यंत आवश्यक है।
0: जी जी जी।
1: क्योंकि अगर ये समय पे जांच नहीं की जाए तो कई बार बहुत नजर कम होने के बाद ही वो डॉक्टर के पास पहुंचे।
0: जी जी जी जी जी।
1: और काले पानी की जो नजर का नुकसान होता है वो उसकी भरपाई दोबारा नहीं हो सकती, जब भी अपन दवाई शुरू करेंगे तो जितने ज्योति चली गई वो तो चली गई, जो बची है उसी को बचाने की सारी कोशिशें होती हैं, दवाइयों से भी या ऑपरेशन से भी।
0: जी जी जी। डॉक्टर साहब, आंखों को स्वस्थ रखने में खान पान और पोषण की कितनी भूमिका है और किन खाद्य पदार्थों को आहार में शामिल करना चाहिए?
1: खान पान का बहुत इम्पोर्टेंस है ही, और आँखों के लिए खास करके हरी सब्जी, सलाद, मौसम के हिसाब से गाजर, पपीता, नॉन वेजिटेरियन है तो फिश, ये चीजें बहुत लाभान्वित हैं।
0: जी जी। अब जैसे बच्चों की आँखों के स्वास्थ्य के लिए माता पिता को किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए?
1: दो चीजें हैं, एक तो खान पान अच्छा हो, क्योंकि बच्चे बड़े फंसी होते हैं, कई बार नहीं खाते हैं, तो उनको जिस तरीके से चाहें वैसे वो उसको मॉडिफाई करके खाने को दें।
0: जी।
1: दूसरा

0: स्क्रीन टाइम कम करें, मोबाइल पे बच्चों का बहुत समय बीत लग गया है और जो अनावश्यक है उसको कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है।
1: जी डॉक्टर साहब, आंखों में खुजली या लालिमा होने पर लोग अक्सर बिना डॉक्टर की सलाह के आई ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आजकल आपने भी देखा है कि सोशल मीडिया का भी युग है, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर भी सर्च करके और बिना डॉक्टरी परामर्श के भी दवाइयों का उपयोग करते हैं। आपको क्या लगता है यह कितना ज़्यादा सुरक्षित है?
0: ये सुरक्षित तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मेडिकल स्टोर से या अपने को सोशल मीडिया पे कई बार स्टेरॉइड्स प्रेस्क्राइब कर देते हैं
1: जी।
0: और स्टेरॉइड्स को जब तक कि डॉक्टर परीक्षण न करें आँख का कि सेफ है कि नहीं, नहीं डालने चाहिए
1: जी।
0: तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि खास करके लालिमा खुजली में स्टेरॉइड्स बहुत कॉमनली यूज्ड हैं, जिनका यूज कम से कम करना चाहिए
1: जी। डॉक्टर साहब, क्या मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियां आंखों को प्रभावित कर सकती है?
0: बहुत ज्यादा, खास करके मधुमेह
1: जी।
0: और जिन लोगों को मधुमेह है उनको नियमित जांच, मतलब कम से कम साल में एक बार आंख की जांच विशेषज्ञ द्वारा करवाना अत्यंत आवश्यक है
1: जी।
0: क्योंकि इसमें काले पानी के होने का शंका भी ज़्यादा होती है, दूसरा पर्दे में डायबिटीज़ का बहुत असर होता है और वो अगर सही समय पे नहीं पता लगे तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ सकती हैं
1: जी। जी जी, क्या आंखों की नियमित जांच केवल चश्मा लगाने वाले लोगों के लिए जरूरी है या बिना किसी परेशानी के भी समय समय पर आंखों की जांच करवानी चाहिए?
0: जैसा मैंने बोला, एक तो बच्चों की जांच 5 साल में आवश्यक होनी चाहिए, उसके बाद तो खैर अगर बच्चे को चश्मा लग रहा है तो जांच होगी ही, वो करवानी चाहिए। और बड़ों में 40 साल में एक बार जांच करानी चाहिए, उसके बाद अगर कोई उनके लक्षण है तो चश्मा परेशान कर रहा है, कोई आंखों में भारीपन है, दर्द है, तो उसके समय समय से जांच कराएं।
1: जी जी जी जी। अब डॉक्टर साहब, आंखों को स्वस्थ रखने के लिए रोजमर्रा की कौन सी आदतें हैं जिन्हें हम अपनाकर अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं?
0: नियमित खानपान, नियमित नींद और कम से कम स्क्रीन टाइम
1: जी। तो इससे निश्चित तौर पर आंखों को लाभ मिलेगा और हम कह सकते हैं कि आंखें भी स्वस्थ रहेगी
0: जी। हाँ
1: जी।
0: और नियमित परीक्षण अगर जरूरत है तो
1: जी। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम के आखिर में चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को सबसे महत्वपूर्ण सलाह क्या देंगे जिससे वे अपने और अपने परिवार की आंखों की बेहतर देखभाल कर सके?
0: खान पान अच्छा रखें, अपनी जीवन शैली को नियमित बनाएं और स्क्रीन टाइम कम से कम रखें
1: जी। डॉक्टर साहब, निश्चित तौर पर आपके द्वारा जो दी गई जानकारी है उससे हमारे श्रोतागण अवश्य रूप से लाभान्वित होंगे, हम यही उम्मीद करते हैं। आप हमारे स्टूडियोज में आए और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार जी।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुनी आंखों की सेहत देखभाल और बचाव विषय पर नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अवधेश गोयल से मनीष गजभिया की यह बातचीत। और अब समय हो चला है एक मधुर गीत का।

श्रोताओं, अब समय हो गया है क्रम हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी का। श्रोताओं, आप जानते हैं बायोमैपिंग क्या है? आज स्वास्थ्य की दुनिया में बायोमैपिंग एक महत्वपूर्ण विषय है। शरीर में उपस्थित सूक्ष्म जीव हमारी सेहत पर असर डालते हैं और सरल शब्दों में यह आधुनिक तकनीकों की मदद से शरीर से जुड़े विभिन्न जैविक संकेतों और खास तौर पर आंतों में मौजूद सूक्ष्म जीवों यानी गट माइक्रोबायोम के बारे में समझना है। यह शरीर से जुड़े जैविक संकेतों और प्रक्रियाओं का विस्तृत अध्ययन और मैपिंग करने का तरीका है। इसका उपयोग शरीर की विभिन्न प्रणालियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए किया जा रहा है। इसी संदर्भ में गट हेल्थ भी महत्वपूर्ण है। हमारी आंतों में मौजूद सूक्ष्म जीव पाचन और शरीर के कई कार्यों से जुड़े होते हैं। संतुलित आहार, पर्याप्त फाइबर, फल सब्जियां और पर्याप्त पानी गट हेल्थ के लिए बेहद जरूरी है। यानी अपने शरीर को समझिए और अपनी आंतों का भी ख्याल रखिए। अभी सुनिए इंद्रगीत।

श्रोताओं, बदलते मौसम में अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। अपनाएं कुछ सेहत सूत्र। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, ताज़ा और पौष्टिक भोजन लें तथा मौसमी फल सब्जियों को आहार में शामिल करें। बाहर का तला भुना भोजन कम लें और साफ सफाई का ध्यान रखें। मौसम में बदलाव के कारण सर्दी, खांसी या एलर्जी जैसी परेशानी हो तो नज़रअंदाज न करें और चिकित्सकीय परामर्श लें। इन्हीं छोटी छोटी सावधानियों के साथ रहिए स्वस्थ, प्रसन्न और जागरूक। अब मैं प्रेक्षा सक्सेना आपसे विदा लेती हूँ। अनुमति दीजिए। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण, प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
1: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
3: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए। ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
3: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
3: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
2: शाम सुहानी हो,
3: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
2: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भोले बिसरे पल, हर पल
3: सफर में
2: आपके साथ
3: आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं जगदीश सिंह बोरलिया और साथियों के गाए हुए कुछ मालवी लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की है।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे जगदीश सिंह बोरलिया और साथियों के गाए हुए कुछ मालवी लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की थी। इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं रूपेश कुमार लाल। इनकी आवाज में आज हम आपको सुनवाएंगे कुछ गीत और गजल। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की है।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे रूपेश कुमार लाल की आवाज में कुछ गीत और गजल, प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रसारण बस थोड़ी ही देर बाद।

इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी का लिखा हुआ, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम आए दिन बहार के।

और अब हम आपको सुनवाते हैं आनंद बख्शी का लिखा गीत, आर डी बर्मन का संगीत, आवाज लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम बेमिसाल।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज अमर शहीद भगत सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगत सिंह ने अपने अदम्य साहस और शौर्य से स्वतंत्रता आंदोलन को नई धार प्रदान की। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के सम्मान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की उनकी भावना आज भी युवाओं को साहस और दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताती है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भगत सिंह का साहस, राष्ट्रभक्ति और विचार युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उज्जैन में वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ की तैयारियों के तहत सड़क चौड़ीकरण का काम जारी है। कलेक्टर रोशन सिंह ने बताया कि छतरी चौक स्थित शाही मस्जिद का एक हिस्सा समाजजनों द्वारा स्वेच्छा से हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क चौड़ीकरण की जद में आने वाले मकान, दुकान और धर्मस्थल संबंधित समाजों के सहयोग से हटाए जा रहे हैं।
1: 2028 में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन होना है और जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे उनकी व्यवस्थाओं के लिए जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, जो मार्गों का चौड़ीकरण चल रहा है, मास्टर प्लानिंग के हिसाब से सड़कों का चौड़ीकरण चल रहा है, उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि सभी व्यक्ति, सभी धर्म समुदाय के लोग जो है स्वतः इसमें अपना योगदान कर रहे हैं और उनके जो मकान, धर्मस्थल जो भी आ रहे हैं उनको स्वतः जो है हटा रहे हैं। इसी के क्रम में छतरी चौक पर आज शाही मस्जिद का हिस्सा भी इनके समाजजनों के द्वारा स्वतः हटाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करना चाहूंगा किसी
0: छतरी चौक स्थित मस्जिद के मामले में शहर काजी खली कुर्रे रहमान ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।
2: बरादरान मिल्लत को इत्तला दी जाती है कि बेवजह बाजारों में न खड़े हों, बाजारों की तरफ न जाएं। मस्जिद का मसला रात को ही हल हो गया था और ऐसी कोई बात नहीं जिसके पीछे हम वहाँ जाएं। बस जिस बात के लिए कमिटमेंट हुआ है वो काम पूरा होना है और वो लोग अपने काम को कर रहे हैं, लिहाजा अफवाहों का बिल्कुल ख्याल न करें और जो भी अफवाहें उस पर ध्यान न दें और अफवाहों की वजह से बाहर न निकले घरों से अपने।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज 2,000 रुपये से अधिक के लेनदेन पर व्यक्ति से व्यापारी यूपीआई पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाने के केंद्र के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क अगले महीने की 15 तारीख से लागू होना है। 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतान पर MDR लगाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि ये मामला कानूनी से अधिक तकनीकी है। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और अन्य पक्षों को 4 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। इंदौर में आयोजित राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान अलंकरण समारोह में आज संगीत निर्देशक शांतनु मोइत्रा को वर्ष 2026 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान प्रदान किया जाएगा। उन्हें 5,00,000 रुपये और प्रशस्ति पट्टिका दी जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती पर उनका स्मरण किया। उन्होंने कहा कि लता मंगेशकर ने अपनी स्वर साधना से भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयां प्रदान की। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून की विदाई शुरू हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों में प्रदेश में भारी या अति भारी बारिश की संभावना नहीं है, जबकि मंगलवार से उज्जैन, इंदौर और ग्वालियर चंबल संभागों में तेज धूप निकलने का अनुमान है। प्रदेश में अब तक औसतन 37.7 इंच बारिश दर्ज हुई है, जो सामान्य बारिश का करीब 95.8% है। वहीं विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में हल्की बारिश होने पर प्रदेश सामान्य बारिश की श्रेणी में पहुँच सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले में जनपद पंचायत और नगर परिषद के लिए 29 सितंबर को होने वाले मतदान के लिए जिला सूचना एवं विज्ञान केंद्र में मतदान केंद्रों का रेंडमाइजेशन कल किया गया। जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय बधिर दिवस के उपलक्ष्य में दिव्यांगजनों के अधिकारों और उनके प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पैदल रैली का आयोजन किया गया। बुरहानपुर में विश्व रेबीज दिवस के अवसर पर वेटरनरी हॉस्पिटल में एक विशाल निःशुल्क एंटी रेबीज टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया और शिवपुरी में सेवा संकल्प अभियान के तहत 3 अक्टूबर को विकासखंड स्तर पर और 4 अक्टूबर को नगरी निकाय स्तर पर मेगा सेवा सेतु शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 2:15 होने वाले हैं। अब दोपहर समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। बैंकों की आज से शुरू होने वाली 3 दिन की प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल स्थगित। भारत पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। शहीद आजम भगत सिंह की आज 119वीं जयंती। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की गिरावट, निफ्टी भी 299 अंक गिरा। और एशियाई खेलों में भारत ने आज महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में रजत और अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है और 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि ये मुद्दा कानूनी से अधिक तकनीकी है। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अपर सॉलिसिटर जनरल N. वेंकटरामन ने पीठ को बताया कि भुगतान गेटवे के 96% उपयोगकर्ता इससे मुक्त रहेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने घोषणा की है कि आज से शुरू होने वाली 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित कर दी गई है। ये निर्णय भारतीय बैंक संघ के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। सोशल मीडिया पोस्ट में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने कहा कि ये निर्णय कल रात भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हड़ताल से संबंधित मुद्दों पर हुई बैठक के बाद लिया गया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कुछ अन्य यूनियनों और एसोसिएशनों ने 5 दिवसीय बैंकिंग प्रणाली को लागू करने और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना को वापस लेने की 2 प्रमुख मांगों को लेकर हड़ताल का आह्वान किया था। केंद्र सरकार कर्नाटका और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीमें भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। संवाददाताओं से श्री चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटका सरकारों ने अपने अपने राज्यों के बड़े हिस्से में सूखा घोषित कर दिया है।
2: राज्य सरकारों ने महाराष्ट्र में बड़े हिस्से पर और कर्नाटक में भी बड़े हिस्से पर सूखा घोषित किया है। भारत सरकार राज्यों के साथ डट के खड़ी रहेगी। कर्नाटक में भी 3 अक्टूबर को टीम बना के भेज रहे हैं वहाँ की स्थिति के आकलन के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है तो भाभी हम टीम की तैयारी कर रहे हैं। मैं स्वयं भी उन राज्यों में जाके स्थिति देखूंगा और हम अपने किसानों के साथ, राज्य सरकारों के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे इस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए।
1: श्री चौहान ने कहा कि शुरुआत में आशंका थी कि अल नीनो के प्रभाव से बुवाई का क्षेत्र कम हो सकता है और महत्वपूर्ण चुनौतियां उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने देश भर में पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: जो प्रयास किए भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खाद की कोई कमी नहीं आई। खाद की व्यवस्था करने के लिए सरकार कृत संकल्पित है, लेकिन हम ये जोर जरूर दे रहे हैं कि जितना जरूरी है उतने खाद का उपयोग, संतुलित उपयोग, उसके लिए खेत बचाओ अभियान हम फिर चलाएंगे ताकि सॉइल हेल्थ कार्ड में जो सिफारिश की है, माटी में जो तत्व कम है उसके आधार पर कितना खाद चाहिए उतना खाद डाला जाए तो मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
4: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने आज देशवासियों से जनगणना के लिए समय निकालने का आग्रह किया है। मन की बात कार्यक्रम में किए गए अपने आह्वान को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जनगणना में भाग लेना सभी नागरिकों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि 3 तलाक कानून कैसे मुस्लिम महिलाओं के जीवन में बबदलाव लाने में मदद कर रहा है।
5: 3 तलाक की प्रथा से प्रभावित मुस्लिम महिलाओं को कानूनी सुरक्षा और अधिकार दिलाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया। इस कानून के तहत तत्काल 3 तलाक को गैर कानूनी और दंडनीय बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये कानून संविधान की भावना के अनुरूप मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार और न्याय सुनिश्चित कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
6: भारत के संविधान की भावना को, बाबा साहब अम्बेडकर की भावना को आदर करते हुए हमारी मुस्लिम बहनों को भी समान अधिकार मिले, उनके अंदर भी एक नया विश्वास पैदा हो, भारत की विकास यात्रा में वो भी सक्रिय भागीदार बने, इसलिए हमने इस महत्वपूर्ण निर्णय को किया।
5: मुस्लिम मामलों के विशेषज्ञ रजा रिजवी का कहना है कि 3 तलाक कानून ने मुस्लिम महिलाओं को उनके वैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उन्हें सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
7: ये कानून केवल एक कानूनी बदलाव नहीं है बल्कि महिला के सम्मान और उसके अधिकारों की रक्षा से जुड़ा विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण को विकास से जोड़ा।
5: मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम ने उन महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा का प्रावधान किया है जो 3 तलाक की स्थिति में सामाजिक और पारिवारिक दबाव के कारण अपनी बात सामने नहीं रख पाती थी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ तेजी से बढ़ते आंवला उद्योग के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में आंवला उद्योग में प्रतापगढ़ के योगदान की सराहना की। आइए सुनते हैं इस पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
8: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है। उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ के सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं के आंवले से बने उत्पाद आज ODOP के तहत नए बाजारों तक पहुंच रहे हैं, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी हुई है।
4: आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के माध्यम से यहाँ आंवले से जुड़े स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिला है।
8: सावित्री फूले सेल्फ हेल्प ग्रुप की कमलेश कुमारी ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा,
9: प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद देते हैं, सावित्री फूले स्वयं सहायता समूह बनाए हैं, आंवला का लड्डू मुरब्बा जूस बर्फी भी यही हमारा प्रोडक्ट बनता है।
8: प्रतापगढ़ जनपद में 196 से अधिक आंवले के उत्पाद की इकाइयां हैं और यहां बने उत्पाद देश के अलग अलग हिस्सों के साथ कई देशों में भेजे जा रहे हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। वे आज नई दिल्ली में आयोजित औद्योगिक संबंध और श्रम तथा पुरस्कार संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
10: हम 25 करोड़ लोगों को SIC की हेल्थ सिक्योरिटी दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, 10 करोड़ किसान के अकाउंट में हर 4 महीने 2000 रुपया डालते हैं। आज देश के 10 स्टेट ऐसे हैं जो महिला के अकाउंट में प्रति महीने कोई न कोई 2000 1500-1200 ऐसे अमाउंट डालते हैं। तो मैंने कहा कि क्या सोशल सिक्योरिटी का पार्ट नहीं बन सकता, पर कैलकुलेशन चालू करा तो उन्होंने स्वीकारा कि इंडिया आज 101 करोड़ यानी कि 68% लोगों को सोशल सिक्योरिटी देता है।
1: संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व नेताओं ने शिक्षा, कौशल, प्रौद्योगिकी और रोजगार के माध्यम से वैश्विक समृद्धि को गति देने में

0: युवा आबादी की क्षमता का उल्लेख किया। उन्होंने चेतावनी दी कि एआई का बढ़ता उपयोग रोजगार को लेकर अनिश्चितता बढ़ा सकता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि एआई मानव सशक्तिकरण और आर्थिक समृद्धि के लिए परिवर्तनकारी शक्ति बन सकता है, लेकिन उन्होंने इसके दुरुपयोग से होने वाले नुकसानों के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि देशों को अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप एआई मॉडल विकसित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक और निवेशक संवाद 2026 में भाग लेने के लिए कतर की राजधानी दोहा में हैं। इस बैठक में सदस्य प्रतिनिधिमंडल, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष बैंक की रणनीतिक दिशा, संचालन प्राथमिकताओं और भविष्य के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भगत सिंह का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1907 में पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है।
1: शहीद आजम भगत सिंह के मन में देश की आजादी के लिए लड़ने का जज्बा अपने परिवार से ही मिला था। उनके दादा, पिता और चाचा सभी स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह सक्रिय थे। भगत सिंह खुद भी इस आंदोलन से जुड़े और देश की आजादी के लिए आवाज उठाने वाले क्रांतिकारी बन गए। अंग्रेजों के कठोर और दमनकारी कानूनों का विरोध करने के लिए उन्होंने साल 1929 में केंद्र विधानसभा में ऐसे बम फेंके जिससे किसी की जान न जाए। इसके बाद उन्होंने खुद को अंग्रेजों के हवाले कर दिया और गिरफ्तारी दी। साल 1931 में अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी। शहीद भगत सिंह की शहादत ने पूरे देश में गुस्से और प्रेरणा की एक जबरदस्त लहर पैदा कर दी, जिसने उनके बलिदान को ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक बना दिया। उनके अदम्य साहस ने देश के युवाओं में जोश भर दिया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा और गति दी, जिससे गुलामी की जंजीरों को तोड़ने को देशवासियों का संकल्प और अधिक मजबूत हो गया। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के सत्र में 1.3% की गिरावट दर्ज की गई। ताज़ा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 956 अंक गिरकर 72,939 पर और निफ्टी 306 अंक लुढ़क कर 22,835 पर पहुंच गया। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
2: जापान एशियाई खेलों में भारत की ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। वहीं भारतीय एथलीट पिंकी बलहारा ने महिलाओं के अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। महिला मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहाइन ने 75 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की सियोंग सियोन को हरा कर पदक पक्का कर लिया है। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला नेपाल और श्रीलंका के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। एशियाई खेलों में भारत पदक तालिका में 12वें स्थान पर है। अब तक भारत कुल मिलाकर 39 पदक जीत चुका है, जिनमें 4 स्वर्ण, 17 रजत और 18 कांस्य पदक शामिल हैं।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेलों में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर ईशा सिंह को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि ईशा सिंह के शानदार प्रदर्शन में उनके कौशल, सटीकता और निरंतरता की झलक दिखाई देती है। मौसम विभाग ने कल तक दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच आज दिल्ली के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई। विभाग के अनुसार कल तक केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। वहीं अगले 2 दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश में तेज हवाएं चल सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। बैंकों की आज से शुरू होने वाली 3 दिन की प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल स्थगित। भारत पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। शहीद आजम भगत सिंह की आज 119वीं जयंती। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की गिरावट, निफ्टी भी 306 अंक गिरा। और एशियाई खेलों में भारत ने आज महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में रजत और अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं सुनीता सिंह और भेजती हूँ आप तक प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं आज आपकी फरमाइश कार्यक्रम है खास क्योंकि आज दिन है खास। आज फरमाइशी फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम लता जी की आवाज को सेलिब्रेट करेगा क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। लता जी जिनके विषय में हम कुछ भी कहने चलें तो सारे शब्द छोटे पड़ जाते हैं। गंधर्व लोक से उतरे सबसे सुरीले सबसे चमकीले स्वर का नाम है लता मंगेशकर। एक विलक्षण कलाकार जिनकी आवाज इस देश की आत्मा में धड़कती है। उनकी आवाज जैसे सुबह की पहली किरण, उनकी आवाज जैसे रात की आंखों में जागता हुआ कोई स्वप्न। एक ऐसी आवाज जिसे सुनकर उम्र पाते हैं बुझे हुए रिश्ते। उस एक आवाज की छुअन से मनुष्य की सारी भावनाएं संतृप्त हो जाती हैं। उस जादुई आवाज का नाम है लता मंगेशकर। चालीस के दशक में वो फिल्मों में सक्रिय हो गई थीं। कभी सोचें तो लगता है कि चालीस के दशक के पहले का जितना भी समय था संगीत तो उसमें भी था। बड़े बड़े साम्राज्य हुए, राजे महाराजे हुए, उनके संगीत रत्न हुए, लेकिन तमाम समृद्धि के बावजूद उनके जीवन में एक अभाव तो था, उन्होंने लता मंगेशकर को नहीं सुना। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि लता जी हमारे हिस्से रहीं और हमेशा रहेंगी। तो आइए कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं अनपढ़ फिल्म से। इस गीत के लिए फरमाइश हमें लिख भेजी है थाना रोड बक्सर से जीवत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष, आयुषी और सानवी। इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा। और इंदौर से ही लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया।

श्रोताओं, आज लता जी का जन्मदिन है। कैसा था उनका बचपन? बहुत शरारती थी वो, पेड़ों पर चढ़ जाती, कभी अमरूद तोड़ने के लिए, कभी आम तोड़ने के लिए, दिन भर लाठी लेकर वो घूमती रहती। खेल भी उनके निराले थे। वो एक टायर के बीच में दुबक कर बैठ जाती और जो बाकी बच्चे थे उस टायर को रोड पर लकड़ी से लुढ़काते और घर पर सारी क्रॉकरी तोड़ देती और उसके टुकड़ों को पानी में डालती। जाहिर तौर पर माँ नाराज हो जाती, लेकिन पिता कहते, रहने दो, उसे मत डांटो, हम नई क्रॉकरी ले लेंगे। तो इस तरह पिता के साथ उनका संबंध बहुत गहरा था, जो जीवन के अंत तक बना रहा। जब पिता रात में घर लौटते तो दिन भर क्या कुछ हुआ ये लता जी उन्हें बताती। ये भी आई कह रही थी कि बाबा बहुत बोलते हैं, और जब माँ आंखें दिखाती तो नन्ही सी लता कहती, क्यों ना बताऊं, आखिर वो मेरे बाबा हैं। जब तक पिता घर पर रहते, लता जी बाबा ये बाबा वो कहती हुई उनके पीछे पीछे घूमती रहती। इसीलिए पिता ने उन्हें एक नया नाम दे दिया था, लता बाबा। और अपनी लाडली लता बाबा को उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ एक बार दंड दिया था, जब वो ताल में नहीं गा रही थी। उनके घर में अलमारी के ऊपर कई गद्दे रखे हुए थे। पिता ने नन्ही सी लता को उस गद्दे के ऊपर बैठा दिया और कहा, जब तक ताल में नहीं गाओगी नीचे नहीं उतारूंगा। तो ऐसे थे उनके पिता और ऐसी थी उनकी लता बाबा, जो हैं हमारी लता जी या लता मंगेशकर। तो आइए उनकी आवाज में अगला गीत आपकी फरमाइश पर सुनते हैं। फिल्म का नाम है असली नकली। इस गीत को पसंद करते हैं शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, राजू ताम्रकार, रजन रजक, संजीव वर्मा, विपिन गुप्ता, अरुण कनौजिया, संजय सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, लालू, सोना, मोना, हनी, यश, सौम्या और उनके मम्मी पापा। और ये खत आया हुआ है बेरडी से, हुकुम करमरकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची और तनु का। तो आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं लता जी की आवाज़ में ये गीत।

श्रोताओं, लता जी 7 साल की उम्र में पहली बार मंच पर आई थी। ये घटना भी बहुत रोचक है। हम जानते ही हैं कि उनके पिता की एक ड्रामा कंपनी थी। एक बार वो अपने परिवार और टीम के साथ मनमाड़ गए, जहां उन्हें एक नाटक करना था, सुभद्रा। लेकिन अचानक एक मुश्किल खड़ी हुई। वो कलाकार बीमार पड़ गया जिसे नारद मुनि का रोल करना था। ऐसे समय में 7 साल की लता ने कहा, बाबा आप परेशान मत होइए, मैं करूंगी नारद मुनि का रोल, मुझे सारे डायलॉग भी याद हैं और गीत भी। पिता असमंजस में थे कि नाटक में अर्जुन का रोल करने वाले वो स्वयं 36 साल के हैं और लता 7 साल की, दर्शक इसे कैसे स्वीकार करेंगे। तब लता जी ने कहा, बाबा आप चिंता मत करिए, मैं वादा करती हूँ दर्शक बहुत खुश होंगे, मैं बहुत अच्छा करूँगी। अंततः नाटक शुरू हुआ, पर्दा खुला और 7 साल की लता नारद मुनि के वेश में दर्शकों के सामने थी। शुरू में दर्शक अचंभे में थे, लेकिन जैसे ही लता जी ने बोलना और गाना शुरू किया, पूरा वातावरण तालियों से गूंज उठा। पूरे नाटक के दौरान दर्शक मुग्ध थे। इस तरह एक सफल प्रस्तुति रही। ऐसी थी नन्ही लेकिन हमारी जिम्मेदार लता। और फिर समय ने देखा कि जीवन ने बहुत छोटी उम्र में ही उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारियां सौंप दी। चलिए, बातें हमारी आगे भी होंगी। फिलहाल लता जी का गाया हुआ एक और गीत आप सबकी फरमाइश पर आप तक भेजते हैं। फिल्म का नाम है चिराग, पसंद आप सबकी है। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। और छबड़ा से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानू।

श्रोताओं, लता जी जब मात्र 13 साल की थीं, तब घर की पूरी जिम्मेदारी उन पर आ गई थी, क्योंकि पिता की मृत्यु हो गई थी। घर चलाने के लिए उन्होंने 6 साल तक फिल्मों में अभिनय भी किया, लेकिन ये काम उन्हें पसंद नहीं था। लेकिन उस दौर में पार्श्व गायन का वैसा महत्व नहीं था, क्योंकि सहगल, नूरजहां, सुरैया जैसे कलाकार अभिनय के साथ साथ खुद गाते भी थे। लेकिन 1947 का साल आते आते परिस्थितियां बदली, सहगल साहब का निधन हो गया और नूरजहां पाकिस्तान चली गईं। इस तरह प्लेबैक सिंगर्स की जगह बनने लगी। इस तरह लता जी ने तुरंत फिल्मों में अभिनय छोड़ा और गायन के प्रति एकाग्र हुईं, क्योंकि यही तो वो चाहती थीं। कई फिल्मों में उन्होंने गाया और फिर सन 1949 में महल फिल्म रिलीज हुई, जिसका गीत था आएगा आने वाला। ये गीत बेहद लोकप्रिय हुआ, पूरे देश में गूंज उठा, लेकिन अब भी पहचान की समस्या तो खड़ी थी। पता है क्यों? क्योंकि इसके रिकॉर्ड पर लता जी का नाम नहीं था, गायिका के स्थान पर उस चरित्र का नाम लिखा था जिसे मधुबाला ने इस फिल्म में निभाया था, और वो नाम था कामिनी। लेकिन इस गीत का जादू ऐसा था कि आकाशवाणी में हजारों चिट्ठियां आईं जिसमें इस गीत की फरमाइश थी, और लोगों ने पूछा था कि इस गीत को गाया किसने है। फिर आकाशवाणी ने रिकॉर्डिंग कंपनी के दफ्तर में फ़ोन किया, पूछा, और वहां से आकाशवाणी को बताया गया कि भाई इस गीत की जो गायिका हैं उनका नाम लता मंगेशकर है। और फिर आकाशवाणी ने लता जी के नाम की उद्घोषणा के साथ गीत बजाया। इस तरह एक लंबी संघर्ष यात्रा थी उनकी, लेकिन जब वो चमकी तो हीरे की तरह चमकी, जिसकी चमक आज भी बनी हुई है। तो आइए वही गीत आपको सुनवाते हैं। इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और मोहम्मद रफ़ी मंसूरी ने। सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा, और इसी गीत को पसंद करते हैं प्रमिलागंज आलूट जिला रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा।

श्रोताओं, लता जी के संस्कार ऐसे थे जो उनके व्यक्तित्व को और भी उजला बना देते थे। कैसी छवि थी उनकी, सफेद साड़ी, कंधे पर पल्ला, सौम्य सी मुस्कुराहट। स्टूडियो हो या मंच, जब भी गाती नंगे पांव गाती। उनके व्यक्तित्व का एक किस्सा बहुत ही मशहूर हुआ है। जब गुलजार साहब खुशबू फिल्म बना रहे थे तो उसमें उन्होंने एक लोरी लिखी थी, दो नैनों में आंसू भरे हैं, निंदिया कैसे समाए। पंचमदा ने कंपोज किया, गुलजार साहब को लगता रहा कि ये तो लोरी की तरह नहीं लग रहा है, म्यूजिक ज़्यादा है, लेकिन पंचमदा का कहना था कि नहीं नहीं ये ठीक है। बहरहाल गाना रिकॉर्ड हो गया लता जी की आवाज़ में। काफ़ी समय बीत गया, जब गुलजार साहब इसे पिक्चराइज करने लगे तो उन्हें फिर वो कमी खलने लगी। अगले ही दिन वो पंचमदा के पास पहुँचे और अपनी बात रखी। लता जी किसी दूसरे गीत की रिकॉर्डिंग के लिए आई हुई थी, लेकिन पंचमदा की हिम्मत नहीं हो रही थी कि इतने दिनों बाद वो लता जी से कहें कि फिर से वही गाना गाना है। लेकिन गुलजार साहब का काम अटका हुआ था, सो वो लता जी के पास गए और अपनी उलझन बताई। उन्होंने कहा, जब पूरी बात सुनी लता जी ने तो कहा कि कोई बात नहीं, मैं स्लो ट्रैक में लोरी की तरह इसे दोबारा गा देती हूँ। और फिर सिर्फ कॉर्ड्स में कम म्यूज़िक के साथ उन्होंने दोबारा पूरा गीत गाया और इसके पैसे नहीं लिए। और गुलजार साहब ने फिल्म के अंदर वही स्लो ट्रैक रखा है, रिकॉर्ड में ज़रूर हमें वो पहला ट्रैक मिलता है। तो चलिए वो पहला ट्रैक जो रिकॉर्ड में मिलता है वो आपको सुनवा देते हैं, खुशबू फिल्म का। इसे पसंद करते हैं नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन। कवाही सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता, हिमानी, हर्षिता और अभिषेक। और ग्राम सनोतिया जिला गुना से मांगीलाल चंदेल, अरविंद, अशोक, राजकुमार और हिमांशु।

श्रोता लता जी ने 20 से अधिक भाषाओं में 30,000 से अधिक गीत गाए। उन्हें सर्वश्रेष्ठ गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 3 बार मिला, 6 बार फिल्मफेयर का बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला। देश दुनिया में उन्होंने अभूतपूर्व ख्याति अर्जित की। उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण के साथ ही देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया। और लता जी एकमात्र ऐसी कलाकार थीं जिनके जीवित रहते ही भारत के कई राज्यों ने उनके नाम पर पुरस्कार स्थापित किए थे। लता जी की आवाज ईश्वर के आशीर्वाद की तरह इस धरती पर उतरी। वो थी, वो हैं और हमेशा रहेंगी। आइए कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनवाते हैं। किनारा फिल्म से इसे पसंद करते हैं मानोरा से तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश, आदेश, किरण और प्रज्वल डेरे।

0: किनारा फिल्म के इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब यहीं संपन्न होता है। इजाजत दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार। आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज अमर शहीद भगत सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगत सिंह ने अपने अदम्य साहस और शौर्य से स्वतंत्रता आंदोलन को नई धार प्रदान की। उज्जैन में वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ की तैयारियों के तहत सड़क चौड़ीकरण का काम जारी है। कलेक्टर रोशन सिंह ने बताया कि छतरी चौक स्थित शाही मस्जिद का एक हिस्सा समाजजनों द्वारा स्वेच्छा से ही हटाया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज 2000 रुपये से अधिक के लेनदेन पर व्यक्ति से व्यापारी UPI पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR लगाने के केंद्र के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क अगले महीने की 15 तारीख से लागू होना है। इंदौर में आयोजित राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान अलंकरण समारोह में आज संगीत निर्देशक शांतनु मोइत्रा को वर्ष 2026 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान प्रदान किया जाएगा। उन्हें 5,00,000 रुपये और प्रशस्ति पट्टिका दी जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती पर उनका स्मरण किया। और प्रदेश में मानसून की विदाई शुरू हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों में प्रदेश में भारी या अति भारी बारिश की संभावना नहीं है, जबकि मंगलवार से उज्जैन इंदौर और ग्वालियर चंबल संभागों में तेज धूप निकलने का अनुमान जताया गया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आकाशवाणी का ये मध्य प्रदेश केंद्र है।

ये आकाशवाणी भोपाल है। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों के अंतर्गत आज शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी भोपाल द्वारा प्रस्तुत युववाणी कार्यक्रम। फिल्म संगीत का प्रसारण समय है शाम 5:33, 6:30, 8:35 और रात 10:20। शाम 5:40 पर आप सुनेंगे क्षेत्रीय समाचार एकांश का विशेष कार्यक्रम। आज शाम 6 बजे होगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। कार्यक्रम आजकल आप सुन सकते हैं 6:40 पर। 6:45 पर सुनिए प्रादेशिक समाचार दर्शन।

जन सेवा से देश सेवा, ये विशेष कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 8 बजे, रात 9:30 बजे आकाशवाणी दिल्ली से हम अनुप्रसारित करेंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। रात 10 बजे आकाशवाणी दिल्ली से सुनिएगा एशियन गेम्स 2026 पर आधारित डेली हाइलाइट्स, और राग रजनी कार्यक्रम में रात 10:30 बजे हम आपको सुनवाएंगे सिद्धा साई का ख्याल गायन राग जोग कॉन्स। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत शाम 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इसमें आज किसान भाई सुनेंगे फरमाइशी लोकगीतों का निर्धारित क्रम लोक रंग। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। 3:02 हो चुके हैं, मीडियम वेव पर हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। 5 बजे अपनी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें अनुमति दें, नमस्कार। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा। डीटीएच पर ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज सुनिए जगदीश सिंह बोरलिया और साथियों के गाए हुए कुछ मालवी लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की है।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे जगदीश सिंह बोरलिया और साथियों के गाए हुए कुछ मालवी लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की थी। हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। सुगम संगीत के कार्यक्रम में कुछ गीत और गजल आपको सुनवाने जा रहे हैं। कलाकार हैं रूपेश कुमार।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे रूपेश कुमार लाल के गाए हुए कुछ गीत और गजल। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की थी। आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है, लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आज लता मंगेशकर की आवाज में कुछ गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है, 28 सितंबर है। तो एक सुरीली यात्रा लता जी की आवाज के साथ। पहला गीत 20 साल बाद इस फिल्म से हमने लिया है, और इसके बाद आप सुनेंगे मधुमती फिल्म का गीत।

ये गीत आप सुन रहे हैं फिल्म अनामिका से, और इसके बाद हम आपको सुनवाएंगे गाइड फिल्म का गीत।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी भोपाल है, लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार के 2000 रुपये से अधिक के चुनिंदा यूपीआई मर्चेंट लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लगाने का निर्णय संबंधी याचिका पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक और एचआईआईबी निवेशक संवाद 2026 में भाग लेने के लिए कतर के दोहा में पहुंच गई हैं। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल मंच पर पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं तक पहुंच मिल सकेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन कर रहे हैं। राष्ट्र आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनकी जयंती पर सरदार भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के अंतर्गत काबुल के सरकारी अस्पताल के लिए जीवन रक्षक दवाओं और चिकित्सा सामग्री की एक खेप भेजी है। और एशियाई खेलों में अब तक भारत कुल मिलाकर 39 पदक जीत चुका है, जिनमें 4 स्वर्ण, 17 रजत और 18 कांस्य पदक शामिल हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: इस वक्त आप हैं आकाशवाणी भोपाल के साथ, लीजिए अब पेश है उर्दू प्रोग्राम आईना।

0: आदाब दोस्तों, उर्दू प्रोग्राम आईना को लेकर हाजिर हूं मैं आपका दोस्त वाजिद खान। इस प्रोग्राम में आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, बात जब उर्दू शायरी की होती है तो उस वक्त हमारे जहन में ये ख्याल गर्दिश करने लगता है कि अब इश्क व मोहब्बत से मुतालिक कोई ना कोई बात जरूर की जाएगी, क्योंकि अमूमन गजलों में तगज़ुल का रंग साफ साफ नजर आता है और ये भी कहा जाता है कि यही शायरी का सबसे अहम जुज्व है, क्योंकि गजल के मायने हैं औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना। मानी के एतबार से जाहिर है कि शायर अपने कलाम में अपने महबूब से ही खिताब करता है, लेकिन बदलते हुए जमाने के साथ जब शौरा इकराम भी तरक्की पसंद तहरीक से मुंसलिक हुए तो उन्होंने भी शायरी का रंग बदलने के लिए बेशुमार मौजूआत पर गजलें और नज़में कहीं और लोगों से दादो तहसीन हासिल की। इनमें बहुत से शौरा ऐसे भी थे जिन्होंने गजलों के बजाय नज़में कहना ज्यादा पसंद किया और खूब नाम कमाया। इसकी असल वजह यह थी कि गजलों के मद्दे मुकाबिल नज़मों में किसी भी बात को तफसील से बयान करने की वसअत ज्यादा थी। नज़म को शौरा ने शायद ही कोई ऐसा मौजू हो जिस पर नज़म ना कही हो। हिंदुस्तान में मनाए जाने वाले त्योहारों, मेलों, बाजारों और तमाम मौसमों पर नज़में लिखीं जो एक आम आदमी को बेहद मुतासिर करती हैं। उर्दू शायरी में चाहे गजलें हों या नज़में, दोनों असनाफ में बात करने की वसअत पाई जाती है। उर्दू शायरी में आम आदमी की जिंदगी से मुतालिक मवाद भी मौजूद है और आज की हमारी तकरीर का मौजू भी उर्दू शायरी में आम आदमी की जिंदगी है। उर्दू शायरी में एक आम आदमी की जिंदगी को किस अंदाज में पेश किया गया है, इस बात को तफसील से जानने के लिए आइए सुनते हैं एक तकरीर जिसका मौजू है उर्दू शायरी में आम आदमी की जिंदगी, और मुकर्रा है डॉक्टर सबीहा अख्तर। समात फरमाइए।
1: हिंदुस्तान में उर्दू शायरी हमेशा से मकबूल रही है। इसको मकबूल और आम बनाने में हर मजहब, हर तबका, हर फिक्र के लोगों ने हिस्सा लिया है। यहाँ के शुरा ने अपने वतन के मफलूकुल हाल इंसान, जिसको आवाम कहा जाता है, उनको उनसे मोहब्बत की है और वो उनके गम और खुशी में बराबर के शरीक रहे और अपनी शायरी में उनको जगह दी। आवाम के जज्बात व ख्यालात, उनके आदात व अतवार और रसूम व त्यौहार जैसे मौजूद पर नज़में लिखीं जो काफ़ी मकबूल हुईं। वैसे तो मुतअद्दिद शुरा कराम ने आम आदमी की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया है, लेकिन नज़ीर अकबर आबादी ऐसे शायर हैं जिन्होंने आम आदमी के हर पहलू को इतनी खूबसूरती से अपनी नज़मों में समोया है कि कोई दूसरा शायर उनका मद्द मुकाबिल नहीं। उनकी इसी खूबी के बिना पर उनको अवामी शायर कहा जाता है। नज़ीर की शायरी में इंसान एक जिंदा, मुतहर्रिक, हसास और मादी असबाब से मसरूर व दिलगीर हो जाने वाली मखलूक की शक्ल में आता है। उन्होंने नज़्म आदमी नामा में मुफलिस अवाम के जख्म पर मरहम लगाने की कोशिश की है, जहाँ हर शख्स आदमी होने की हैसियत से एक ही कश्ती का सवार नजर आता है। इंसान की अजमत के सामने तबकात के तवफ़ुक और पस्ती का सर झुकता है। हर शख्स जो एक मर्द और एक औरत से पैदा हुआ है वो आदमी ही है, और इसी एहसास की तफसीर नज़ीर के बहुत से ख्यालात में मिलती है। मजमूई हैसियत से आदमी नामा में शायर ने अपने खालिस बयानिया अंदाज में तरह तरह से ये समझाने की कोशिश की है कि अशराफ से लेकर शाह तक गुलाम आदमी ही हैं, और इस नज़्म में शायर ने इंसान की मुख्तलिफ खसलतों का बयान कुछ इस तरह किया है। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है मियाँ मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबा ख्वा, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियाँ, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ, और जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। अवामी शायर की हैसियत से उन्होंने अपनी नज़मों में हिंदू मुस्लिम रिवायात और त्यौहार और मुख्तलिफ मजहबों के बुरगजीदा हस्तियों, हिंदुस्तान के मनाजिर, परिंदों, जानवरों, मौसमों, फलों, खानों वगैरह का रस्मी अंदाज में जिक्र किया है। वो आवाम के दरमियान रहे और उन्हीं के हर त्यौहार में, जैसे शब बारात, ईद, मुहर्रम, होली, दिवाली और राखी को दिल खोलकर मनाया भी और नज़मों का जामा पहनाकर अब्दियत से हमकिनार भी कर दिया, और इस तरह आवाम के दिलों पर राज करते रहे। आम तबके के तमाम मसाइल व दुख दर्द बांटते रहे, जिसकी वजह से असर जदीद में नज़्म निगारी के इमामुल मुज्तहिदीन के खिताब से नवाजे गए। क्योंकि नज़ीर का मसलक एक है और वो ये है कि बिला तफरीक मजहब व मिल्लत और रंग और नस्ल इंसान से मोहब्बत करना। उन्हीं की ज़बान में सुनिए। झगड़ा न करे मजहब व मिल्लत का कोई, यहाँ جس راہ میں جو آن پڑے خوش رہے ہر آن، عاشق تو قلندر ہے نہ ہندو نہ مسلمان، کافر نہ کوئی صاحب اسلام رہے گا، آخر وہی اللہ کا ایک نام رہے گا۔ عوامی مسائل اور فلسفیانہ موضوعات پر بھی ان کی نظمیں بہت مقبول ہوئیں، جس میں بنجارہ نامہ، روٹیاں اور آدمی نامہ نے تاریخی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ نظم روٹیاں کے بند ملاحظہ کیجیے، پوچھا کسی نے یہ کسی کامل فقیر سے، یہ مہر و ماں حق نے بنائے ہیں کاہے کو، وہ سن کے بولا بابا خدا تجھ کو خیر دے، ہم تو نہ چاند سمجھے نہ سورج ہیں جانتے، بابا ہمیں تو یہ نظر آتی ہیں روٹیاں۔ پھر پوچھا اس نے کہیے یہ ہے دل کا نور کیا، اس کے مشاہدے میں کھلتا ظہور کیا، وہ بولا سن کے تیرا گیا ہے شعور کیا، کشف القلوب و کشف القبور کیا۔ جتنے

0: दोस्तों, अभी आप गुलूकार गुलाम अली की आवाज़ में गज़ल समात फरमा रहे थे और कलाम था अहमद फराज का। सामीन, प्रोग्राम के इख्तिताम पर हम आपको शहर भोपाल के एक ऐसे शायर का कलाम सुनवा रहे हैं जिनकी शायरी और उनका अंदाज सभी पसंद करते हैं। आइए सुनते हैं शायर अयाज कमर से उनका कलाम, उन्हीं की जुबानी समात फरमाइए।
1: गज़ल का मतलब मुलाहिज़ा कीजिए। ये कह रहा हूँ बात बराबर हुजूर से, ये कह रहा हूँ बात बराबर हुजूर से, हाँ शख्सियत संवरती है फिक्र व शऊर से, यो मशवरा है अहले कलम को मेरा आयाज, रहना है कोस दूर अना और गुरूर से। ये कह रहा हूँ बात बराबर हुजूर से, हाँ शख्सियत संवरती है फिक्र व शऊर से, ये मशवरा है अहले कलम को मेरा आयाज, रहना है कोस दूर अना और गुरूर से। कता है ये कि शहरे उल्फत से भागने वाले, शहरे उल्फत से भागने वाले, बुग्ज व नफरत को बांटने वाले, सबको मालूम है वो बोने थे कद हमारा तराशने वाले। शहरे उल्फत से भागने वाले, बुग्ज व नफरत को बांटने वाले, सबको मालूम है वो बोने थे कद हमारा तराशने वाले। कता देखें कि मुखालिफीन से डरना हमें नहीं आता, मुखालिफीन से डरना हमें नहीं आता, चुरा के नजरे गुजरना हमें नहीं आता, उन नबर्द आजमा होते हैं रूबरू उनके, जो सच है कह के मुकरना हमें नहीं आता। मुखालिफीन से डरना हमें नहीं आता, चुरा के नजरे गुजरना हमें नहीं आता, नबर्द आजमा होते हैं रूबरू उनके, जो सच है कह के मुकरना हमें नहीं आता। कत्ता देखे सितम का बोझ हरीफों ने हम पे डाला है, सितम का बोझ हरीफों ने हम पे डाला है, तेरे करम ने अभी तक हमें संभाला है। सितम का बोझ हरीफों ने हम पे डाला है, तेरे करम ने अभी तक हमें संभाला है, ये बुजुर्गों की दुआओं का है नतीजा आयाज, हमारी जीस्त में अब हर तरफ उजाला है, हमारी जीस्त में अब हर तरफ उजाला है।

0: आप सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम आईना।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।
0: आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की कहानियों की रेडियो प्रस्तुति का 10वां भाग।

0: इस नाटक का एक पात्र भोला है, उसके बारे में बाद में बताएंगे, पहले उसका हुलिया जान लें।
1: छरहरा जवान, गोरा बदन, चेचक के दाग, कानों में सोने के तो बहुत पतले बाले पड़े हुए, आंखों में कल रात काजल लगाया था जो अभी दूसरे दिन के तीसरे पहर तक धुला नहीं था, और मांग पट्टी के बाल,
0: हाथ में चांदी की एक कांच का टुकड़ा लगी हुई अंगूठी,
1: कुछ गुस्सैल स्वभाव, मानो सारा संसार उसके रूप की हाट में रहन रखा हुआ हो, गर्व से कुछ बनकर कुछ मटक कर चलने की आदत,
0: आदमी होकर जरा में चिढ़ पड़ने और थोड़े में रो पड़ने की आदत, झट से चमक उठने का स्वभाव,
1: अपनी औरों पर की हुई भलाई की लंबी फहरिस्त, बनकर सज धज कर बीच सड़क से निकलने का स्वभाव,
0: विदेशी व स्वदेशी और सर्वदेशी के भाव से परे बिल्कुल ठेठ देशी, पतली लाल किनारेदार पर दाहिने घुटने पर पैबंद वाली धोती, कुर्ता जरा कुछ मैला सा पर सफेद मलमल का, जिसके नीचे लाल रेशम की जैकेट, सफेद कुर्ता मैले से और रेशम की झांकी से संयुक्त झाई खाकर सफेद कम दिखे बैंगनी ज्यादा,
1: पान ठूस कर खाने, उसकी लाली की उंगलियां दीवारों पर पहुंचने और उससे बिगड़े ओंठ कुर्ते से संभाल कर पहुंचने की दक्षता, सिर पर पाग जरा टेढ़ी, बनक कुछ इंदौरी, रियासत अनुराधापुर के निवासियों के सिर पर प्रायः ऐसी ही पाग होती है।
0: पाग का रंग मोतिया, पीलेपन की झाई मारता हुआ,
1: दांतों में सोने की कीलें, हाथ में उंगलियों की पोरों पर मेहंदी लगी हुई, प्रश्न पूछने पर गुर्रा कर घूरने, उपेक्षा से जवाब देने और फिर शर्मा जाने का लहजा,
0: हाथ में बुंदेलखंडी लाठी, सीधी सादी पीली लाठी जिसमें ऊपर सूत का श्रावण की राखी फैशन का रंगीन बुंदा लगा हुआ और बीच बीच में चमड़े के बंद लगे हुए,
1: ठिगना कद, उम्र को छिपाने का संयुक्त हथियार सा, देखने में गुस्सा किंतु बोलने में मुस्कुराहट, मानो सतपुड़ा की इन घाटियों के बीच कोई समथर जमीन ही ना हो जहां स्टेशन बन सके और आदत की गाड़ी ठहर सके,
0: गुलेल रखने और उसे अपनी नजर की ही तरह बेगुनाहों पर छुप कर आजमाने की कुछ सफल और अधिक असफल आदत,
1: कपड़े रंगने और उन्हें संवारने की अच्छी थ्योरेटिकल जानकारी, हाँ कपड़े रंगने की जानकारी मगर काम तेल निकालना, नाम भोला वल्द बच्चू, साकिन अनुराधापुर राज का अनुराधापुर शहर,
0: इसी अनुराधापुर में रमजान का कपड़ा रंगने का काम, दिन भर में रंगीन पानी की हौज में कभी ये कपड़ा डुबोना कभी वो,
1: रमजान को नवाब साहब की पागे रंगने का भी काम मिला हुआ था, इससे उन्हें कुछ आमदनी हो जाती,
0: नसीबन रमजान की पत्नी सीधी सादी नेक औरत,
1: भोला उस दंपत्ति का मुंह लगा हुआ, वो भी उसे बेटा मानते, उसकी एक जिद पर ही तकरार हो रही थी,
0: जरा संभल कर सोचते हुए और अपना हक आजमाते हुए नसीबन ने रमजान से कहा,
2: तो सुस्ती किस बात की आती है ये तो बताओ,
3: अरे तुम तो वैसी हो बेल जैसी, देर देखा ना बबूल सर चढ़ने को दौड़ पड़ी,
2: अरे जो लिपटता है वो ही तो सर चढ़ेगा, कांटे से बदन टकवाना कोई यूं ही अपना रोजगार बनाएगा क्या, 10-20 चुभने वाली बातें सुनते हो और फिर लंबी सफेद दाढ़ी हिलाकर मुस्कुरा देते हो,
3: अरे
2: इस सिर चढ़ाने का तुम ही न्योता देते हो, अरे हाँ जानते हो आखिर लड़का है, उस्मान जब से गुजरा है तब से भोला को मुंह लगा रखा है, लेकिन आज जरा सी बात पर उसे नाराज करते हो, अरे खिलौना तुम ना लाकर दोगे तो कौन लाकर देगा,
0: बात भोला के बारे में ही हो रही है,
1: रमजान रंगरेज है, नसीबन उसकी स्त्री है रंगरेजन, उनके एक ही इकलौता लड़का था उस्मान, कोई 11 बरस हुए, वो 8 बरस की उम्र में गुजर गया,
0: उस्मान के मरने के बाद रमजान की तबीयत कहीं नहीं लगती थी, वो कपड़े रंगता तो हौजों में बने रंग की तरफ ही देखता रहता और तीसरे पहर से शाम हो जाती, रंगे कपड़े सुखाते समय दरख्तों की तरफ देखता तो दरख्तों उनकी डालियों उनके पत्तों और दरख्त पर बैठे पक्षियों की तरफ ही देखता रह जाता,
1: पुत्र शोक एक ऐसा नाला है जो उतरती उम्र के रमजान से लांघा न जाएगा।
0: नसीबन ने रमजान की याद के पैर रखने और संकट के आर पार आने जाने के लिए एक सजीव बुत ढूंढ दिया। ये था बच्चू तेल निकालने वाले का लड़का भोला। बड़ी बड़ी आंखें, गोरा बदन, कोई 10-11 बरस की उम्र। रमजान से बाबा कहता और मोहल्ले में यदि कोई उसे डांटता तो रमजान से आकर लिपट जाता। एक खूंटे से बंधते बंधते पशुओं को घर और घर वालों से मोहब्बत हो जाती है। भोला तो फिर आदमी का बेटा था।
4: अब मैं 20 वर्ष का हो गया हूं। मैं जब भी बाबा से बोलता हूं तो न जाने कैसे मेरी भाषा अधिकार की हो जाती है। उन पर मेरा खूब अधिकार चलता है और वो मेरे लिए सगे से बढ़कर हैं।

0: भोला से मेरा खूब हंसी मजाक होता है। मैं खूब दिल्लगी करता हूँ, खूब हंसी ठट्टा होता है। भोला की बेवकूफ भरी बातों को हंसी मजाक से टालने में बड़ा सहारा मिलता है। देर से की जा सकने वाली बातों को जल्दी से करने की जिद करने पर देर लगाने के लिए समय निकल ही आता है।
1: भोला को उसके एक दोस्त ने न्योता दिया है कि अनुराधापुर रियासत से लगे विशाखापुर रियासत के एक गांव सोना माटी में वो अपने दोस्त की बारात में जाए।
2: तारुण्य, बारात में जाना, मित्र का न्योता, समाज में कुछ हूं दिखाने की साध और खूबसूरती, इन सबके साथ अगर हो चरम दारिद्र्य तो वो गांव खेड़ों की खून से खानी और बदन पर मांस रखने वाली तरुणाई को मौत के घाट ले जाने तक विद्रोहिणी बना डालता है।
1: भोला अपने चाचा के यहां रहता था। उसके न माँ थी न उसका बाप था, नसीबन ही उसकी अम्मा थी और रमजान उसका बाप। अधिकार की ये बुरी आदत है कि वो अपनी मर्यादा सदा ही लांघता आया है। आज रमजान से भोला ने बड़े अधिकार से कहा,
3: बाबा बाबा आज हमारी पंगिया रंग दो, हाँ हमें बारात में जाना है।
0: अरे वारे लाट साहब के बेटे, ना ढंग के कपड़े ना पैरों में जूतियाँ, पगिया रंग दो। वाह भाई वाह, अरे पहले ढंग के कपड़े और जूतियाँ तो ले आ, रंगा ना पाक।
3: ऐसा मत कहो ना बाबा, अब जूतों पर देखो तेल देकर रख दिया है। रेशम की जैकेट पुरानी है तो क्या बुरी है। हाँ वो मलमल का कुर्ता मेला है, उसे मैं धो दूंगा, ना हो तो उसे भी रंग दो ना बाबा।
0: रंग दो। अरे कभी कहता है पाग रंगवानी है, कभी कहता है कुर्ता रंगाना है। अरे लाट साहब, शादी तेरी है या तेरे दोस्त की? ब्याह में रंगा कुर्ता तो दूल्हा पहना करता है मेरे भाई, तेरा कुर्ता कैसे रंग दूं? बारात में जाकर तू दुल्हनिया मांगने लगेगा। हाँ
3: देखा ना अम्मा तुमने, आज बाबा मेरी बात का पैर भी नहीं जमने दे रहे हैं, मेरी कोई बात नहीं मान रहे हैं वो।
0: अरे तेरी बात के पैर न सिर जमे तो कौन जमे और कैसे जमे।
4: अच्छा ठीक है, कुर्ता ना रंगो, वो दूल्हे का ही रंगा रहने दो, पर पगिया तो इसकी रंग दो। जा बेटा जा, अपनी पाग ले आ।
2: पुरुष पर स्त्री के अधिकार की बात पर मानव जन्म से ही विश्वास करता है। भोला तो उम्र की 20वीं 21वीं सीढ़ी पर था। रमजान जरा खांसा, फिर उसने अपना मुंह अपने गले पर पड़े गमछे से पोंछा और हुक्के की गुड़गुड़ी मुंह में लेकर धीरे धीरे इस तरह गुड़गुड़ाने लगा मानो जाड़ों के दिनों में देर से लौटकर आया हुआ कबूतर अपने घोंसले में अपने परिवार को पंखों में दबा प्यार से गुरगुरा रहा हो।
1: बचपन में एक स्वस्थ बच्चा अनेक बड़े आदमियों की दौड़ और फुर्ती अपने में रखता है।
2: भोला अपनी पाग लेकर आ गया और उसे रमजान के पैरों पर रख दिया, मानो वो उसकी आत्म मर्यादा हो जो पगिया रंगवा लेने के लिए रिश्वत की तरह पैरों पर बिखेर गया हो।
1: रमजान ने पाग समेटी और उपेक्षा से नसीबन की तरफ फेंकी।
0: ये 8-9 जगह फटी पगिया है, उसे महज अच्छा रंग देने से उस बेटे को ब्याह में रंगीला दिखने वाला छेला नहीं बना सकती।
3: देखो ना अम्मा, बाबा कैसी बातें करते हैं।
4: अरे ठहर, जरा ठहर तो। अरे आंसुओं के रंगने से ये पाग रंगीन होने से तो रही, इसे तो रंग में ही रंगना होगा। अच्छा बता, कौन सा रंग चाहिए तुझे पाग का?
3: बनिया बैठने तो देता नहीं और कहे झुकता सा तौलना। अरे बाबा कुछ बोलो भी तो।
0: अरे तो बाबा के बेटे, आज तो रंग तैयार नहीं है, रंग को तैयार करने में 24 घंटे लगेंगे। वक्त की घड़ियां भी कोई बिस्तरा है, जिसे जब चाहा लपेट दिया और जब चाहा फैला दिया। अरे तेरी अम्मा क्या हुई के
4: अजी, मैंने तो अभी कुछ भी नहीं कहा। अरे ये चीनी मिट्टी की माट में रंग तैयार जो रखा है
0: वो मोतिया रंग है।
3: मुझे तो मोतिया रंग की पाग चाहिए, इसी रंग में ही पाग रंग दो ना बाबा।
4: हाँ हाँ लो अब रंग लो, बच्चा कितना मिन्नतें कर रहा है।
0: अरे लड़का भोला है मगर तुम तो नन्नी नहीं हो, जानती हो वो चीनी मिट्टी की बात है।

0: सियासत के फरमा खा की पाग रंगने के लिए रंग तैयार किया गया है। घोड़ा बादशाह का है देना है और कल्लू मोदी अपनी खुजड़ी उस पर रखकर दौड़े। अजब मसला है भाई। अरे भोला को बारात में क्या जाना है, तुम्हें उसे सिंगारने के लिए चारों खूट जागीर भी छोटी मालूम होती।
1: नसीबन ने रमजान की बात अनसुनी करते हुए भोला की पगिया उठाई और पानी में भिगोने लगी।
2: अम्मा अम्मा, एक तो मैं पगिया मोतिया रंग में रंगवाऊंगा और दूसरे बाबा मेरी पाग वैसे ही बांध कर देंगे जैसे नायब साहब की पागे बांधा करते हैं। हाँ। और तीसरे स्वयं बाबा रंगेंगे तो पंगिया रंगी जाएगी। हाँ, नहीं तो भोला बारात नहीं जाएगा। हाँ,
1: संधि की शर्तें रख दी गईं। बूढ़ा रमजान अपना निर्मल हाथ से बिखेर कर बोला,
0: वाह वाह वाह वाह वाह, बादशाह सलामत की पांगे तो भुनसारे रंगी जाएंगी और तेरी पहले रंगी जानी चाहिए। ये क्या मजाक करती हो, ये पगिया कैसे रंगी जाएगी भाई?
3: अरे नवाब साहब की पगिया तो जिंदगी भर रंगी है और जिंदगी भर रंगोगे। क्या उस रंग में एक डोब किसी गरीब की पगिया को नहीं मिल सकता? आखिर नवाब साहब की पागे भी तो तुम ही ने बंधी बंधाई डिब्बों में बंद करके दी हैं। तो क्यों ना तुम एक पाग इस छोरे का भी उसी ढब पे बांध दो।
0: ओफो, औरत की जात हो ना, क्या जानो नमक की कीमत और रोटी के हीले को। मैं तो रईस के पाग के रंग में भोला की पाग नहीं डुबूंगा, नहीं डुबूंगा।
2: देखो ना अम्मा।
3: जा रे बेटा, बिना माँ बाप के छोरों को पाग रंगाते वक्त रंगरेज भी ये मालूम करा देना चाहता है कि वो बिना माँ बाप के हैं और गरीब हैं। गरीब गरीब को दुत्कारे और अमीर अमीर किसी कहे, इसे ही दुनिया कहते हैं बेटा।
1: भोला के मुंह को लकवा मार गया। गीली पाग नसीबन की दहली पर ही पड़ी छोड़कर वो चुपचाप चला गया।
0: लड़की की आंखों में गुस्सा भरा था।
3: गुस्सा किस पर करेगा अभागा? बताओ, तुम ही बताओ कि किस पर करेगा बेचारा।
0: अरे क्यों करेगा गुस्सा?
3: अरे पूछते हो क्यों करेगा गुस्सा, पगड़ी पीछे 12 आने ही तो मिलते हैं। इन पैसों से भी क्या भोला महंगा है?
0: ये रंग रियासत के नवाब फरमा खां की पाग रंगने के लिए तैयार किया गया है, उसके रंग में मैं इसकी पाग कैसे डुबो दूं?
3: कैसे डुबो दूं? अरे वैसे ही जैसे जरूरत पड़ने पर अपने बेटे उस्मान की पाग डुबो देते थे।
0: हाँ? उस बार? हाँ? उस बार?
3: सुनो, भोला ने तुमसे उस्मान का दुलार पाया है तो आज पाग रंगवाने और बंधवाने कहाँ जाएगा बेचारा।
0: ठीक कहती हो तुम।
4: दलील वजनदार थी, हाईकोर्ट का फैसला था, दावा मैं खर्च के स्वीकृत हो गया। अनुराधापुर के रईस सोनामाटी के पास के अपने रियासत के गांव गोलनडोह से शिकार करके लौट रहे थे। नवाब फरमा खां साहब के साथ धारनीगढ़ के राजा शार्दुल सिंह, दो शिकारी, दो सरदार और एक घुड़सवारों की टुकड़ी थी।
1: जब मोहनपुर के नाले से सरकारी सवारी गुजर रही थी तब बैलगाड़ियों के पास खड़े लोगों के झुंड के बीच एक गोरे से छोकरे को उन्होंने ठीक अपनी सी पाग बांधे देखा। पाग का बांध वही था, बनक वही थी, पेंच वैसे ही कसे थे, रंग भी वही था। नवाब ने अपने सिर से पाग उतारी और देखा, ये रईस की पाग थी जो सर से उतर रही थी। दोनों को मिलाया।
4: दो पागें, एक भीड़ में खड़े किसी खूबसूरत उठाईगिरे की और दूसरी नवाब की। दोनों आपस में अगर राई बढ़ती न थी तो तिल घटने के लिए भी तैयार न थी। दुखती चोट, अनहोनी और दुर्भाग्य मानो ऐसी चीजें हैं जो होकर रहें। जब नवाब ने अपनी पाग उतारी तब भोला मुस्कुरा दिया। दो घंटे के बाद ज़िबह होने वाले जानवर भी हरी घास को बड़े चाव से खाते हैं।
1: एक सिपाही घोड़े से उतरा। उसने नाले की घाटी पर चढ़ती हुई बैलगाड़ियों को रास्ते में रोका।
5: रुको।
6: जी।
1: अब इसके बाद से पूछताछ शुरू हुई। सिपाही शीतल सहाय ने कड़क कर पूछा,
5: जो पूछते हैं ठीक ठीक बताओ।
6: जी।
5: किस गांव की बारात है?
6: अनुराधापुर की बारात है गरीब परवर।
5: क्या काम करते हो?
6: जी, मेरे पिताजी तेल निकालने का काम करते हैं, यही हमारी रोजी रोटी है।
5: क्या पेशा करते हो?
6: अपना ही पेशा, तेल निकालते हैं, बेचते हैं, यही हमारा पेशा है गरीब परवर।
1: फिर मोतिया पाक के छैल छबीले की तरफ घूमकर सिपाही पूछने लगा,
5: तू कहाँ रहता है बे लड़के?
2: वहीं अनुराधापुर में रहता हूँ गरीब परवर।
5: किसका लड़का है बे तू?
2: मेरे माँ बाप नहीं है, चाचा के साथ रहता हूँ।
5: क्या नाम है तेरा?
2: भोला।
5: बाप का नाम?
2: बच्चू।
5: तेरा बाप क्या करता है?
2: अभी बताया था ना गरीब परवर, मेरे माँ बाप नहीं है।
5: तेरी पाक किस रंगरेज ने रंगी है बे?
2: रमजान बाबा ने।
1: सिपाही ने चट से भोला के सर से पाग उतारी। एक सा रंग, एक सी बनक, एक सी सुंदरता वाली, पर ये गरीब की पाक थी जिसे सिर से सदा के लिए उतारते हुए भी सिपाही के हाथ में झिझक की जगह न थी। सिपाही ने घूर कर लड़के को इस तरह देखा मानो खा जाएगा।
4: भोला सहम गया।
7: अरे कोई है? कोई है इधर? सिपाही शीतल सहाय को बुलाओ।
8: सलाम हुजूर, आपने बुलाया?
7: उस लड़के ने किस रंगरेज का नाम बताया था?
8: जी, वो रमजान रंगरेज। हुजूर, ये वही रंगरेज है जो आपकी पागे रंगा करता है।
7: अच्छा,
8: हाँ।
7: जाओ और जाकर उसे पकड़ कर लाओ।
8: जी।
7: और अगर आने में आना कानी करे तो कोड़े मारते हुए लाना।
8: जो हुक्म हुजूर का।
5: रमजान, ओ रमजान।
9: अरे शीतल साहेब जी, आदाब।
5: आदाब आदाब।
9: आइए यहाँ खाट पर तशरीफ रखिए।
5: अरे ये बैठने बिठाने का समय नहीं है।
9: अरे बैठिए भी सरकार, देखिए कितने पसीने से तरबतर हो रहे हैं। मटके का पानी पी लीजिए हुजूर।
5: रमजान बब्बा जल्दी चलो वरना अनर्थ हो जाएगा।
9: अनर्थ हो जाएगा? सरकार ये क्या कह रहे हैं आप?
5: हाँ हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। मुझे हुक्म है कि तुम्हें जल्दी ही दरबार में हाजिर कर दूं।
10: क्या नवाब बहादुर साहब आ गए हैं?
5: हाँ, अभी अभी शिकार से लौटे हैं और तभी से उनके तेवर चढ़े हुए हैं।
9: जी, हमारे नवाब साहब बड़े नामी हैं। परसों उन्होंने मेरी रंगी और कसी पागे देखी होंगी तो तबीयत बहाल हो गई होगी उनकी।
7: रमजान बब्बा, इस बार पागों की रंगाई नहीं मिलेगी।
9: सरकारी क्या कह रहे हैं आप?
7: इनाम मिलेगा, इनाम। हाँ, धारनी गढ़ के राजा साहब इन पागों की रंगाई बधाई देखकर बाग बाग हो गए हैं, बहुत खुश हैं। हाँ, खलाकर इनाम ले जाना अपना।
9: उसी इनाम का बुलावा आया दिखे। शीतल सहाय जी, आप तशरीफ रखें, मैं अभी चलता हूं।
5: देरी मत करो, सरकार ने जल्दी ही याद किया है। चलो, धारनीगढ़ के राजा साहब भी वहीं पर हैं।
1: रमजान ने मिर्जई पहनी, वो उसके पास ईमान की तरह एक ही थी, और दाढ़ी पर हाथ फेरकर वो अपनी पेट की लाचारी से बंधे हाथों चल पड़ा महल की तरफ।
4: फरमा खां कुर्सी पर बैठे थे और एक टेबल पर सजाकर छह पागें रखी गई थीं। कहना ना होगा कि छह पागों में से रईस की एक पाग हटा दी गई थी और भोला के सिर से उतारी हुई पाग इनमें मिलाकर रख दी गई थी। धारनीगढ़ के राजा शार्दुल सिंह भी वहां पर आ गए।

0: आइए महामहिम, आइए शाही तख्त पर बैठिए।
1: धन्यवाद। हाँ, ये मेज पर क्या सजा रखा है
0: महामहिम?

0: ये 6 पागे हैं
1: ओ
0: जिन्हें रमजान ने रंगा है और बांधा है, और ये अलग दिख रही पाग उस लड़के भोला की है, उसे भी रमजान ने रंगा और बांधा है।
1: बिल्कुल एक जैसा रंग, एक जैसी बांध, बनक एक जैसी, पेंच भी एक जैसे कसे हुए।
0: अब ये तो होगा ही महामहिम, क्योंकि इन्हें रंगने और बांधने वाला भी तो एक ही है।
1: लेकिन नवाब साहब, ये तो हद हो गई। एक रंगरेज जो नवाब साहब की पागें रंगता है, उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो आपकी प्रजा की भी पागें रंगे, वो भी उसी रंग में। ऐसी हिमाकत पर तो उसे संगीन सजा मिलनी चाहिए।
0: जी महामहिम राजा साहब, आने दीजिए कम वक्त रमजान को, खाल उधेड़ कर रख दूंगा।
1: उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई?
0: राजा साहब, ये तो जब वो आएगा तभी पूरी बात का खुलासा हो सकेगा।
1: किसको भेजा है बुलाने?
0: उसी सिपाही को।
1: वही जिसने रास्ते में उस लड़के से पाक के बारे में पूछताछ की थी?
0: जी महामहिम, उस सिपाही का नाम शीतल सहाय है और वो रमजान का घर जानता है।
1: ठीक है,
2: हुजूर को सलाम पेश करता हूँ। राजा साहब को प्रणाम।
0: आने में देर कैसे हुई?
2: हुजूर देरी नहीं की खादिम ने, आने में जो वक्त लगा बस वही हुआ सरकार।
0: ये सब पागे हमारी ही है ना रमजान?
2: आप ही की दिखती हैं हुजूर, 6 पागे ही तो परसों रंग कर खादिम ने पेश की थी।
0: तब तो तुम चोर हो, बदमाश हो तुम।
2: जी, रमजान ने हुजूर का नमक खाया है सरकार, उसकी पीढ़ियों में बेईमानी नहीं की।
0: उस भोला के बच्चे ने क्या धुलाई दी थी तुम्हें?
2: हुजूर, वो तो एक छोटा सा बच्चा है।
1: नवाब साहब, आपका ये रंगरेज आपको भी छोटा बच्चा समझता है और बहलाने की कोशिश कर रहा है आपको।
0: बेईमान, साफ साफ बता, भोला की पाक का रंग और बनक दरबार की पाक के रंग की क्यों है?
2: खता माफ हो सरकार, भोला मेरे बेटी की तरह है। खता माफ हो सरकार, ये नमक का रोटियों का रंग है सरकार, और वो मोहब्बत का रंग है।
0: मोहब्बत का रंग? हराम ज़ादे।
3: सरकार,
0: ले तुझे शायरी का मजा चखाता हूँ।
4: रमजान ने छत की तरफ देखा, मानो शैतान के घर में खुदा को ढूंढ रहा हो। सिर ऊंचा किया, मानो प्रेम सर्वनाश के समय भी दामों से ऊपर खड़ा रहना चाहता हो।
3: सरकार, सरकार माफ करो गरीब परवर, गरीबों को बेटे बेटी समझे अन्नदाता।
4: रमजान खड़ा रहा, महल के पत्थर पिघल उठना चाहते थे। सारे अधिकारी मानो सोचते थे कि आज राजधानी के सुहाग इंसाफ पर हंटर पड़ रहे हैं।
5: बिकी जीभ और कायर कलेजों वाले इस मंजर को लोग टुकुर टुकुर देख रहे थे।
0: चोर, हमारी पाक चुरा कर उस भोला के बच्चे को दे दी। निकल यहां से, निकल।
3: जी,
5: रमजान को धक्के मार कर निकाल दिया गया था, उसकी मिर्जई खून से लथपथ हो गई थी। रमजान अनुराधापुर की सड़क पर इस तरह जा रहा था मानो हिमालय शिखर से ठुकराया हुआ शिला खंड है जो गंगा बनाता चला जा रहा हो।
6: मैं सबसे पहले बाबा को बताऊंगा कि पुलिस वालों ने मेरी पाक छीन ली है। कितने गंदे होते हैं ये राजा और उनके नवाब, गरीबों को पाक भी नहीं पहने देते। अरे क्या हो गया जो मेरी पाक का रंग उसकी पाक के रंग जैसा था? बनक भी वैसी ही थी, पेच भी वैसे ही कसे हुए थे, तो क्या हो गया? सब गंदे। बाबा बाबा बाबा, दरवाजा खोलो, मैं हूं भोला।
7: तू आ गया भोला?

0: अम्मा, बाबा कहाँ हैं?
1: वो तो राजमहल गए हैं। दरोगा शीतल सहाय उन्हें बुलाने आए थे। कह रहे थे कि धरनीगढ़ के राजा साहब को पागों की रंगाई बहुत भाई है और नवाब साहब ने भी बहुत तारीफ की है, इसीलिए वो पागों की रंगाई नहीं बल्कि इनाम देंगे। अरे, तेरी पाग कहाँ है?
0: नवाब और राजा साहब के सिपाहियों ने छीन ली है।
1: क्या?
0: मुझे तो बाबा की चिंता हो रही है। मैं राजमहल जा रहा हूँ अम्मा।
1: अरे अरे, रुक तो सही।
0: नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ।
1: अरे, मैं भी चल रही हूँ।
2: भोला ने नसीबन की बात अनसुनी कर राजमहल की ओर तेज दौड़ लगा दी।
3: या परवरदिगार।
2: रास्ते में लड़खड़ाता, कराहता, आंसू और खून साथ साथ टपकाता रमजान मिल गया। उसे खून से लथपथ देखकर भोला उसके पैरों में लिपट कर रोते हुए बोला,
3: नहीं बेटा, बेटा रोते नहीं।
4: ये क्या है बाबा?
3: रोते नहीं बेटा, नहीं रोते नहीं बेटा।
5: कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की कहानियों की रेडियो प्रस्तुति का 10वां भाग। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और साथ ही वेव्स ओटीटी ऐप पर। शाम के 5 बजने वाले हैं, मीडियम वेव पर हमारी सभा आरंभ होती है। आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण थोड़ी ही देर में होगा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नौसेना के कमांडरों को संबोधित करेंगे। भारतीय नौसेना के शीर्ष कमांडर सम्मेलन कल से 1 अक्टूबर तक नौसेना भवन में आयोजित किया जाएगा। इसमें देश की समुद्री सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। ये नौसेना का सर्वोच्च स्तर का सम्मेलन है। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1 ट्रिलियन डॉलर करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में वस्तुओं के निर्यात में 15% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार के 2000 रुपये से अधिक के चुनिंदा UPI मर्चेंट लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाने का निर्णय संबंधी याचिका पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक और AIIB निवेशक संवाद 2026 में भाग लेने के लिए दोहा पहुंच गई हैं। प्रदेश में सेवा सेतु अभियान सरकार आपके द्वार के तहत 3 अक्टूबर को ग्रामीण और 4 अक्टूबर को नगरीय क्षेत्रों में मेगा शिविर लगाए जाएंगे। ये शिविर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होंगे, जिनमें नागरिकों को विभिन्न शासकीय योजनाओं

0: की सेवाएं और लाभ मौके पर ही उपलब्ध कराए जाएंगे। और मौसम विभाग के अनुसार अगले चार दिनों तक प्रदेश में भारी या अति भारी बारिश की कोई संभावना नहीं है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए पेश है युवाओं का कार्यक्रम युववाणी, प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल केंद्र की है।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं युववाणी और मैं हूं आपका दोस्त शाश्वत विष्णु रावत। दोस्तों, आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम एक छोटे से सवाल से करते हैं। अगर कभी किसी डॉग ने आपको काट लिया तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? घबराएंगे, घर जाकर हल्दी लगाएंगे, किसी रिश्तेदार को फ़ोन करेंगे या फिर इंटरनेट खोलकर इलाज सर्च करेंगे? अब ज़रा दूसरी सिचुएशन सोचिए। आपके फ़ोन पर सोशल मीडिया का एक मैसेज आता है। मैसेज में साफ लिखा है, ये खबर बहुत ज़रूरी है, अभी के अभी सबको फॉरवर्ड करें। आप क्या करेंगे? फॉरवर्ड? या पहले सोचेंगे, भाई इस इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या है? दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों सवाल हमें आज के दिन यानी 28 सितंबर से जोड़ते हैं, क्योंकि आज है वर्ल्ड रेबीज डे यानी कि विश्व रेबीज दिवस, और साथ ही है इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। दो बिल्कुल अलग विषय, एक का संबंध है एक जानलेवा बीमारी से और दूसरे का संबंध है हमारे जानकारी पाने के अधिकार से। लेकिन अगर थोड़ा गौर करें तो दोनों हमें एक ही बात सिखाते हैं, और वो ये है कि सही जानकारी सही समय पर किसी की ज़िंदगी बचा सकती है। तो चलिए शब्दों, विचारों और एहसासों के इस सफ़र की शुरुआत करते हैं एक प्यारे से गीत के साथ।

महान वैज्ञानिक लुईस पास्चर से है, जिनके शोध ने रेबीज के खिलाफ पहला प्रभावी विकसित वैक्सीन करने का रास्ता खोला। जी हाँ, वही रेबीज जो एक जानलेवा लेकिन रोके जाने योग्य वायरल बीमारी है, जो मुख्य रूप से संक्रमित जानवरों विशेषकर डॉग्स के काटने या खरोंचने से इंसानों में फैलती है। सोचिए, एक समय था जब रेबीज का मतलब लगभग निश्चित मौत होता था, और आज हमारे पास वैक्सीन्स हैं, पोस्ट एक्सपोजर ट्रीटमेंट्स हैं, एनिमल वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, इस बीमारी को रोकने का वैज्ञानिक ज्ञान हमारे पास मौजूद है। फिर भी दुनिया में हर साल अनुमानतः 59,000 लोग रेबीज के कारण अपनी जान गंवाते हैं, और इनमें लगभग 99% संक्रमण इन्फेक्टेड डॉग्स से जुड़े होते हैं। यानी विज्ञान ने रास्ता तो खोज लिया, लेकिन उस रास्ते को हर इंसान तक पहुंचना अभी बाकी है। और शायद इसी वजह से वर्ल्ड रेबीज डे सिर्फ एक बीमारी के बारे में बात करने का दिन नहीं है, यह हमें विज्ञान की उस ताकत की याद दिलाता है कि सही नॉलेज, सही रिसर्च और सही समय पर लिया गया सही एक्शन मौत और जिंदगी के बीच का फर्क बन सकता है। और 2026 में इस दिन का संदेश भी है स्ट्रॉन्गर टुगेदर, क्योंकि रेबीज लड़ाई सिर्फ डॉक्टरों की लड़ाई नहीं है। एक रिस्पॉन्सिबल पेट ओनर, एक वेटरनेरियन, एक पेरेंट और एक जागरूक नागरिक, हम सब इस लड़ाई का हिस्सा हैं। बातों के सिलसिले को जारी रखते हुए आइए लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, जिसके बाद हम सुनेंगे किस्सा उस व्यक्ति का जिसे दुनिया में पहली बार रेबीज की वैक्सीन लगी थी।

दोस्तों, कहानी है साल 1885 की। बात फ्रांस की हो रही है। एक 9 साल का बच्चा था जोसेफ माइस्टर। एक दिन उस पर एक रैबिट डॉग ने हमला किया और उसे 14 बार काट लिया। उस समय रेबीज का मतलब लगभग निश्चित मौत था। कोई वैक्सीन नहीं थी, ना कोई भरोसेमंद इलाज था। जोसेफ की माँ उसे लेकर पहुंची वैज्ञानिक लुईस पैस्टर के पास। पैस्टर उस वक्त रेबीज पर रिसर्च

कर रहे थे और जानवरों पर उनका ट्रीटमेंट सफल भी रहा था, लेकिन अभी तक किसी इंसान पर इसे आजमाया नहीं गया था। अब उनके सामने एक 9 साल का बच्चा था और वक्त बेहद कम था। आखिरकार पैस्चर और उनके सहयोगियों ने रिस्क लेने का फैसला लिया। 6 जुलाई 1885 से जोसेफ का ट्रीटमेंट शुरू हुआ। अगले 10 दिनों में उसे 13 इंजेक्शंस दिए गए और फिर दिन बीते, हफ्ते बीते और बाद में आई सबसे अच्छी खबर, जोसेफ को रेबीज नहीं हुआ था, वह बच गया। और इस तरह जोसेफ दुनिया का पहला इंसान बना जिसे रेबीज के खिलाफ यह वैक्सीनेशन ट्रीटमेंट सफलतापूर्वक दिया गया। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं थी, यह उस पल की कहानी थी जब विज्ञान ने एक ऐसी बीमारी के सामने उम्मीद पैदा की जो कभी मौत का दूसरा नाम हुआ करती थी। आज हम वैक्सीन्स और मॉडर्न मेडिसिन को शायद सहज मानते हैं, लेकिन जोसेफ की कहानी हमें याद दिलाती है हर साइंटिफिक ब्रेक थ्रू के पीछे किसी की उम्मीद, किसी का साहस और वर्षों की मेहनत होती है। और शायद इसी वजह से 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे मनाते हुए हम सिर्फ एक बीमारी को नहीं बल्कि उस उम्मीद को भी याद करते हैं जिसने इंसान को रेबीज के खिलाफ लड़ना सिखाया। तो आइए इसी बात पर सुनते हैं एक प्यारा सा गीत, जिसके पश्चात हम बात करेंगे हमारे आज के दूसरे विषय के ऊपर।

दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज वर्ल्ड रेबीज डे के साथ साथ इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर इस दिवस को मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और सबसे पहले 28 सितंबर ही क्यों। दरअसल यूनेस्को ने 2015 में 28 सितंबर को इस दिवस के रूप में घोषित किया था और बाद में 2019 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यानी यूएनजीए ने भी 28 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन के रूप में ऑफिशियली प्रोक्लेम किया। लेकिन असल सवाल है, यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन आखिर है क्या। सरल भाषा में कहें तो इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को जानकारी खोजने, प्राप्त करने और उसे साझा करने का अधिकार और अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि जानकारी केवल नॉलेज नहीं है, जानकारी एम्पावरमेंट भी है। जैसे एक किसान को सरकारी योजनाओं की सही जानकारी मिले, विद्यार्थियों को एजुकेशन और करियर की सही जानकारी मिले तो वह अपने लिए बेहतर फैसले ले सकते हैं और यही इस दिवस का मूल उद्देश्य है, लोगों को जानकारी तक समान और सार्थक पहुँच दिलाना ताकि वे इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लें और समाज में अधिक प्रभावी ढंग से भाग ले सकें। लेकिन दोस्तों, आज के दौर में इस विषय की अहमियत शायद पहले से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि आज हमारे पास इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। ज़रूरी सवाल ये है कि क्या हमें मिलने वाली हर इन्फॉर्मेशन सही भी है। यहीं से आता है कॉन्सेप्ट इन्फॉर्मेशन लिटरेसी का। हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन तक पहुंच नहीं चाहिए, हमें सही इन्फॉर्मेशन को पहचानने की क्षमता भी चाहिए। इसी नोट पर आइए फिर से लें एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और सुने फिल्म ट्यूबलाइट से आतिफ असलम की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत।

तो आइए दोस्तों वापस लौटते हैं अपनी उसी बातचीत पर। आज मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ के दौर में किसी भी खबर को आगे बढ़ाने से पहले उसका सोर्स देखना, उसे वेरीफाई करना और अलग अलग विश्वसनीय स्रोतों से क्रॉस चेक करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि गलत जानकारी सिर्फ गलत फहमियाँ पैदा नहीं करती, कभी कभी बहुत बड़े बड़े नुकसान भी कर सकती हैं। और इसीलिए एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन का संबंध सिर्फ इंटरनेट या टेक्नोलॉजी से नहीं है, इसका संबंध है ट्रांसपेरेंसी से, अकाउंटेबिलिटी से, एजुकेशन से, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से और एक जागरूक समाज से। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना ज़रूरी है, इन्फॉर्मेशन का एक्सेस यूनिवर्सल तभी होगा जब वह इंक्लूसिव भी होगा, यानी भाषा, आर्थिक स्थिति, डिसेबिलिटीज़ या ज्योग्राफिकल लोकेशन किसी व्यक्ति को ज़रूरी इन्फॉर्मेशन से वंचित ना करें। आज डिजिटल टेक्नोलॉजी और AI ने इन्फॉर्मेशन तक पहुंच को पहले से कहीं आसान बनाया है, लेकिन साथ ही डिजिटल डिवाइड और इन्फॉर्मेशन डिसऑर्डर जैसी नई चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। तो दोस्तों आज के दिन शायद हमें खुद से बस एक छोटा सा सवाल पूछना चाहिए, मैं जो इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहा हूँ क्या मैं उसे समझ भी रहा हूँ, और उससे भी महत्वपूर्ण, क्या मैं जो इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुँचा रहा हूँ वह सही है। क्योंकि एक जागरूक समाज सिर्फ वह नहीं होता जहाँ हर किसी के पास इन्फॉर्मेशन हो, एक जागरूक समाज वह होता है जहाँ लोगों के पास सही इन्फॉर्मेशन तक पहुँच हो और उससे समझने की क्षमता हो और उसका जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने की समझ भी हो। और शायद यही है इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश। जानकारी सबके लिए होनी चाहिए और सही जानकारी सही तरीके से सही लोगों तक पहुंचने चाहिए। वक्त आ गया है फिर से एक ब्रेक लेने का, लेकिन रुकिएगा ज़रूर, क्योंकि ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कुछ ज़रूरी रोज़गार अवसरों की।

तो दोस्तों, अब वक्त आ है आज की रोजगार सूचनाओं का। मध्य प्रदेश पुलिस में सूबेदार, स्टेनोग्राफर और सहायक उपनिरीक्षक के कुल 655 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है, जिसके लिए 8 अक्टूबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए आवेदन 6 अक्टूबर तक किए जा सकते हैं। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया में विभिन्न स्ट्रीम्स में ऑफिसर लेवल पदों के लिए आवेदन 5 अक्टूबर तक किए जा सकते हैं। तो ये थी आज की प्रमुख रोजगार सूचनाएं। आवेदन करने से पहले संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट्स पर अधिसूचना और पात्रता अवश्य जांच लें। समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आशा करता हूँ आज के इस कार्यक्रम ने आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर डाला होगा। वंस अगेन, दिस वॉज योर होस्ट शाश्वत विष्णु रावत। सी यू सून। सुनते रहिए युववाणी और जुड़े रहिए ज्ञान, प्रेरणा और संगीत से।

0: अभी आप सुन रहे थे युवाओं का कार्यक्रम युववाणी, प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है एक अंतराल का।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
5: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
6: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
4: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
5: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
5: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
4: शाम सुहानी हो,
5: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनो

0: रंजन
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
0: सफर में
1: आपके साथ
0: आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कभी कभी फिल्म का ये गीत है मुकेश का गाया हुआ, कलमकार साहिर, संगीतकार खयाम।

फिर कब मिलोगी इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं। आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी ने गीत लिखा है, लता मंगेशकर और मुकेश का गाया हुआ गीत।

0: लता मंगेशकर और मुकेश के गाए फिल्म फिर कब मिलोगे की इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है क्षेत्रीय समाचार एकांश का विशेष कार्यक्रम।
1: नमस्कार श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कटियार। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ शुरू हुआ यह सफर निरंतर जारी है।
2: सेवा और सुशासन
1: की इसी सोच के साथ देश को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और समाज के हर वर्ग के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए इन प्रयासों का असर लोगों की जिंदगी में भी दिखाई दे रहा है। श्रोताओं, आज की विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं देश में लागू किए गए जीएसटी रिफॉर्म्स की, जिसके माध्यम से देश के व्यापारियों और आम लोगों को कई सारे करों की जटिलताओं से राहत मिली। भारत की कर व्यवस्था में 1 जुलाई 2017 एक महत्वपूर्ण तारीख के रूप में दर्ज है। इसी दिन देश में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लागू किया गया था। जीएसटी ने केंद्र और राज्यों के अनेक अप्रत्यक्ष करों को एक साझा व्यवस्था में लाने का प्रयास किया और देश में एकीकृत राष्ट्रीय बाजार की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव किए। जीएसटी को लागू हुए 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस दौरान इसमें कई सारे बदलाव हुए हैं। डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल से लेकर रिटर्न फाइलिंग, ई इनवॉइसिंग, इनपुट टैक्स क्रेडिट और टैक्स अनुपालन तक जीएसटी व्यवस्था लगातार विकसित की गई है। वर्ष 2025 में किए गए नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी

0: जीएसटी रिफॉर्म्स के तहत कर ढांचे को और सरल बनाने, आवश्यक वस्तुओं पर कर भार को कम करने और कारोबार के लिए अनुपालन को आसान बनाने पर जोर दिया गया है। और आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। जीएसटी के 9 साल और अब तक की यात्रा, आम उपभोक्ता और कारोबार पर इसका प्रभाव तथा हाल के जीएसटी सुधार। और हमारे साथ इस चर्चा में दो विशेष अतिथि शामिल हैं। हमारे साथ हैं अमित बनर्जी जी, मैनेट भोपाल से। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: और हमारे साथ दूसरे अतिथि हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री संजय वर्मा जी। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत।
2: नमस्कार।
0: संजय जी, सबसे पहले बिल्कुल बुनियादी सवाल से हम शुरुआत करते हैं। जीएसटी लागू होने से पहले भारत की जो अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था थी, काफ़ी अलग अलग करों और प्रक्रियाओं पर आधारित थी। ऐसे में जीएसटी की ज़रूरत क्यों महसूस हुई और जीएसटी ने मूल रूप से कौन सा बदलाव किया?
2: देखिए, मैं अगर उसको बात करूँ तो सबसे पहले जब जीएसटी स्टार्ट नहीं हुआ था, उससे पहले की व्यवस्था में ये था कि वेट, हर स्टेट का अपना अपना वेट होता था
0: जी।
2: उससे पहले कमर्शियल टैक्स होता था, सेल टैक्स होता था, तो ये सब स्टेट वाइज थे। और अगर आप एक स्टेट से कोई चीज़ परचेस करके लाएँ तो वहाँ टैक्स देकर आएंगे, और यहाँ आपने उसको सेल किया है तो यहाँ आप डबल से टैक्स देंगे। इसके अलावा अगर मान लो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी देके जा रहे हैं जिसमें आपके स्टेट में नहीं आ रहा, तो हमको दोनों स्टेट का टैक्स देना होता था
0: जी।
2: और एक ही चीज़ पर एक बार, दो बार, कई बार, तीन बार टैक्स लग जाता था। तो यहाँ जब से हम ये जीएसटी लागू हुआ, तो अगर इसको देखा जाए तो एक कर व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि आप दिल्ली से परचेस कर लाइए, चाहे कलकत्ता से परचेस कर लाइए, चाहे भोपाल से परचेस कर लीजिए, आपको टैक्स में कोई इफेक्ट नहीं आएगा
0: जी।
2: जो परचेस किया उसका आपको इनपुट टैक्स मिलेगा, जो सेल किया उसका आपको टैक्स देना पड़ेगा, चाहे वहाँ से लाएँ चाहे यहाँ से लाएँ।
0: बिल्कुल, कहीं ना कहीं सर इसका जो उद्देश्य था वो करों के दोहराव को कम करना और इनपुट टैक्स क्रेडिट को बेहतर बनाना था। अमित जी, अब आपके पास आते हैं अगले सवाल को लेकर। उद्योग और कारोबार की दृष्टि से जीएसटी लागू होने के समय कारोबार जगत के सामने कई नई समस्याएं थीं। 9 वर्षों के अनुभव के आधार पर उद्योग जगत ने जीएसटी व्यवस्था में किस तरीके के बदलाव महसूस किए हैं?
1: 9 बदलाव, ये इसको कम कह सकते हैं, लर्निंग कर्व था। शुरू में एक आध साल, एक दो साल प्रॉब्लम रही है और सबको रही थी क्योंकि नया था, लेकिन धीरे धीरे सब सीख गए, आदि हो गए, तो अब ये आसान हो गया है। और दूसरी चीज ये, देखिए, कारोबारी का काम ये टैक्स देना ये नहीं है, कारोबारी का काम है कारोबार करना, बढ़ाना आगे। वो अपना काफी समय टैक्स के पेपर्स में और इनमें व्यय करता था, चूंकि क्या है कि अब वो स्टार्टअप और ये सब करना है, जो स्टार्टअप करने वाले आ रहे हैं वो उस माइंड फ्रेम के नहीं है कि अपना दिमाग टैक्स के पेपर्स में लगा है। उनका माइंड फ्रेम अब इस तरह का है कि अब दूसरा चीज, अपने को एक सोसाइटी के बदलाव का सोचना पड़ेगा, जिससे जिसको मैं सोचता हूँ सही वक्त पे जीएसटी का आ गया, जैसे कि पेपर वर्क और जिसे कहते हैं ना हेडेक एक तरीके से रिमूव हो गया। अभी जो नए वेंचर्स आ रहे हैं, नए कंपनीज बनेंगे, वो आपके इंटेलेक्चुअल एसेट से बनेंगे, बौद्धिक संपदा जिसको कहते हैं
0: जी।
1: और वो लोग जो है अधिकतर वो टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेजेस और टॉप के मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के प्रोडक्ट होते हैं
0: जी।
1: उनका दिमाग, चूंकि मैं उन लोगों का टीचर हूँ, उन लोगों का दिमाग इस तरह से नहीं चलता। और आप दुनिया भर में जितनी बड़ी कंपनी जो टॉप की बनी है वो उसी तरह की बनी है इंटेलेक्चुअल एसेट्स से। वो जो जिस प्रकार के लोग हैं, लड़के हैं, बच्चे हैं, जैसे भी हैं, वो लोग इस माइंड फ्रेम के हैं ही नहीं कि अपना ध्यान इसमें टैक्स बचा के, टैक्स छुपा के, टैक्स चोरी करके, ये करके, इत्यादि करके पैसा बना है। वो लोग एक्चुअली कंपनी की वैल्यूएशन, कंपनी की सेल्स, कंपनी का एक्सपोर्ट, गेटिंग इनटू द 1-3 पोजीशन ग्लोबली, एटलीस्ट लोकली, तो उसमें ज्यादा अपना दिमाग लगाना चाहते हैं। तो ये एक्चुअली सही वक्त पे आया, जिससे कि जो शिफ्ट हो रहा था इंडियन सोसाइटी में, ये उस वक्त, उस हिसाब से बिल्कुल सही वक्त पे आया ये
0: जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, एकदम सही वक्त पर, जब बहुत सारी चीजें
1: बदल रही थी,
0: बदलाव का दौर में था हमारा देश, उसी वक्त जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। संजय जी, अगला सवाल मेरा आपसे है। जीएसटी को हम वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा से जोड़ते हैं और वन नेशन वन टैक्स ही है, लेकिन तकनीकी रूप से अगर हम बात करें तो जीएसटी सिर्फ एक कर ही नहीं बल्कि सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी जैसे घटकों वाली एक व्यवस्था है। आम श्रोताओं के लिए आप सरल भाषा में समझाएं कि सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी में वास्तविकता में अंतर क्या है।
2: देखिए, अगर वास्तविकता में बात करें तो जैसा पहले कहा गया वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, तो वो बिल्कुल सही है। सीजीएसटी, आईजीएसटी या एसजीएसटी, जिसको हम अलग नहीं कर सकते
0: जी।
2: ये एक ही टैक्स का पार्ट है, सिर्फ उसको पार्ट इसलिए किया गया
0: जी
2: कि हम एटलीस्ट बाइफर्केशन हमारे पास रहे कि कौन सा ट्रांजेक्शन है इंट्रा स्टेट है, कौन सा इंटर स्टेट है
0: जी,
2: कौन सा। और दूसरी चीज, जब पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि अगर सेंट्रल में गवर्नमेंट किसी की है तो एक स्टेट को उनका रेशो, उनका शेयर कम मिलता था, ये कई बार ऐसा आता था कि आपकी अपोजिशन सरकार वहाँ है। तो ये सब चीज़ें ख़त्म करने के लिए आपको ये बाइफर्केशन हो जाता है, सिर्फ उसको अलग अलग तीन करने का पार्ट यही है, पार्ट में करने का पर्पज यही है कि इससे बाइफर्केशन हो जाता है कि आपका कितना कंट्रीब्यूशन, हर स्टेट का कंट्रीब्यूशन के हिसाब से हम उसको उसके डेवलपमेंट के लिए कितना खर्च करना है हमको, ये डिसाइड करने में आसान। हर स्टेट अपने आप में चेक कर पाता है कि हमारे पास हम कितने पानी में हैं,
0: बिल्कुल,
2: या हम क्या योगदान दे रहे हैं।
0: सरल शब्दों में हम कहें तो जीएसटी ने इस कर व्यवस्था को एक साझा ढांचे में लाने के साथ साथ केंद्र और राज्यों की भूमिका को जो व्यवस्थित किया है अलग अलग, वो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। अगला सवाल अमित जी मेरा आपसे है, जीएसटी व्यवस्था काफ़ी हद तक डिजिटल है, जीएसटीएन पोर्टल, ई इनवॉइसिंग, ऑनलाइन रिटर्न और डिजिटल रिकॉर्ड जैसी व्यवस्थाएं आज इसके महत्वपूर्ण हिस्से हैं जिनके बगैर हम चल नहीं सकते। आप उद्योग और विशेषकर एमएसएमई क्षेत्र की दृष्टि से बताएं कि डिजिटल जीएसटी व्यवस्था ने कारोबार करने के तरीके को किस तरह से बदला।
1: पहले वो एक एम्प्लॉय रखता था, चार्टर्ड अकाउंटेंट
0: जी,
1: उस एक जो मैंने खुद देखा भी है
0: जी,
1: उसका काफ़ी वक्त एक टैक्स कंसल्टिंग और इन सब में चला जाता था, अब वो एक्चुअली प्रॉपर बिजनेस में करता है। दूसरी बात है ये खासकर 91 से शुरू हुआ था, प्लस पिछले 10-12 साल में जो महसूस किया गया है कि सरकार चाहती है कि छोटे कारोबारी छोटे नहीं रहें, बड़े बन जाएं, और वो जब अपना वक्त कारोबार में लगाएंगे, भाई कारोबारी का काम है कारोबार करना, बिजनेसमैन का काम है बिजनेस को बढ़ाने के लिए करना, ना कि टैक्स सेविंग टैक्स अवॉइडेंस इनमें, तो अब वो उसमें वक्त लगा रहा है। तो इसीलिए डिजिटल करने का मतलब यही है कि जितनी जल्दी आप अपना काम कर सको करो, ट्रांसपेरेंसी रखो करो और आगे बढ़ो, ठीक है। और दूसरी बात ये हम भूल जाते हैं, दुनिया में बहुत पहले से ही आ गया था, मेरा था ख्याल है 1985 से ही आ गया था
0: जी,
1: और यूरोप में तो तब से आ गया था। तो उनमें क्या था कि वो उनका कारोबार देखिए, अब 80 से उनका एकदम शूटअप किया जीडीपी और ये सब, हम लोग पीछे रह गए, हम लोग दिस वाज वन ऑफ द रीजंस, मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस और फॉर्म्स और ये वो कर कुरा के हम लोग बहुत पीछे रह गए, हमसे कारोबार वो करना भी नहीं चाहते थे। हमारे एक्सपोर्टर्स को प्रॉब्लम होती थी, इंपोर्टर्स की तो बात ही छोड़िए, बहुत ही मुश्किल था, एक्सपोर्टर्स को प्रॉब्लम होती थी। तो अब वो धीरे धीरे खत्म करके वो अब आगे बढ़ रहे।
0: बिल्कुल ठीक है सर। आप संजय जी, अगला सवाल मेरा आपसे है, अब हम बात करते हैं आम आदमी की। आम आदमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि जीएसटी में किए गए जो बदलाव हैं उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर किस प्रकार से असर डाल रहे हैं, खासतौर पर भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन तथा घरेलू उपयोग की वस्तुओं के संदर्भ में, तो इसको आप किस प्रकार से देखते हैं और श्रोताओं को कैसे समझें।
2: देखिए, सबसे पहले बात, अगर हम ये जो आप बोल रहे हैं ये चेंजेस किए गए, घरेलू उपभोक्ता के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, सबसे ज़्यादा उसको फायदा मिला है
0: जी।
2: जैसे कि भोजन की बात करें तो भोजन में जो रेस्टोरेंट्स हैं उनका टैक्स उन्होंने सबसे कम टैक्स रखा, फिक्स टैक्स रखा। सबसे कम टैक्स रखने से ये हुआ कि उनके ऊपर जो एडिशनल इफेक्ट आता है वो नहीं आ रहा, तो उसके कारण उनके पास बचत हो रही है और उपभोक्ता भी ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूज़ करना चाहता है
0: जी।
2: इसी तरीके से परिवहन की बात करें, परिवहन में भी टैक्स रेट कम हुआ है, और अगर जैसे सीमेंट पे कम हुआ, अगर सीमेंट पे टैक्स कम होता है तो कम होने का इफेक्ट ये होगा कि जो मकान बनेगा, कंस्ट्रक्शन होगा, उसकी कॉस्ट घटेगी, उसका इफेक्ट भी आम उपभोक्ता पे आ गया। इसी तरीके से कई चीज़ों, शिक्षा पर भी देखें तो शिक्षा पर तो जीएसटी है ही नहीं,
0: है ही नहीं,
2: ये तो ठीक है। और स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य में जो हेल्थ इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस पर जीएसटी कम किया है
0: जी।
2: जब इंश्योरेंस पर टैक्स कम किया तो उसे कम करने का ये प्रभाव पड़ा कि जो लोग आज इंश्योरेंस नहीं कराते थे उनको भी अवेयरनेस आई कि उनको इंश्योरेंस करा लें, कल को कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका वो इजीली ट्रीटमेंट हो सकता है
0: जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने सर। अगला सवाल मैं फिर आपसे ही करूंगा, क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी हमने थोड़ी सी चर्चा की, लेकिन अगर आम आदमी के संदर्भ में हम स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें, दवाओं पर जीएसटी की दरों में कमी आई है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा की अभी चर्चा हुई उस पर भी जीएसटी की छूट दी गई है, तो एक सामान्य परिवार के लिए इन बदलावों का व्यावहारिक अर्थ क्या है, सरल शब्दों में हमारे श्रोताओं को समझाइए।
2: सबसे पहले दवाओं में भी कुछ जो मेडिसिन है, जैसे कैंसर वाली मेडिसिन है
0: जी,
2: या कुछ स्पेशल बीमारी के लिए कुछ मेडिसिन हैं
0: जी,
2: लाइफ सेविंग ड्रग्स वगैरह है, उन पे टैक्स बिल्कुल इतना कम किया गया कि जिसके कारण जो कॉस्ट बढ़ने के कारण लोग नहीं कर पाते थे
0: जी,
2: तो वो सबसे बड़ा इफेक्ट तो ये आया है
0: जी।
2: इसके बाद जैसे जैसा कि मैंने बताया पहले कि इंश्योरेंस का, इंश्योरेंस पे टैक्स कम हुआ है, इंश्योरेंस पे जीएसटी कम होने से हमको ये इफेक्ट हुआ कि इंश्योरेंस जो नहीं ले पाते थे, और कई बार ऐसा होता था ट्रीटमेंट कराने के लिए जाने में लोगों की जमीन बिक जाती थी या उनके पुराने डिपॉजिट खत्म हो जाते थे, गोल्ड बेचना पड़ता था
0: जी।
2: तो वो सब चीज़ें कम हो गई अगर इंश्योरेंस है, और हो सकता है 10-20 हज़ार रुपये प्रीमियम भर के उनका 1-2 लाख का या 4 लाख का इलाज भी हो जाता था, नहीं तो पहले काफ़ी प्रॉब्लम होती थी।
0: बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। अमित जी, अगला सवाल मेरा आपसे है, जीएसटी रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो एमएसएमई, स्टार्टअप्स और छोटे कारोबारियों पर एक विशेष ध्यान इसमें रखा गया है। आपकी नज़र में सरल टैक्स व्यवस्था और डिजिटल अनुपालन युवा उद्यमियों और नए कारोबार शुरू करने वालों के लिए किस तरह से उपयोगी है?
1: देखिए, युवा और जो नए कारोबारी एक ही है, वो युवा ही शुरू कर रहे हैं
0: जी,
1: वो पैदाइशी डिजिटल एज में हुए हैं, तो उनके लिए डिजिटल कर देना बड़ा अच्छा है। और जिससे कि उनको सहूलियत हो गई। मैंने कहा ना कारोबारी का काम कारोबार करना है, वो इस तरफ टैक्स सेविंग और टैक्स बचा के पैसा कमा

0: कमाना, प्रॉफिट कमाना वहाँ से नहीं है। और जहाँ तक, चूंकि मैं एज ए प्रोफेसर, एज ए टीचर युवाओं से ज़्यादा डील करता हूँ, वो उस माइंडसेट के हैं ही नहीं। और मैं खुद, आप मानेंगे नहीं, मैं खुद मेंटर हूँ कई, कम से कम 4-5 स्टार्टअप जो हमारे इंस्टीट्यूट में हो रहा है, उनका माइंडसेट है ही नहीं। वो तो सीधा उसमें अब आ रहे हैं, थर्ड ईयर से आ जाते हैं बच्चे, फोर ईयर इंजीनियरिंग कोर्स में थर्ड ईयर से बच्चे आ जाते हैं, तो उनका माइंडसेट है ही नहीं। वो तो टैक्स और जीएसटी उनके उसमें लहजे में है ही नहीं। तो इसलिए सरकार ने ये अच्छा किया, क्योंकि यही देखिए बौद्धिक संपदा वाली जो कारोबार हैं, अब वही बढ़ेगी। आप दुनिया की टॉप फर्म्स ले लीजिए, अल्फाबेट मतलब गूगल, मेटा मतलब ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, ये एप्पल, यहाँ तक कि बौद्धिक संपदा वाले हैं। और सबसे ज़्यादा अभी आ जाए तो आप सोचिए देश की हालत बदल जाएगी, देश की हालत बदल जाएगी। और ये युवा जो ऐसे बढ़िया से टॉप क्लास इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं वही कर सकते हैं, बौद्धिक संपदा वाले जो टॉप क्लास इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं वही कर सकते हैं। आप जरा इमेजिन कीजिए, वहाँ पे 5-6 कंपनियां हैं, उसका 1/5 हमारे यहाँ आ जाए तो हमारी सूरत बदलनी शुरू हो जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग ही आपको अब मास एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। तो ये हमारा ट्रेडिशनली 90 से पहले स्ट्रांग था सेक्टर, फिर ये चाइनीज कंपटीशन के कारण एंड हम लोग हाथ खड़े हो गए। तो अब वापस से हम इनको रिवाइव करके एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और एक्सपोर्ट्स इसमें बढ़ाना चाहते हैं। और अब तो क्या चाइना क्या, अब तो वियतनाम, बांग्लादेश, ये लोग, ये सब कंट्रीज भी आ गए हैं। इन सब से कंपीट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें इन सेक्टर्स में स्पेसिफिक ध्यान देना। इन स्पेसिफिक इस सेक्टर्स के दो हैं, एक तो एक्सपोर्ट वैल्यू, एक्सपोर्ट तो हमारा वापस से आ जाएगा, और दूसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार।
1: जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। चर्चा के अंत में एक सवाल का उत्तर मैं दोनों से ही चाहूंगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण सवाल भी है। जीएसटी के अगले चरण में आपकी नजर में सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? सरलता, स्थिरता, कंप्लायंस में आसानी, या कारोबार की लागत को कम करना? अमित जी पहले आप।
0: देखिए जीएसटी की इनडायरेक्ट टैक्स का एक पहलू ये है कि इसको हम रिग्रेसिव कहते हैं। रिग्रेसिव इसलिए कहते हैं, अमीर आदमी अगर साबुन खरीद रहा है 30 रुपए का, उसको अगर 2 रुपए का जीएसटी लग रहा है या 3 रुपए का जीएसटी लग रहा है वो पे कर सकता है। गरीब आदमी के लिए वो प्रॉब्लम हो, ठीक है, वो आदमी का इनकम नहीं देख, एक तो ये है, इसलिए रैशनलाइजेशन और हो सकता है कम हो जाए। दूसरी बात ये कि जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी, टर्नओवर बढ़ेगा, तो हो सकता है सरकार और कम कर दे 18% वाले आइटम्स को, शायद और कम कर दे। 5% में तो खैर गुंजाइश अब है नहीं, तो वो और कम कर दे, पर वो डिपेंड करता है कि आपका कितना आगे जाता है। तीसरा, जितना जल्दी इसमें इनपुट और ये सब देना सरकार शुरू करेगी, मैं कहा ना वर्किंग कैपिटल अभी भी प्रॉब्लम है, तो जितना जल्दी उसमें सेफगार्ड्स पैदा हो जाएंगे उतना जल्दी सही रहे।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। संजय जी आप
2: देखिए, जहाँ तक अगर हम पिछले 9 साल का रिकॉर्ड उठा के देखें तो 9 साल के रिकॉर्ड में जीएसटी जो शुरू में था उससे हमारा कम ही हुआ है, किसी भी चीज पर बढ़ा नहीं है आज तक। मेरे ख्याल से अगर 9 साल का रिकॉर्ड देखें तो किसी भी आइटम पे जीएसटी बढ़ा नहीं है। तो जैसे जैसे जीएसटी में हम इम्प्रूवमेंट आता जा रहा है उसकी कंप्लाइंसेज में सभी तरह की, तो उसमें टैक्स रेट कम किए जा रहे हैं, और टैक्स रेट जहाँ कम होता है तो इफेक्ट तो उपभोक्ता पे आता ही है। तीसरी बात, जैसे सर का कहना है 5% से कम नहीं जा सकते, तो इसमें ये ऐड करना चाहूंगा कि 5% को कम करके 3% भी कर सकते, कुछ आइटम अभी भी कम परसेंट वाले हैं, प्लस उनको एग्जेम्प्टेड में भी ला सकते हैं।
1: श्रोताओं, एक बहुत ही सार्थक चर्चा हुई। अमित जी और संजय जी, आप दोनों ने जीएसटी की यात्रा और इसके विभिन्न पहलुओं को बहुत सरल तरीके से समझाया। कार्यक्रम में शामिल होने और अपना अमूल्य समय देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय समाचार एकांश का विशेष कार्यक्रम। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है 1 अंतराल का।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए पेश हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार के 2000 रुपए से अधिक के चुनिंदा यूपीआई मर्चेंट लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लगाने का निर्णय संबंधी याचिका पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक और AIIB निवेशक संवाद 2026 में भाग लेने के लिए दोहा पहुंच गई हैं। प्रदेश में सेवा सेतु अभियान सरकार आपके द्वार के तहत 3 अक्टूबर को ग्रामीण और 4 अक्टूबर को नगरीय क्षेत्रों में मेगा शिविर लगाए जाएंगे। ये शिविर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होंगे, जिनमें नागरिकों को विभिन्न शासकीय योजनाओं की सेवाएं और लाभ मौके पर ही उपलब्ध कराए जाएंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नौसेना के कमांडरों को संबोधित करेंगे। भारतीय नौसेना के शीर्ष कमांडर सम्मेलन कल से 1 अक्टूबर तक नौसेना भवन में आयोजित किए जाएंगे। इनमें देश की समुद्री सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। ये नौसेना का सर्वोच्च स्तर का सम्मेलन है। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के $863 अरब से बढ़ाकर $1 ट्रिलियन करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में वस्तुओं के निर्यात में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है और मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों में प्रदेश में भारी या अति भारी बारिश की कोई संभावना नहीं है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
1: और अजीत का भी नमस्कार, धन्यवाद सभी श्रोताओं को कि आप हमारे कार्यक्रम से लगातार जुड़े रहते हैं। तो आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: दुनिया को खुश करने की नहीं, अपने घर परिवार और अपनों को खुश रखने की कोशिश कीजिए। अगर आपका परिवार खुश है तो आप सबसे खुश नसीब इंसान हैं।
1: और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी, अस्मा नाज अंसारी और सुल्तान अंसारी जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद अखिला प्रसाद जी का। उन्होंने लिखा है,
1: अजीत जी और विमलेश जी, जापानी मशीनों को रिटायर करने का विषय बहुत ही शानदार था। सच कहूं तो इस विषय ने मुझे 15 साल पीछे पहुंचा दिया
2: जी,
1: और मेरे पुराने वाहन के साथ बिताई मीठी यादें ताजा कर दी
2: जी।
1: मेरा स्कूटर बहुत पुराना था और मैं उसे बेचना चाहता था। यकीन मानिए कि मैंने भी ठीक वही किया जो जापानी लोग करते हैं। मैं अपने स्कूटर के सामने खड़ा हुआ, मैंने प्रार्थना की और अपने वाहन से कहा, तुमने मुझे इतने सालों तक बिना किसी दुर्घटना के चलाया, तुमने हर समय मेरी सुरक्षा का ख्याल रखा।
2: ये कहते हुए मैं भावुक हो गया और आखिरकार मैंने अपना स्कूटर रिटायर कर दिया और एक कार खरीद ली। कार होने के बावजूद मुझे उस पुराने स्कूटर को चलाने का वो सुकून कभी नहीं मिला जो मैंने अपने प्यारे स्कूटर के साथ बिताए। उन शानदार पलों को अपने जीवन में कभी वापस नहीं पा सका। आप दोनों बड़ी मेहनत करते हैं। उमंग में इस दुर्लभ विषय को उठाने के लिए आप दोनों का तहे दिल से धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रसाद जी। और अगला संदेश हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। लिखते हैं,
2: 2 सितंबर के कार्यक्रम में आपने जापान में पुरानी मशीन को हटाने से पहले उस मशीन के सामने खड़े होकर नतमस्तक होकर धन्यवाद करने की परंपरा के बारे में बताया। ये बहुत ही शिक्षाप्रद और मार्मिक सीख हमें देता है कि आज हम जिस जगह पर हैं या हम जो कुछ भी हैं, इन पर अपने बड़े बुजुर्गों, माता पिता, गुरुजनों और अपने परिवार का योगदान, सहयोग, साथ और उनका आशीर्वाद जरूर जुड़ा हुआ है। अतः उन्हें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हम अपने अतीत को कभी न भूलें, चाहे हम कितनी ही शोहरत और सफलता हासिल कर लें।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है मुंडा टोला बालोद छत्तीसगढ़ से डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी नेताम, चंचल नेताम, कामेश नेताम और माहिर नेताम जी का।
2: ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत, हेमंती प्रजापति लिखते हैं,
1: उमंग कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी, आपको हमारा सादर प्रणाम। हम आपका कार्यक्रम नियमित रूप से सुनते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगता है और बड़ी ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती है।
2: भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू लिखते हैं,
1: नमस्कार। उमंग कार्यक्रम की कार्यक्रम समीक्षा लिखते समय हम सदैव इस दुविधा में रहते हैं कि किस अंक की समीक्षा लिखी जाए और किस अंक को छोड़ा जाए, क्योंकि हम उमंग का प्रत्येक अंक सुनते हैं और हमें हर अंक बहुत ही भाता है।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: आगे लिखते हैं, 4 सितंबर के अंक में एप्पल मैन ऑफ हिमाचल प्रदेश सत्यानंद स्टोक्स, जिनका वास्तविक नाम सैमुअल इवेंस स्टोक्स जूनियर था, जो अमेरिका के फिलाडेल्फिया से कुष्ठ रोगियों की निस्वार्थ सेवा हेतु हिमाचल प्रदेश में आए, कुष्ठ रोगियों के तन मन धन से सेवा की और एक सबसे बड़ा कार्य हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादक किसानों के लिए उन्होंने किया कि अमेरिका के लुसियाना प्रांत से उच्च गुणवत्ता वाले सेब के पौधों को मंगवाकर उनकी खेती की और पूरे देश और विदेश में हिमाचल प्रदेश का नाम प्रमुख सेब उत्पादक केंद्र के रूप में विख्यात कर दिया
2: जी।
1: ऐसी नायाब जानकारी मुहैया कराकर पूरी उमंग टीम ने हमें अपना ऋणी बना लिया है। आप दोनों का हृदय से धन्यवाद।
2: आप सबको भी प्रतिक्रियाएं भेजने के लिए हमारा आभार। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
1: तो हमारा पहला प्रश्न था श्रोताओं कि राष्ट्रगान जन गण मन को संगीतबद्ध किसने किया था।
2: इसका उत्तर है साथियों, राष्ट्रगान जन गण मन को स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वरबद्ध किया था।
1: और फिर हमने आपसे पूछा था कि साइकिल का आविष्कार किसने और कब किया था।
2: तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। साइकिल का आविष्कार जर्मनी के कार्ल वॉन ड्राइस ने सन 1815 में किया था।
1: हमारा अगला प्रश्न था आपसे कि थर्मामीटर को हिंदी में क्या कहते हैं और इसके आविष्कार से जुड़े मुख्य 3 वैज्ञानिकों के नाम बताइए।
2: श्रोताओं, इसका उत्तर है थर्मामीटर को हिंदी में ज्वरमापी यंत्र कहते हैं। इससे जुड़े मुख्य वैज्ञानिक हैं गैलीलियो, ग्रेबियल फेरेनहाइट और स्वीडन के एंडर्स सेल्सियस।
1: हमारा अगला प्रश्न था, बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किया था हंगरी के पत्रकार और आविष्कारक लाइज़लो बायरो ने।
1: हमारा अंतिम प्रश्न था आपसे कि स्टेथोस्कोप के आविष्कारक कौन थे और ये शब्द यानी स्टेथोस्कोप किस भाषा से आया है?
2: स्टेथोस्कोप के आविष्कारक थे फ्रांस के डॉक्टर रेने लेनेक। स्टेथोस्कोप नाम दो ग्रीक शब्दों से बना है, स्टेथोस यानी छाती और स्कोपियन यानी देखना या निरीक्षण करना।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं प्रश्नों में प्रतिभागिता के लिए। और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री किसे कहते हैं और ये कहाँ स्थित है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: दक्षिण गंगोत्री किसे कहते हैं और

0: और ये कहाँ स्थित है?
1: तो 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर हमारे प्रश्नों के उत्तर या प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं।
0: जी,
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है बोलने वाली माद।
0: NCERT की कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में

0: दिखाई दी। रात काटने के लिए वह उसी में ही घुस गया। उस मांद में घुसकर उसने सोचा,
1: इसमें कोई ना कोई पशु तो रहता ही होगा। जब वो विश्राम करने के लिए इसमें घुसेगा, मैं उसे दबोच लूंगा।
0: यह सोचकर वह उस मांद में एक ओर छिप कर बैठ गया। उस मांद में दधिपुच्छ नाम का एक सियार रहा करता था। वह मांद की ओर आ रहा था। मांद के द्वार पर आकर उसने देखा तो उसे सिंह के पैरों के चिन्ह दिखाई दिए। चिन्ह मांद की ओर जाने के लिए तो थे, पर लौटने के नहीं थे। उसने सोचा,
1: हे भगवान, आज तो मेरी जान पर ही आ बनी। इसके भीतर अवश्य ही कोई सिंह घुसा बैठा है।
0: उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कि सिंह इस समय भी मांद के भीतर ही है या बाहर निकल गया है। सोचने से क्या नहीं हो सकता। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझ ही गया। मांद के द्वार पर जाकर उसने पुकारा,
1: ए मेरी मांद।
0: पुकार कर वह चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा,
1: अरे तुझे क्या हो गया है, आज बोलती क्यों नहीं? पहले तो जब मैं तुझे पुकारता था तू झट बोल पड़ती थी। क्या तू ये भूल गई कि मैंने तुझसे कहा था कि मैं जब भी बाहर से आऊंगा तब तुझे पुकारूंगा, और जब तू उत्तर देगी उसके बाद ही मैं मांद के भीतर आऊंगा। यदि तूने इस बार भी उत्तर ना दिया तो मैं तुझे छोड़कर किसी दूसरी मांद में चला जाऊंगा।
0: अब सिंह को विश्वास हो गया कि सियार के पुकारने पर यह मांद सचमुच उत्तर दिया करती है। उसने सोचा,
1: आज मैं आ गया हूँ, इसलिए डर के मारे इसके मुंह से ध्वनि नहीं निकल रही है।
0: उसने सोचा,
1: ये मांद नहीं बोलती है तो कोई बात नहीं, इसके स्थान पर मैं ही उत्तर दे देता हूँ। यदि चुप रहा तो हाथ आया शिकार भी चला जाएगा।
0: यह सोचकर सिंह ने उसका उत्तर दे दिया। उसकी दहाड़ से वह मांद तो गूंज ही उठी, आसपास के पशु भी चौकन्ने हो गए। सियार वहां से यही कहते हुए चंपत हो गया कि
2: इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया, पर आज तक कभी किसी मांद को बोलते हुए नहीं सुना।
3: अभी आपने सुना ये हास्य प्रधान खूबसूरत कार्यक्रम बोलने वाली मांद, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम धन सिंह थापा।
4: इस कार्यक्रम के द्वारा भारत की स्थल सेना के जाबाज और पराक्रमी सैनिक धन सिंह थापा के जीवन और भारत चीन के युद्ध के दौरान उनके शौर्य के बारे में बताया गया है, जिसके कारण उन्हें भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: अरे पता नहीं आज गांव के मुखिया जी ने सभी गांव वालों को क्यों बुलाया है।
1: देखते हैं।
2: और वो भी अचानक।
3: अरे भैया मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, चलो सभा में पता चल ही जाएगा।
4: अरे देखो देखो मुखिया जी आ गए।
0: लेकिन साथ में फौजी भाई धन सिंह थापा का परिवार भी है, ऐसा क्यों भाई?
2: भैया कोई खास बात है जरूर।
3: हाँ, अरे भैया कल देर रात ना एक फौजी गाड़ी भी गांव में आई थी।
2: अच्छा,
3: कुछ फौजी धन सिंह के घर आए थे। हाँ, बस थोड़ी देर रुके और फिर चले गए।
2: अरे भैया कुछ पता नहीं क्या क्या मसला क्या
1: है। ठीक है, भगवान सब
2: क्या हो रहा है मुझे नहीं समझ आ रहा।
5: सभी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। भाई और बहनों, आज एक शोक सूचना देने के लिए मैंने आप सबको बुलाया है।
2: शोक सूचना?
5: हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं पड़ोसी देश चीन से हमारा युद्ध समाप्त हुआ है।
4: जी जी मुखिया जी, बहुत बहादुरी से युद्ध किया था हमारी भारत की सेना ने।
5: हाँ बिल्कुल, हमें अपने वीर सैनिकों पर गर्व है और हमारे गांव के लिए तो और भी गर्व की बात है कि हमारे भाई धन सिंह थापा इसी गांव से है।
2: वो भी तो मोर्चे पर लड़ रहे थे, उनका कोई समाचार?
5: हाँ, कल रात भारतीय सेना द्वारा सूचना दी गई कि
6: सब ठीक तो है ना मुखिया जी?
7: कैसे हमारे भाई?
2: बताओ तो
7: थापा जी कैसे हैं?
5: सेना द्वारा सूचना मिली है कि हमारे जांबाज भाई मेजर धन सिंह थापा लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर बहादुरी से लड़ते लड़ते शहीद हो गए।
8: भगवान ये क्या हो गया, क्या हो गया? सेना से लड़ते लड़ते शहीद हो गए, क्या हो गया?
1: कैसे समाचार?
5: हाँ साथियों, शोक समाचार तो है ही, लेकिन एक एक ऐसा समाचार भी है जिसको सुनकर हम सबका सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। मेजर धन सिंह थापा को उनकी असाधारण वीरता के लिए मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है।
9: अरे धन्य है हमारी गांव की माटी जिसने ऐसे जाबाज योद्धा को जन्म दिया।
10: अरे वो हमारा गौरव है,
6: हमारा गौरव है।
9: हमारे देश की माटी निहाल हो गई, निहाल हो गई मुखिया जी। मेजर धन सिंह थापा अमर रहे, मेजर धन सिंह थापा अमर रहे।
5: साथियों, उनका पार्थिव शरीर युद्ध भूमि से प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हमें संपूर्ण सम्मान के साथ उनकी अंतिम क्रिया संपन्न करनी है।
3: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं मुखिया जी,
6: सही कह रहे हैं मुखिया जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
9: जब तक सूरज चांद रहेगा
11: धन सिंह थापा तेरा नाम रहेगा।
9: भारत माता की
11: जय,
9: भारत माता की
11: जय।
12: साथियों, प्रायः ऐसा माना जाता है कि युद्ध का अंत विजय से ही होना चाहिए। चीन से युद्ध में भारत की पराजय हुई, लेकिन राष्ट्रों की हार जीत से परे वीर योद्धाओं की गाथाएं ऐसी होती हैं जो अजर अमर हो जाती हैं।
13: मेजर धन सिंह थापा की शौर्य गाथा एक ऐसा ही जीवंत उदाहरण है।
12: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के पास एक गांव है, गांव का नाम है सुरम्य।
13: इसी गांव में 10 अप्रैल 1928 को एक नेपाली परिवार में धन सिंह थापा का जन्म हुआ था।
12: स्थानीय लोग बताते हैं कि धन सिंह थापा को बचपन से ही सेना में जाने की प्रबल इच्छा थी। वो भारतीय सैनिकों की वर्दी, उनका अनुशासन और जीवन शैली से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने अपनी टीम को बहुत सारे मैचों में विजय दिलाई थी।
9: ले, ले, ले, ले, ले, ले, ले, ले,
13: आखिरकार वो दिन आ गया जब 28 अगस्त 1949 को धन सिंह थापा ने भारतीय सेना की 8 गोरखा राइफल्स में कमीशन प्राप्त किया। गोरखा रेजिमेंट अपने अपूर्व शौर्य और युद्ध कौशल के लिए पूरे विश्व में जानी जाती है।
12: गोरखाओं के बारे में कहा जाता है कि एक गोरखा 10 सैनिकों पर भारी पड़ता है। सन 1962 के प्रारंभिक महीनों से ही भारत चीन सीमा पर युद्ध की आशंकाएं सर उठाने लगी थी।
0: जय हिंद साहब, आपने मुझे याद किया।
14: जय हिंद धन सिंह। हमारी सीमा पर इस समय जो हालात चल रहे हैं उन्हें तुम अच्छी तरह से जानते हो।
0: जी श्रीमान, मुझे इसका भान है।
14: बेशक अब तक चीन की फौज ने हमला नहीं किया है, लेकिन उनकी हरकतों और जमावड़े को देखकर ये बात पक्की है कि वो हमला जरूर करेंगे।
0: जी श्रीमान, लगता तो यही है। सुना है वे फौजियों की संख्या भी बढ़ाते जा रहे हैं।
14: तुमने ठीक सुना है धन सिंह। हम चाहते हैं कि तुम अपने दल के साथ पेंगोंग झील के उत्तर की ओर सिरी जाप वन चौकी पर फौरन तैनात हो जाओ। तुम्हारी प्लाटून का काम होगा हर हाल में चीनी सैनिकों की बढ़त को रोकना।
0: जी श्रीमान, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि दुश्मन आगे बढ़ने न पाए।
14: धन सिंह, हमें तुम पर पूरा भरोसा है और हम जानते हैं इस काम को तुम बखूबी अंजाम दोगे। बेस्ट ऑफ लक माय सन, बेस्ट ऑफ लक।
0: थैंक यू सर।

0: मेजर धन सिंह थापा अपनी टुकड़ी के साथ सिरिजा पोस्ट पर तैनात हो गए। मेजर धन सिंह थापा की टुकड़ी में मात्र 28 जवान थे।
1: तभी 19 अक्टूबर 1962 को चीन की सेना के करीब 600 सैनिकों ने तोपों और मोर्टारों की मदद से मेजर धन सिंह थापा की पोस्ट पर धावा बोल दिया। गोरखा सैनिक पूरी ताकत से दुश्मन से लड़े और बड़ी संख्या में चीन के सैनिकों को मार गिराया। उन्होंने लगातार 3 बार चीन की सेना के आक्रमण को नाकाम कर दिया।
0: दुश्मन भी भारतीय सेना की इस बहादुरी पर हतप्रभ रह गया।
1: चीन की सेना को भौगोलिक परिस्थितियों का भी लाभ मिला, क्योंकि भारतीय सेना घाटी में थी और वो ऊंचाइयों पर थे, जिसके कारण उन्हें हमला करने में आसानी थी। सूरज ढलते ही अंधकार छा गया। 19 अक्टूबर का दिन बीत गया था। रात शांत थी, लेकिन ये वो शांति थी जो तूफान से पहले की होती है। अक्टूबर 1962 को सुबह 6 बजे चीन की सेना की ओर से भीषण आक्रमण हुआ।
2: साथियों, आगे बढ़ो, अभी नहीं तो कभी नहीं।
3: सब हमारे पास गोलियां बहुत कम बची हैं, दुश्मन बहुत अधिक है,
4: तो हथगोलों का इस्तेमाल करो। तुम हथगोलों का इस्तेमाल करो। मैं वायरलेस पर बेस कैंप को संदेश भेजता हूँ। जल्दी से जल्दी सहायता पर इनको रोक के रखो।
3: हेलो हेलो, सिरिजा फोन से मेजर धन सिंह थापा दिस साइड, ओवर।
5: सिग्नल ऑफिसर वेद व्यास दिस साइड, संदेश दीजिए मेजर।
3: हमारे पास कारतूस खत्म हो रहे हैं, जवान भी मारे जा रहे हैं, जल्द से जल्द हथियार और कुमुक भेजिए, ओवर।
5: मेजर, इस मौसम में हमें सहायता भेजने में थोड़ा विलंब होगा, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं भेजने की, ओवर।
3: तो जल्दी भेजिए, दुश्मन आगे बढ़ता जा रहा है, अब हम मार कर ही मरेंगे। हेलो हेलो हेलो,
6: हमारा संपर्क रेडियो नेटवर्क से ही टूट गया। अरे ये क्या, वो सिपाही बंदूक फेंक कर टेंट में क्यों भागा जा रहा है? देखता हूँ उसे। अरे
7: उसकी बंदूक यहाँ पे रखी है, इसे लेके चलता हूँ।
6: ए सुनो, रुको रुको रुको, यहीं पे।
3: कायर बनकर जीने से बहादुर बनकर मर जाना बेहतर है, तो संभालो अपनी बंदूक और एक बार फिर मौत बनकर टूट पड़ो इन चीनियों पर। जय मां काली, आया गोरखाली, फायर।

0: युद्ध भीषण होता जा रहा था। अब मेजर थापा के पास मात्र 3 जवान ही बचे थे। तभी एक बम उनके बंकर पर आकर गिरा। मेजर थापा ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाई और इससे पहले कि वो बम फटता, वो बंकर से बाहर कूद गए और अपनी खुकरी से दुश्मन को मारने लगे।
1: अचानक एक चीनी सैनिक ने राइफल की बट से उनके चेहरे पर प्रहार किया। वो जमीन पर गिर गए और उन्हें बंदी बना लिया गया।
2: छोड़ो।
0: दुर्भाग्यवश उनके युद्ध बंदी बनाए जाने की सूचना भारतीय सेना को नहीं मिली। सबने यही समझा कि मेजर धन सिंह थापा वीरगति को प्राप्त हो गए। सेना के अनुरोध पर भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। उनके पुश्तैनी गांव सुरम्य में उनके अंतिम संस्कार की औपचारिकताएं भी पूरी कर दी गईं।
1: उधर चीन की सैनिक जेल में मेजर थापा को अकथनीय यातनाएं दी गईं। उनसे कहा गया कि उनकी रिहाई में भारत सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हर रात की एक सुबह होती है। जेल में मेजर थापा की दोस्ती एक छोटे चीनी लड़के से हो गई जो नेपाली मूल का था।
0: वो छोटा लड़का मेजर थापा के लिए जेल में खाना लाता था। मेजर थापा उससे बातें करते, अपने दुखों को साझा करते। एक दिन मेजर थापा ने अपने परिवार के नाम एक चिट्ठी लिखी और अपने छोटे दोस्त की मदद से उस चिट्ठी को थोड़ी ही दूर सीमा पार भारतीय पोस्ट में डलवा दिया।
1: चिट्ठी मिलते ही घर परिवार में हलचल मच गई।
3: देखो चिट्ठी आई है। माँ देखो
4: चिट्ठी, ला दिखा तो।
3: अरे ये तो उनकी चिट्ठी है, तुम्हारे पिताजी की चिट्ठी है। अरे अरे पिताजी उनकी चिट्ठी आई है। गांव वालों देखो ये जिंदा है, उन्होंने चिट्ठी भेजी है। देखो गांव वालों देखो ये चिट्ठी आई है।
5: जिंदा है? अरे बहुत खुशी
6: है बेटा।
5: जिंदा है धन सिंह थापा।
1: सरकारी स्तर पर वार्ता के फलस्वरूप मेजर थापा चीन के बंदी गृह से रिहा होकर 10 मई 1963 को वापस भारत आए। सेना मुख्यालय में इस महान योद्धा और परमवीर का भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने सेना में पुनः कार्य आरंभ किया और लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंचे। 5 सितंबर 2005 को 77 वर्ष की आयु में इस महान पराक्रमी योद्धा का निधन हो गया। देश के प्रति उनकी कर्तव्य निष्ठा, समर्पण और अदम्य साहस के लिए वो सदैव ससम्मान याद किए जाएंगे। उन्हें हमारा शत शत नमन।
7: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम धन सिंह थापा। हमें आशा है कि यह कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब इसी के साथ हम अपने आज के उमंग कार्यक्रम को विराम देना चाहेंगे। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
8: जगबंधु,
7: चेतना,
8: अर्शद,
7: सौम्या,
2: प्रसून
7: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयुग यादव के साथ
2: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
7: नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
8: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
9: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
10: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
11: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
8: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। लता मंगेशकर का गाया फिल्म खानदान का गीत। नक्श लायलपुरी ने गीत लिखा है, धुन बनाई है खयाम ने।

आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में गुलजार का लिखा यह गीत था, लता मंगेशकर ने गाया था, फिल्म का नाम था घर। इसके साथ ही फिल्म संगीत समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है क्षेत्रीय समाचार एकांश का कार्यक्रम आजकल।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। विषय है सेवा संकल्प अभियान, जनसेवा और जन भागीदारी का महाअभियान। आलेख वीरा सबलोक पाठक, वाचन स्वर दीपा सिंह।

इन दिनों देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुरू हुआ यह अभियान 17 अक्टूबर तक मतलब एक माह तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को बढ़ावा देना है। जरूरतमंदों की सेवा, सहायता और उनकी देखभाल करना हमारे देश की सामाजिक सांस्कृतिक परम्परा का हिस्सा है। उनकी देखभाल करना हमारे देश की सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा रही है, यही हम हमेशा से देखते सुनते और जानते आए हैं। सेवा हर भारतीय के संस्कार और स्वभाव का हिस्सा है। जरूरतमंद की सहायता करना, समाज के कमजोर वर्गों के साथ खड़ा होना, स्वच्छता और पर्यावरण के प्रति जागरूक रहना और राष्ट्र हित में अपना योगदान देना सेवा की व्यापक भावना का हिस्सा है। इसी भावना को जन भागीदारी से जोड़ने के उद्देश्य से वर्ष 2026 में सेवा संकल्प अभियान का आयोजन किया गया। सेवा संकल्प अभियान का मूल विचार जन सेवा को समाज जन भागीदारी से जोड़ना है। अभियान के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में सेवा गतिविधियों के आयोजन और लोगों की भागीदारी पर जोर दिया गया। इसमें जन कल्याणकारी गतिविधियां शामिल की गई। अभियान का एक महत्वपूर्ण पक्ष ये भी है कि समाज के विभिन्न वर्ग केवल लाभार्थी के रूप में नहीं बल्कि सेवा कार्यों में सहभागी के रूप में भी अपनी भूमिका निभा सकते हैं। जन भागीदारी के माध्यम से स्थानीय स्तर पर छोटी छोटी पहल को व्यापक सामाजिक अभियान का रूप दिया जा सकता है। ये किसी विशेष क्षेत्र या विषय से जुड़ा न होकर जन जन से जुड़ा अभियान है। बात करें यदि स्वास्थ्य और पोषण की तो यह समाज की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है। अभियान के दौरान स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रमों और रक्तदान जैसी गतिविधियों को प्रमुखता दी गई है। रक्तदान को लेकर जागरूकता पैदा करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि आवश्यकता के समय उपलब्ध रक्त किसी व्यक्ति के जीवन को बचाने में सहायक हो सकता है। स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और आवश्यक सेवाओं से जोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है। इससे समाज में स्वास्थ्य जागरूकता को हवा देने की संभावना बनती है। सेवा का अर्थ केवल किसी व्यक्ति की सहायता करना ही नहीं है बल्कि प्रकृति पर्यावरण के प्रति आभार व्यक्त करना, उनकी देखभाल करना भी शामिल है। आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना और प्रकृति की रक्षा करना भी सामाजिक जिम्मेदारी है। इसलिए स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी गतिविधियां इस अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्वच्छ सड़कें, स्वच्छ सार्वजनिक स्थल, कचरे का उचित प्रबंधन और अधिक से अधिक पौधरोपण जैसे कार्य नागरिकों में जिम्मेदारी की भावना पैदा करते हैं। जब लोग स्वयं इन गतिविधियों में भाग लेते हैं तो स्वच्छता केवल सरकारी कार्यक्रम न रहकर सामुदायिक जिम्मेदारी बन जाती है। किसी भी सामाजिक अभियान को

सफल बनाने में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। युवा ऊर्जा, नई सोच और तकनीकी क्षमता के माध्यम से सेवा कार्यों को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। सेवा संकल्प अभियान से जुड़े कार्यक्रमों में भाषण, चित्रकला, रचनात्मक गतिविधियों और सामाजिक विषयों पर जागरूकता जैसे माध्यमों का उपयोग भी किया जा रहा है। ऐसी गतिविधियां विद्यार्थियों को सामाजिक समस्याओं के बारे में सोचने और रचनात्मकता के माध्यम से समाज को जागरूक करने का अवसर देती हैं। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में केवल सरकारी प्रयासों से प्रत्येक सामाजिक समस्या का समाधान संभव नहीं है। नागरिकों, सामाजिक संगठनों, युवाओं और विभिन्न संस्थाओं की भागीदारी आवश्यक है। आज के व्यस्त जीवन में व्यक्ति कई बार अपने आसपास मौजूद समस्याओं से अनजान रह जाता है। ऐसे अभियान समाज के प्रति संवेदनशील बनने का अवसर प्रदान करते हैं। गरीब, बुजुर्ग, दिव्यांग, बीमार और अत्यंत जरूरतमंद लोगों की सहायता करना सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को मजबूत करता है। सेवा का वास्तविक मूल्य तभी है जब उसमें मानवीय संवेदना और निरंतरता हो। किसी विशेष अवसर पर किया गया सेवा कार्य महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि सेवा की भावना हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बने। इस दृष्टि से सेवा संकल्प केवल एक अभियान का नाम नहीं बल्कि समाज के प्रति अपने कर्तव्य को समझने और उसे व्यवहार में उतारने का संदेश भी है। कार्यक्रम आजकल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। मैं हूं धारणा सचदेव। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर अपनी विशेष रिपोर्ट। आज के इस अंक में हम जानेंगे कि प्रदेश के विभिन्न अंचलों में शासन की योजनाएं किस प्रकार आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी पहली रिपोर्ट है देवास से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शुरू हुए सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वडनगर से वाराणसी तक निकाली जा रही विशेष बाइक यात्रा में शामिल राइडर से बीते दिनों प्रधानमंत्री श्री मोदी ने वर्चुअली जुड़कर संवाद किया। जिले के पुंजापुरा में मुख्यमंत्री मोहन यादव की उपस्थिति में सेवा संकल्प बाइक यात्रियों के साथ प्रधानमंत्री श्री मोदी ने संवाद किया। इस दौरान प्रदेश के दीपेश गोटी ने यात्रा के अनुभवों के बारे में जानकारी दी। पेश है देवास से हमारे संवाददाता नितिन गुप्ता की ये रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक विशेष बाइक यात्रा निकाली जा रही है। गत दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने यात्रा में शामिल बाइक राइडर से अलग अलग स्थानों से वर्चुअली जुड़कर संवाद किया। इसी क्रम में देवास जिले के बागली विकास खंड स्थित ग्राम पूंजापुरा में मुख्यमंत्री मोहन यादव की उपस्थिति में सेवा संकल्प बाइक यात्रियों के साथ प्रधानमंत्री श्री मोदी का उद्बोधन सुना। ग्राम पूंजापुरा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा संकल्प बाइक यात्रा के बाइकर दीपक गोटी से आत्मीय संवाद किया और यात्रा के खट्टे बूटे अनुभव के बारे में जानकारी ली। संवाद के दौरान शाजापुर के निवासी और कपड़ा व्यापारी श्री गोटी ने बताया कि 17 सितंबर को वडनगर से प्रारंभ हुई इस यात्रा के माध्यम से उन्हें न केवल बहुत कुछ सीखने को मिला बल्कि जगह जगह स्वच्छता तथा सघन पौधारोपण जैसे सेवा कार्य करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि इस यात्रा के दौरान अन्य राज्यों के युवाओं से विभिन्न भाषाएं सीखने और उनकी समृद्ध संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए देवास से नितिन गुप्ता।
0: हमारी दूसरी खबर है डिंडोरी से, जहां जिले के बजाग विकासखंड की ग्राम पंचायत खमीरा के देहान स्व सहायता समूह की 13 महिला सदस्य कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से न केवल अपनी आय बढ़ा रही हैं बल्कि अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रही हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं डिंडोरी से हमारे संवाददाता लक्ष्मी नारायण अवधिया।
2: डिंडोरी जिले के बजाग विकासखंड के ग्राम खपरी पानी की बैगा महिलाओं ने मेहनत, सामूहिक प्रयास और आजीविका मिशन के सहयोग से आत्मनिर्भरता की नई मिसाल कायम की है। ग्राम पंचायत खमेरा के देहान स्व सहायता समूह की 13 महिला सदस्य आज कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से न केवल अपनी आय बढ़ा रही है बल्कि अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रही है। वर्ष 2013 से संचालित यह समूह बैगाचक महिला विकास समिति संकुल चाड़ा से जुड़ा हुआ है। लगभग 17 लाख रुपए की लागत से उपलब्ध ट्रैक्टर, ट्राली, थ्रेशर सहित अन्य कृषि उपयोगी उपकरणों के माध्यम से समूह किसानों को कृषि कार्यों के लिए मशीनरी उपलब्ध करा रहा है। कस्टम हायरिंग सेंटर शुरू होने के बाद समूह की महिलाओं की मेहनत रंग लाई और उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। वर्तमान में प्रत्येक सदस्य लगभग 15 से 18 हजार रुपए प्रतिमाह तक की आय अर्जित कर रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए डिंडोरी से लक्ष्मी नारायण अवधिया।
0: बीते दिनों धार पहुंची सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत संचालित जल, जन और सेवा संकल्प यात्रा का जगह जगह जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आम जनों द्वारा पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं धार से हमारे संवाददाता सुनील सचान।
3: जल, जन एवं सेवा संकल्प यात्रा गत दिनों पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल धार जिले में पहुंची और 2 दिनों तक जिले में विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। यात्रा का जगह जगह जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आम जनों द्वारा पारंपरिक रूप से पुष्प वर्षा के साथ भव्य स्वागत किया गया। मनावर, गंधवानी, कुक्षी, भानपुरा, उमरबन, पिपरनी, मांडू आदि स्थानों पर ग्राम चौपाल, सेवा संवाद कार्यक्रम तथा चाय पर चर्चा आयोजित कर युवाओं और आमजनों के साथ संवाद कर सेवा संवाद के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने तथा हितग्राहियों से संवाद कर योजनाओं से मिले लाभ के अनुभव को साझा किया गया। सेवा यात्रियों ने स्थानीय नागरिकों के साथ टांडा और मकानेर में बहती जलधारा पर बोरी बंधन कर जल संरक्षण एवं भू जल संवर्धन का संदेश दिया। धार में भी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें बड़ोदरा गुजरात के सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी ने सेवा संकल्प यात्रा के उद्देश्यों की जानकारी दी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए धार से मैं सुनील सचान।
0: हमारी अगली खबर है दमोह जिले से, जहां मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत पिछले दिनों दमोह स्टेशन से द्वारका सोमनाथ यात्रा ट्रेन को प्रदेश के संस्कृति और धर्म न्याय राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे दमोह संवाददाता अनिल जैन।
4: सोमनाथ द्वारकाधीश धार्मिक तीर्थ क्षेत्रों पर जाने वाली इस ट्रेन में दमोह जिले से 468 तीर्थ यात्री सहित रक्षक और पर्यवेक्षक सवार हुए। राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने यात्रियों का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया और हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। राज्य मंत्री लोधी ने मध्य प्रदेश के पर्यटन क्षेत्रों के भ्रमण के लिए बस सेवा जल्दी शुरू करने की भी बात कही। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए दमोह से मैं अनिल जैन।
0: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी अगली खबर है छतरपुर जिले से, जहां सेवा संकल्प अभियान के तहत स्वास्थ्य शिविर, सफाई अभियान, हितग्राही लाभार्थी शिविर, नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं छतरपुर से हमारे संवाददाता सुनील पांडे।
5: प्रदेश के छतरपुर जिले में भी सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत की गई है। इसमें शासकीय योजनाओं के लाभार्थी शिविर, स्वच्छता अभियान, पौधारोपण, स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन लगातार कराया जा रहा है। इस कड़ी में छतरपुर के मोटेक के महावीर अटल सभागार में सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन भी कराया गया, जिसमें दिव्यांगजनों एवं वृद्ध लोगों को निःशुल्क सहायता कृत्रिम अंगों का वितरण किया गया। वहीं आयुष विभाग द्वारा भी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें 696 रोगियों के स्वास्थ्य का परीक्षण निःशुल्क रूप से किया गया। छतरपुर के महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में नशा मुक्त युवा भारत विकसित भारत के तहत संकल्प समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें युवाओं को 100 दिन नशे से दूर रहने का संकल्प भी दिलाया गया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए छतरपुर जिले से सुनील पांडे।
0: श्रोताओं, अब हम रुख करते हैं भिंड जिले की तरफ, जहां मध्य प्रदेश सरकार की MSME प्रोत्साहन योजना औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन में मील का पत्थर साबित हो रही है। पेश है हमारे भिंड संवाददाता अनिल शर्मा की ये रिपोर्ट।
6: भिंड जिले में मध्य प्रदेश सरकार की MSME प्रोत्साहन योजना के सहयोग से भिंड जिले के मानपुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित न्यू राइन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड की इकाई सफलता की नई कहानी लिख रही है। कंपनी का एमबे ब्रांड फ्रोजन आलू उत्पादों के निर्यात से बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। यह इकाई न केवल मध्य प्रदेश को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अर्थव्यवस्था के रूप में वैश्विक मानचित्र पर स्थापित कर रही है, बल्कि 200 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देकर स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान कर रही है। इकाई के HR और एडमिन हेड श्री अनिल कुमार बताते हैं कि कंपनी की मालपुर इकाई की स्थापना में MSME प्रोत्साहन योजना का भरपूर सहयोग मिला है। औद्योगिक क्षेत्र मालपुर की अन्य इकाइयों के सफल संचालन में भी MSME प्रोत्साहन योजना अहम भूमिका निभा रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन आकाशवाणी के लिए भिंड से अनिल शर्मा।
0: हमारी अगली खबर है छिंदवाड़ा से, जहां सेवा संकल्प और स्वास्थ्य के 100 दिन अभियान के तहत सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। सरकार का लक्ष्य समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक स्वास्थ्य और स्वच्छता का लाभ पहुंचाना है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे छिंदवाड़ा संवाददाता राकेश प्रजापति।
7: सबका स्वास्थ्य और वंचितों की सेवा, इस मूल मंत्र के साथ छिंदवाड़ा जिले के हर्रे विकास खंड स्थित ग्राम छिंदा में एक विशाल निशुल्क स्वास्थ्य शिविर ने ग्रामीणों के लिए संजीवनी का काम किया। इस विशेष शिविर में 592 ग्रामीणों की गहन स्वास्थ्य जांच की गई और उन्हें मौके पर ही उपचार तथा दवाइयां उपलब्ध कराई गईं। इसके अलावा जिन 16 मरीजों को विशेष चिकित्सा की आवश्यकता थी, उन्हें त्वरित रूप से जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। उल्लेखनीय है कि सेवा संकल्प एवं स्वास्थ्य के 100 दिन के इस महाअभियान के तहत संपूर्ण छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में प्रतिदिन अलग अलग स्थानों पर ऐसे निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से हर दिन हजारों ग्रामीण घर बैठे उत्तम स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए छिंदवाड़ा से मैं राकेश प्रजापति।
0: प्रादेशिक समाचार दर्शन में अब हम चलते हैं बुरहानपुर जिले की ओर, जहां आंगनबाड़ियों में 1 से 30 सितंबर तक नवा राष्ट्रीय पोषण माह के तहत पोषण उत्सव मनाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं बुरहानपुर से हमारे संवाददाता गणेश कुमार बाविस्कर।
8: बुरहानपुर जिले के आंगनबाड़ियों में 1 से 30 सितंबर तक नवा राष्ट्रीय पोषण माह के तहत पोषण उत्सव मनाया जा रहा है। इस बार हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी थीम के साथ कुपोषण के खिलाफ जागरूकता की मुहिम छेड़ी गई है। यानी आंगनबाड़ी केंद्र में सिर्फ बच्चों की किलकारियां नहीं, बल्कि पोषण का संदेश भी गूंज रहा है। गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोरियों और अन्य महिलाओं को पौष्टिक आहार के प्रति जागरूक करने के लिए तरह तरह तरह की गतिविधियां बताई जा रही है। सेक्टर अधिकारी शारदा भटकर के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण मटका सजाया जाता है, जिसमें पौष्टिक खाद्य पदार्थों के जरिए संतुलित आहार का महत्व बताया जा रहा है। जिले की कई पोषण वाटिकाएं भी बच्चों के लिए पौष्टिक आहार का जरिया बन रही है। अभियान का मकसद साफ है, पोषण की जानकारी घर घर पहुंचे और कुपोषण को जिले से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बुरहानपुर से गणेश कुमार बाविस्कर।
0: हमारी अगली खबर है गुना से, जहां बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए युवा संगम कार्यक्रम आयोजित किया गया। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं गुना से हमारे संवाददाता रोहित गोस्वामी।
9: गुना जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हर माह युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस बार 24 सितंबर को आयोजित युवा संगम कार्यक्रम के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। इस संबंध में आकाशवाणी को जानकारी देते हुए जिला रोजगार अधिकारी श्री बीएस मीना ने बताया,
10: जैसा कि आपको विदित है, मध्य प्रदेश शासन कौशल विकास रोजगार विभाग द्वारा विगत 2 साल से यहाँ युवा संगम का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उसी क्रम में जिला स्तर पर जिला स्तरीय युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसमें हमारे जनप्रतिनिधि द्वारा स्वरोजगार हितग्राहियों को हितलाभ वितरण किए गए और ऑफर लेटर वितरण किए गए। जैसा कि आपको विदित है, मध्य प्रदेश शासन की मंशा ये है कि युवाओं को निजी क्षेत्र रोजगार के साथ साथ ही एक ही मंच पर स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाए और हितलाभ वितरण कराया जाए। इसी क्रम में आदरणीय कलेक्टर महोदय श्री किशोर कुमार कन्याल के मार्गदर्शन में विगत 22 माह से लगातार युवा संगम का आयोजन जिला स्तर पर विकास खंड स्तर किया जा रहा है। युवा संगम कार्यक्रम में 772 युवाओं को इतलाब वितरण किया गया, 3 करोड़ से अधिक इतलाब वितरण किया गया और इसके अलावा निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य 200 से अधिक हितग्राहियों को ऑफर लेटर का वितरण किया गया और इस कार्यक्रम की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। लगभग विगत 15 माह में हमारा गुना जिला टॉप 5 में स्थान बनाए हुए हैं और इस वित्तीय वर्ष में भी शासन द्वारा लगभग 24,000 लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य दिया गया। इसमें हमारे सभी विभागों का, स्वरोजगार विभागों का, जनप्रतिनिधियों का और जिला परिषद का सक्रिय योगदान रहता है, इससे हमारे युवा लगातार लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन की ये लोकप्रिय योजना से हमारे बेरोजगार युवाओं को बहुत ही लाभ प्राप्त हो रहा है और आने वाले समय भी आप देखेंगे हर जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर ये आयोजन सतत जारी होते रहेंगे। इसी क्रम में सभी बेरोजगार युवाओं से मेरा निवेदन है, आग्रह है कि इस युवा संगम का कार्यक्रम हरमाए लाभ उठाएं। इस युवा संगम कार्यक्रम में निजी क्षेत्र में रोजगार संस्थान, स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी दी जाती है, कौशल विकास विभाग की जानकारी दी जाती है, साथ ही नशा मुक्ति से संबंधित लोगों को जागरूक किया जाता है, साक्षरता, वित्तीय साक्षरता की जानकारी दी जाती है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा हेल्थ चेकअप भी किया जाता है। इस योजना का सभी लोग लाभ उठाएं।
9: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए गुना जिले से रोहित गोस्वामी।
0: तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। अनुमति दीजिए, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार दर्शन, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए। ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भोले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, शाम के 7 बजने वाले हैं। अब हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से होंगे।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण और केंद्रीय बैंक के डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर कार्यान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति जताई। बैठक की सह अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नाहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है।
5: Annually, we have been meeting regularly.
6: हम सालाना और नियमित रूप से बैठकें करते रहे हैं और दोनों पक्षों के व्यापारिक समूहों की संतुष्टि के अनुसार ठोस और महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान कर रहे हैं। आज हमने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पोत निर्माण, आधुनिक बंदरगाहों के विकास, खाद्य सुरक्षा, विशेष रूप से खाड़ी क्षेत्र के लिए कृषि नवाचार, लॉजिस्टिक्स के विस्तार, AI और उभरती प्रौद्योगिकियों पर मिलकर काम करने, ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा फिनटेक क्षेत्र में अपने सहयोग का विस्तार करने जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ाने पर भी चर्चा की है।
5: एक्सपेंडिंग आवर कोऑपरेशन इन द फिनटेक सेक्टर।
4: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान, स्टार्टअप और नए अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत फ्रांस अंतरिक्ष सहयोग ने एक नए चरण में प्रवेश किया है। डॉ. सिंह ने आज नई दिल्ली में फ्रांस के उच्च शिक्षा, अनुसंधान और अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के दौरान ये बात कही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश ने पश्चिम एशिया में जारी संकट और होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान के बावजूद कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में आई चुनौतियों का अब तक सफलतापूर्वक सामना किया है। कोलकाता में मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री पुरी ने ये बात कही। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और ये सुनिश्चित करेगी कि आपूर्ति में आए व्यवधान नियंत्रण से बाहर ना हो। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा योजना पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि अब किसान बीमा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और पूरी प्रक्रिया की डिजिटल माध्यम से निगरानी की जाएगी। ये पोर्टल हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 11 क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने 2,000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है और 4 सप्ताह के अंदर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। न्यायालय ने कहा कि यह मुद्दा कानूनी से अधिक तकनीकी है। देश में इस वर्ष अगस्त में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापे गए औद्योगिक उत्पादन में वार्षिक आधार पर 8% की वृद्धि हुई। सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़ों से संकेत मिलता है कि औद्योगिक गतिविधियां का विस्तार स्वस्थ गति से जारी है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा है। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने आज अपने खाते में 8 और पदक जोड़े हैं। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। लंबी दूरी के धावक कुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ के फाइनल में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ रजत पदक जीता। वहीं महिलाओं की 5000 मीटर फाइनल में पारुल चौधरी ने कांस्य पदक हासिल किया। भाला फेंक स्पर्धा में यशवीर सिंह ने रजत पदक देश के नाम किया। भारत के ही रोहित यादव ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य सहित कुल 45 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है कार्यक्रम विवरण का।

पहले आज की इस सभा के शेष कार्यक्रमों की जानकारी। आकाशवाणी भोपाल से शाम 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा में आज का आकर्षण होगा लोक रंग। विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा, ये कार्यक्रम रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे। पब्लिक स्पीक, ये कार्यक्रम रात 9:30 पर होगा। रात 10 बजे एशियन गेम्स 2026 पर आधारित डेली हाइलाइट्स रात 10 बजे होंगे। ये दोनों कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में सुनिएगा सिद्धा साई का ख्याल गायन, राग होगा जोग कौंस। ये थी जानकारी आज की इस सभा के शेष कार्यक्रमों की। और अब कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी में पहले आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। सुबह 7:20 पर दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल होगा। विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा का प्रसारण सुबह 8:30 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:15 पर अफजल हुसैन जयपुरी की गाई चंद गजलें आपकी नजर करेंगे। शब्द सागर कार्यक्रम में सुबह 9:30 पर डॉक्टर जवाहर कर्नावट से वैश्विक भाषा के रूप में हिंदी के विषय पर की गई भेंटवार्ता हम प्रसारित करेंगे। और साथ ही सीमा शिवहरे का काव्य पाठ होगा। जिले की चिट्ठी सुबह 10 बजे। सुबह 10:05 पर कुछ बातों के साथ फिल्मी नगमे गीत सागर प्रोग्राम में होंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में अफजल हुसैन का ध्रुपद गायन होगा, राग होगा कोमल ऋषभ आसावरी। प्रसारण समय सुबह 10:30 का। और शाम 7:30 पर किसानवाणी कार्यक्रम में दिनेश वर्मा से जैविक खेती से पर्यावरण एवं आर्थिक लाभ विषय पर की गई भेंटवार्ता प्रसारित करेंगे। ये थी जानकारी आकाशवाणी भोपाल से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। और अब संक्षिप्त रूपरेखा आकाशवाणी मध्य

देश के प्रसारण की। दिन में 11 बजे फोन इन कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे का प्रसारण करेंगे। आपकी फरमाइश मध्याह्न 12 बजे और दोपहर 2:30 पर।

आकाशवाणी इंदौर केंद्र की प्रस्तुति होंगे। शाम 5:02 पर युवावाणी कार्यक्रम होगा, प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल केंद्र की होगी। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6:00। विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा रात 8:00 प्रसारित करेंगे। उर्दू प्रोग्राम कहकशा में रात 9:30 पर सुनिएगा आबशारे गजल। एशियन गेम्स 2026 पर आधारित डेली हाइलाइट्स रात 10:00 दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में सुनिएगा अफजल हुसैन का ध्रुपद गायन, राग होगा भूप। ये थी संक्षिप्त रूपरेखा आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण की। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में होंगे।
1: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 1 अप्रैल 2026 से लागू है। अब अपने घर से ही कचरे को अलग अलग करके शहर को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें।
2: घर से ही गीला, सूखा, सैनिटरी और स्पेशल केयर कचरा अलग अलग करके दें।
1: गीला कचरा हरे डस्टबिन में डालें, जैसे फल, सब्जियों के छिलके, बचा भोजन, चाय पत्ती वगैरह।
2: सूखा कचरा नीले डस्टबिन में रखें। कागज, प्लास्टिक, कांच, धातु, कपड़ा और गत्ता।
1: सैनिटरी और स्वास्थ्य संबंधी कचरा लाल डस्टबिन में डालें। सैनिटरी पैड, डायपर, बैंडेज, मास्क, ग्लव्स और पीपीई किट।
2: स्पेशल केयर काले डस्टबिन में डालें। पुराने मोबाइल, चार्जर, बैटरी, बल्ब, रिमोट, तार, इलेक्ट्रॉनिक सामान और घरेलू खतरनाक कचरा।
1: याद रखिए, सही पृथक्करण से रिसाइकलिंग आसान होगी और शहर स्वच्छ रहेगा।
2: नियमों का उल्लंघन करने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति एवं दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। स्वच्छता अपनाएं, शहर को स्वच्छ बनाएं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी।
3: रोहन और निया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन। वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान।
6: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज अनूपपुर के किसानों से वर्चुअल संवाद किया। प्रदेश में पंचायत उपचुनाव के लिए कल होगा मतदान। 7 जिला पंचायत सहित विभिन्न पदों के लिए वोट डाले जाएंगे। शांतनु मोइत्रा को आज इंदौर में राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2026 से सम्मानित किया जाएगा। और प्रदेश की 4 ऐतिहासिक धरोहरें यूनेस्को की अस्थाई विश्व धरोहर सूची में शामिल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मुख्यमंत्री निवास से अनूपपुर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में किसानों से वर्चुअली संवाद किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को मिलेट स्टेट बनाने में अनूपपुर का महत्वपूर्ण योगदान है। मुख्यमंत्री ने किसानों से श्री अन्न और धान उपार्जन के लिए समय पर पंजीयन कराने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तकनीकी और नवाचार से कृषि उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने के साथ सिंचाई क्षमता के विस्तार का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने किसानों चौपालों के साथ माध्यम से किसान हितैषी योजनाओं की जानकारी और समस्याओं के समाधान पर भी जोर दिया। नई दिल्ली में आज 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रवि अभियान 2026 का शुभारंभ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन, अनिश्चित बारिश और पानी की कमी के बीच केंद्र सरकार राज्य सरकारों और किसानों के साथ खड़ी है।
1: राज्य सरकारों ने महाराष्ट्र में बड़े हिस्से पर और कर्नाटक में भी बड़े हिस्से पर सूखा घोषित किया है। भारत सरकार राज्यों के साथ डट के खड़ी रहेगी। कर्नाटक में भी 3 अक्टूबर को टीम बना के भेज रहे हैं।

0: वहां की स्थिति के आकलन के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है तो भाभी हम टीम की तैयारी कर रहे हैं। मैं स्वयं भी उन राज्यों में जाके स्थिति देखूंगा और हम अपने किसानों के साथ, राज्य सरकारों के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे इस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए।
1: श्री चौहान ने राज्यों से पानी की उपलब्धता के अनुसार फसल योजना बनाने और समय पर रबी की बुआई की तैयारी करने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ शुरू हुआ यह सफर निरंतर जारी है। आज हम आपको ऐसी ही एक योजना से रूबरू करा रहे हैं जहां सरकार की सोच और काम ने जमीन पर बदलाव की तस्वीर सामने रखी है। आइए जानते हैं कि रतलाम में आयुष्मान योजना लोगों के जीवन में कैसे बदलाव ला रही है।
2: रतलाम जिले में आयुष्मान भारत योजना के तहत लगभग 11.25 लाख हितग्राहियों को अब तक लाभ मिल रहा है, जिन्हें निजी अस्पतालों में बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। इसी तरह का एक लाभ लेने वाले हितग्राही से जब आकाशवाणी ने चर्चा की तो वे बताते हैं कि
3: हमारे परिवार में सभी का आयुष्मान कार्ड योजना के तहत बना हुआ है, जिसके द्वारा हाल में ही मेरे पिताजी की सर्जरी एक प्राइवेट अस्पताल में बहुत अच्छे से हुई। इसके बाद उनके घुटनों के दर्द में बहुत राहत है और वो अच्छे से चल फिर रहे हैं। यह योजना गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी बीमारी के समय बहुत ही राहत पहुंचाती है। हम सरकार का इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं।
2: आयुष्मान भारत योजना से इस जिले के लगभग सभी बड़े निजी अस्पतालों में घुटनों के प्रत्यारोपण से लेकर हादसों के समय पर कार्डियक अरेस्ट से लेकर किडनी फेलियर तक के मरीजों को राहत मिल रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए रतलाम से मैं अदिति मिश्रा।
1: वहीं सेवा संकल्प अभियान के तहत विविध गतिविधियों के अंतर्गत सतना में सांसद गणेश सिंह ने आंगनवाड़ी केंद्र में माताओं, बच्चों और कार्यकर्ताओं से पोषण, शिक्षा और बाल विकास पर संवाद किया। वहीं सीहोर में आंगन मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देवास में चित्रकला प्रतियोगिता और प्रदर्शनी, जबकि खंडवा में विद्यार्थियों को जन कल्याणकारी और छात्र हितैषी योजनाओं की जानकारी दी गई। आगरमालवा में छात्राओं को महिला स्वास्थ्य और स्वच्छता की जानकारी दी गई। वहीं मुरैना में स्वास्थ्य जाँच शिविर और गुना में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
4: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। प्रदेश में पंचायतों के उपचुनाव और आगरमालवा जिले की नगर परिषद सुसनेर में मतदान के चलते कल निर्वाचन क्षेत्रों में सामान्य अवकाश रहेगा। पंचायत उपचुनाव के लिए मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। उपचुनाव में जिला पंचायत के 7, जनपद पंचायत के 28, सरपंच के 110 और पंच के 4090 पदों के लिए मतदान होगा। पंच पद की मतगणना मतदान के तुरंत बाद केंद्र पर होगी, जबकि सरपंच, जनपद और जिला पंचायत सदस्य पदों की मतगणना 3 अक्टूबर को होगी। प्रदेश की 4 ऐतिहासिक धरोहरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। इनमें उदयगिरी गुफाएं, बाघ गुफा चित्रकारी, गिन्नौरगढ़ किला और चंबल घाटी के मंदिर समूह शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने सोशल मीडिया संदेश में इस उपलब्धि पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान मिलना गौरव की बात है। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 के लिए सड़क चौड़ीकरण के तहत शाही मस्जिद का एक हिस्सा हटाने को लेकर आज विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन के दौरान पथराव की स्थिति बनने पर पुलिस ने आश्रुगैस के गोले छोड़े। पुलिस के अनुसार ड्यूटी पर तैनात महिला थाना प्रभारी पुष्पा पंचाल के हाथ में चोट लगी। मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है और क्षेत्र में बैरिकेडिंग की गई है। कलेक्टर रोशन सिंह ने कहा है कि मस्जिद का हिस्सा समाजजनों द्वारा अब स्वेच्छा से हटाया जा रहा है। वहीं शहर काजी खली कुर्रे रहमान ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और मौके पर अनावश्यक रूप से नहीं जाने की अपील की है। शाही मस्जिद के हिस्से को हटाने के मामले में हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी है। इंदौर में आज राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2026 अलंकरण समारोह आयोजित किया जा रहा है। लता मंगेशकर सभागार में आयोजित इस समारोह में सुप्रतिष्ठित संगीत निर्देशक शांतनु मोइत्रा को संगीत निर्देशन के क्षेत्र में राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान प्रदान किया जाएगा। उन्हें 5 लाख रुपए की करमुक्त राशि और प्रशस्ति पत्रिका सम्मानित की जाएगी। समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। इस सम्मान समारोह के बाद सचेत परम्परा की संगीत संध्या का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में सेवा सेतु अभियान सरकार आपके द्वार के तहत 3 अक्टूबर को ग्रामीण और 4 अक्टूबर को नगरीय क्षेत्रों में मेगा शिविर लगाए जाएंगे। शिविर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नागरिकों को विभिन्न शासकीय योजनाओं की सेवाएं और लाभ के साथ साथ राजस्व सेवाओं में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, आय और स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सहित अन्य सेवाओं का निराकरण भी किया जाएगा।

जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर में एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला एवं हिंदी पखवाड़े के समापन पर कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया। देवास जिले में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के लिए मतदाता जागरूकता के लिए गीतों और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की जा रही है। मुरैना के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मई और महर्षि गालव स्कूल जौरा में सघन HIV एड्स जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। धार कलेक्टर ने 4 अक्टूबर को डही में मुख्यमंत्री के प्रस्तावित डही उद्वहन सिंचाई परियोजना के लोकार्पण के दृष्टिगत विभागों को व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बैतूल में वन भूमि का नियमानुसार गैर वानिकी उपयोग किए जाने के लिए अधिकारियों को परिवेश पोर्टल पर प्रशिक्षण दिया गया। खंडवा के नीलकंठेश्वर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वारा लैंगिक संवेदनशीलता जागरूकता पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और नीमच जिला चिकित्सालय के ट्रामा OPD में 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर निशुल्क वृद्धजन स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज अनूपपुर के किसानों से किया वर्चुअल संवाद। प्रदेश में पंचायत उपचुनाव के लिए कल होगा मतदान। 7 जिला पंचायत सहित विभिन्न पदों के लिए वोट डाले जाएंगे। शांतनु मोइत्रा को आज इंदौर में राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया जाएगा और प्रदेश की 4 ऐतिहासिक धरोहरें यूनेस्को की अस्थाई विश्व धरोहर सूची में शामिल। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, आकाशवाणी भोपाल।
2: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। किसान भाई सुने अपना कार्यक्रम चौपाल।

जय जवान जय किसान और चौपाल कार्यक्रम सुनने वाले हमें सभी भैया भौजी हरन को कल्पना बहन की राम राम और करत हैं स्वागत आज के चौपाल कार्यक्रम में। और बताओ भैया भौजी हरो, कैसे का हाल चाल है आप और उनके? हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि अब हमारे सभी भैया हरन के घर परिवार में सभी जने नीके हैं, कुशल मंगल से हैं। काहे से कि देखो अब दो दिन पहले देखो गणेश महोत्सव खत्म भए बिन्न लई विदाई और अब तैयारी हो गई है अपने पितृदेवतन की, तो उनके स्वागत में हमें सभी तैयार हैं। तो भैया और देखो श्राद्ध शब्द को संबंध श्रद्धा से मानो गौ है, यानी कि भैया अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रेम व्यक्त करवो सनातन परंपरा में मानो गौ है। तो भैया आज श्राद्ध को दूसरा दिन है, तो हमारे सभी जने सभी भैया हरे अपने पूर्वजों को याद करत हैं, कोई तर्पण करत है, कोई पिंडदान करत है, कोई मुक्ति के लिए पिंडदान करत है। तो जा तरह से अपने पूर्वजों को याद करत हैं और इनसे आशीर्वाद लेते हैं। भैया और देखो चर्चा तो अपन आगे और भी करे हैं, पहले लेते हैं तनक विराम।

भैया और देखो, ब्राह्म के बाद स्वागत है फिर से चौपाल कार्यक्रम में। काहे से कि भैया और देखो, आज है सोमवार और आज हमारे सभी भैया बहनें इंतजार कर रहे हैं अपने मनपसंद कार्यक्रम लोक माधुरी को। तो भैया और देखो, पहली फरमाइश आई है बस स्टैंड फवारा चौक टोरिया मोहल्ला छतरपुर बुंदेलखंड से, बहादुर चक्रवर्ती, नंदकिशोर चक्रवर्ती, महाराज चक्रवर्ती, बड़े भैया हरिराम, बड़े भैया दशरथ, काजल, करण, अनुष्का, मोहिनी, गोलू, नीरज, भारती, आरती और बाबू, शीला भाभी, जसोदा भाभी, समस्त बुंदेलखंड, इनकी फरमाइश आई है भैया हो कि आवा खरी की आवाज़ में एक प्यारा सौ लोकगीत सुनवाए। तो भैया और सुने जी 900 लोकगीत।

0: भैया, और देखो, आप और हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि अपन को जानवरों से बच के रहने हैं और अपनी सुरक्षा अपन को खुद ही करना है। काहे से कि देखो, जानवर तो मूक होते हैं, तो अगर बिना हम सताएंगे, परेशान करेंगे तो वे काटेंगे ज़रूर। तो आज विश्व रेबीज दिवस है, जो हर वर्ष 28 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को रेबीज बीमारी के प्रति जागरूक करना है। रेबीज एक गंभीर जानलेवा बीमारी है, जो संक्रमित पशुओं के काटने से या फिर ऊ के लार के संपर्क में आवे से फैल सकता है। तो ई के लाने कुत्ते प्रमुख वाहक माने जाते हैं। तो भैया, और देखो, जय विषय पे आज एक विशेष जानकारी लेके आए हैं, जाको विषय है विश्व रेबीज दिवस पर। जाकी जानकारी दे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह राजपूत, और उनसे बातचीत करेंगे श्री सोहन सिंह। तो सुनते हैं अपन नौनी सी जानकारी।
1: किसान भाइयों, प्रतिवर्ष 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। रेबीज एक बीमारी होती है, ये पशुओं में, मनुष्यों में फैलती है। बीमारी के फैलने के क्या क्या माध्यम होते हैं और इससे किस तरह बचा जा सकता है, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे कार्यक्रम में आमंत्रित हैं कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर के वैज्ञानिक डॉक्टर जितेंद्र सिंह राजपूत। राजपूत साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारे किसान भाइयों को यही जानकारी दें कि ये रेबीज होता क्या है।
2: हम आप सभी लोग मिलकर एक साथ विश्व रेबीज दिवस जो मना रहे हैं 28 सितंबर को, वो विश्व रेबीज दिवस इस उपलक्ष में मनाया जा रहा है कि रेबीज की बीमारी का जो एक टीका होता है, सर्वप्रथम सफल टीका एक हमारे फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं लुई पाश्चर जी, इन्होंने इसका सफल टीका बनाया, जिसके कारण हम मानव समाज को, जाति को उस टीका के कारण बचा सकते हैं। इस उपलक्ष में उनकी पुण्यतिथि के दिन 28 सितंबर को हम इस रेबीज दिवस को मना रहे हैं। हमारी जो इस वर्ष की जो थीम है, उसकी थीम है कि हम लोगों को मिलकर एक साथ इस रेबीज को हमारे देश से दूर करना है, हमारे देश से भगाना है, उन्मूल करना है, ख़त्म करना है। हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, हमारा पशुपालन डिपार्टमेंट है, और हम सभी नागरिक, सभी लोग मिलकर एक साथ प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर 100% हम इस रेबीज बीमारी से बच सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, ये रेबीज है क्या है और कैसे फैलता है?
2: रेबीज एक बहुत ही खतरनाक, जानलेवा वायरस के संक्रमण के कारण होने वाली बीमारी है। ये ज़्यादातर पागल कुत्ते, बिल्ली और नेबला या चमगादड़, जो रैबिड होते हैं, पागल होते हैं पहले से, उनकी सलाइवा में इसका वायरस पाया जाता है। और वो सलाइवा किसी भी तरीके से हमारे कांटेक्ट में आ जाए, या तो वो रैबिड डॉग है या कि बिल्ली है, वो हमको काटे, उसके दांत लगेंगे और दांत से उस सलाइवा घाव में जाएगा, या नाखून से स्क्रैच बन जाए और वो सलाइवा आ जाए, या हमारे यहाँ कोई घाव है उसको वो जीभ से चाट ले तो सलाइवा के माध्यम से वो वायरस शरीर में चला जाएगा। इस तरीके से जानवरों से और आदमी में फैलता है, इसलिए इसको जूनोटिक बीमारी भी कहते हैं। एक बार जब इस बीमारी के लक्षण हमारे शरीर में पैदा हो जाते हैं, तो एक विशेष बात है कि इसके बाद इसका कोई इलाज नहीं है। 100% आदमी को या कुत्ते को मरना ही मरना है। लेकिन एक अच्छी बात यह होती है कि अगर इसको समय रहते हमने उपाय कर लिए, तो 100% इससे बचा भी जा सकता है।
1: डॉक्टर साहब, ये रेबीज किसी भी जानवर के काटने से मनुष्यों में, पशुओं में फैल जाता है। डॉक्टर साहब, मनुष्यों में और पशुओं में किस तरह के जो लक्षण हैं वो प्रतीत होते हैं, जिससे हमारे किसान भाई पहचान सकते हैं किसमें जो रेबीज के लक्षण आ रहे हैं?
2: अभी रेबीड कुत्ता है, पागल कुत्ता है या बिल्ली है, तो उसमें जो लक्षण दिखाई देंगे उसमें कुछ स्टेजेस में दिखाई देते हैं, जैसे जो पागलपन के मेनिया और पैरालिसिस, दो विशेष लक्षण होते हैं, जिसमें शुरू में रेबीड डॉग वो पानी से भी डर के भागता है और हवा में वाइट करने लगता है, जो भी मूवेबल ऑब्जेक्ट होता है कोई भी, या बिना मूव वाला ऑब्जेक्ट होता है, इवन इमेजिनरी ऑब्जेक्ट भी कोई होता है, तो उस पर भी वो काटने को दौड़ता है और चारों तरफ किसी ग्राउंड में या मैदान में या कमरे में घूमता रहता है और सडनली रुक जाता है। मतलब हम एक कह सकते हैं कि वो एक पागलपन वाले लक्षण है, क्योंकि ये जो वायरस है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, ब्रेन पर अटैक करता है, तो वो पागल के लक्षण जितने भी हैं, हैवी एक्साइटमेंट वाले, वो सब दिखाई देते हैं। और जो मनुष्य में ये बीमारी आ जाती है, तो उसमें अत्यधिक सिरदर्द है, तेज बुखार है, कमजोरी है, और एक

0: हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया मतलब होता है उसको पानी से डर लगने लगता है। एक लक्षण दिखाई देते हैं एरोफोबिया, अचानक से उसको हवा से भी, तेज हवा का झोंका आता है उससे भी डर लगने लगता है। कुछ चीज़ें कोई निगलता है, कुछ चीज़ निगलने में उसको दर्द होता है, और उसके साथ साथ भयंकर सलाइवा या लार टपकने लगती है, सलाइवेशन लगातार होता रहता है, और स्वभाव जो है वो अत्यधिक चिड़चिड़ापन जैसा हो जाता है। ये मनुष्य में और कुत्ते में, दोनों में इसके अलग अलग कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। इसके इनक्यूबेशन पीरियड मतलब ये जो मनुष्य में है इसके लक्षण 15 दिन से 40 दिन तक नजर आते हैं, और कुत्ते में है वो 3 सप्ताह से 21 दिन से 40 दिन के अंदर ही इसके लक्षण दिखाई दे जाते हैं। इसके साथ साथ इसकी जो इनक्यूबेशन पीरियड है मतलब ये कब तक पागल होगा उसके डिपेंड करता है कि वो डॉग वाइट किस पोजिशन पे हुई है। जितनी ज्यादा ब्रेन के नजदीक होगी, दिमाग के सर के, उतनी जल्दी उसके लक्षण प्रकट हो सकते हैं। और कितनी सीवियर काटा है, कितना ज्यादा काटा है, वायरस कितना ज्यादा है, इस पे डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी उसके वायरस के लक्षण, पागल होने के लक्षण उसके अंदर आ सकते हैं, चाहे इंसान में या कुत्ते में।
1: डॉक्टर सर, जब कुत्ता पागल की श्रेणी में आ जाता है, इस तरह के लक्षण प्रतीत होने लगते हैं, तो वो चाहे मनुष्य को भी काट सकता है या पशु को भी काट सकता है।
0: बिल्कुल सर।
1: तो डॉक्टर, पशुओं में किस तरह के लक्षण प्रतीत होते हैं?
0: पशुओं में भी इसी की तरह इनक्यूबेशन टाइम आता है उसका। जैसे किसी पागल कुत्ते ने पशु को भी कहीं काटा तो उसकी भी सीबीआईटी के हिसाब से, खतरनाक के हिसाब से, वो वायरस उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करेगा। और पशुओं में हम दूसरे लक्षण तो दिखाई नहीं देंगे, जो डॉग की तरह ही पागल वाले लक्षण, एक तो सलाइवा ज्यादा बाहर निकलने लगेगा, लगातार लार बाहर निकलेगी, और इधर उधर भागेगा भी, पानी से डरेगा भी पशु, घोड़ा भी हो, गाय भैंस भी हो, इन लोगों की भी हो सकती है। और लक्षण आने के बाद इसमें मृत्यु निश्चित है कि उसको मरना ही मरना है 40 से 50 दिन में।
1: डॉक्टर साहब, पशु तो नहीं बता पाते तेने या किसी जानवर ने काट लिया है, लेकिन मनुष्य तो तुरंत बता देता है। तो डॉक्टर साहब, प्राथमिक उपचार के तौर पर हमारे किसान भाइयों को क्या उपचार करना चाहिए?
0: प्राथमिक उपचार के तौर पर जहाँ पर किसी रैबिट या हमारे सस्पेक्टेड रैबिट डॉग ने भी, जरूरी नहीं है कि वो पागल हो, हमारा सस्पेक्ट भी है कि ये थोड़ा बहुत पागल हो चुका है, रैबिट डॉग है, तो सबसे पहले उस जो घाव बना हुआ है उस घाव को अच्छे बहते पानी से और साबुन के झाग से कम 15 मिनट तक धोना चाहिए। तो साबुन के झाग से भी वो वायरस मरता है, लगातार बहते रनिंग पानी वाटर से भी वो धोते हैं तो उस वायरस मर जाता है। उसके बाद उस पर कोई डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन आ जाए, जैसे अल्कोहल वाला हो डिसइंफेक्टेंट, या पोविडिन आयोडीन वाला हो कोई डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन, पोटेशियम परमैंगनेट के पानी के मिले हुए घोल से भी उसको धो सकते हैं। लेकिन गलती से भी, जैसे कुछ लोग हल्दी लगा देते हैं, मिर्ची लगा देते हैं, नमक लगा देते हैं या तेल लगा देते हैं, तो गलती से भी ये घरेलू चीज़ें नहीं अपनाना है, घरेलू नुस्खे नहीं इसमें अपनाना है। और दूसरा, किसी अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करना है, कुछ लोग झड़ा दिया कुत्ते का काटा हुआ, इसमें आप तुरंत जैसे ही डॉग वाइट हुआ है उसको सबसे पहले वॉश करें, वॉश के तुरंत बाद आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर के पास जो भी पोस्ट वाइट एंटी रेबीज वैक्सीन का डोज लगता है वो पूरा शेड्यूल के हिसाब से, जितने भी इंजेक्शन आजकल लग रहे हैं वो सब डॉक्टर से पूरे इंजेक्शन लगवाएं, तो 100% उससे क्योर आप बचाव कर सकते हैं, अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ होने से रोक सकते हैं आप अपने आप को।
1: डॉक्टर साहब, हमारी और समाज की क्या जिम्मेदारी बनती है जिससे ये रेबीज रोग है वो न फैलने पाए?
0: हमारे देश को, समाज को, इंडिया को रेबीज फ्री करने के लिए, जैसे हम कहते हैं कि हमारे कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं, जैसे न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है, ये रेबीज फ्री हो चुके हैं, इन देशों से इन्होंने इरेडिकेट रेबीज को पूरी तरह से कर लिया है। उसी तरह से 2030 में हमारे भारत देश का भी ये टारगेट है कि हम भी 2030 तक अपने देश से इस वायरस को खत्म करेंगे, इरेडिकेट करेंगे, ये वहाँ नहीं दिखाई देगा। इसके लिए हम सभी विभागों के साथ साथ हमारे समाज के हर नागरिक की भी एक जिम्मेदारी है कि हमको सबसे पहले हमारे जो पालतू जानवर हैं उनको भी रेबीज का टीका लगवाएं। रेबीज का टीका पहले लगता है, जैसे 4 महीने का कोई डॉग पपी पालने वाला हमारा पालतू है उसको लगता है, उसके बाद 21 दिन बाद उसका बूस्टर लगता है, उसके बाद हर 1 साल में उसका बूस्टर लग, हर साल यदि हम अपने डॉग को, अपने पालतू पशु को टीका लगवा रहे हैं तो वो वहाँ से उसका वायरस खत्म हो जाएगा। आवारा कुत्ते हैं, आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए उनको भी कोशिश हो सके कि पकड़ सकें, उनको वैक्सीनेशन कर सकें, या उनको ABC एनिमल बर्थ कंट्रोल के माध्यम से उनकी पॉपुलेशन को कम किया जा सके। बच्चों में अवेयरनेस ज़्यादा लाएं, क्यों अक्सर देखा गया है कि हमारे बच्चे इनके साथ अक्सर फ्रेंडली हो जाते हैं, खेलते कूदते रहते हैं, और वो उनको काट जाता है या स्क्रैच कर देते हैं तो वो कभी कभी घर ही नहीं बताते, जब पता चलता है, जब उसको लक्षण प्रकट होने लग जाते हैं तो ये बहुत घातक हो जाता है। तो बच्चों में ये अवेयरनेस होने चाहिए कि जैसे ऐसा कुछ दिखाई देता है, समझ में आता है कि किसी आवारा या खतरनाक या सस्पेक्टेड डॉग ने उनको स्क्रैच किया है, नाखून को किया या काटा है, तो तुरंत आके घर पे बताएं।
1: डॉक्टर साहब, अंत में चलते चलते और क्या हमारे ग्रामीण भाइयों को सलाह देना चाहेंगे इससे हमारे ग्रामीण भाई जानलेवा बीमारी से अपना और अपने पशुओं का बचाव कर सके।
0: सबसे पहले समझने की चीज है कि रेबीज एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ जागरूकता और सतर्कता से ही हम संभव है। किसी भी अंधविश्वास और घरेलू नुस्खों के चक्कर में पड़ के अपनी जान को जोखिम में ना डालें। इसके साथ साथ हम इस विश्व रेबीज दिवस पर हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम अपने आसपास के लोगों को जागरूक करेंगे और भारत को रेबीज मुक्त करने की अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे।
1: डॉक्टर साहब, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे किसान भाइयों को रेबीज रोग क्या होता है और ये किस तरह फैलता है और इससे हम किस तरह बचाव कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी दी, और इस जानकारी से हमारे किसान भाई निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: भाई और देखो, अभी आप सुन रहे थे जो भेंट वार्ता, जाको विषय है तो विश्व रेबीज दिवस पर जाकी जानकारी दे रहे थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह राजपूत और उनसे बातचीत कर रहे थे श्री सोहन सिंह। तो भाई और देखो, हम उम्मीद करते हैं कि आपने अभी जो भेंट वार्ता सुनी बड़े ध्यान से सुनी होगी और डॉक्टर साहब के बताए रास्ते पर जरूर चलेंगे। अब भैया और देखो, अब फरमाइश आई है ग्राम बड़ौरा तहसील सेवड़ा जिला दतिया मध्य प्रदेश से। जय गीत के सुनने वाले भैया बहन हैं लोकिन सिंह गुर्जर, सूर्यांश गुर्जर, नंदिनी गुर्जर, मानवी गुर्जर, नैना गुर्जर। तो सुने जो विनोद पुरोहित से जे प्यारो सो लोकगीत।

भैया बहनों, देखो आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत ही मातृभूमि है और हम आज़ाद भारत के नागरिक हैं। हमें हमेशा बुरे लोगों से अपने देश की रक्षा करनी चाहिए और हमारी जिम्मेदारी भी है कि अपने देश को आगे की ओर ले जाएं और सबसे नीको देश बनाएं। तो भैया और देखो, आज भगत सिंह की जयंती है तो हर वर्ष 28 सितंबर को मनाई जाती है। भगत सिंह भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दो। वे केवल साहसी ही नहीं बल्कि एक विचारशील और जागरूक युवा भी थे। उन्होंने युवाओं को देश, समाज और स्वतंत्रता के प्रति अपने कर्तव्यों को समझने की प्रेरणा दी। और भैया बहनों, देखो भगत सिंह को जीवन हमें साहस, देशभक्ति, त्याग और अपने सिद्धांतों के प्रति दृढ़ रहने की प्रेरणा देते हैं। तो उनकी जयंती पर हमें उनके विचारों को याद करत भई देश की प्रगति और एकता में अपना योगदान देवो को संकल्प लेना चाहिए। तो ऐसे वीर स्वतंत्रता सेनानी, महान क्रांतिकारी को सत सत नमन। भैया देखो, अब फरमाइश आई है अमलतास अमरीन होम्स कटारा भोपाल से, योगेश्वर सिंह भारतीय, प्रेमाबाई भारतीय, भैरव प्रताप सिंह भारतीय, लोकेंद्र प्रताप भारतीय, गोपाल भारतीय, कृष्णा भारतीय और शेखावत सिंह भारतीय, अमर सिंह भारतीय, दुर्गा भारतीय, अमिता भारतीय, भगवान सिंह नायर, श्रीमती ललित

तबाई भारतीय ग्राम कजलास पोस्ट टिगरिया जिला नर्मदापुरम गोरेलाल निमोदा से श्री मिश्रीबाई लक्ष्मी निमोदा। तो इन सभी की फरमाइश है कि हर गोविंद विश्व के स्वर में एक 900 लोकगीत सुनवाए। तो भैया रोज सुनो ये 900 लोकगीत।

भैया और देखो, अब फरमाइश आई है कृष्ण की नगरी मथुरा से। जकीत के सुने वाले भैया बहना है सवा अंसारी, अल्फेज अंसारी, नंदनी, अंजलि, तो सुने चे नौ नौ सौ ब्रज लोकगीत माधुरी शर्मा से।

छिप जा। ये चांदनी को ब्रजगोपी क्यों कह रही है कि अरे चांदनी तू ज्यादा मत निकले, चंद्रमाते कह रही है तू बादर की ओट में छिप जा। क्यों? क्योंकि हमको अधिक कष्ट होवे है। ये चांदनी को देख के श्याम सुंदर सो मिलवे को अधिक मन करे है। तो ब्रज गोपी कह रही है

भाई बहनों, देखो अब घड़ी की सुई इशारा कर रही है और चलबे की बेरा हो गई है। हम आपसे फिर मिले, तब तक के लाने हमारी राम राम, जय जवान जय किसान।

0: अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम चौपाल, आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश
1: है। प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा।
2: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 12वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, शिक्षा और कौशल, भविष्य की नींव। इसमें भाग ले रहे हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के पूर्व सदस्य प्रोफेसर सुषमा यादव और वरिष्ठ पत्रकार संजीव चोपड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
3: एक छोटी सी उंगली जिसने पहली बार स्कूल की किताब को छुआ, एक गाँव का बच्चा जिसके लिए स्कूल तक पहुंचना ही कभी सबसे बड़ी चुनौती थी, और एक युवा जिसके हाथ में डिग्री तो थी लेकिन दुनिया बदल रही थी और उसके सामने सवाल था कि क्या मेरी शिक्षा मुझे भविष्य के लिए तैयार कर रही है। क्योंकि शिक्षा सिर्फ कक्षा, किताब और परीक्षा का नाम नहीं है। शिक्षा वो नींव है जिस पर किसी व्यक्ति का भविष्य और किसी राष्ट्र की दिशा तय होती है। गुजरात में शाला प्रवेश उत्सव और गुणोत्सव जैसे प्रयासों से शुरू हुई एक सोच ने स्कूल में प्रवेश से लेकर सीखने की गुणवत्ता तक का सवाल उठाया, और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, निपुण भारत, विद्या प्रवेश, कौशल विकास, विशेषज्ञता आधारित उच्च शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा में सुधार ने शिक्षा को केवल डिग्री नहीं बल्कि ज्ञान, कौशल और क्षमता से जोड़ने की दिशा तय की। इसी यात्रा में परीक्षा पे चर्चा ने परीक्षा को जीवन का अंतिम पड़ाव नहीं बल्कि सीखने की यात्रा का एक पड़ाव मानने की बात की। तो गुजरात से दिल्ली तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में बिताए 25 वर्षों में क्या कुछ बदला इस दिशा में, आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा में आज का हमारा विषय है शिक्षा और कौशल, भविष्य की नींव। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान उपस्थित हैं, वरिष्ठ पत्रकार संजीव चोपड़ा और हमारे साथ जुड़ रही हैं पूर्व UGC सदस्य सुषमा यादव। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद और नमस्कार।
3: संजीव जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने शाला प्रवेश उत्सव और गुणोत्सव जैसे अभिनव प्रयोग शुरू किए थे, और इसका असर ये हुआ कि राज्य में ड्रॉपआउट रेट काफी कम हो गए, और यहीं से जब आगे बढ़े तो निपुण भारत और विद्या प्रवेश जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों को जब हम देखते हैं तो गुजरात के उस मॉडल और आज के राष्ट्रीय विजन के बीच आप किस तरह का समायोजन या संबंध देख पा रहे हैं?
5: जैसे भारत कोशिश कर रहा है कि विकसित भारत बनने की 2047 में, तो उसके लिए सबसे बड़ी जो जरूरत है वो है उसके नागरिकों की शिक्षा। जब देश शिक्षा में निपुण होगा तभी देश आगे तरक्की कर सकता है। तो इस विषय में जैसे प्रधानमंत्री जी ने जब 25 साल पहले अपनी यात्रा गुजरात से शुरू करी थी एज चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने वहां स्टेट में देखा, गुजरात तब शिक्षा के स्फेयर में इतना डेवलप्ड नहीं था, तो उन्होंने देखा ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है, सोशल डिस्पैरिटीज बहुत ज्यादा हैं। सो उन्होंने ये दो इनिशिएटिव्स, एक शाला प्रवेशोत्सव जिसमें कि एंट्री एनरोलमेंट स्टूडेंट्स की बढ़ाने के लिए ये प्रयोग किया था 2003 में, सबसे पहले जो ड्रॉप आउट रेट था 37% था गुजरात में, तो धीरे धीरे करके इससे बढ़ते हुए बहुत कंसिडरेबल ड्रॉप आउट रेट रिड्यूस हुआ। तो एक तो ये था, और दूसरा था गुणोत्सव।

0: जिसमें कि इवैल्यूएशन और अकाउंटेबिलिटी बच्चों की देखी जाती है। तो इन दोनों इनिशिएटिव से उन्होंने आगे प्रयोग शुरू किया और उसको अब स्टेट लेवल, जैसे गुणोत्सव तो असम में भी अडॉप्ट हुआ और कुछ और स्टेट्स भी अब करना चाह रही हैं, और नेक्स्ट इनिशिएटिव 7th एडिशन जो है वो जनवरी 7, 2027 को होगा असम में, और गुजरात में तो चल ही रहा है। तो ऐसे इनिशिएटिव जो हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि एजुकेशन के फील्ड में जैसे भारत जाना जाता है अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड की वजह से, यूथ पॉपुलेशन जो यंग पॉपुलेशन है इंडिया की वो भारत में है और वर्ल्ड में पॉपुलेशन एज हो रही हैं, तो भारत का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब उसके जो नागरिक और यूथ हैं वो निपुण हो, शिक्षा के तरीके से स्किल्ड हो, निपुण हो, और तभी देश भी आगे तरक्की करेगा और तभी दुनिया में लीड कर सकता है भारत।
1: जी हाँ, हम अपने आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए सरल शब्दों में बताएं तो गुणोत्सव जो योजना थी वो प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता, छात्रों के सीखने के स्तर, शिक्षकों की उपस्थिति और स्कूल के बुनियादी ढांचे का मूल्यांकन करने से जुड़ी थी। जब हम निपुण भारत की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि देश का प्रत्येक बच्चा प्राथमिक कक्षा के अंत तक बुनियादी साक्षरता और जो नंबर ज्ञान है उसे अवश्य हासिल कर ले। विद्या प्रवेश की जब हम बात करते हैं तो इसका मुख्य मकसद यही रहा कि पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाले बच्चों को स्कूल के नए माहौल में ढलने और औपचारिक पढ़ाई के लिए मानसिक एवं भावनात्मक रूप से तैयार किया जा सके। विद्या प्रवेश की चर्चा को प्रोफेसर सुषमा जी अगर आगे बढ़ाएं तो जैसा कि विद्या प्रवेश के बारे में हमने बताया कि 3 महीने के प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल का मुख्य लक्ष्य रखा गया कि बच्चा जब स्कूल में जाए उससे पहले उसको एक भावनात्मक और शैक्षणिक माहौल प्रदान किया जाए कि स्कूल जाने के लिए वो तैयार हो सके। कुछ समय पहले तक इस तरह की सोच रखना भी सरकारी स्तर पर किसी योजना को बनाया जाए कि बच्चा पहली कक्षा में जाने से पहले तैयार हो, इसके लिए कोई योजना लाई जाए, बहुत मुश्किल काम था। लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता थी कि इस योजना को न सिर्फ शुरू किया गया बल्कि इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। सामाजिक परिवर्तन के लिहाज से और बच्चों के मानसिक विकास के लिहाज से कैसे देखती हैं इस योजना को आप?
2: भारत में विद्या प्रवेश या विद्यालय जाना बच्चों के लिए एक प्रकार से एक पनिशमेंट होती थी, वो क्योंकि सीधे स्कूल में जाना घर का माहौल होता है जहाँ उस प्रकार की नियमबद्धता नहीं होती और बच्चा अपनी मर्जी का ऑलमोस्ट मालिक होता है, स्वामी होता है। और जब वो विद्यालय में जाता था तो बहुत सारे समय के अनुशासन की सीमाएं उस पर लग जाती थी। उस गैप को दूर करने के लिए यह एक प्रकार से मैं बहुत सुंदर प्रयास मानती हूँ जो स्कूल तैयारी मॉड्यूल बनाया गया, और ये NEP 2020 जिसको हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहते हैं, उसमें कहा गया कि लर्निंग शुड बी ए प्लेजेंट एक्सरसाइज, यानी सीखना आरंभ बच्चे का ऐसा होना चाहिए कि वो उसको एंजॉय करे, वो उसके लिए एक फन जैसी एक्सरसाइज हो। तो इस विद्या प्रवेश का यही उद्देश्य है। और आप जान सकते हैं कि बड़े शहरों में और शहरी उच्च वर्ग में प्ले स्कूल्स का कंसेप्ट आ चुका था, लेकिन वो पूरे देश के बच्चों को उपलब्ध नहीं था, तो उनको भी खेल आधारित गतिविधियों के आधार पर सीखने की प्रक्रिया आरंभ करना, औपचारिक शिक्षा आरंभ होने से पहले उनको उस माहौल में सहज रूप से ढाल लेना और वहीं से निपुण भारत की भी नींव रखना। निपुण इज वेरी इंटरेस्टिंग, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। और आपको याद होगा आयशर जैसी बहुत सारी संस्थाएं पहले ये कहती रही कि 10वीं तक बच्चा पहुंच जाता है देश के सरकारी विद्यालयों में, लेकिन ना वो पढ़ सकता है, ना वो लिख सकता है पूरी बात, और ना ही वो गणना में निपुण होता है। इसलिए वह मिशन रखा गया था और उसी की रणनीति की नींव मजबूत करने के लिए, बुनियाद मजबूत करने के लिए विद्या प्रवेश का ये एक बहुत सुंदर मॉड्यूल बनाया गया। और जिसमें ये हो सकता था, क्योंकि ये प्रारंभिक है तो हर राज्य अपनी अपनी स्थानीय भाषा और सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार पाठ्य सामग्री तैयार कर सकता था ताकि बच्चे को बहुत अजनबी भाव ना लगे वहां पर, जैसा वो घर में अभी तक रहा उसी को थोड़ा आगे ले जाते हुए पढ़ना लिखना और गणना करना आरंभ कर दे। थोड़ा शाला प्रवेशोत्सव पर और गुणोत्सव पर भी बात करना चाहती हूँ, क्योंकि वो कन्या केलमणि महोत्सव था एक तरह से, कि कन्या किस प्रकार से विद्यालय पहुंचे भी और फिर वहां रहे भी, क्योंकि ड्रॉपआउट दर बहुत ज्यादा थी उनकी, तो इसलिए बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष बल उसके माध्यम से दिया गया था। और 3 दिवसीय अभियान यानी जिसमें जनप्रतिनिधि भी और अधिकारी भी गांव गांव जाकर बच्चों को बाल वाटिका, आंगनवाड़ी, प्राथमिक ये खेल विद्यालय इन सब में प्रवेश दिलाते, शिक्षण सामग्री किट वितरित करते, तो अपने आप ही एक नामांकन उत्सव जैसा बन जाता और बच्चों को भी इसमें रुचि होती और शिक्षक

0: पर बल दिया और विद्यालयी शिक्षा में इन तीनों के माध्यम से ड्रॉपआउट कम करने की बात और शिक्षा और शिक्षण और शिक्षार्थियों की गुणवत्ता बढ़ाने की बात कही गई।
1: चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और संजीव जी कुछ और योजनाओं पर चर्चा करते हैं। गुजरात से शुरुआत हुई डोमेन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज की। हम अपने श्रोताओं के लिए बता दें कि किसी विशेष स्पेसिफिक विषय को लेकर शुरू की गई यूनिवर्सिटी को डोमेन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज कहते हैं, जैसे राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी या ऊर्जा अनुसंधान संस्थान। इस तरह के विश्वविद्यालय आज राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। सवाल आपसे ये है संजीव जी कि जो पारंपरिक विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जहां हम देखते हैं कि आर्ट्स की भी पढ़ाई हो रही है, कॉमर्स भी पढ़ाए जा रहे हैं, विज्ञान के विषय भी पढ़ाए जा रहे हैं, उनसे अलग 21वीं सदी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जो डोमेन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज शुरू हुए, आज के दौर में भारतीय युवाओं के लिए कितने कारगर हैं और 21वीं सदी की चुनौती के लिए वो कैसे तैयार कर रहे हैं?
2: जी, जैसे आपको पता होगा कि पहले यूनिवर्सिटीज में जनरली सब हर फील्ड में एजुकेशन दी जाती है। मास्टर्स आप अचीव करते हो, उसके बाद पीएचडी उसी फील्ड में लेते हो। लेकिन प्रोफेशनल कोर्सेज में जैसे इंजीनियरिंग होता था, तो इंजीनियरिंग भी एक ही डिफरेंट सब्जेक्ट्स एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं। लेकिन जैसे लॉ फॉर एग्जाम्पल, लॉ का यूनिवर्सिटी का 2 ईयर कोर्स होता था, तो आहिस्ता आहिस्ता इसको 5 ईयर्स कोर्स स्पेसिफिक कर दिया कि बच्चे को 12वीं के बाद ही एकदम एडमिशन वहां चले जाएं उस यूनिवर्सिटी में और उसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन दें। तो लॉ के 5 ईयर कोर्सेज बने, 3 ईयर कोर्सेज भी बने, 5 ईयर कोर्सेज भी हैं कई। ये जरूरी था कि डोमेन स्पेसिफिक, जैसे फिर आपको बताऊं कि प्राइवेट सेक्टर भी इसमें एंटर कर चुका है, लॉ स्कूल्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में बने ही हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज भी डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम और एनर्जी की एक यूनिवर्सिटी देहरादून में बनी, वो प्राइवेट सेक्टर में थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वहां एक लॉ स्कूल भी बना प्राइवेट सेक्टर में, वही 5 ईयर स्कूल
1: जी।
2: वहां बच्चे खूब जाने लगे एंड उनकी इनटेक इन द इंडस्ट्री भी बढ़ गई, बिकॉज वो उसी स्पेसिफिक फील्ड में जा रहे थे। जैसे कई यूनिवर्सिटीज में, मैं आपको बताऊं, उसको बहुत सीरियसली नहीं लेते, जैसे इंटरनेशनली फॉरेंसिक साइंस है या एस्ट्रोनॉमी की फील्ड, तो नासा वगैरह में भी यहाँ के स्टूडेंट्स कई गए हैं जो यहाँ से यूनिवर्सिटीज में पढ़ के, हालांकि एस्ट्रोनॉमी के लिए स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन कई यूनिवर्सिटीज में एस्ट्रोनॉमी की मास्टर्स कराई जाती है। तो सिमिलरली फोरेंसिक साइंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्राइम की फील्ड में और कई फील्ड्स में, एनर्जी और पेट्रोलियम मैंने आपको बताया, स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन मैंने आपको बताया, जैसे भारत बहुत आगे बढ़ रहा है स्पोर्ट्स की फील्ड में, जैसे एस्पिरेशनल इंडिया आगे चल रहा है, हर फील्ड में तरक्की हो रही है। सिमिलरली डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी की यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक बन रही हैं, एग्रीकल्चर के बारे में बनी और जैसे लॉ के बारे में मैंने आपको बताया, और इनकी एडमिशंस भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन जो होता है CUET उसके थ्रू होती है। इसमें क्या है कि इंडस्ट्री की डिमांड, जब बच्चा ज्यादा टाइम एक ही फील्ड में लगाता है तो इंडस्ट्री की डिमांड उसको समझ में आती है और इंडस्ट्री को भी समझ में आता है कि ये बच्चा हमारे फील्ड की मास्टरी कर चुका है और इसको इनटेक लेना है। सो एक तो उससे मास्टरी होती है उस सब्जेक्ट में, दूसरी इंटरनेशनली भी प्रिपेयर होता है बच्चा, और तीसरा उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज इंप्रूव होती हैं बहुत ज्यादा।
1: सुषमा जी, अगर इसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो पारंपरिक उच्च शिक्षा में अक्सर जो शिक्षण संस्थान और उद्योग के बीच की दूरी की बात होती रही है, और हमने देखा कि इस कारण कई बार ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी जो युवक हैं या जो छात्र हैं वो रोजगार से वंचित रह जाते थे। गति शक्ति विश्वविद्यालय या नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जैसे डोमेन स्पेसिफिक मॉडल आपके अनुसार इस खाई को कैसे पाट रहे हैं, इस अंतर को कैसे खत्म कर रहे हैं?
0: जी, संजीव जी की बात को आगे बढ़ाते हुए, ये विश्वविद्यालय तो है ही, जैसे अगर राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय तो अपनी तरह का एक विश्वविद्यालय ही है और उसने बाकियों से MOUs किए हैं, और फोरेंसिक टेस्ट के लिए हमारे यहाँ इतना लंबे समय अभी तक लगता था, वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा था, अब इस विश्वविद्यालय ने उसको संभालना और अपने कैंपसेस के माध्यम से कुछ और एक्सपर्ट्स भी हमें प्रोवाइड किए हैं। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय जो है पहले रक्षा शक्ति माना जाता था, देयर वॉज नो यूनिवर्सिटी इन इंडिया विच वुड स्पेशली टैकल दिस एक्सेप्ट NDA, तो वह भी अब कुछ विशेषज्ञ तैयार कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ आरंभ तो गुजरात से हुआ, लेकिन कौशल विश्वविद्यालय भी देश के बहुत सारे प्रांतों में खोले गए हैं जो स्पेसिफिकली स्किल इम्पार्टिंग यूनिवर्सिटीज हैं, पहले नहीं थे। चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी खोली गई हैं, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज खोली गई हैं, विमेन यूनिवर्सिटीज खोली गई हैं, और इनकी संख्या जो बड़ी है, केवल इतना ही नहीं, उसी बात को जो आपने मुझसे अभी पूछा है
1: जी
0: उसको ही पाटने के लिए मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि यूजीसी से

0: संबद्ध रही हूँ। 2014 में यदि इस देश में 723 यूनिवर्सिटीज थी, अब जाकर के लगभग 1400, डबल ऑफ द नंबर, 1400 से अधिक विश्वविद्यालय खोल दिए गए हैं।
1: जी
0: इसका मतलब है एनरोलमेंट अधिक हो रहा है, विशेषज्ञता भी बढ़ रही है, और टीचर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज भी खुली हैं जो पहले कहीं नहीं थी। एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी खुली है, उद्यमिता विश्वविद्यालय,
1: जी
0: यानी ये जो स्किल बेस्ड एरियाज थे, डोमेन्स थे, वहां पर विशेषज्ञ उत्पन्न करने के लिए, तैयार करने के लिए ऐसे विश्वविद्यालय खोले गए हैं। एक तरफ राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है हम मेरू मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज भी खोल रहे हैं जो थी पहले भी, लेकिन दूसरी तरफ जो विशेष विशेष क्षेत्र पहचाने गए जहां जहां विशेषज्ञता की आवश्यकता थी वो यूनिवर्सिटीज खुली हैं। कॉलेजेस को भी ऑटोनोमस बनाने का प्रयास किया गया है, और जब मैं यूजीसी में थी तो मैं बता सकती हूँ कि बहुत सारे विश्वविद्यालयों को हमने इनकरेज किया कि वो ऑटोनोमी के लिए आगे आए, बिकॉज इस देश में कुछ कुछ कॉलेजेस तो इतने बड़े थे दे कुड बीट एनी यूनिवर्सिटी और दे कुड कंपेयर विद द बेस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज, तो
1: जी
0: उनको ऑटोनोमी देने की बात, ताकि शिक्षा का विस्तार हो। जहां 38,000 के करीब कॉलेजेस थे 2014 में, वो अब 55,000 के लगभग हो गए हैं। उसका विस्तार भी आप समझ सकते हैं। इनके अपने तरीके भी हैं, एडमिशंस क्लैट के माध्यम से लॉ यूनिवर्सिटीज में होता है,
1: जी
0: पहले केवल लॉ कॉलेजेस होते थे, अब लगभग हर प्रांत में एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, तो जो लॉ ग्रेजुएट्स को तैयार कर रही है या एक्सपर्ट्स को तैयार कर रही है। और जो एक हमारे यहाँ गैप जिसकी आपने बात की कि मैं बीए हूं, मैं एमए हूं, मैं पीएचडी भी हूं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं या क्या कर सकती हूं, ये माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार उद्धरण देते हैं, तो बच्चा कोई जवाब नहीं दे पाता विश्वविद्यालयों के माध्यम से। अब जब बच्चा निकलता है तो उसके पास कोई ना कोई निपुणता, कोई ना कोई कौशल, कोई ना कोई विशेषज्ञता अवश्य होती है, और इस प्रकार ये रोजगार से जोड़ने का माध्यम है। दूसरी बात जो आपने पूछी है इंडस्ट्री, अब लगभग हर विश्वविद्यालय को ये निर्देश दिया गया है शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से भी और यूजीसी के माध्यम से भी, कि वे तीसरे वर्ष में, हो सके तो सेकंड से ही शुरू कर लें, इंटर्नशिप करें, इंडस्ट्री से बात करें, आसपास जो भी इंडस्ट्री हो उनको कांटेक्ट भी करें, उनको किस प्रकार की आवश्यकता है, एक तो बच्चों को वहां इंटर्नशिप के लिए भेजें, इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट्स को, उन इंडस्ट्रीज के जो ओनर्स हैं उनको विश्वविद्यालयों के स्टडी बोर्ड्स में या उनके मैनेजमेंट बोर्ड्स में, एकेडमिक काउंसिल में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में स्थान दें, ताकि रोजगार और शिक्षा के बीच का, कौशल और विद्या के बीच का जो अंतर अभी तक था वह अंतर समाप्त हो सके। यह प्रयास विशेष तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद से किया जा रहा है, और इसमें बहुविषयक
1: जी
0: और लचीली शिक्षा हमने इसमें जोड़ी है उसके साथ ही, और कौशल कक्षा 6 से ही आरंभ हो जाए, और आईआईटीज का नंबर बढ़ाया गया है, आईआईएम्स का नंबर बढ़ाया गया है, एनआईटीज बहुत सारी खोली गई हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस बहुत सारे खोले गए हैं, आईसर्स बनाए गए हैं जो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का एक प्रकार से समानांतर बन सके, ताकि बच्चों को सच में ही, जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ समय पहले कहा था कि आप
1: जी
0: सपना देखें हम आपको उड़ान का अवसर देंगे, तो ये विश्वविद्यालय वस्तुतः उन सपनों को सत्य करने के लिए और युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने के लिए सच में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। कॉलेजेस में और विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के रूप में, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के रूप में आ सकते हैं और बच्चों को अपनी विशेषज्ञता से लाभान्वित कर सकते हैं। ये बिल्कुल नई बात लगभग पिछले 3 वर्षों से भारत की उच्च शिक्षा में आई है।
1: और इन सब का उद्देश्य यही है कि जो बच्चे जिस विषय की पढ़ाई कर रहे हैं वो थियोरी के साथ साथ इंडस्ट्री में क्या कुछ घट रहा है उसको भी करीब से जान सकें, समझ सकें, ताकि जब वो इंडस्ट्री में प्रवेश करें तो वो उन चीजों के लिए नए नहीं रहें। संजीव जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगर पढ़ाई बीच में छूट जाए तो साल बर्बाद हो जाता था, लेकिन जब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है और उसमें बीच में पढ़ाई छोड़ने पर क्रेडिट्स सुरक्षित रखने वाला एबीसी सिस्टम हो या फिर मातृभाषा में पढ़ाई, कागजों पर तो ये बहुत बड़े नियम लगते हैं और लगता है कि बहुत बड़ा बदलाव हो गया, लेकिन बतौर पत्रकार ग्राउंड जीरो में क्या बदला है इससे?
2: ग्राउंड जीरो पे बदलाव तो आया है। आप अगर देखेंगे तो भारत का फोकस जो था पहले, अब
1: नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पहले आई 1986 में, उसमें कुछ बदलाव हुआ 1992 में, लेकिन तब से लेके उसके बाद नेक्स्ट पॉलिसी आई, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने पॉलिसी ही नहीं लेके

0: आए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 में, मतलब ऑलमोस्ट 3 दशक बाद। तो अब ये जरूरी भी थी बिकॉज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इंडिया ने हस्ताक्षर किया था 2015 में, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसके मुताबिक लानी थी टू इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल बाई 2030। सो उसमें बदलाव तो काफी आया है, लेकिन अगर आप एंशियंट इंडिया में देखें, हमारा ज्ञान पहले 3 चीजों पे आधारित था, ज्ञान जो नॉलेज, विजडम प्रज्ञा, और ट्रूथ सत्य को अचीव करने के लिए।
1: जी
0: सो आप देखेंगे कि हमारे एंशियंट भारत में तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी बहुत हाई स्टैंडर्ड्स की यूनिवर्सिटीज थी, जो उन एंशियंट इंडिया में पुरानी शताब्दियों में भी लोग चाइना से और यूरोप से और कहाँ कहाँ से लोग पढ़ने आते थे वहाँ, और इन हाउस फैसिलिटी थी वहाँ स्टूडेंट्स के रहने की, 4-4, 5-5 हज़ार बच्चा वहाँ पढ़ता था। तो भारत ने कहीं ना कहीं बीच में जब इन्वेड हुआ, पहले मुगल से फिर ब्रिटिश से, समहाउ ये अपनी एज लूज कर दी। उसके बाद भारत ने दोबारा फोकस किया है अब दोबारा अपने आप को, क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो भारत के पक्ष में है, और यंग कंट्री इंडिया माना जा रहा है, और स्किलिंग को बढ़ावा देते हुए हर युवा को स्किल से एम्पावर करने से उसको सक्षम बनाएं कि वो वर्ल्ड में टेक ओवर कर सके। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अब की है, ये बहुत वास्ट डॉक्यूमेंट था जो प्रिपेयर किया, इसमें हायर एजुकेशन में बहुत रिफॉर्म्स आए, इसमें लोअर एजुकेशन में रिफॉर्म्स आए, जैसे हमने पहले इनिशिएटिव डिस्कस किए कि कैसे बच्चे को बचपन से ही प्ले स्कूल से ही उसको रुझान उसका ताकि स्कूल जाने का हो, ड्रॉप आउट ना हो, ये सब इंश्योर किए, और प्लस क्वालिटी हायर एजुकेशन। जैसे हायर एजुकेशन में आप देखेंगे कि पहले बहुत ज़्यादा किसी लेवल तक करप्शन भी थी, और आज भी जो बच्चा कभी विचलित हो जाते हैं कभी, लेकिन रिफॉर्म्स के माध्यम से, जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया थी पहले, उसको रिप्लेस करके नेशनल मेडिकल कमीशन लेके आए, एंट्रेंस से एग्जाम होता है, अभी और रिफॉर्म्स प्रोसेस में हैं, और रिफॉर्म्स कस्तूरी रंजन कमेटी बैठी है, और इसके ऊपर हाई पावर्ड कमेटी एक और रिफॉर्म्स को आगे लेके जा रही है। सो ये बहुत जरूरी है कि रिफॉर्म्स इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, और इसमें जो टार्डिनेस है, जो करप्शन है, जो चीज़ें एम्बेड कर जाती हैं हमारे सिस्टम में, उसको रिमूव करने के लिए कंटिन्यूसली रिफॉर्म्स की प्रोसेस जरूरी है। शिक्षा ही भारत को आगे ले जा सकती है, जब हर इंडियन जब निपुण होगा शिक्षा में, तभी भारत आगे विकसित बन सकता है।
1: सुषमा जी, अभी संजीव जी ने एक अपने सवाल के जवाब में जो बताया एनएमसी के बारे में, हम उसी पर चर्चा करते हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन, एनएमसी के आने के
2: जी
1: बाद देश में मेडिकल सीटों को लेकर एक बड़ा बदलाव आया है। एमबीबीएस और पीजी
2: जी
1: दोनों की सीटें लगभग दोगुनी हो गई हैं। डॉक्टरी की पढ़ाई के इस तरह आसान और सुलभ होने से हमारे देश के युवाओं के लिए और गांव शहरों की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए इसके क्या मायने हैं, और पिछले 2 दशकों में इसमें जो परिवर्तन हुए हैं वो भावी भारत के निर्माण में कितनी अहम भूमिका निभा सकते हैं?
2: अगर विकसित भारत की बात करें और भावी भारत की बात करें, तो शिक्षा और स्वास्थ्य वो 2 मजबूत पिलर्स होते हैं जिनके आधार पर किसी भी विकसित राष्ट्र की नींव रखी जाती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत परिवर्तन किए हैं, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर से लेके, जिसकी बात अभी हमने की, शिक्षा के लिए विद्यालय से पहले ही खेल खेल में तैयार किया जाए, से विशेषज्ञ डोमेन स्पेसिफिक विश्वविद्यालय खोले गए हैं, वह एक बात है। लेकिन रेगुलेशन भारत में एक समस्या थी, और ये माना जाता था या ये घटित हो गया था कि जो भी नियंत्रक नियामक आयोग हैं या परिषदें हैं, वह अपने आप में भ्रष्ट निकाय बन गए थे, क्योंकि पारदर्शिता नहीं थी। इसलिए एक तरफ अभी हेकी जो जल्दी ही आएगा, यूजीसी का स्थान लेगा और बहुत सारी परिषदों का स्थान लेगा, लेकिन 2020 में ही भारतीय चिकित्सा परिषद के स्थान पर भारतीय चिकित्सा आयोग या राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग लाया गया, क्योंकि मेडिकल एजुकेशन में इतना ज्यादा रेगुलेशन था, जैसे लॉ एजुकेशन में भी है लगभग। तो यहाँ संरचनात्मक सुधार तो ये हुआ कि 4 स्वायत्त बोर्ड बना दिए, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मेडिकल एजुकेशन, क्योंकि एथिक्स भी उस रिसर्च के लिए भी आवश्यक है और शिक्षा के लिए भी आवश्यक है। और इसके साथ साथ शिक्षक संकाय से की योग्यता से जुड़े हुए जो नियम थे उनको भी अपडेट किया गया है। और वहीं से जो सुधार आरंभ हुए, तो मेडिकल कॉलेजेस में सीटों की पारदर्शी विधि प्रक्रिया, यानी आप नीट के माध्यम से एकीकृत हो गए, साथ ही साथ पारदर्शी प्रवेश व्यवस्था हो गई, क्योंकि आपको पता है आपका कौन सा स्थान है, आपने कहाँ अप्लाई किया है, एंड एवरी इंस्टीट्यूशन इज सपोज टू पुट इट ऑन देयर बोर्ड, पुट इट ऑन देयर वेबसाइट। तो यह भविष्य के लिए इसलिए बहुत सुंदर है कि भारत का बच्चा कहीं यूक्रेन भागता था, कहीं चीन भागता था, कहीं और किसी विदेश में भागता था, क्योंकि यहाँ मेडिकल सीट्स उसके लिए उपलब्ध नहीं थी। तो मेडिकल सीटों का बढ़ना दो प्रकार से उत्तम है, एक जो बच्चा यहाँ चिकित्सा शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, चाहती है, उसको यही अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, और जो भारत के विभिन्न चिकित्सालयों में चिकित्सा विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं है या टीचर, मेडिकल टीचर्स उपलब्ध नहीं थे, वह भी अब उपलब्ध होंगे।
1: भारत की डेमोग्राफिक डिविडेंड का पूरा लाभ उठाने के लिए स्किल इंडिया, जिसे हम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कहते हैं, PMKVY 4.0 की शुरुआत हुई है इस देश में, और उसके तहत हम देख रहे हैं कि आज के समय की जरूरत के अनुसार AI, रोबोटिक्स और 3D प्रिंटिंग जैसी फ्यूचरिस्टिक स्किल्स में युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। स्किल और रोजगार के क्षेत्र में जो परिवर्तन आया है, और जब से ये योजना शुरू हुई है करोड़ों युवाओं को इससे प्रशिक्षित किया जा चुका है। और सुषमा जी ने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि कौशल से जुड़े विश्वविद्यालय भी चल रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं, युवाओं में उनको स्किल्ड बनाने में, उनको खुद का व्यवसाय शुरू करने में, नौकरी खोजने की बजाय नौकरी देने में इसकी कितनी बड़ी भूमिका आप देख रहे हैं?
0: जी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि भारत को विकसित बनाने के लिए शिक्षा का बहुत महत्व है, और शिक्षा का महत्व ये है कि अगर जब तक उसके हर सिटीजन ट्रूली ग्लोबल सिटीजन ना बने, कि शिक्षा यहाँ ग्रहण करे और हर जगह उसकी वैल्यू हो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसका विजन भी यही था कि एक तो अपनी मदर टंग में शिक्षा प्रदान करनी, उस पे फोकस था, दूसरा इंडियन इथॉस में रूटेड हो हमारा एजुकेशन, और तीसरा हर सिटीजन को एक ट्रूली ग्लोबल सिटीजन बनाना। तो स्किलिंग बहुत जरूरी एस्पेक्ट था, क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड आपने बात करी, भारत का एक एडवांटेज है, बहुत मेजर एडवांटेज है, और जब तक उसके युवा शिक्षित नहीं होंगे, स्किल्ड नहीं होंगे कि वर्ल्ड पावर के साथ जो बाकी देशों के युवा हैं उनके साथ कंपीट करने के लिए, जब ट्रूली ग्लोबल नहीं होंगे तो वो कंपीट नहीं कर सकते। तो इसलिए स्किल यूनिवर्सिटीज, अगर आपको याद हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो सबसे पहले उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री में एक स्किल डिपार्टमेंट, एक स्पेशल अलग बनाया, जिसमें युवाओं को स्किल करने के लिए, जैसे पहले हमारे हायर लेवल पे IITs होती थी स्किल करने के लिए, IIMs थे, लोअर लेवल पे ITIs वगैरह थी और पॉलिटेक्निक्स थे। तो उसके अलावा अब स्किल यूनिवर्सिटीज भी बन रही हैं, और जैसे एम्स की बात करी कि वो हेल्थ एजुकेशन में, अब एम ये है कि हर स्टेट के पास एक एम्स जरूर हो, एक एटलीस्ट हो, 12 या 14 निर्माण हो चुके हैं एम्स एक से शुरू करके, सिमिलरली हर स्टेट के पास होगा। सो स्किल यूनिवर्सिटीज में भी स्पेसिफिक फील्ड्स में, जैसे हायर एजुकेशन की हमने बात करी, तो स्किल प्रदान करने के लिए युवाओं को, इवन पॉलिटेक्निक्स और ITIs जो थे उनको भी अपग्रेड किया जा रहा है। तो बहुत सारा फोकस जो है वो स्किलिंग पे लग रहा है, और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एजुकेशन इज कंटिन्यूअसली वर्किंग इवन विद द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जा रहा है, इंडस्ट्री को इन्वॉल्व किया जा रहा है, सो दैट द यूथ बिकम एम्पावर्ड विद ग्लोबल स्किलिंग स्किल्स।
1: सुषमा जी, एक सवाल परीक्षा पे चर्चा से जुड़ा भी। परीक्षा की जब भी हम बात करते हैं, परीक्षा की चर्चा करते हैं, तो 2 दशक पहले के भारत में जब मैं विद्यार्थी था तो घर का माहौल ऐसा हो जाता था कि पता नहीं घर में क्या हो गया है। TV ऑन होना बंद हो जाते थे, अगर कोई मेहमान आने वाले हैं तो बता दिया जाता था कि अभी परीक्षा चल रही है बच्चों की, आप थोड़े समय बाद आइए, घर में शोर शराबा नहीं होता था। लेकिन उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा जैसे कार्यक्रम की शुरुआत की, खुद बच्चों से बात करते थे, खुद उनके अभिभावकों को बताते थे, और कुल मिलाकर एक माहौल तैयार किया गया कि परीक्षा डर का मामला नहीं है, इसे आप एक त्योहार की तरह देखिए, एक उत्सव की तरह देखिए, अगर उसमें आप नाकाम हो भी जाते हैं तो सुसाइड करने की जरूरत नहीं है, डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, जीवन में बहुत सारे अवसर हैं। इस बदलाव से बच्चों के मेंटल हेल्थ और कॉन्फिडेंस में बहुत परिवर्तन आया, अभिभावकों को भी बातें समझ में आई। कैसे देखते हैं बच्चों के मनोविज्ञान के नजरिए से, उनके विकास के नजरिए से और सामाजिक परिवर्तन के नजरिए से कितना बड़ा बदलाव आप मानती हैं परीक्षा पे चर्चा को?
2: जी, सबसे पहले तो इसकी जो खूबसूरती है या सौंदर्य है वो ये है, प्रधानमंत्री स्वयं बच्चों से बात करें। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है कि विद्यार्थियों को राष्ट्र के प्रधानमंत्री से बात करने का, संवाद करने का अवसर मिल रहा है। तो राष्ट्र के शीर्ष नेतृत्व के साथ वो बात करते हैं, सीधा संवाद करते हैं, विद्यार्थी करते हैं, शिक्षक करते हैं, अभिभावक करते हैं, और इसको एग्जाम वॉरियर्स अभियान भी उन्होंने आरंभ में चलाया। ये मुझे लगता है बहुत ही समीचीन था और सामयिक भी था, क्योंकि एक समय ऐसा आया, बिल्कुल सही है, मैं भी उसी समय की उपज हूँ, जब आपने कहा टेलीविजन भी बंद, घर में मेहमानों का आना भी बंद, कमरा भी बंद, और बच्चे के लिए जैसे सजा हो उसे एक एग्जाम के लिए तैयारी करनी है और अधिक से अधिक मार्क्स लेने, उसमें अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने हैं, और एक एग्जाम ना हुआ ऐसा लगता था जैसे जीवन वहीं रुक गया है, और वहीं रुककर उसको सफलता ही हासिल करनी है, उसके बाद उसका दरवाजा खुलेगा। उसमें बहुत बड़ा बदलाव माननीय प्रधानमंत्री जी के संवाद से आया है, और इसे आप इस रूप में भी देख सकते हैं कि 3 करोड़ से अधिक पंजीकरण अब तक, नौवां संस्करण 2026 में हुआ था, उसमें इतने पंजीकरण हुए, और सहभागिता भी बहुत बड़ी है,
3: क्योंकि कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं, अलग अलग श्रेणियों में पंजीकरण कराते हैं, और उद्देश्य भी यह है परीक्षा के तनाव को कम करना। यहाँ मैं विशेष तौर पर एक आंकड़ा लेना चाहती हूँ कि हमारे देश के यदि विद्यालयों के आंकड़े हम लें तो विद्यार्थी माध्यमिक स्तर तक तो एनरोलमेंट 88.5% है, लेकिन 9वीं से 12वीं तक ये घटकर 56.4% हो जाता है। मुझे लगता है कि इनको भी एड्रेस करना अवश्य ही माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य रहा होगा, ताकि जीवन के प्रति, परीक्षा के प्रति, अंकों के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो, और तनाव कम हो तो व्यक्ति अपने आप अवसर देखने लगता है, खोजने नहीं पड़ते, पर उसको प्राप्त कर सकेंगे।
1: संजीव जी, आखिर में परीक्षा पे चर्चा का एक और महत्वपूर्ण पहलू रहा स्ट्रेस को कम करना, और कहीं ना कहीं उससे जो परिणाम हमें देखने को मिले वो बहुत शानदार रहे। संक्षेप में, कार्यक्रम में समय कम है, क्या बताएंगे आप?
0: जी, ये जो परीक्षा पे चर्चा जो प्रधानमंत्री जी ने 2018 में इनिशिएटिव शुरू किया, इसका पर्पस मेनली यही था कि हाउ टू अप्रोच एग्जाम्स इन अ स्ट्रेस फ्री एंड इजी मैनर। सो सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री ने इंटरेक्शन स्टूडेंट के साथ, टीचर्स के साथ और पेरेंट के साथ, मैं आपको बता दूं कि टोटल इस इनिशिएटिव के साथ अभी तक टोटल 4.5 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी, यू नो, स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स जुड़ चुके हैं। 4.2 करोड़ तो स्टूडेंट्स ही हैं, 25 लाख टीचर्स हैं, 6 लाख पेरेंट्स हैं, और पहला संस्करण इसका 16 फरवरी 2018 को हुआ। उसके बाद प्रधानमंत्री ने इसमें काफी पहलू उठाए। फॉर एग्जाम्पल, 1 2024 में उन्होंने इस पे बहुत इंपॉर्टेंटली बच्चों को ये भी बताया कि अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए रीलें देखने में, और हैव एनफ स्लीप, नींद बहुत जरूरी है ताकि अगले दिन फ्रेश होके अपना एग्जाम दे सकें। उन्होंने पहले एक बारी पबजी का भी, जो बहुत रेज की तरह बच्चों में फैल चुका था, बाद में तो गेम बैन हो गई, लेकिन पबजी के बारे में भी मेंशन किया कि वो बच्चे नहीं उसमें करें। सो ये जो इनिशिएटिव था बेसिकली बहुत स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेटिव भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी उसके साथ अपने अनुभव भी उसके साथ जोड़ देते हैं।
1: तो श्रोताओं, शाला प्रवेश उत्सव से शुरू हुई प्राथमिक शिक्षा की एक छोटी सी चिंगारी आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, निपुण भारत और गतिशक्ति विश्वविद्यालय जैसे वट वृक्ष का रूप ले चुकी है। गुजरात के दूर दराज के गांव में ड्रॉप आउट रेट कम करने के लिए एक संकल्प से लेकर आज 145 करोड़ भारतीयों के विकसित भारत 2047 के सपने तक, ये यात्रा सिर्फ योजनाओं की नहीं बल्कि सोच के परिवर्तन की यात्रा है। जब देश का शीर्ष नेतृत्व शिक्षा को केवल कागजी डिग्रियों तक सीमित न मानकर हर बच्चे के आत्मविश्वास, उसके मानसिक स्वास्थ्य, उसकी मातृभाषा और उसकी कुशलता से जोड़ता है, तब जन सेवा की यही भावना वास्तव में एक स्वर्णिम देश सेवा का रूप ले लेती है। चर्चा में शामिल होने के लिए संजीव जी आपका और सुषमा जी आपका बहुत बहुत आभार।
0: जी, बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
4: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 12वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, शिक्षा और कौशल, भविष्य की नींव। इसमें भाग ले रहे थे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के पूर्व सदस्य प्रोफेसर सुषमा यादव और वरिष्ठ पत्रकार संजीव चोपड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
5: अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, मीडियम वेव DTH के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप और साथ ही वेव्स OTT ऐप पर। आकाशवाणी भोपाल से आकाशवाणी मध्य प्रदेश का एक प्रसारण है जो कि प्रसारित होता है आकाशवाणी भोपाल से। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। लता मंगेशकर का गाया फिल्म साथी का यह गीत है। नौशाद के संगीत निर्देशन में मजरू का लिखा।

0: लता मंगेशकर का गाया फिल्म द ट्रेन का ये गीत था। इसके साथ ही फिल्म संगीत अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है एक अंतराल का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए देश के लिए जिए।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। समाचार संध्या दिल्ली केंद्र से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह का आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत तंत्र बनाने का आह्वान, प्रत्यर्पण पोर्टल शुरू। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार उपायों को लागू करने पर सहमत। दोनों देशों का 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब करने का लक्ष्य। केंद्रीय दल सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए कर्नाटका और महाराष्ट्र का दौरा करेगा। पशुधन बीमा दावों और निगरानी को सुव्यवस्थित करने के लिए पशुधन बीमा पोर्टल शुरू। भारत और मंगोलिया के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू। सेंसेक्स 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा, 72,772 पर बंद। एशियाई खेलों में भारत ने 8 और पदक जीते। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यशवीर ने रजत और श्रीशंकर मुरली ने लंबी कूद, गुलबीर सिंह ने 1500 मीटर दौड़ तथा ईशा सिंह ने निशानेबाजी में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानवाधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
4: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। उन्होंने राज्य पुलिस बलों से केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने के लिए समर्पित टीमें गठित करने का आग्रह किया। भानु प्रताप की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
3: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण और केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर क्रियान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति जताई। बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है।
5: Annually, we have been meeting regularly.
4: हम सालाना और नियमित रूप से बैठकें करते रहे हैं और दोनों पक्षों के व्यापारिक समूहों की संतुष्टि के अनुसार ठोस और महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान कर रहे हैं। आज हमने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पोत निर्माण, आधुनिक बंदरगाहों के विकास, खाद्य सुरक्षा, विशेष रूप से खाड़ी क्षेत्र के लिए कृषि नवाचार, लॉजिस्टिक्स के विस्तार, AI और उभरती प्रौद्योगिकियों पर मिलकर काम करने, ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा फिनटेक क्षेत्र में अपने सहयोग का विस्तार करने जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ाने पर भी चर्चा की है।
5: एक्सपेंडिंग आवर कोऑपरेशन इन द फिनटेक सेक्टर।
3: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2025-26 में $101.25 अरब तक पहुंच गया, जबकि गैर तेल व्यापार 2025 में $76.20 अरब रहा। दोनों पक्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार में $200 अरब के साझा लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश ने पश्चिम एशिया में जारी संकट और होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान के बावजूद कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में आई चुनौतियों का अब तक सफलतापूर्वक सामना किया है। कोलकाता में मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री पुरी ने ये बात कही। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और ये सुनिश्चित करेगी कि आपूर्ति में आए व्यवधान नियंत्रण से बाहर न हो। केंद्र सरकार कर्नाटक और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीम भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। संवाददाताओं से श्री चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकारों ने अपने अपने राज्यों के बड़े हिस्से में सूखा घोषित किया है।
6: राज्य सरकारों ने महाराष्ट्र में बड़े हिस्से पर और कर्नाटक में भी बड़े हिस्से पर सूखा घोषित किया है। भारत सरकार राज्यों के साथ डट के खड़ी रहेगी। कर्नाटक में भी 3 अक्टूबर को टीम बना के भेज रहे हैं वहाँ की स्थिति के आकलन के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है तो भाभी हम टीम की तैयारी कर रहे हैं। मैं स्वयं भी उन राज्यों में जाके स्थिति देखूंगा और हम अपने किसानों के साथ राज्य सरकारों के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे इस परिस्थिति का मुकाबला करने के।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। एक रिपोर्ट।
8: पशुधन बीमा पोर्टल से देश में पशुधन बीमा कार्यक्रमों के बेहतर तालमेल, रियल टाइम मॉनिटरिंग और डेटा आधारित प्रबंधन में मदद मिलेगी। इससे पूरे देश में पशुपालकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराए जा सकेंगे। श्री सिंह ने कहा कि ये पोर्टल किसानों की आजीविका की सुरक्षा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम है।
9: इस बीमा पोर्टल का लाभ किसानों को उठाना चाहिए। किसानों के लिए एक समस्या थी, दुर्घटना हो जाए, कोई बीमारी से पशु की मौत हो जाए तो उनकी आजीविका पर सीधा असर पड़ता था और उनकी आजीविका को सुरक्षित करने के लिए यह बीमा योजना प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देश के सभी जिलों में चलाया। आज उसको आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पोर्टल लॉन्च किया गया है।
8: ये पोर्टल हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 11 क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि बेहतर सड़क बुनियादी ढांचे के कारण देश की माल ढुलाई लागत में कमी आई है। श्री गडकरी नई दिल्ली में एक निजी मीडिया सम्मेलन में बोल रहे थे।
10: So if you want to make more export,
11: अगर हमें निर्यात को बढ़ाना है तो हमें लॉजिस्टिक लागत को कम करना होगा। आर्थिक संस्थानों द्वारा किए गए विशेष शोध और IIM बेंगलोर, IIT कानपुर तथा IIT मद्रास की एक रिपोर्ट से ये स्पष्ट संकेत मिलता है कि भारत में लॉजिस्टिक लागत में 6% की कमी आई है। पहले ये लगभग 16% थी और एक वर्ष पहले मिली रिपोर्ट के अनुसार सड़कों के बेहतर निर्माण के कारण इसमें 10% की कमी आई है।
10: 6% so it comes to 10% one year before.
3: सर्वोच्च न्यायालय ने 2,000 रुपए से अधिक के UPI लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों से जनगणना के लिए समय निकालने का आग्रह किया। कल मन की बात कार्यक्रम में किए गए अपने आह्वान को दोहराते हुए श्री मोदी ने कहा कि जनगणना में भाग लेना सभी नागरिकों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि इस भागीदारी से देश के भविष्य की सही तस्वीर सामने आती है। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को उड़ी आतंकी हमले के बाद की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया।
12: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से इस संकल्प को कैसे वास्तविकता में बदला गया।
13: भारत के सहकारी क्षेत्र में 8.5 लाख से अधिक पंजीकृत समितियां शामिल हैं, जिनसे 32 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं। यह क्षेत्र खेती के ऋण, डेयरी, चीनी, मत्स्य पालन, आवास और विपणन जैसे क्षेत्रों में फैला है और ग्रामीण भारत के लगभग 98% हिस्से को कवर करता है। साल 2021 तक इसके लिए कोई अलग से मंत्रालय नहीं था। इसकी जिम्मेदारी कृषि मंत्रालय के पास थी, जो अलग अलग विभागों और राज्यों में बटी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जुलाई 2021 में भारत में पहली बार एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस तैयार किया ताकि ये जानकारी प्राप्त की जा सके कि जमीनी स्तर पर वास्तव में कितनी समितियां काम कर रही हैं। इसके अलावा बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए नए नियम बनाए गए। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का डिजिटलीकरण किया गया। साथ ही सहकारी बैंकों को सीधे सरकारी योजना के तहत मिलने वाले पैसों से भी जोड़ दिया गया। नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक सहकारिता सम्मेलन 2024 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को रेखांकित किया और कहा कि यह लाखों गांवों, महिलाओं और किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर रहा है।
14: आज भारत में हम सरकार और सहकार की शक्ति को एक साथ जोड़कर भारत को विकसित बनाने में जुटे हैं। हम सहकार से समृद्धि के मंत्र पर चल रहे हैं। भारत में आज 8 लाख यानी 800,000 सहकारी समितियां हैं, यानी दुनिया की हर चौथी सहकारी समिति आज भारत में है।
13: भारत टैक्सी भी सहकारिता मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है। ये सहकारी मॉडल पर आधारित एक चालक केंद्रित गतिशीलता मंच है। इसका उद्देश्य जनता को सस्ती, सुरक्षित और विश्वसनीय परिवहन सेवाएं प्रदान करते हुए चालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। भारत टैक्सी में शामिल होने के बाद अपने सकारात्मक अनुभवों को साझा करते हुए राजीव कुमार नाम के एक चालक ने सभी साथी चालकों से भारत टैक्सी को अपनाने और सहयोग के माध्यम से समृद्धि के इस मिशन को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।
15: मैं सभी से रिक्वेस्ट ये करूंगा ड्राइवर भाई, सारथी भाई से, कि सभी सहकार भारत टैक्सी से जुड़े और इसमें ज्यादा से ज्यादा काम करें। सहकारिता का यह है सहकार से समृद्धि की ओर, तो इसको भी समझने की जरूरत है। जो विजन है कि लोगों के उत्थान के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसमें सहकारिता में अपनी भागीदारी निभाई है।
13: पिछले 5 वर्षों में सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी समितियों को समावेशी विकास के इंजन के रूप में बदल दिया है। जैसे जैसे भारत समावेशी और सतत विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, सहकारी समितियां समान विकास और मजबूती को बढ़ावा देना जारी रखेंगी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और मंगोलिया के बीच आज से सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। नई दिल्ली और उलान बटार के बीच नियमित उड़ान शुरू होने से दोनों राजधानियों के बीच यात्रा का समय करीब 5 घंटे रह जाएगा। मंगोलिया की हुनू एयर द्वारा संचालित ये सेवा हर सोमवार को उपलब्ध होगी। इससे पहले यात्रियों को पेचिंग या इंचियोन जैसे स्थानों पर विमान बदलना पड़ता था और यात्रा में लगभग 13 से 18 घंटे लगते थे। सीधी विमान सेवा से पर्यटन, चिकित्सा और व्यापार सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आवागमन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस सेवा की घोषणा पिछले वर्ष अक्टूबर में नई दिल्ली में मंगोलिया के राष्ट्रपति यू खुरिल सुख और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबद्ध संवाददाता सम्मेलन के दौरान की गई थी। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा है। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने आज अपने खाते में 8 और पदक जोड़े हैं। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ के फाइनल में 3:36.72 के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ रजत पदक जीता। भाला फेंक स्पर्धा में यशवीर सिंह ने 85.14 4000 मीटर के शानदार थ्रो के साथ रजत पदक देश के नाम किया। निशानेबाजी में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। सेंसेक्स 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। 1124 अंक घटकर 72772 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 360 अंक गिरकर 22780 दर्ज हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह का आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत तंत्र बनाने का आह्वान। प्रत्यर्पण पोर्टल शुरू। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार उपायों को लागू करने पर सहमत। केंद्रीय दल सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए कर्नाटका और महाराष्ट्र का दौरा करेगा। पशुधन बीमा दावों और निगरानी को सुव्यवस्थित करने के लिए पशुधन बीमा पोर्टल शुरू। भारत और मंगोलिया के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
16: Good evening. This is Akashvani. I am Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Home Minister Amit Shah calls for stronger mechanism to combat terrorism, launches new extradition portal. India and UAE agree to implement initiatives for trade in local currency, aim to boost bilateral trade to $200 billion by 2032. Central teams to visit Karnataka and Maharashtra to assess drought situation. Government launches Pashudhan Bima portal to streamline livestock insurance claims and monitoring. Non-stop flight between India and Mongolia takes off. Sensex hits a six-month low to close at 72,772. And at Asian Games 2026, India add 8 more medals. In men's javelin throw, Yashveer Singh takes silver. Sri Shankar Murali in long jump, Gulveer Singh in 1500 meter race and Isha Singh in shooting also strike silver. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah today inaugurated the conference on Prahar, National CT Policy and Strategy in New Delhi. The conference deliberated upon the 7 pillars of Prahar, including prevention, response, aggregating internal capacities, human rights, attenuating conditions for terrorism, aligning international efforts and recovery and resilience through a whole-of-society approach. Speaking on the occasion, the Home Minister said the government has adopted a zero-tolerance policy against all forms and manifestations of terrorism. He highlighted that from 2019 to 2026, the Narendra Modi government successfully brought back 288 fugitive criminals to India from 36 countries. Mr. Shah said, as a result of better coordination among agencies, more than 40 modules of Shehzad Bhatti network involved in cross-border smuggling of weapons, explosives and narcotics were busted. More than 100 FIRs were registered and 350 individuals were arrested across 15 states. He said at the same time, the government declared Shehzad Bhatti network a terrorist organization under Unlawful Activities Prevention Act. Mr. Shah also launched a new extradition portal which will synergize and expedite the efforts to bring back fugitives from abroad. India and the UAE have agreed to take steps for the timely implementation of initiatives relating to settlement of trade in local currency, integration of payment and messaging systems, and central bank digital currencies. The two sides reached the agreement during the 14th meeting of the India-UAE High-Level Joint Task Force on Investments in Mumbai today. It was co-chaired by Commerce and Industry Minister Piyush Goyal and Managing Director of Abu Dhabi Investment Authority, Sheikh Hamad bin Zayed Al Nahyan. Addressing media after the meeting, Mr. Goyal said, India has set a target of raising its total exports of goods and services to $1 trillion this year, from $863 billion last year. He said the two countries aim to take bilateral trade to $200 billion by 2032.
17: The Comprehensive Economic Partnership Agreement is now 4 years old. We have doubled our bilateral trade to $100 billion and have set an ambitious target to double it to $200 billion by 2032. The UAE believes in India. They have already invested $25 billion and is the seventh largest FDI source. The ultimate objective of taking investments from UAE to $100 billion in the years to come.
16: The center will dispatch teams to Karnataka and Maharashtra to assess the drought situation in the two states. Talking to reporters in New Delhi today, Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan said, the governments of Maharashtra and Karnataka have declared drought in large parts of their states. He said, a central team will be sent to Karnataka on 3rd of October to assess the drought situation.
18: In Karnataka, we are sending a team on October 3rd to assess the situation there. I have spoken to the Chief Minister of Maharashtra and we are also preparing a team there. I will personally also visit those states to assess the situation. We will stand firmly with our farmers and the state governments with full strength to deal with this situation.
16: The Agriculture and Farmers Welfare Minister today addressed the National Agriculture Conference Rabi Campaign 2026 in the national capital today. He called upon states to complete preparations for the Rabi season through coordinated planning, scientific assessment and close field level monitoring. Mr. Chauhan said that amid climate change, erratic rainfall and water constraints, food security and higher farm incomes would require data-driven planning and stronger center-state coordination rather than conventional approaches. This is Akashvani giving you the news.
19: Want more news? Follow us on X at AIR News Alerts and subscribe to News On Air Official on YouTube.
16: Welcome back to News at 9. The government today launched Pashudhan Bima Portal in New Delhi. Speaking on the occasion, Union Minister for Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Rajiv Ranjan Singh, said that this initiative is aimed at making livestock insurance services more transparent, efficient, accessible and technology-driven. More from our correspondent.
20: The Pashudhan Bima Portal will facilitate better coordination, real-time monitoring and data-driven management of livestock insurance programs, contributing to improved service delivery across the country. Mr. Singh said that this portal is an important step towards protecting the livelihoods of farmers and fulfilling the vision of Prime Minister Narendra Modi to increase the farmers' income, safeguard their agricultural and livestock assets and promote the use of technology. He said through this portal, farmers will now be able to submit their insurance applications online, while the entire process will be monitored digitally. The portal will also be available in 11 regional languages apart from Hindi and English, enabling livestock farmers to access information and services in languages familiar to them. Shivam Mishra, Akashvani News, Delhi.
16: Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva and a relentless commitment that continues. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of Viksit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. Today, in our special series, we bring you an instance of how this vision has been translated into action through the Ministry of Cooperation.
21: India's cooperative sector includes more than 8.5 lakh registered societies with over 32 crore members, covering credit, dairy, sugar, fisheries, housing and marketing, covering nearly 98% of rural India. Until year 2021, it had no dedicated ministry. Responsibility sat with the Ministry of Agriculture, divided across departments and states, and most primary societies still kept their records on paper. Under Prime Minister Narendra Modi's leadership, the Ministry of Cooperation was created in July 2021, the first of its kind in India. It has built a national cooperative database to record what actually exists, brought in a framework for multi-state cooperative societies and funded the computerization of primary agricultural credit societies. It also linked cooperative banking to the direct benefit transfer system. Addressing the Global Cooperative Conference 2024 in New Delhi, Prime Minister Narendra Modi outlined the vision of Sahakar Se Samriddhi and said that it is paving the way for prosperity of millions of villages, women and farmers.
14: Aaj Bharat mein hum sarkar aur sahakar ki shakti ko ek साथ जोड़कर भारत को विकसित बनाने में जुटे हैं। हम सहकार से समृद्धि के मंत्र पर चल रहे हैं। भारत में आज 8 लाख सहकारी समितियां हैं, यानी दुनिया की हर चौथी सहकारी समिति आज भारत में है।
21: भारत टैक्सी इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। इट इज अ ड्राइवर सेंट्रिक मोबिलिटी प्लेटफॉर्म बेस्ड ऑन द कॉर्पोरेटिव मॉडल। इट एम्स टू इकोनॉमिकली एम्पावर ड्राइवर्स व्हाइल ऑफरिंग अफोर्डेबल, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज टू द पब्लिक। शेयरिंग हिज पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस आफ्टर जॉइनिंग भारत टैक्सी, अ ड्राइवर नेम्ड राजीव कुमार कॉल्ड अपॉन ऑल फेलो ड्राइवर्स टू अडॉप्ट भारत टैक्सी एंड टेक फॉरवर्ड दिस मिशन। transmission of prosperity through cooperation.
15: मैं सभी से request ये करूँगा.
0: I would request all the driver brothers to join Bharat Taxi and make the most of the opportunities it offers. The idea of cooperation is to move towards prosperity. We need to understand this vision and contribute to the efforts being made for the betterment and upliftment of people through the cooperative sector.
15: अपनी भागीदारी निभाइए.
21: In 5 years, the Ministry of Cooperation has transformed cooperatives into

खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। वजीर दाखला अमित शाह ने दहशतगर्दी से निपटने के लिए मजीद मुस्तहकम निजाम वजा करने पर जोर दिया है। उन्होंने हवालगी के नए पोर्टल का आगाज किया। भारत और मुत्तहद अरब इमारात ने मकामी करेंसी में तजारत से मुतालिक इकदामात नाफिज करने पर इत्तेफाक किया है, जिसका मकसद 2032 तक बाहमी तजारत को $200 अरब तक पहुंचाना है। मरकजी टीमें कर्नाटक और महाराष्ट्र में खुश्कसाली के हालात का जायजा लेने के लिए दोनों रियासतों का दौरा करेंगी। हुकूमत ने पशुधन बीमा पोर्टल शुरू किया है, जिसका मकसद मवेशियों का बीमा, दावों और निगरानी के निजाम को आसान और मुअस्सर बनाना है। भारत और मंगोलिया के दरमियान बराह रास्त परवाज शुरू हो गई है। सेंसेक्स 6 माह की कमतरीन सतह पर पहुंच गया और ये 72,772 पर बंद हुआ। और एशियाई खेलों 2026 में भारत ने मजीद 8 तमगे हासिल किए हैं। मर्दों के नेजा फेंकने के मुकाबले में यशवीर सिंह ने चांदी का तमगा जीता। श्री शंकर मुरली ने लॉन्ग जंप, गुलवीर सिंह ने 1500 मीटर की दौड़ और ईशा सिंह ने निशानेबाजी में चांदी के तमगे हासिल किए। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज नई दिल्ली में परहार सीटी पॉलिसी और हिकमत अमली से मुतालिक कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। ये कॉन्फ्रेंस परहार के 7 कलीदी सतूनों पर गौर खौज करेगी, जिनमें रोकथाम, जवाबी रद्द अमल, दाखिली सलाहियत में इजाफा, इंसानी हकूक, दहशतगर्दी के हालात में कमी, समाज के हमागीर नजरिए के तहत बैल अक्वामी कोशिशों से हमाहंगी, बाजियाबी और मुजाहमत शामिल हैं। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में हुकूमत ने दहशतगर्दी की सभी शक्लों और मजाहिर को हरगिज बर्दाश्त न करने का नुक्ता नजर अपनाया है। उन्होंने वाजे किया कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने साल 2019 से साल 2026 के दरमियान 36 मुल्कों से भारत से भागे हुए 288 मुजरमीन को मुल्क वापस लाया है। जनाब शाह ने कहा कि एजेंसियों के दरमियान बेहतर तालमेल की बदौलत हथियारों, धमाका खेज मवाद और मुनशियात की सरहद पार स्मगलिंग में मुलविस शहजाद भट्टी नेटवर्क के 40 मॉड्यूल्स का पर्दाफाश किया गया। वहीं 100 से ज्यादा FIR दर्ज की गई और 15 रियासतों से 350 अफराद को गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए किए जा रहे इकदामात का जिक्र करते हुए वजीर दाखला ने फ्रेमवर्क के हर सतह पर इंसदाद दहशतगर्दी के खुदकार जवाबी रद्दअमल को इदारा जाती शक्ल देने की वकालत की। जनाब शाह ने हवालगी से मुतालिक नए पोर्टल का भी आगाज किया, जो बैरून ममालिक से मफरूर मुलजमीन को वापस लाने की कोशिशों को तेज करेगा और उन्हें मुताबकत पैदा करेगा। भारत और मुत्तहद अरब इमारात मकामी करेंसियों में तजारत की अदायगियों से मुतालिक इकदामात के बरवक्त नफाज पर राजी हो गए हैं। इनमें अदायगी और मैचिंग सिस्टम को मरबूत करना और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसियां शामिल हैं। आज मुंबई में सरमायाकारी पर भारत मुत्तहद अरब इमारात आला सतही मुश्तरका टास्क फोर्स की 14वीं मीटिंग के दौरान दोनों फरीक इस माहदे पर पहुंचे। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल और अबूजबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ADIA के मैनेजिंग डायरेक्टर शेख हामिद बिन जायद अन्नहयान ने मुश्तरका तौर पर इस मीटिंग की सदारत की। कॉमर्स और सनतों की वजारत ने अपने बयान में कहा है कि ये मामलात अहम हैं, क्योंकि इनसे दो तरफा तजारत और सरमायाकारी ज्यादा मुअसर, काबिल रसाई और पायदार हो सकती है। तवानाई, सनत, लॉजिस्टिक्स, बुनियादी ढांचा, टेक्नोलॉजी और मसनू जहानत, खला, खुराक की यकीनी फराहमी, ज़रई इख्तराआत और स्टार्टअप इकोसिस्टम वो शोबे हैं जिनमें दो तरफा सरमायाकारी को फरोग दिया जा सकता है। मीटिंग के बाद नामनिगारों से गुफ्तगू करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भारत ने इस साल अशिया और खिदमात की मजमूई बरामदात के हजम को गुज़श्ता साल के $863 अरब से बढ़ाकर $1 खरब करने का निशाना मुकर्रर किया है। जनाब गोयल ने कहा कि जामे इक्तिसादी साझेदारी माहदे के तहत भारत और मुत्तहद अरब इमारात के दरमियान दो तरफा तजारत दुगनी होकर तकरीबन $100 अरब तक जा पहुंची है। दोनों ममालिक साल 2032 तक दो तरफा तजारत को $200 अरब तक ले जाना चाहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि फूड प्रोसेसिंग और बरामदात में वसीतर इश्तराक से भारतीय किसानों को यकीनी तौर पर बाजार मिलेंगे, साथ ही नौजवानों और MSMEs के लिए रोजगार के मौके फराहम होंगे। जनाब गोयल ने मजीद कहा कि भारत और मुत्तहद अरब इमारात तवानाई की यकीनी फराहमी को मुस्तहकम करने के लिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम जखायर, LNG और LPG सप्लाई और जेर समंदर मुमकिन गैस पाइपलाइन के मैदान में ताऊ

0: उनके इम्कानात तलाश कर रहे हैं। बहरी शोबे में जदीद बंदरगाहों, बहरी जहाज साजी, बहरी जहाजों की मरम्मत और कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग में इश्तराक पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। मरकजी हुकूमत कर्नाटक और महाराष्ट्र में खुश्क साली की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए अपनी टीमें रवाना करेगी। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में रबी मुहिम 2026 से मुतालिक कौमी ज़रई कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास के बाद नामनिगारों से बात करते हुए कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक की हुकूमतों ने अपनी रियासतों के बड़े हिस्सों में खुश्क साली का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि खुश्क साली की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए 3 अक्टूबर को मरकजी टीम कर्नाटक भेजी जाएगी। वजीर मौसूफ ने कहा कि इस मुश्किल हालात में मरकजी हुकूमत रियासतों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है।
1: राज्य सरकारों ने महाराष्ट्र में बड़े हिस्से पर और कर्नाटक में भी बड़े हिस्से पर सूखा घोषित किया है। भारत सरकार राज्यों के साथ डट के खड़ी रहेगी। कर्नाटक में भी 3 अक्टूबर को टीम बना के भेज रहे हैं वहाँ की स्थिति के आकलन के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है तो भाभी हम टीम की तैयारी कर रहे हैं। मैं स्वयं भी उन राज्यों में जाके स्थिति देखूंगा और हम अपने किसानों के साथ, राज्य सरकारों के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे इस परिस्थिति का मुकाबला करने के।
0: जनाब चौहान ने मजीद कहा कि इब्तदाई तौर पर ये खदशात थे कि अनिनों के असरात से काश्तकारी का रकबा कम हो सकता है और बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। ताहम वजीर मौसूफ ने कहा कि मुल्क ने खरीफ की फसलों की बुआई के तकरीबन तमाम मुकर्रा अहदाफ हासिल कर लिए हैं। जनाब चौहान ने मुल्क भर में खादों की मुनासिब दस्तियाबी को यकीनी बनाने के हुकूमत के अज़्म का यादा किया। उन्होंने मुश्किल हालात के बावजूद मुनासिब मकदार में खाद की दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए वजीर अजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। वजीर मौसूफ ने खाद के मुतवाजन इस्तेमाल की अहमियत पर जोर दिया ताकि जमीन की जरखेजी को बरकरार रखा जा सके। उन्होंने ऐलान किया कि मुल्क भर में खेत बचाओ अभियान चलाया जाएगा। इस मुहिम का मकसद ये यकीनी बनाना है कि खाद का इस्तेमाल सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मिट्टी की जरखेजी से मुतालिक कार्ड में पेश की गई सिफारिशात के मुताबिक किया जाए और खासतौर पर मिट्टी में मौजूद गजाई अज्जा की कमी को दूर किया जाए। हुकूमत ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल का आगाज किया। ये पोर्टल बीमा पॉलिसी जारी करने से मुतालिक मामलात, दावों, निगरानी और रिपोर्टिंग को आसान बनाते हुए मवेशियों के लिए एक ही जगह मरबूत डिजिटल बीमा प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। मवेशी परवरी और डेयरी के महकमे की मवेशियों की बीमा स्कीम के तहत बीमा किए गए मवेशियों के लिए ये मुमकिन हो सकेगा। इस मौके पर खिताब करते हुए माही परवरी, मवेशी परवरी और डेयरी के मरकजी वजीर राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का मकसद मवेशियों की बीमा खिदमात को ज्यादा शफाफ, मुअस्सर, काबिल रसाई और टेक्नोलॉजी पर मबनी बनाना है। साथ ही मवेशियों के हामिल किसानों और उनकी गुजर बसर की पायदारी को मदद करने की खातिर जोखिम से मुतल्लिक तहफ्फुज को तकवीत देना है। तफसील हमारे नामनिगार से।
2: पशुधन बीमा पोर्टल मुल्क भर में मवेशियों के बीमा प्रोग्रामों में खिदमात की बेहतर फराहमी में तआवुन करते हुए बेहतर तालमेल, बरवक्त निगरानी और डेटा पर मबनी इंतजाम में मदद करेगा। जनाब सिंह ने कहा कि यह पोर्टल किसानों की गुजर बसर के तहफ्फुज की जानिब अहम कदम है और किसान की आमदनी बढ़ाने, उसके ज़रई असासों और मवेशियों के तहफ्फुज और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग देने के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नज़रिए की तकमील करता है। जनाब राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पोर्टल के जरिए किसान अब अपनी बीमा दरख्वास्तें ऑनलाइन दाखिल कर सकेंगे, वहीं इस पूरे अमल की डिजिटल निगरानी की जाएगी।
3: इस बीमा पोर्टल का लाभ किसानों को उठाना चाहिए। किसानों के लिए एक समस्या थी, दुर्घटना हो जाए, कोई बीमारी से पशु की मौत हो जाए तो उनकी आजीविका पर सीधा असर पड़ता था और उनकी आजीविका को सुरक्षित करने के लिए यह बीमा योजना प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देश के सभी जिलों में चलाया। आज उसको आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पोर्टल लॉन्च किया गया है।
2: पशुधन बीमा पोर्टल हिंदी और अंग्रेजी समेत 11 मुकामी जबानों में भी दस्तियाब होगा, जिससे मवेशियों के मालिक किसान उनकी अपनी जबान में मालूमात और खिदमात तक रसाई हासिल कर सकेंगे। नई दिल्ली से शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। वजीर आजम ने मोदी की अवामी खिदमात के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं, जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस अंथक अजम का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नजरिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की खातिर अंथक काम कर रही है। आज अपनी खसूसी सीरीज में हम तज़किरा कर रहे हैं कि इमदाद बाहमी की वजारत के जरिए इस नजरिए को किस तरह बरूए कार लाया जा रहा है।
4: भारत के इमदाद बहामी के शोबे में 8.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड सोसाइटियां शामिल हैं जिनके 32 करोड़ से ज्यादा मेंबरान हैं। ये सोसाइटियां कर्ज, डेयरी, चीनी, माही परवरी, मकानात और मार्केटिंग समेत मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता हैं और मुल्क के देही इलाकों के तकरीबन 98% हिस्से का अहाता करती हैं। साल 2021 तक इमदाद बहामी की खातिर अलग से कोई वजारत नहीं थी, इसकी जिम्मेदारी वजारत ज़राअत के पास थी जो मुख्तलिफ महकमों और रियासतों में तकसीम थी, जबकि बेशतर बुनियादी सोसाइटियां अब भी कागज़ों पर अपने रिकॉर्ड रखती थीं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में जुलाई 2021 में इमदाद बहामी की वजारत की तश्कील अमल में आई। इस वजारत ने मुल्क में अपनी नौईयत का पहला कौमी कोऑपरेटिव डेटाबेस तैयार किया ताकि मुल्क में मौजूद इमदाद बहामी के इदारों का दुरुस्त रिकॉर्ड मुरतब किया जा सके। इसके अलावा बैन रियासती कोऑपरेटिव सोसाइटियों के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया और बुनियादी ज़रई कर्ज सोसाइटीज PACs को कंप्यूटराइज करने के लिए माली मदद फराहम की गई। वजारत ने कोऑपरेटिव बैंकों को फवाइद की बराह रास्त मुंतकली DBT के निज़ाम से भी मुंसलिक किया। 2024 में नई दिल्ली में मुनक़िदा आलमी कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सहकार से समृद्धि का नज़रिया पेश किया और कहा कि ये लाखों गांवों, ख़वातीन और किसानों के लिए खुशहाली की राह हमवार कर रहा है।
5: आज भारत में हम सरकार और सहकार की शक्ति को एक साथ जोड़कर भारत को विकसित बनाने में जुटे हैं। हम सहकार से समृद्धि के मंत्र पर चल रहे हैं। भारत में आज 8 लाख यानी 800,000 सहकारी समितियां हैं, यानी दुनिया की हर चौथी सहकारी समिति आज भारत में है।
4: नई दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: कल से दिल्ली भर के कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों और दीगर तालीमी इदारों में नौजवान वोटरों के इंदराज के लिए खसूसी कैंप मुनक़िद किए जाएंगे। ये कैंप वोटर फेरिस्त की खसूसी जाम नजरसानी SIR 2026 के तहत लगाए जा रहे हैं। दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल ऑफिस ने तलबा से अपील की है कि वो इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए वोटर फेरिस्त में अपना नाम दर्ज कराएं और जमहूरी अमल में हिस्सा लें। ये खसूसी कैंप बुध तक जारी रहेंगे। भारत और मंगोलिया के दरमियान आज से बराह रास्त प्रवास शुरू हो गई है। नई दिल्ली और उलान बातार के दरमियान बाकायदा तौर पर प्रवास का आगाज किया गया। इस सर्विस के शुरू होने से दोनों राजधानी के दरमियान सफर का वक्त कम होकर तकरीबन 5 घंटे हो जाएगा। ये प्रवास मंगोलिया की फजाई कंपनी हुन्नू एयर के जरिए चलाई जा रही है और हर पीर को दस्तयाब रहेगी। इस नए फजाई रास्ते से उन मुसाफिरों के सफर का वक्त नुमाया तौर पर कम हो जाएगा जो इससे पहले बीजिंग या इंचियोन के जैसे मकामात पर परवाज तब्दील करके सफर करते थे। इस सफर में आमतौर पर 13 से 18 घंटे लगते थे। बुनियादी घरेलू इशारे में आज 1.5% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स में 1124 पॉइंट्स की गिरावट दर्ज की गई और वो गुज़श्ता 6 महीनों के सबसे निचले मकाम पर पहुंच गया। निफ्टी में भी गिरावट दर्ज की गई और वो 22,800 से नीचे बंद हुआ। इस गिरावट के असबाब खाम तेल की कीमत में इजाफा, खित्ते की सियासत में गैर यकीनी की सूरत हाल और कमज़ोर आलमी रुझानात हैं जिनका असर सरमायाकारों के जज्बे पर पड़ा है। जापान में जारी एशियाई खेलों में आज भारत ने मजीद 8 तमगे जीते हैं। इनमें निशानेबाजी, एथलेटिक्स, क्रिकेट, कुरश और मुक्केबाजी शामिल हैं। एथलेटिक्स में मर्दों के भाला फेंकने के मुकाबले में भारत के यशवीर सिंह ने चांदी का और रोहित यादव ने कांसे का तमगा जीता। वहीं मर्दों की लॉन्ग जंप में भारत के श्री शंकर मुरली ने 8 मीटर की बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए चांदी का तमगा अपने नाम किया। मर्दों की 1500 मीटर की दौड़ में गुलवीर सिंह ने चांदी का तमगा हासिल किया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर दाखिला अमित शाह ने दहशतगर्दी से निपटने के लिए मजीद मुस्तहकम निज़ाम वज़ा करने पर जोर दिया है। उन्होंने हवालगी के नए पोर्टल का आगाज किया। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने मकामी करेंसी में तजारत से मुतालिक इकदामात नाफिज करने पर इत्तेफाक किया है जिसका मकसद 2032 तक बाहमी तजारत को $200 अरब तक पहुंचाना है। मरकजी टीमें कर्नाटक और महाराष्ट्र में खुश्क साली के हालात का जायजा लेने के लिए दोनों रियासतों का दौरा करेंगी। हुकूमत ने पशुधन बीमा पोर्टल शुरू किया है जिसका मकसद मवेशियों का बीमा, दावों, निगरानी के निज़ाम को आसान और मुअस्सर बनाना है। भारत और मंगोलिया के दरमियान बराह रास्त परवाज शुरू हो गई है। सेंसेक्स 6 माह की कमतरीन सतह पर पहुंच गया और ये 72,772 पर बंद हुआ। और एशियाई खेलों 2026 में भारत ने मजीद 8 तमगे हासिल किए हैं। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
6: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: नमस्कार दोस्तों, जनता के साप्ताहिक मंच पब्लिक स्पीक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं मुनीश शर्मा। दोस्तों, कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, लेकिन जब अचानक कोई बीमारी घर का दरवाजा खटखटाती है तो इलाज के खर्चे की चिंता जैसे चेहरे की सारी मुस्कान छीन लेती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कैसा हो अगर देश का हर नागरिक, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, बगैर किसी आर्थिक बोझ के बेहतरीन इलाज पा सके। जी हाँ, हमारा देश इसी दिशा में एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य क्रांति का गवाह बन रहा है। इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं आयुष्मान भारत और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं की, जो सिर्फ सरकारी योजनाएं भर नहीं है बल्कि हर भारतीय नागरिक को सेहतमंद और आत्मनिर्भर बनाने का एक मजबूत सुरक्षा कवच है। तो दोस्तों, डिजिटल इंडिया के इस दौर में अब स्वास्थ्य सेवाएं भी आसान हो रही हैं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम गहराई से जानेंगे कि आप और आपका परिवार इन सेवाओं का पूरा लाभ कैसे उठा सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपकी अच्छी सेहत ही देश की असल तरक्की है। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त सचिव किरण गोपाल वास्का जी को। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन हमारे स्टूडियो में।
1: नमस्कार
0: दोस्तों, हम आपको बता दें हमारी फोन लाइंस खुली हुई हैं, आप मिलाइए हमारे स्टूडियो के लैंडलाइन नंबर। लेकिन पहले मिलाना मत भूलिए दिल्ली का कोड, यानी 011, और फिर घुमाइए 233-1-0-4-8-1 या 237-1-7-1-1-7 या फिर 237-1-7-1-0-6 और 233-1-4-4-4-4 पर भी आप हमसे बात कर सकते हैं। आप चाहें तो व्हाट्सएप नंबर से भी अपने सवाल दोस्तों हमें भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9289094044। आप हमारे ट्विटर @AIRNewsAlert पर भी टैग #AskAIR के जरिए अपने सवाल पूछ सकते हैं। और ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। और हमें आपकी फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार है दोस्तों। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे एक श्रोता अभी हमसे लाइन पर जुड़ रहे थे और उम्मीद है कि फिर से वो लौटेंगे। बिल्कुल, हमारे श्रोता आ गए हैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से, रमा शंकर वाजपेयी जी। वाजपेयी जी, कहिए क्या है आपकी जिज्ञासा।
2: नमस्कार।
0: नमस्कार,
2: मैं ये पूछना चाहता था कि आयुष्मान कार्ड के द्वारा किस उम्र के लोगों को किस तरह के इलाज को जो है सुविधा प्राप्त हो सकती है।
0: जी जी, नमस्कार।
2: कौन से अस्पतालों में?
1: नमस्कार वाजपेयी जी, ये प्रश्न पूछने के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जो भी श्रोता हैं उनको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की जो सुविधाएं हैं इनके बारे में समझाने में ये बहुत ही लाभकारी होगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि जो आयुष्मान भारत PM JAY की योजना की जो लाभ है वो किसी भी उम्र के व्यक्ति को, अगर जो पात्र परिवार में होते हैं तो उनके लिए ये उपलब्ध है। तो जो भी पात्र परिवार है उनके जितने भी सदस्य हों, किसी भी उम्र के हों, वो इस लाभ का योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं इसके। और अगर आप 70 वर्ष या उसके ऊपर के उम्र के हो तो आप भले किसी भी आय वर्ग के हो आपको इस योजना के अंतर्गत सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं, आपको आयुष्मान कार्ड आपका बना सकते हैं। और जहां तक बोले इलाज का सवाल है, आपको जो भी इलाज जो भर्ती होने योग्य है, जिसमें आपको एक दिन या उससे अधिक भर्ती होना पड़ेगा, जो IPD सेवा कहते हैं, उसके अंतर्गत 27 स्पेशलिटी के अंतर्गत 1961 अलग अलग प्रक्रियाओं के अंतर्गत आप सेवा प्राप्त कर सकते हैं। और अब ये सेवा जो है आप पूरे देश भर के अंदर लगभग 39,000 अस्पताल हैं, जिसमें सरकारी अस्पताल तो है ही, इसके साथ साथ लगभग 18,000 प्राइवेट अस्पताल भी हैं जो पंजीकृत हैं इस योजना के तहत। इसमें आप सेवा प्राप्त कर सकते हैं और ये बिल्कुल ही कैशलेस सेवा है, आपको किसी भी तरह का शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपको ट्रीटमेंट है वो निःशुल्क मिलेगा, आप जाएं अपना कार्ड दिखाएं, पंजीकरण कराएं और जो भी आपकी सेवा है उसमें प्राप्त करें।
0: जी, हम बात करेंगे कि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके विषय में आपसे जानेंगे कि किन लोगों के लिए, ये तो 70 वर्ष में तो कोई आय की सीमा नहीं लागू हुई, लेकिन क्या है उसके विषय में जानेंगे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं एक और हमारे श्रोता हिसार हरियाणा से हमारे साथ लाइन पर हैं, राजेंद्र जी। कहिए राजेंद्र जी, क्या है आपका सवाल?
3: मनीष जी को नमस्कार और विशेषज्ञ जी को नमस्कार।
0: नमस्कार
3: विशेष जी, ये जानना था कि जो नया कार्ड बनवाना हो तो उनके लिए क्या क्या शर्तें होगी और क्या कब कब बनते हैं, ये इसके बारे में जानना था। नमस्कार।
1: नमस्कार राजेंद्र जी, सबसे पहले आपको अगर अपना कार्ड बनाना है तो आप आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या आयुष्मान व्हाट्सएप चैटबॉट के जरिए से या फिर 1455 14, ये हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है उस पे भी आप कॉल कर सकते हैं। उस पे कॉल करके अपना कार्ड बनाने की जो जानकारी है आप वो प्राप्त कर सकते हैं। ये कार्ड जो है बनाने के लिए आपको, आपके पास अगर जो राशन कार्ड है जिसमें आप इस योजना के तहत जो शामिल है इन परिवारों को पहले से ही लिस्ट करके हरियाणा सरकार ने जो अपलोड किया है हमारे पोर्टल पे, उस पे आप अपना आधार नंबर या राशन कार्ड नंबर डाल के आप इसको सर्च कर सकते हैं। इससे आप अपना आधार नंबर से अपना EKYC कर अपना कार्ड आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह वहाँ की जो अगर आपको ये चेक करना है कि आप पात्र है कि नहीं, आप किसी भी नज़दीकी सरकारी अस्पताल में या CSC केंद्र में जाके अपनी ये जानकारी देके आप जो है कार्ड की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं।
0: जी, हमारे जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं पब्लिक स्पीक और चर्चा कर रहे हैं हम आयुष्मान भारत और हर नागरिक के लिए डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं विषय पर, और आपकी जिज्ञासाओं का समाधान कर रहे हैं, आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त सचिव किरण गोपाल वास्का जी हमारे साथ। तो आप भी हमें फ़ोन करके सवाल पूछ सकते हैं, जैसे अब पूछ रहे हैं शिमला हिमाचल प्रदेश से हमारे श्रोता हैं योगेश। कहिए योगेश जी, क्या है आपका प्रश्न?
4: नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार।
4: मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्कीम चलाई जाती है आयुष्मान भारत, तो उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट द्वारा भी स्वास्थ्य के लिए योजनाएं चलाई जाती है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश द्वारा हिम केयर स्कीम चलाई जाती है। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न उठता है कि हम कौन सी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ ले और किस तरह से ले और पता कैसे चलेगा? क्यों ऐसा भी हो सकता है कि इस दौड़ में हम इन दोनों ही स्वास्थ्य लाभों से वंचित रह जाए? तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति में आपकी जो स्कीमें होती है जहां पर क्लैश कर रही है सेंटर की भी और स्टेट की भी, तो ऐसी स्थिति में हमें साधारण नागरिक को क्या करना चाहिए?
1: योगेश जी, ये बहुत ही अहम प्रश्न है क्योंकि PMJAY के अलावा हमारे जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर लगभग 56 अलग स्कीम चलती है जो राज्य सरकारों के भी है। लेकिन इसमें एक मुख्य विषय आपको मैं बताना चाहूँगा। जैसे अगर आप PMJAY के जो लाभार्थी हैं और उस योजना के अंदर पात्र हैं, तो आपके जो परिवार हैं, जो पात्र परिवार है, इनकी सूची पहले से तय की गई है और ये ऑनलाइन पोर्टल पर पहले से ही डाला हुआ है। जहाँ तक राज्यों के स्कीम का सवाल है, और जो लोग इन योजनाओं में कवर नहीं होते हैं, मान लीजिए हिमाचल में मान लीजिए एक कुछ परिवार जो है PMJAY के अंतर्गत आते हैं, और अगर आप उस परिवारों में नहीं आए हैं तो अन्य परिवार जो हैं जो राज्यों के स्कीम में ये कवर होते हैं, जैसे कि हिमाचल का हिम केयर है। एंड ये भी एक मैं बताना चाहूँगा कि PMJAY स्कीम जो है ये बिल्कुल निःशुल्क है। मतलब आप इस स्कीम के और ये गरीब परिवारों के लिए है। आपको याद होगा 2011 में एक सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस हुआ था जिसमें परिवारों की जो

0: जो गरीबी रेखा के नीचे के जो परिवार है उनका भी चिन्हांकन किया गया था। तो इन ऐसे परिवारों को चुना गया है कि जो बिल्कुल ही गरीब हैं और गरीबी के जो 40% सबसे नीचे परिवार जो हैं उनको इसमें स्कीम में लिया गया है। उसके अतिरिक्त जो है कुछ राज्य जैसे हिमाचल है, कई राज्य है जिन्होंने बाकी लोगों को कवर करने के लिए भी कुछ स्कीम लिया है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप क्या PMJAY के अंतर्गत कवर्ड हैं, आपका परिवार उसमें है। उसके लिए बहुत ही आसान है, आयुष्मान ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं आपके प्ले स्टोर से, और उसमें आप अपना आधार नंबर डाल के चेक कर सकते हैं कि आपका परिवार PMJAY के अंतर्गत आता है कि नहीं। अगर PMJAY के अंतर्गत आता नहीं है तब आप देखिएगा कि आपके स्टेट का जो स्कीम है, राज्य के जो योजना है उसमें अंतर्गत कवर आप उसमें पा सकते हैं। इसमें मेरे ख्याल से हिमाचल प्रदेश में आपको एक प्रीमियम फीस उसमें देनी होती है, एनरोलमेंट बेस्ड फीस है, वो करके आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ राज्यों में ये है, कुछ राज्यों में निःशुल्क है। तो आपके राज्य में जो स्कीम लागू है उसमें आप देख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको देखना है कि आप PMJAY के अंतर्गत कवर्ड है कि नहीं। और जैसे मैं कह रहा हूँ बहुत ही आसान है, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं चेक, 1-1-4-555 पे कॉल करके चेक कर सकते हैं, और आयुष्मान ऐप के माध्यम से भी आप ये पहले चेक कर सकते हैं।
1: जी, हिमाचल प्रदेश के बाद अब ये कॉल हमारे श्रोता कर रहे हैं मध्य प्रदेश से, छतरपुर मध्य प्रदेश से, राशिद अहमद खान। कहिए क्या है आपका सवाल।
2: नमस्ते सर।
1: नमस्कार।
2: सबसे पहले दो महान विभूतियों को, लता मंगेशकर जी को और भगत सिंह साहब को, मैं अब पूरे देशवासियों की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ उनकी जन्म जयंती पर।
1: जी,
2: मेरा छोटे छोटे दो निवेदन सर। एक तो ये कि एक आयुष्मान कार्ड से एक फैमिली में कितने सदस्य कवर होते हैं। दूसरा ये कि अगर BPL का राशन कार्ड नहीं है तो कितने आधार, मतलब आर्थिक आधार तक पे उसके आयुष्मान कार्ड की सुविधा मिल सकती है।
1: जी, दो सवाल आपने किए कि कितने सदस्य, और दूसरा आपने उनका जो एलिजिबिलिटी है उसके विषय में पूछा है। जी
0: राशिद खान जी, सबसे पहले आपका जो सवाल है कि एक कार्ड पे परिवार के कितने सदस्य कवर होते हैं, मैं आपको इसमें आपको बता दूं कि जो पात्रता है इस योजना के अंतर्गत एक पूरे परिवार की है। तो अगर आपका परिवार पात्र परिवार में शामिल है तो इसका मतलब है कि आपके परिवार में एक व्यक्ति हो, दो हो, तीन हो या उससे अधिक हो, ये सारे जो हैं किसी भी उम्र के हों ये सभी इसमें कवर होते हैं। और रही दूसरी बात, अगर आपके पास BPL कार्ड नहीं है, ये मैं पहले बता दूं कि जो योजना के अंतर्गत जो शामिल करने की जो मापदंड है, जैसे मैंने कहा कि SECC सर्वे जो हुआ था उसके अंतर्गत अलग अलग पैमाने लगाए गए थे कि जैसे गरीब हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, अलग अलग गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनको इस योजना में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त आपका जो समग्र ID है, मध्य प्रदेश से आप कॉल कर रहे हैं तो आपके यहाँ समग्र ID का प्रचलन है, तो समग्र ID को के माध्यम से आप जो हमारा आयुष्मान ऐप है या व्हाट्सएप चैटबॉट है या फिर अपने नज़दीकी अस्पताल में इस समग्र ID को इस्तेमाल करके आप चेक कर सकते हैं कि आप इन शामिल परिवारों में जो PMJAY के अंतर्गत भी हैं और उसके अतिरिक्त जो राज्य की स्कीम के अंतर्गत है, इसमें आप चेक कर सकते हैं और अपना कार्ड बना सकते हैं। सो इसमें जो एलिजिबिलिटी है ये राज्य तय करते हैं। उसमें जैसे पहले जितने भी PMJAY के अंतर्गत परिवार, लगभग 12 करोड़ परिवार पूरे देश में शामिल थे, उसके अतिरिक्त उसको बढ़ाते हुए लगभग 37 लाख परिवार अपने आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका के परिवारों को जुड़ा गया। उसके बाद फिर 70 वर्ष के ऊपर के प्रति उम्र के प्रति नागरिक को इसमें जोड़ा गया है। तो इस तरह से जैसे PMJAY का जो मापदंड है वो बहुत ही स्पष्ट है, उसके अंतर्गत अगर राज्यों ने अपना स्कीम को एक्सटेंड किया है और परिवारों को शामिल किया है, तो मध्य प्रदेश में आप समग्र ID का उपयोग करके इस आपकी पात्रता को आसानी से चेक कर सकते हैं।
1: तो राशिद खान जी, हम उम्मीद करते हैं कि जो आपकी जिज्ञासा है उसका समाधान अवश्य हुआ होगा। और दिल्ली से हमारे श्रोता जुड़ गए हैं हमारे साथ, जगदीश जोशी। जी जोशी जी, क्या है प्रश्न?
3: सर नमस्कार।
1: नमस्कार।
3: और शुभ संध्या आपको भी और जो विशेषज्ञ बैठे हैं इनको भी
1: जी।
3: तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली मेरी एज है 49 और मैं ब्लाइंड पर्सन हूँ टोटली, और घर में हमारे 5 मेंबर है, वाइफ है और 3 बच्चे हैं, जिसमें देखिए 2 बच्चे एडल्ट हैं, हालांकि वो पढ़ ही रहे हैं भी, कोई जॉब वगैरह नहीं करते, और एक छोटा बच्चा है वो 6 में पढ़ता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मेरा ये कार्ड बन सकता है? मेरे पास बीपीएल फैमिली से आता हूँ, बीपीएल कार्ड भी है, और दूसरी बात यह है कि हम 5 में से 4 लोग मेंशन है उस कार्ड में, छोटा बच्चा जो उसको हमने 2018 से अप्लाई करा हुआ है, लेकिन अब बीपीएल कार्ड में उसकी एंट्री है नहीं, तो क्या उसको भी उस कार्ड का लाभ मिल पाएगा या नहीं, और कैसे और कहां बनेगा? तो मुझे इस बारे में थोड़ा अपनी विशेषज्ञ टिप्पणी से अवगत कराएं सर।
0: जगदीश जी, प्रश्न पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मैंने दूसरे श्रोताओं से कहा है, पात्रता ढूंढने के लिए सबसे आसान और बेहतर तरीका है हमारे कॉल सेंटर पे 14555 में कॉल करके पूछना, जिससे आपको समझ में आएगा, वो बता सकेंगे कि आप इस योजना में कवर है कि नहीं। और दिल्ली में जो पात्र परिवार हैं उनके लिस्ट में से चेक करके आपको बताया जाएगा। अगर आपके बच्चे आप मोबाइल यूज़ कर सकते हैं तो आप उसमें भी चेक कर सकते हैं, एक बहुत ही आसान है। और दूसरा, मैंने जैसे पहले कहा, अगर कोई भी परिवार इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों में शामिल होता है तो उसके परिवार के सभी सदस्य इसमें कवर्ड हैं। इसमें आपको जो आपका कार्ड है, राशन कार्ड है, उसमें आपके जो भी नए परिवार के सदस्य हैं, जैसे कोई जन्म हुआ किसी का, या किसी के शादी होने से कोई नई बहू आई, इस तरह से नए सदस्यों के जोड़कर ऑटोमेटिकली जो है आप के नए सदस्य जो है इस योजना में जुड़ जाएंगे
1: जी। एक और हमारे श्रोता दिल्ली से ही धर्मवीर जी हमारे साथ लाइन पर हैं। धर्मवीर जी, प्रश्न कहिए
4: अपना। जी नमस्कार।
1: नमस्कार,
4: मैं धर्मवीर गांधी दिल्ली से बोल रहा हूँ।
1: जी जी,
4: मेरे 2 सवाल हैं कि जैसे मदर की सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट की जो कार्ड बना, एक ही कार्ड बना, उसमें 5+5 लिखा आया है, ये क्या हम सेंट्रल और दिल्ली गवर्नमेंट का एक ही कार्ड माने? दूसरा, क्या अगर फैमिली में दूसरा भी कोई सीनियर सिटीजन हो जाता है तो उसका भी अलग से कार्ड बन सकता है क्या, नहीं बन सकता? और साथ में ये भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि राशन कार्ड में तो नए नाम तो कुछ जुड़ते नहीं है, चाहे परिवार में नया सदस्य आए, कोई बच्चा हो तो उसका नाम नहीं कहीं जुड़ पाता, ऐसा क्यों हो रहा है? और लास्ट में एक छोटी सी बात और रखूंगा मुनीत जी, अभी लाइन पे बोला जा रहा था
1: जी जी, जहां तक आपने बात कही राशन कार्ड में क्यों नहीं जुड़ पाता, वो एक अलग विभाग की समस्या है, लेकिन हाँ, जो आपका ये प्रश्न था उसके विषय में, जो पहला है उसके विषय में जरूर हमारे विशेषज्ञ आपको बताएंगे।
0: धर्मवीर जी, जैसे आपने कहा है कि आपके परिवार में एक सदस्य है जो 70 वर्ष के ऊपर है, महिला है, और उनको कार्ड में दिया गया है जिसमें लिखा है 5+5, इसका मतलब ये है कि दिल्ली में जो योजना चल रही है इसमें भारत सरकार के तरफ से जो 5 लाख का कवर दिया जा रहा है उसके अतिरिक्त दिल्ली सरकार 5 लाख का कवर और दे रही है। तो इसका मतलब यही है कि उसी प्लेटफॉर्म पे, उसी योजना के अंतर्गत आपको 5+5 पूरे 10 लाख का कवर का लाभ मिलेगा। और जहाँ तक दूसरे परिवार के दूसरे सदस्य जो सीनियर सिटीज़न बाद में होंगे, उन्हें भी इस आयुष्मान व्यय वंदना के अंतर्गत कवरेज मिलेगा, जिसमें आपके अभी जो मौजूदा लाभार्थी हैं वो, और जो भी नए लाभार्थी 70 वर्ष के अतिरिक्त ज़्यादा होंगे, तो उनको भी इसी योजना के अंतर्गत जोड़ के उसको एक परिवार मान के दोनों को 5+5 लाख का जो है लाभ दिया जाएगा। उनका भी कार्ड जो है, जैसे ही वो 70 वर्ष पूरा करते हैं तो उनका भी कार्ड बनाया जा सकता है
1: जी। आपसे ये जानना चाहेंगे भास्कर साहब कि आयुष्मान भारत डिजिटल जो मिशन है वो क्या है, उसका दायरा और किस तरह से जो उसकी प्रगति है और आम लोगों तक क्या उसकी पहुंच है, इस विषय में बताइए।
0: ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है ये भारत सरकार की ये बहुत ही महत्वाकांक्षी और फ्यूचरिस्टिक योजना है, जो आने वाले जो तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस तरह के जो भी डेवलपमेंट है, इन सब का लाभ किस तरह से हेल्थ सेक्टर में लाया जाए और उससे जो जो लाभार्थी हैं, जो सिटीज़न हैं, नागरिक हैं, उनको बेहतर सेवाएं दिया जाए, इसके लिए ये स्कीम बेसिकली बना गया है। इसका उद्देश्य ये है कि जो पूरे देश में अलग अलग अस्पताल हैं या कोई लैब हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर हैं, जो निजी अस्पताल भी हैं और सरकारी अस्पताल भी हैं, इन सभी को इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल तरीके से जोड़ना, ताकि जो भी मरीज़ हैं उनके जो आज के दिन में जो हेल्थ रिकॉर्ड बनते हैं, कोई डॉक्टर की डॉक्टर पर्ची लिखते हैं या कहीं आप भर्ती होते हैं तो उसका डिस्चार्ज रिपोर्ट मिलता है या कहीं आप टेस्ट कराने जाते हैं तो उसका टेस्ट रिपोर्ट मिलता है, आज के दिन में हमारे पास एक कागज़ में ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। इस योजना का उद्देश्य ये है कि इन सभी को डिजिटाइज़ किया जाए, ताकि डिजिटल तरीके से इन सभी कागज़ों को एक साथ रखा जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाए तो इतना बड़ा कागज़ों का गट्ठा ले जाने के बजाय ये डिजिटल माध्यम से एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल आसानी से ये डेटा चला जाए। और जैसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल हिस्ट्री, ये किसी भी व्यक्ति को बचपन से ले कर बड़े होने तक जो भी अलग अलग समस्याएँ हुई हैं स्वास्थ्य के, उन सब की जानकारी हो साथ में, ताकि जब भी आप एक नए केस के लिए, नए इश्यू के लिए डॉक्टर के पास जाए तो उनको पता हो कि अच्छा, दो साल पहले क्या हुआ, उस समय आपने क्या दवाई ली, उससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, ताकि आपको आज बेहतर ट्रीटमेंट मिल सके। सो जैसे UPI के माध्यम से आज हम डिजिटल ट्रांजैक्शन हर जगह कर पा रहे हैं, इसी तरह ये पूरा तंत्र जो है एक डिजिटल इकोसिस्टम बनाकर जो नागरिक है उनको बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ देना और सारे हेल्थ सर्विसेज को एक मोबाइल ऐप के माध्यम से, टेली कंसल्टेशन के माध्यम से और लेटेस्ट तकनीक को उपयोग करके ये दूर दराज इलाकों में भी ये सेवाएं को और स्पेशलिस्ट सेवाओं को बेहतर तरीके से देने का एक ये प्रयास है। इसके अंतर्गत सभी नागरिकों को एक यूनिक हेल्थ आईडी, जो आभा नंबर कहते हैं, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट दिया जा रहा है। अभी तक लगभग 98 करोड़ लाभ आभा नंबर बन चुके हैं और इसके माध्यम से जहां आप अस्पताल में जाएं तो वहां इस नंबर से पंजीकरण हो, ताकि जहां जहां पर भी आप जा रहे हैं उन सभी जो दस्तावेज हैं डिजिटल रूप में एक जगह पे उपलब्ध हो, ताकि आपको आगे बेहतर सेवाएं मिल सके।
1: जी हाँ, यानी कोशिश कुल मिलाकर ये है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की कि जो रोगी हैं, मरीज हैं, उन्हें अपनी पर्चियां, पुरानी रिपोर्ट, फाइलों के बंडल लेकर के घूमने की ज़रूरत न पड़े और उपचार उन्हें सरलता से उपलब्ध हो। हमारे श्रोता ठाणे महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुरुनाथ जी। जी गुरुनाथ जी, कहिए क्या है प्रश्न आपका?
5: हाँ जी सर, नमस्कार।
1: नमस्कार
5: सर, मेरा कुछ दो क्वेश्चन है। ये जो आयुष्मान कार्ड है उसके अंतर्गत दायरे में के मतलब कौन सी बड़ी बड़ी बीमारियां जो होती है हेल्थ के रिलेट, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। और ये जो कितने मतलब प्राइवेट सेक्टर या सरकारी हॉस्पिटल सभी इसमें जुड़े हुए हैं। और मेरा तीसरा सवाल है, जब कोई प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल इसको कभी कभी देखा गया एक्सेप्ट नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते बिल के बारे में जब बोला जाता है, तो इसके बारे में कंप्लेंट कहाँ की जा सकती है इसके बारे में?
0: गुरुनाथ जी, ये प्रश्न पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मैं पहले कह रहा था, इस योजना के अंतर्गत 27 स्पेशलिटीज़ के अंतर्गत लगभग 1961 प्रोसीजर, जिसमें नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, हृदय रोग के संबंधित सभी रोग, डायलिसिस, आँख के संबंधित रोग और इस तरह के कई सारे जो स्पेशलिटी है इसके अंतर्गत, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट है और कैटरैक्ट ऑपरेशन है और जैसे गॉल ब्लैडर रिमूवल है, आई मीन 1961 अलग अलग प्रोसीजर हैं। लगभग जो भी बीमारियां होती हैं आम तौर पे, जिसमें आपको सर्जरी करानी पड़े या किसी में आपको भर्ती करना पड़े, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, जितना भी उसमें आवश्यकता हो, इस तरह के सभी बीमारियां कवर है। जैसे मैं कहूँगा कि लगभग सभी बीमारियाँ जो हैं इसमें कवर्ड हैं। और जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है। पूरे भारत में लगभग 39,000 अस्पताल हैं जहां पर आप ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप महाराष्ट्र से हैं तो ज़रूरी नहीं है कि केवल महाराष्ट्र में ही आपको ये लाभ मिलेगा। आप अगर गुजरात जाएं या दिल्ली आएं या कहीं भी अगर जाना पड़ा आपको और आपको वहां पर ट्रीटमेंट लेना पड़ा तो इस योजना के अंतर्गत आप अपना आयुष्मान कार्ड दिखा कर आप उसमें लाभ ले सकते हैं। तो प्राइवेट में 18,000 से अधिक अस्पताल हैं जो इसमें कवर हैं, जो आपको ट्रीटमेंट दे सकते हैं पूरे देश भर में। तीसरा प्रश्न आपका ये था कि अगर कोई अस्पताल आपको मना करे या पैसा मांगे, तो मैं बता दूं ये बिल्कुल ही इसमें बिल्कुल अलाउड नहीं है। किसी भी तरह का पैसा ले मांगना या ले देना इसमें ज़रूरत नहीं है। और कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम हो तो आप, जैसे मैंने कहा, 1-4555-14555 पर आप कॉल करके तुरंत एक SOS ग्रीवांस, हम इसको कहते हैं, कि जिसको 5 घंटे के भीतर एक, मतलब बहुत ही जल्द इस तरह की कंप्लेंट को हम लेते हैं, बहुत ही सीरियस गंभीरता पूर्वक लेते हैं और इंश्योर करते हैं कि कोई आपसे तुरंत बात करे। आपके जो लोकल डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होते हैं उनसे बात करें और किसी और उस अस्पताल को बताएं ताकि आपको समय पर सेवा मिल सके। तो ये एक बहुत ही बड़ा तंत्र है, पूरे देश भर में ये चल रहा है ताकि जो लाभार्थी हैं उनको किसी भी तरह का तकलीफ ना हो और उनको समय पर सेवा मिल सके।
1: जी, तो आपके लिए मैं हेल्पलाइन नंबर फिर से दोहरा देता हूँ, 1-4555-14555। इस पर यदि आपकी कोई भी समस्या है तो आप सूचित कर सकते हैं और उसमें समाधान अवश्य होगा। और हमारे ये श्रोता भी महाराष्ट्र से हैं, सोलापुर महाराष्ट्र से, प्रकाश रावत जी। रावत जी, कहिए क्या है प्रश्न आपका।
6: मैं प्रकाश रावत सोलापुर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। मेरा ये सवाल है कि दो तीन बार में एडमिट होने के बाद, पुनः फिर से एडमिट होने के बाद जो खर्चा आएगा वो तो आयुष्मान में कवर हो जाएगा। दूसरा ये सवाल है कि 18 कोटी को नागरिकों को कैंप लगाकर आयुष्मान कार्ड वितरित होना चाहिए, ये मेरी गिनती है।
0: प्रकाश रावत जी, पहले मैं बता दूं, ये जो 5 लाख का प्रति परिवार प्रति साल का जो कवर है, मान लीजिए 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है और अगले साल 31 मार्च तक ये 5 लाख का है, तो अगले साल 1 अप्रैल से फिर से 5 लाख हो जाएगा। इसका मतलब प्रति साल आपको 5 लाख का कवर मिलेगा। तो इसमें कोई बंधन नहीं है कि आप केवल एक बार ट्रीटमेंट ले सकते हैं या 2 बार ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जितनी आपकी आवश्यकता हो, जितने बार आपको जाने की अस्पताल जाने की आवश्यकता पड़े, उसने बार आप इसका योजना के अंतर्गत आप लाभ ले सकते हैं। और महाराष्ट्र सरकार, जहां तक हमें पता है, जगह जगह पर ये कैंप लगाकर कार्ड बना रही है। मैं तो कहूंगा आपके पास अगर मोबाइल फ़ोन है तो आप अपने खुद कार्ड बना सकते हैं और आपके अड़ोस पड़ोस कभी कभी कार्ड जिनकी आवश्यकता है वो बनाकर उनकी सहायता कर सकते हैं। आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर या फिर आयुष्मान व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से ये कार्ड आप खुद बना सकते हैं। और महाराष्ट्र सरकार भी जगह जगह पर ये कैंप लगाकर कार्ड बना रही है, तो आपके यहाँ पर भी ये कार्ड बन रहे होंगे।
1: अच्छा, ये देखिए वास्का साहब, कि हमारे यहाँ जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, जो CGHS स्कीम के लाभार्थी हैं, यदि वो ऐसी जगह रहते हैं कि वो उन्हें वहाँ लाभ उसका नहीं मिल रहा है, तो क्या वो आयुष्मान के लाभार्थी होने के पात्र हैं?
0: बिल्कुल, जो आयुष्मान व्यय वंदना है, जो 70 वर्ष या उससे अधिक के लाभार्थियों को कवर करने का स्कीम है, इसके अंतर्गत अगर आप CGHS या किसी राज्य सरकार के स्कीम में कवर हैं लेकिन आपको लगता है कि PMJ के अंतर्गत जो लगभग 39,000 अस्पतालों में आपको लाभ लेने से बेहतर आपको लाभ ले से लेना है, तो आप उस योजना को ना चुनकर PMJ व्यय वंदना को चुन सकते हैं। आप इसमें कार्ड बना सकते हैं और कार्ड बनाते समय आपको केवल ये डिक्लेयर करना होगा कि हम CGHS छोड़कर हम इस नई योजना में शामिल होना चाहते हैं।
1: जी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त सचिव किरण गोपाल वास्का जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, हमारे साथ आपने चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात ठीक 9:30 बजे एक नया विषय लेकर फिर होंगे हाजिर। आज्ञा दीजिए, मैं हूं मुनीश शर्मा। नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: खेलों में बड़ी चीज है खेल भावना, लेकिन जो चीज खेलों में रोमांच, उत्तेजना, आह्लाद और उत्साह भरती है वो है जीत की ललक। खिलाड़ी मैदान पर जयघोष का सपना लेकर ही उतरता है और जितना बड़ा मंच उतनी बड़ी भूख, लेकिन उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी। एशिया के सबसे बड़े खेल मेले 20वें एशियाई खेलों में भारतीय रणबांकुरों ने क्या क्या किया, हम दिन भर अपनी लाइव अपडेट्स में आपको बताते ही रहे हैं। और अब समय है विस्तृत लेखे जोखे का। आज के इस हाइलाइट्स कार्यक्रम में आपका स्वागत है, मैं हूं अनुपम पाठक। सबसे पहले आज की सुर्खियां। एथलेटिक्स में भाला फेंक में भारत को दोहरे पदक, यशवीर रजत, रोहित यादव कांस्य पदक, गुलवीर और मुरली शिवशंकर ने रजत पदक जीते, पारुल चौधरी और विद्या रामराज को कांस्य। शूटिंग में ईशा सिंह का जलवा, रजत पदक पे निशाना, कुराश में भी पदक, पिंकी बलहारा ने पाया कांस्य पदक। हॉकी में गोलों की बौछार जारी, बांग्लादेश को करारी शिकस्त दी। क्रिकेट में बिना मैदान पर उतरे ही भारत सेमीफाइनल में। और बॉक्सिंग में तीन और पदक मुक्केबाजों ने पक्के किए। एथलेटिक्स में पदकों के हिसाब से दिन बेहद शानदार रहा, 3 रजत और 3 कांस्य पदक, लेकिन स्वर्ण पदक की तलाश आज भी अधूरी रही, खासकर ये देखते हुए कि 2 डिफेंडिंग चैंपियंस और मुरली शिवशंकर के रूप में एक बहुत मजबूत उम्मीद मैदान पर थी। लेकिन पहले बात करेंगे जेवलिन की। देश के दुलारे नीरज चोपड़ा के नाम वापस लेने के बाद जिसे भी लगा हो कि स्पर्धा का ग्लैमर और स्तर थोड़ा कम हो जाएगा, उसे गलत साबित किया नीरज के ही पद चिन्हों पर चल रही जोड़ी यशवीर सिंह और रोहित यादव ने। पहले चक्र में यशवीर 83.56 मीटर के साथ टॉप पर, दूसरे में भी वहीं पर। तीसरे चक्र में रोहित 84.05 मीटर के साथ पहले स्थान पर आ गए, लेकिन चौथे थ्रो में रुमेश ने हुंकार भरकर जो भाला फेंका तो वो 88.33 मीटर दूर जा गिरा। लास्ट थ्रो 88.56, तो यशवीर ने भी पूरी ताकत भर के अपना कैरियर बेस्ट थ्रो किया 85.72 मीटर और रजत पदक पक्का कर दिया। तो रोहित तीसरे स्थान पर रहे, यानी भारत को दोहरी पदक सफलता। लंबी कूद में मुरली शिवशंकर दूसरे प्रयास में 8.07 मीटर की दूरी फलांग कर दूसरे स्थान पर आ गए थे। चीन के युहाओ शी 8.17 मीटर के साथ सबसे आगे चल रहे थे। पिछले हंगचाओ खेलों की 5000 मीटर की चैंपियन मेरठ की पारुल चौधरी से एक बार फिर एक सुनहरी दौड़ की उम्मीद थी। उन्होंने दम तो बहुत लगाया, लेकिन 15:14.16 सेकंड के साथ कांस्य पदक तक ही आ सकी। इन खेलों में उनका दूसरा कांस्य पदक। लेकिन जो एथलीट इस साल लगातार उम्मीदों पर खरा उतर रहा है वो है डिस्टेंस रनर गुलवीर सिंह। भारतीय फौज के इस खिलाड़ी ने एक और शानदार दौड़ पूरी की 1500 मीटर में, 3:37.92 सेकंड के साथ एक और रजत पदक। यूनुस शाह 9वें स्थान पर रहे। 400 मीटर हर्डल में विद्या रामराज ने 54.75 सेकंड के साथ कांस्य पदक पाया, लेकिन याद इसलिए किया जाएगा कि उन्होंने और अनु राघवन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और अपना अब तक का बेस्ट समय निकाला। लेकिन दिल तोड़ने वाला प्रदर्शन रहा 3000 मीटर स्टीपल चेस में डिफेंडिंग चैंपियन और गेम्स के रिकॉर्डधारी अविनाश साबले का। 4थे स्थान पर पिछड़ गए, वो भी खासे अंतर से, 8:21.67 सेकंड समय लिया। 400 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में संतोष टी के 7वें स्थान पर रहे। तो डिस्कस में सीमा ने पर्सनल बेस्ट निकाला 59.88 मीटर, लेकिन पदक नहीं ले पाई। 4थे स्थान पर रही तो सानिया यादव अंतिम स्थान पर आई। 4x100 महिला रिले में भारतीय चौकली 4थे स्थान पर रही, तो 4x100 मिश्रित रिले में फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पुरुषों की 4x400 मीटर में भारतीय टीम दोनों हिट्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन निकालकर फाइनल में पहुंच गई, लेकिन 800 मीटर महिला में पूजा ने क्वालिफाई किया पर गौतमी बाहर हार गई। शूटिंग में पदक तो आए हैं, लेकिन इन खेलों में दूसरे स्वर्ण पदक की तलाश जारी है। विश्व रिकॉर्डधारी ईशा सिंह से आस थी तो मनु भाकर के पास अपनी ख्याति को साबित करने का अंतिम मौका था। 25 मीटर पिस्टल के अलावा ट्रैप स्पर्धा भी थी, ये निशाना साध रहे हैं हमारे साथी शाहिद आजमी।
2: शूटिंग रेंज में भारत ने रोमांच की प्रकाशा तक पहुंचे मुकाबले में रजत पदक अपने नाम कर लिया। जी हां, स्टार शूटर ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिल्वर मेडल पर निशाना साधा। ईशा ने बेहद दबाव भरे फाइनल में गजब का धैर्य दिखाया और एक के बाद एक पांच शूट आउट का सामना करते हुए रजत पदक अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। निर्धारित सीरीज के बाद ईशा और चीन की जियारुक सुआन जियाओ 38-38 के स्कोर पर बराबर पर थी। इसके बाद आया निर्णायक शूट आउट जहां चीन की खिलाड़ी ने 3-2 से बाजी मार ली। गोल्ड का फैसला भले ही आखिरी शूट आउट में हुआ लेकिन ईशा का प्रदर्शन किसी चैंपियन से कम नहीं रहा। लगातार दबाव के बीच पांच शूट आउट तक मुकाबले में बने रहना और भारत के लिए सिल्वर हासिल करना ईशा की बड़ी उपलब्धि है। ईशा के इस शानदार प्रदर्शन के बीच पेरिस ओलंपिक की डबल मेडलिस्ट मनु भाकर फाइनल में जगह नहीं बना सकी। मनु 579 के स्कोर के साथ 11वें स्थान पर रही जबकि अनुभवी राही सरनोबत 30वें स्थान पर रही। टीम इवेंट में ईशा मनु और राही की तिकड़ी 1727 के कुल स्कोर के साथ 5वें स्थान पर रही। रैपिड सीरीज में राही का एक शॉट मिस होना भारतीय टीम के लिए भारी पड़ा। इस स्पर्धा का गोल्ड चीन ने जीता। हालांकि शूटिंग रेंज में भारत की पदक की उम्मीदें यहीं खत्म नहीं होती। महिला ट्रैप में नीरू ढांडा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 राउंड और 100 शॉट के बाद 95 अंकों के साथ क्वालिफिकेशन में शीर्ष स्थान हासिल किया। मनीषा कीर 84 अंकों के साथ 21वें और आशमा अहलावत 84 अंकों के साथ 23वें स्थान पर रही। भारतीय महिला टीम फिलहाल 3रे स्थान पर है। पुरुषों के ट्रैप में भी शपथ भारद्वाज 95 अंकों के साथ 5वें स्थान पर है और फाइनल की दौड़ में मजबूती से बने हुए हैं। काइनन चेनाई 91 अंकों के साथ 19वें और अहवर रिजवी 87 अंकों के साथ 32वें स्थान पर हैं। भारतीय पुरुष टीम 5वें स्थान पर है लेकिन आज शूटिंग की रेंज से सबसे बड़ी कहानी ईशा सिंह का शानदार सिल्वर है। इसके साथ ही भारतीय शूटिंग दल के खाते में अब 1 गोल्ड 7 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज समेत कुल 12 पदक हो चुके हैं।
1: मध्य एशिया में करीब 3,500 साल पहले पनपे कॉम्बैट खेल कुराश में कुछ भारतीय भी माहिर हैं। फिलहाल सबसे आगे रही पिंकी जिन्होंने आज एशियाई खेलों में अपना अब तक का 2रा पदक हासिल किया। बता रही हैं विदुषी वत्स।
3: Going to the Kurash Arena where Pinky Balhara has secured bronze in the women's under 78 kilogram category. Pinky was in action in the semi-final today against South Korea's Mo Soo-min and the bout ended 5-0 in the favor of the Korean athlete. But this medal was assured earlier today when Pinky defeated South Korea's Lim Garum 3-0 in the quarter-final, booking her place in the semi-finals and securing the medal for India. This is also a significant moment for Indian Kurash. Pinky's medal is only India's 3rd ever Asian Games medal in the sport. And it is particularly special for Pinky herself. She won silver at 2018 Asian Games while at the 2022 Games her campaign ended in the quarterfinals. She has now returned to the Asian Games podium with another medal. It is also important to remember that just yesterday 4 of our other Indian Kurash athletes saw their campaigns come to an end. So today Pinky has given the Indian contingent a very important reason to celebrate from the Kurash Arena.
1: भारतीय बॉक्सर्स के मुक्कों में दम तो है। बार बार ये बात वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर साबित करते ही रहे हैं और यहाँ आईची नगोया में भी कर रहे हैं। कल 3 ने पदक पक्के कर दिए थे तो आज भी 3 मुक्केबाज रिंग में थे पदक पक्का करने के लिए। बॉक्सिंग की बात शाहिद आजमी से।
2: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय मुक्केबाजों ने आज ऐसा पंच लगाया कि एक ही दिन में 3 मेडल पक्के हो गए। जी हां, बॉक्सिंग रिंग में भारत के लिए एक के बाद एक 3 मुक्केबाजों लवलीना बोरगोहेन, प्रिया और कपिल पोखरिया ने अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीतकर भारत के लिए पदक पक्के कर दिए। सबसे पहले बात ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन की, जिन्होंने महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में दक्षिण कोरिया की स्वांग सुयान को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से हराया। इस जीत के साथ लवलीना ने सेमीफाइनल में जगह बनाई और साथ ही अपना पदक भी पक्का कर लिया। इसके बाद महिलाओं के 60 किलोग्राम वर्ग में प्रिया ने भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने ताजिकिस्तान की मिस गोना समादोवा को 5-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। प्रिया की इस जीत के साथ भारत का एक और पदक सुनिश्चित हो गया। इसी तरह पुरुषों के 90 किलोग्राम वर्ग में कपिल पोखरिया ने कमाल कर दिया। कपिल ने दक्षिण कोरिया के किम गिचाए को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और भारत के लिए 3रा पदक पक्का कर दिया। आपको ये भी बता दें, बीते कल भी 3 मुक्केबाजों पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग में अंकुश पंघाल, 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में नरेंद्र और महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन ने सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर पदक पक्का किया। यानी एशियन गेम्स के बॉक्सिंग रिंग से 2 दिन में भारत के लिए पदकों की 2 हैट्रिक लगी। अब ये सभी 6 मुक्केबाज अपने अपने सेमीफाइनल जीत कर फाइनल में कदम रखने की जद्दोजहद करेंगे।
1: तीरंदाजी यानी आर्चरी में आज कंपाउंड के मुकाबले थे। भारतीय आर्चर्स का दुनिया में बड़ा नाम है। आज चार धनुर्धर लक्ष्य भेदने मैदान में थे। ड्रॉ कुछ ऐसा निकला कि दो आर्चर 1/8 एलिमिनेशन में ही आमने सामने आ गए। एक को तो हारना ही था। पूरे विवरण के साथ विदुषी वत्स।
3: एक्शन कमिंग इन फ्रॉम आर्चरी टुडे। फर्स्ट फ्रॉम द मेंस कंपाउंड इंडिविजुअल इवेंट, गणेश मणिरत्नम हैज बुक्ड हिज प्लेस इन द क्वार्टर फाइनल्स, डिफीटिंग फेलो इंडियन आर्चर साहिल जाधव इन अ थ्रिलिंग प्री क्वार्टर फाइनल एनकाउंटर। इट वॉज एन एक्सट्रीमली क्लोज कॉन्टेस्ट विद गणेश एजिंग पास साहिल 149-148, विनिंग द ऑल इंडियन बैटल बाई जस्ट 1 point. Let's now turn our attention to the women's compound individual event. We began with a round of 32 and Jyoti Surekha Venom got her campaign off to a winning start up against an archer from Kazakhstan. Jyoti produced a strong performance to take the match 148-145.

0: arrows, both archers were locked at 148-148. That meant the contest had to be decided by a shoot-off. She survived this shoot-off and she's through to the quarter-finals.
1: क्रिकेट में भारतीय टीम का अफगानिस्तान के साथ मैच वर्षा की भेंट चढ़ गया, लेकिन रैंकिंग में ऊपर होने के नाते भारत को सेमीफाइनल में प्रवेश मिल गया और अब सेमीफाइनल में श्रीलंका और नेपाल के बीच होने वाले मैच के विजेता से उनका मैच होगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम बहुत जबरदस्त फॉर्म में चल रही है। पिछले चार मैचों में 39 गोल कर चुकी है। पूल ए में बांग्लादेश के विरुद्ध भी हॉकी प्रेमियों को यही उम्मीद थी और टीम ने उन्हें बिल्कुल भी निराश नहीं किया। एकता थामी से सुनिए आज का हाल।
2: हॉकी के मैदान से आज एक खुश करने वाली खबर आई है। भारत ने बांग्लादेश की टीम को 10-0 से हराकर जीत दर्ज की। बारिश के कारण देर से शुरू हुए मैच में भारतीय खिलाड़ी शुरू से ही टूट पड़े। कप्तान हरमनप्रीत सिंह की सेना ने बांग्लादेश के खिलाफ इस मैच के पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी। पिछले मैच में भारत ने मेजबान जापान को 2-0 से मात दी थी। भारत की तरफ से शुरुआती गोल तीसरे मिनट में हुआ और उसके बाद नियमित अंतराल पर गोल होते चले गए। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 3 गोल किए और शिलानंद लाकरा ने एक के बाद एक 2 गोल दागकर भारतीय हॉकी के पुराने दिनों की याद ताजा कर दी। बांग्लादेश की टीम ने जमकर संघर्ष किया, लेकिन गेंद को लंबे समय तक अपने कब्जे में रखने के बावजूद वह गोल करने में सफल नहीं हो सके। भारत को 6 पेनल्टी कॉर्नर मिले और उनमें से 4 को गोल में बदला गया।
1: टेनिस में भारत हेडलाइंस बनाया करता था और उसी दौर की पुनर्वापसी में लगी है हालिया पौद। टेनिस में आज की रिपोर्ट एकता थामी से।
2: महिलाओं की युगल स्पर्धा में भारत की चुनौती समाप्त हो गई है। अंकिता रैना और ऋतुजा की जोड़ी को कजाकिस्तान की यूलिया पुतिनसेवा और अन्ना डानिलिया ने पहले राउंड के मुकाबले में 7-5, 3-6 और 5-10 से हरा दिया। भारत की लड़कियों ने विरोधी टीम को कड़ी टक्कर दी और तीसरा सेट टाई ब्रेकर तक पहुंचा दिया, लेकिन कजाकिस्तान की महिलाओं ने आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए अगले दौर में जगह बनाई। पुरुषों के एकल मुकाबले में भारत के सुमित नागल का मुकाबला दक्षिण कोरिया के होंग सियोंग चान से हो रहा था। पहले सेट में सुमित नागल 3-2 से बढ़त बनाए हुए थे, जब वर्षा के कारण मैच रोक देना पड़ा। अब यह मैच कल खेला जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में डेविस कप मुकाबलों में नागल अपने दोनों एकल मैच कोरियाई खिलाड़ियों के हाथों हारे थे। उम्मीद करनी चाहिए कि एशियाई खेलों में वह हार का यह सिलसिला तोड़ने में कामयाब होंगे।
1: स्क्वाश में पोडियम फिनिश भारतीय खिलाड़ियों के लिए स्वाभाविक सी बात है। इन्हीं खेलों में 3 बार हम देख चुके हैं। आज के अभियान का आकलन एक बार फिर एकता धामी से।
2: सूरज कुमार चांद ने चीन के दू शाओकेन को 11-4, 11-2 और 12-10 से हराया, जबकि वीर चौटरानी ने ली हेईझेन को 11-5, 11-5 और 11-3 के एक तरफा मुकाबले में हराकर भारत की स्थिति मजबूत की। तीसरे मैच में वेलावन सेंती कुमार ने पेंगलिन झों को 11-3, 11-2 और 11-4 से धो डाला और इस तरह तीनों मैच में भारत एक भी सेट नहीं हारा और पूल ए से अगले दौर में पहुंचा। महिलाओं की टीम स्पर्धा में भारत ने ग्रुप सी में चीन के खिलाफ 2-1 से विजय दर्ज करके अच्छी शुरुआत की। तन्वी खन्ना और जोशना चिनप्पा ने जीत दर्ज की, जबकि शमीमा को हार का मुंह देखना पड़ा। जापान के खिलाफ अपने अगले मैच में भी भारत की लड़कियों ने टीम स्पर्धा में कमाल का खेल दिखाया और मेजबान जापान को 2-1 से मात देने में कामयाब रही। जोशना चिनप्पा ने शुरुआती मुकाबले में जापान की एरिसा सानो को हराकर शुरुआती बढ़त दिलाई, लेकिन उसके बाद अनाहत सिंह की हार ने भारत की मुश्किलें कुछ बढ़ा दी। तीसरे और अंतिम मुकाबले में तन्वी खन्ना ने आकारी मिदोरिकावा को 12-10, 11-9, 4-11, 12-10 से हराकर मैच भारत की झोली में डाल दिया। पूल ए के मुकाबले में भारत ने कोरिया को 3-0 से हराकर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली।
1: सिपक टाकरा में महिला युगल टीम एरिना में क्या कर पाई, जानते हैं विदुषी वत्स से।
0: फ्रॉम वुमेन सेपक टाकरा, इंडिया हैज गॉन डाउन टू जापान इन देयर लेटेस्ट ग्रुप बी एनकाउंटर। इंडिया फॉट हार्ड इन अ क्लोजली कंटेस्टेड मैच, बट जापान केम थ्रू टू 1। जापान टुक द ओपनिंग सेट 15-11, बट इंडिया रिस्पॉन्डेड स्ट्रॉन्गली इन द सेकेंड, विनिंग इट 15-9 टू लेवल द मैच। द डिसाइडिंग थर्ड सेट वेंट राइट डाउन टू द वायर, बट जापान एज्ड इट 15-13 टू सील द विक्ट्री। So India finishes this Group B match with a 1-2 defeat against Japan.
1: और अब चलते हैं समंदर की लहरों से अटखेलियां करने। सर्फिंग में किशोर कुमार एकला चलो रे की तर्ज पर समंदर के सीने पर डटे हुए हैं, तो सेलिंग में आज स्किफ और डिंगी 470 क्लास के मुकाबले थे।

0: 8 सेलर्स नौका लेकर उतरे। कितने पार लगे? दोनों खेलों का विवरण एकता धामी से।
1: पुरुषों की सर्फिंग स्पर्धा में भारत के किशोर कुमार अनबरासो ने पुरुषों के शॉर्टबोर्ड राउंड 3 मुकाबले में चीन के तगड़े खिलाड़ी मा वेन सांग को कड़े मुकाबले में मात देकर भारत की उम्मीदों को जिंदा रखा है। किशोर कुमार ने चीन के खिलाड़ी के 8.80 के स्कोर के मुकाबले 9.86 अंक अर्जित करके अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। राउंड 3 के दूसरे मुकाबले का नतीजा भारत के हक में नहीं रहा। शिवराज बाबू को फिलीपींस के खिलाड़ी अलसियो जेव आर ने 7.83 के मुकाबले 11.50 से मात दी। पानी के एक अन्य खेल सेलिंग में भी आज का दिन व्यस्तता से भरा रहा। पुरुषों की स्किफ में भारत के प्रिंस खुर्शीद नोबल और मनु फ्रांसिस ने अच्छी शुरुआत की और ओमान के बाद दूसरे स्थान पर रहे। पुरुष डिंगी में विष्णु सर्वनन ने निराश किया, वह क्वालिफिकेशन की पहली और दूसरी रेस में 9वें स्थान पर रहे। महिला वर्ग में हर्षिता तोमर और शीतल वर्मा महिला स्किफ की पहली रेस में 4थे स्थान पर रही। महिला डिंगी में नेत्र नुमानन पहली क्वालिफिकेशन रेस में 6ठे स्थान पर रही। मिश्रित डिंगी में श्रद्धा वर्मा और रविंद्र शर्मा शुरुआती श्रृंखला की तीसरी रेस में 8वें स्थान पर रहे। वर्षा के कारण कल और आज बहुत सी रेस समय पर पूरी नहीं हो सकी।
0: आज की स्पर्धाओं का अंत अच्छी खबर के साथ। वॉलीबॉल के कोर्ट में भारत की एक और धमाकेदार जीत एकता थामी।
1: वॉलीबॉल में आज का दिन भारत के लिए अच्छा रहा। भारत ने पूल सी के दूसरे मैच में हांगकांग चाइना को 3-0 से हराकर देश के खेल प्रेमियों को मुस्कुराने की एक वजह दे दी। इस मैच में जीत के साथ ही भारत ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। भारतीय टीम ने दोनों मैचों में 3-0 से जीत दर्ज करके उम्मीदें बढ़ा दी हैं। हालांकि हांगकांग चाइना के खिलाफ मैच के तीसरे सेट में बेहतर तालमेल का प्रदर्शन करके मैच अपने नाम कर लिया।
0: और अब पदक तालिका पर एक निगाह।
2: At this stage of the Asian Games, China continues to lead the standings with 230 medals, including 132 gold, 53 silver and 45 bronze. Japan is in second with 172 medals, while the Republic of Korea is third with 90 medals, and India is currently in 12th position with a total of 45 medals, 4 gold, 20 silver and 21 bronze.
0: कल शूटिंग में ट्रैप स्पर्धा का अंतिम दिन है। महिला और पुरुष दोनों में 3-3 भारतीय शूटर्स हैं। कल से साइकिलिंग की स्प्रिंट स्पर्धाएं शुरू हो जाएंगी जिसमें कई भारतीय दिखेंगे। स्क्वाश में महिला टीम अपना विजय अभियान आगे ले जाने का प्रयास करेगी। टेनिस में पुरुष एकल युगल और मिश्रित युगल के मुकाबले होंगे। सेलिंग में कई भारतीय हैं स्किफ और डिंगी स्पर्धा में, तो सर्फिंग में अकेले किशोर कुमार होंगे। आर्चरी में रिकर्व में धीरज बोमदेवरा, नीरज चौहान, कुमकुम और कीर्ति शर्मा रहेंगी। कुराश में विपिन कुमार होंगे। एथलेटिक्स में 19 पदक आ चुके हैं और ज्यादा की उम्मीद होगी कल। पोल वॉल्ट महिला ऊंची कूद, हैमर थ्रो महिला और पुरुष 800 मीटर 5000 मीटर में गुलवीर सिंह एक बार फिर मैदान पर होंगे, और साथ में होगी मिक्स 4x100 मीटर और पुरुषों की 4x400 मीटर रिले। तो आज बस यहीं तक। एडिटर विशाल, कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान, और अब मुझे अनुपम पाठक को दे आज्ञा, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।
3: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
4: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर का गाया हुआ अनजान की बोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत है।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में गुलजार का लिखा यह गीत था। लता मंगेशकर ने इसे गाया था फिल्म गुलामी के लिए। इसके साथ ही फिल्म संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में लीजिए सुनिए सिद्धा साई का ख्याल गायन। राग है जोग कौंस, बोल हैं प्रीतम नहीं आए। इनके साथ तबला संगतकार उदय प्रताप सिंह ठाकुर और हारमोनियम पर संगत अमन की।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में अभी आप सुन रहे थे सिद्धा साई का ख्याल गायन, राग था जोग कौंस, बोल थे प्रीतम नहीं आए। इनके साथ तबला संगतकार थे उदय प्रताप सिंह ठाकुर और हारमोनियम संगतकार अमन। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम राग रजनी समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान अपना।
2: गाँव गाँव नगर नगर गली गली डगर डगर सूचना शिक्षा मनोरंजन।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब समाचार होंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानवाधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
4: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
3: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण तथा केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर कार्यान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति व्यक्त की। बैठक की सहअध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है। केंद्र सरकार कर्नाटक और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीमें भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वेलिंग आयोग की 70वीं बैठक में वेल और अन्य समुद्री स्तनधारी जीवों के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के हुवाट में आज से शुरू हुई 5 दिवसीय बैठक में भारत ने कहा कि समुद्री स्तनधारी जीवों के प्रभावी संरक्षण के लिए संबंधित देशों, वैज्ञानिक संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच लगातार सहयोग जरूरी है। भारत और मंगोलिया के बीच आज से सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। नई दिल्ली और उलानबटार के बीच नियमित उड़ान शुरू होने से दोनों राजधानियों के बीच यात्रा का समय करीब 5 घंटे रह जाएगा। मंगोलिया की हुनु एयर द्वारा संचालित ये सेवा हर सोमवार को उपलब्ध होगी। सीधी विमान सेवा से पर्यटन, चिकित्सा और व्यापार सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आवागमन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने आज अपने खाते में 8 और पदक जोड़े। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब तक भारत कुल मिलाकर 45 पदक जीत चुका है। इनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीतने वाले जेवलिन थ्रोअर यशवीर सिंह और कांस्य पदक जीतने वाले रोहित यादव को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतने पर पारुल चौधरी को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने सभी एथलीटों को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेल में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर यशवीर सिंह और कांस्य पदक हासिल करने पर रोहित यादव को बधाई दी। राष्ट्रपति ने सभी खिलाड़ियों को भविष्य में और अधिक सफलताओं के लिए शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: This is Akashvani, the news read by RS Raghu. Union Home Minister Amit Shah today inaugurated the Conference on Prahar National City Policy and Strategy in New Delhi. The conference deliberated upon the 7 pillars of Prahar, including prevention, response, aggregating internal capacities, human rights, attenuating conditions for terrorism, aligning international efforts in recovery and resilience through a whole-of-society approach.